करिश्मा कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी को मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने

FM 103 MHz पर हम आका अश्वैन के डाल्टनगंज के अंदर से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संपत 1948 की श्रावण मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 18 अगस्त सन 2026। स्टूडियो के घड़ी में सुबह के 5:58 और 25 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की पहली

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जीएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से संचालित भर्ती परीक्षा की व्यापक जांच का भी आदेश दिया है। छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा है कि यह निर्णय केवल पहला कदम है।

0: उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा और सीबीआई जांच की मांग अब भी लंबित है। विद्यार्थियों ने घोषणा की है कि वो शेष मांग पर विचार कर अगला कदम तय करेंगे। दिल्ली सरकार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत सरकार तीन स्तरीय प्रयास करेगी, जिसमें ग्रीनफील्ड परियोजनाएं, मौजूदा संस्थानों का ब्राउनफील्ड विस्तार तथा स्नातकोत्तर और उन्नत चिकित्सा कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में चेक प्वाइंट सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नादव जाफरीर से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारत में कंपनी की बढ़ती भागीदारी पर चर्चा की, जिसमें अनुसंधान एवं विकास विस्तार और भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुरक्षा के लिए एआई आधारित सुरक्षा का उपयोग शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी संदीप सिक्का से भी मुलाकात की। उन्होंने खुदरा निवेश बढ़ाने और भारतीय बाजारों में वैश्विक पूंजी आकर्षित करने के अवसरों पर चर्चा की। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की यह परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक तेज वर्षा के कारण कल 87 सड़कें अवरुद्ध हो गईं और चंबा जिले में लोहे का एक पुल ध्वस्त हो गया। अचानक आई बाढ़ से भरमौर में बालोद ग्राम पंचायत में लोहे का पुल बह गया और लगभग 50 श्रद्धालु इसमें फंस गए। ये श्रद्धालु भरमौर में मां भगवती खुंदीवाली मंदिर जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लकड़ी का अस्थायी पुल बनाया है। सोरेन जिले में चक्की मौर के निकट भूस्खलन से कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। मौसम विभाग ने बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूरे राज्य में 23 अगस्त तक वर्षा जारी रहने का अनुमान है। राज्य आपदा कार्रवाई केंद्र के अनुसार कुल्लू में सबसे अधिक 33 सड़कें बंद की गई हैं, मंडी में 27 और शिमला में 9 सड़कें अवरुद्ध हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत गणना का चरण पूरा हो गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए। नई दिल्ली में आयोजित बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के आयुष शेट्टी ने मौजूदा चैंपियन चीन के शी युची को 21-14, 13-21, 21-19 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। पीवी सिंधु और महिला डबल्स जोड़ी ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी दूसरे दौर में पहुंच गई। वहीं महिला डबल्स में कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी ने स्पेन की निकोल कैरोला और कार्मेन जिमनेज की जोड़ी को 22-20, 21-14 से हराया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। वहीं उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के पहले दौर में म्यांमार की थेत हतार हुजार से मुकाबला करेंगी। डबल्स जोड़ी में रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गड्डे तथा कनाडा के जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई आमने सामने होंगे। आशीष सूर्य और अमृता प्रमुरिये तुर्की के एमरे सोनमेज और यासिमेन बेक्ता से मुकाबला करेंगे। एफआईएच महिला हॉकी विश्वकप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। ये मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टेलफेन में खेला जाएगा। भारत ने ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। दक्षिण अफ्रीका अपने पहले मैच में इंग्लैंड से 4-0 की हार के बाद वापसी की कोशिश करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार। समाचारों के बाद स्वागत है आपका। पेश है कार्यक्रम खेती की बातें। मिट्टी जांच के महत्व एवं तकनीक पर जानकारी दे रही हैं प्रतिमा वर्मा।
2: किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम खेती की बातें की आज की इस कड़ी में मिट्टी जांच महत्व एवं तकनीकी। जी हां किसान भाइयों, मिट्टी के रासायनिक परीक्षण के लिए पहली आवश्यक बात है खेतों से मिट्टी के सही नमूने लेना। न केवल अलग अलग खेतों की मृदा की आपस में भिन्नता हो सकती है, बल्कि एक खेत में अलग अलग स्थानों की मृदा में भी भिन्नता हो सकती है। परीक्षण के लिए खेत में मृदा का नमूना सही होना चाहिए। किसान भाइयों, मृदा का गलत नमूना

0: होने से परिणाम भी गलत मिलेंगे। खेत की उर्वरा शक्ति की जानकारी के लिए ध्यान योग्य बात यह है कि परीक्षण के लिए मिट्टी का जो नमूना लिया गया है वह आपके खेत के हर हिस्से का प्रतिनिधित्व करता हो। रासायनिक परीक्षण के लिए मिट्टी के नमूने एकत्रित करने के मुख्य तीन उद्देश्य हैं। पहला तो फसलों में रासायनिक खादों के प्रयोग की सही मात्रा निर्धारित करने के लिए, दूसरा ऊसर और आम्लिक भूमि के सुधार और उसे उपजाऊ बनाने का सही ढंग जानने के लिए, और तीसरी जरूरी बात वो ये कि बाग और पेड़ लगाने हेतु भूमि की अनुकूलता तय करने के लिए। मिट्टी का सही नमूना लेने की विधि के बारे में जो तकनीकी बातें हैं हम आपको बता दें। सबसे पहले तो आप रासायनिक खादों के प्रयोग के लिए नमूना लें। जो भाग देखने में मृदा की किस्म और फसलों के आधार पर जल निकास और फसलों की उपज के दृष्टिकोण से भिन्न हो उस प्रत्येक भाग की निशानदेही लगाएं और प्रत्येक भाग को खेत मानें। दूसरी बात, नमूना लेने के औजार जैसे कि मृदा का सफल नमूना लेने के लिए मृदा परीक्षण ट्यूब यानी सॉयल ट्यूब, बर्मा फावड़ा और खुरपे का प्रयोग किया जा सकता है। नमूना एकत्रित करने की विधि भी हम आपको बता दें किसान भाइयों। सबसे पहले तो मृदा के ऊपर की घास फूस आप साफ कर लें। यदि आपको फावड़े या खुरपे का प्रयोग करना हो तो वी आकार का 15 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा बनाएं। अब एक ओर से ऊपर से नीचे तक 10 से 12 अलग अलग स्थानों जैसे बेतरतीब ठिकानों से मृदा की टुकड़ियां ले लें और उन पर सबको एक भगोने या साफ कपड़े में इकट्ठा करें। अगर खड़ी फसल से नमूना लेना हो तो मृदा का नमूना पौधों की कतारों के बीच खाली जगह से लें। जब खेत में क्यारियां बना दी गई हो या कतारों में खाद डाल दी गई हो तो मृदा का नमूना लेने के लिए विशेष सावधानी रखें। एक बात और किसान भाइयों, रासायनिक खाद की पट्टी वाली जगह से नमूना ना लें। जिन स्थानों पर पुरानी बाड़ सड़क हो और जहां गोबर खाद डाली गई हो वहां से मृदा का नमूना ना लें। एक खेत में भिन्न भिन्न स्थानों से तसले या कपड़े में इकट्ठे किए हुए नमूने को सुखा लें। एक खेत से एकत्रित की हुई मृदा को अच्छी तरह मिलाकर एक नमूना बनाएं और उसमें से लगभग आधा किलो मृदा का नमूना लें जो समूचे खेत का प्रतिनिधित्व करता हो। उसके बाद जो जरूरी बात है वो है लेबल लगाना। हर नमूने के साथ नाम, पता और खेत का नंबर का लेबल लगाएं। अपने रिकॉर्ड के लिए भी उसकी एक नकल रख लें। दो लेबल तैयार करें, एक थैली के अंदर डालने के लिए और दूसरा बाहर लगाने के लिए। लेबल पर कभी भी स्याही से ना लिखें, हमेशा बॉल पेन या कॉपिंग पेंसिल से लिखें। सूचना पर्चा भरना भी जरूरी है किसान भाइयों। खेत और खेत की फसलों का पूरा ब्यौरा आप सूचना पर्चा में लिखें। यह सूचना आपकी मृदा की रिपोर्ट और सिफारिश को अधिक लाभकारी बनाने में सहायक होगी। सूचना पर्चा कृषि विभाग के अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है। मृदा के नमूने के साथ सूचना पर्चा में कुछ बातों की जानकारी अवश्य दें, जैसे कि खेत का नंबर का नाम, अपना पता, नमूने का प्रयोग, बीज वाली फसल या और दूसरी किस्म हो, मृदा का स्थानीय नाम, भूमि की किस्म, सिंचाई वाली है या बारानी है, सिंचाई का साधन, प्राकृतिक निकास और भूमि के नीचे पानी की गहराई, भूमि का ढलान, फसलों की अदल बदल, खादों या रसायनों का ब्यौरा जिसका प्रयोग किया गया हो, कोई और समस्या जो भूमि से संबंधित हो। इसके बाद जो जरूरी बात है वो है नमूने बांधना। हर नमूने को एक साथ कपड़े की थैली में डालें। ऐसी थैलियों में नमूने न डालें जो पहले खाद आदि के लिए प्रयोग में लाई जा चुकी हो या किसी और कारण से खराब हो। एक लेबल थैली के अंदर भी डालें। थैली अंदर से बंद करके उसके बाहर भी एक लेबल लगा दें। 3 या 5 साल के अंतराल पर अपनी भूमि की मिट्टी का परीक्षण एक बार जरूर करवा लें। एक पूरी फसल चक्र के बाद मृदा का परीक्षण हो जाना अच्छा है। वर्ष में जब भी भूमि की स्थिति नमूने लेने योग्य हो नमूने अवश्य एकत्रित कर लेना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि मृदा का परीक्षण केवल फसल बोने के समय करवाया जाए। किसान भाइयों, इसके साथ ही हमें कार्यक्रम खेती की बातों से अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। समय हो चुका है तुलसीदास रचित श्री रामचरित मानस गान का। आइए सुनते हैं कड़ी संख्या 241।
2: टू फोर वन।

दो सोपानों बालकांड तथा अयोध्या कांड की समाप्ति के बाद अब आरंभ होता है तृतीय सोपान अरण्य कांड का संगीतबद्ध रूप। प्रारंभिक श्लोक में दैहिक दैविक तथा भौतिक तीनों प्रकार के ताप हरण करने वाले ब्रह्मा के आत्मज श्री रामचंद्र के प्रिय भगवान शंकर की वंदना की गई है। तत्पश्चात श्री राम की स्तुति की गई है जो अपने श्यामवर्णी शरीर पर पीतांबर, हाथों में धनुष बाण और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हुए जनक नंदिनी सीता तथा अनुज लक्ष्मण सहित वन में निवास कर रहे हैं। एक दिन श्री राम ने अपने हाथों से भांति भांति के सुंदर फूल चुनकर मनमोहक गहने बनाए और सीता जी को परम मनोहारी रूप में सजा दिया। इतने में उनके बल का था लेने के उद्देश्य से इंद्र का पुत्र जयंत एक कौवे का रूप धारण कर सीता जी के कोमल पैरों में चोंच मारकर उड़ गया।

आप सुन रहे थे तुलसीदास रचित श्री रामचरित मानस गान। समय हो चुका है चिंतन कार्यक्रम का। सतत प्रयास से ही मिलती है सफलता। आलेख एवं वाचन स्वर है निर्मला तिवारी का।

बौद्धिक क्षमता में वृद्धि की चाहत तो सभी रखते हैं, खास तौर पर विद्यार्थी। उनमें कुछ विशेष ललक होती है। ज्यादातर विद्यार्थी किसी ऐसे नुस्खे, ऐसी तकनीकों की तलाश में रहते हैं जो उनकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा दे। यही सत्य जिंदगी के दूसरे दायरों में नजर आता है। बुद्धिमान हर कहीं बाजी मार ले जाते हैं, जबकि बुद्धिहीन विवशता में हाथ मलते रह जाते हैं। जबकि स्थिति यह होती है कि बुद्धि की क्षमता हम स्वयं बढ़ा सकते हैं। हम निरंतर प्रयास करें, लगातार प्रयास करें, मेहनत करें तो बुद्धि बढ़ती जाती है। जब हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो फिर सफलता कैसे मिलेगी? भारतीय विद्याओं के परम विद्वान डॉक्टर गोपीनाथ कविराज के विचार इस संदर्भ में बहुत ही माननीय हैं। जिन्हें भी भारतीय संस्कृति, दर्शन, आध्यात्म विद्या में रुचि है, उनके लिए गोपीनाथ कविराज का नाम अपरिचित नहीं है। कविराज जी महान विद्वान होने के साथ साथ अनुभवी साधक भी थे और चिंतक भी। उन दिनों जब वे प्रोफेसर थे, उनसे एक छात्र मिला। वो बहुत ही दुखी था, निराश, हताश था। कविराज जी ने उसे बड़े स्नेह के साथ घर आकर मिलने के लिए कहा। स्नेह पाकर उस छात्र के मन में कुछ आशा बंधी और वह उनके घर मिलने चला गया। प्रणाम करने के साथ उसने अपनी व्यथा सुनाई। उसकी परेशानी यह थी कि नियमित उपस्थिति के बावजूद उसे पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु समझ में नहीं आती है। जिंदगी के अन्य क्षेत्रों में भी वह अपनी बौद्धिक क्षमता के अभाव के कारण बहुत ही पीछे था, त्रस्त था। अपनी इसी असफलता के कारण वह एक दो बार आत्महत्या का प्रयास भी कर चुका था। उसकी इस मनोदशा से द्रवित होकर गोपीनाथ जी ने कहा कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। निर्बुद्धि कालिदास को परम बुद्धिमान कवि बना देने वाली जगत माता तुम्हें भी बुद्धि अवश्य देंगी। बस इसके लिए तुम्हें कुछ प्रयास करने होंगे। कविराज के इन शब्दों को सुनकर उस छात्र के अंदर आशा और उत्साह का संचार हो गया। पंडित गोपीनाथ जी से उसने कहा, बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए पहला उपाय क्या है? उन्होंने कहा, स्थिरता। ध्यान रहे, हमारी चंचल वृत्तियां ही हमारे बौद्धिक विकास को रोक देती हैं। इस अवरोध को हटाने के लिए आवश्यक है कि तुम धीरे धीरे ही सही क्रमिक रूप से निरंतर 3-4 घंटे बैठकर पढ़ने का अभ्यास करो। शरीर के स्थिर होने पर मन भी स्थिर हो जाएगा, साथ ही बुद्धि भी विकसित होगी। और इसी क्रम में दूसरा बिंदु है एकाग्रता। इसके लिए जरूरी है अपने अध्ययन विषय पर एकाग्र बन जाओ। न समझ आने के बावजूद भी उसे पूरी एकाग्रता के साथ समझने की कोशिश करो। निरंतर एकाग्रता का अभ्यास तुम्हारी समझ को विकसित करेगा। और इसी के साथ है जिज्ञासा, यानी जानने समझने की जागरूकता। तुम्हारे अंदर जिज्ञासा होगी तो पढ़ने की लालसा बढ़ेगी, तुम अधिक जानना चाहोगे। और इसी के साथ ही आवश्यक है बुद्धिमानों की संगति। तुम्हारी संगति जैसी होगी तुम ऐसे ही बन जाते हो, इसलिए अच्छे लोगों की, बुद्धिमान लोगों की संगति रखो तो तुम्हारे विचार भी उन्हीं के समान हो जाएंगे। और इसी के साथ है निराशा को हटा देना, आशावादी बन जाना। तुम आशावादी बनोगे तो तुम्हारे बुद्धि का विकास हो ही जाएगा। इसलिए निरंतर प्रयास करो, एकाग्र रहो, आशावान बनो, अच्छे लोगों की संगति करो। ऐसा करने से बुद्धि विकास होगा। वह छात्र बहुत ही खुश हुआ और उसने ऐसा ही किया। आगे चलकर उसे हर क्षेत्र में सफलता मिली। कहने का तात्पर्य है कि बुद्धि के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धि विकास के लिए आवश्यकता है एकाग्रता की, प्रयास की और सतत प्रयास की। ऐसा करने से हम आगे बढ़ जाते हैं और हमारी बुद्धि का विकास होता है। इसलिए जो भी कार्य आप करें उस पर एकाग्र हो जाएं। लेकिन आज के समय में चिंता की यह बात है कि लोग एकाग्र नहीं हो पाते हैं, मन चंचल रहता है, वो जल्दी से जल्दी सफलता पाना चाहते हैं, इसलिए छोटा रास्ता अपना लेते हैं और इसी में उन्हें बार बार असफलता भी मिलती है। इसलिए सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है, स्थिरता की आवश्यकता है। स्थिर रहिए, आगे बढ़िए, आपकी बुद्धि का विकास होगा।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आप सुन रहे थे आराधना कार्यक्रम। समय हो चुका है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं भेंट वार्ता डॉक्टर विजय आनंद रांची से। विषय है लकवा कारण एवं निदान।
1: दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बदलती जीवन शैली ने हम लोगों को काफ़ी प्रभावित किया है और बहुत सारी बीमारियां भी आने लग गई हैं। एक ऐसी ही बीमारी है पक्षाघात, जिसे हम लकवा कहते हैं या हम पैरालिसिस भी कहते हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि लकवा होने का कारण क्या है, कैसे हम इन चीज़ों से अपना बचाव करें।

0: और यदि इस तरह की बीमारी हो जाती है तो इसका उपचार कैसे किया जाता है। आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं डॉक्टर कुमार विजय आनंद, आप न्यूरो फिजिशियन हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। बदलती जीवन शैली के कारण बहुत सारी बीमारियां धीरे धीरे धीरे शरीर के अंदर प्रवेश करती जाती है। एक ऐसी बीमारी है पक्षाघात, जिसे हम पैरालिसिस कहते हैं या स्ट्रोक भी कहते हैं या लकवा भी कहते हैं, ये लकवा होने का क्या कारण है डॉक्टर साहब?
1: देखिए, ब्रेन स्ट्रोक जिसे सामान्य भाषा में लकवा या पैरालिसिस कहते हैं, ये मुख्यतः दो तरह का होता है, एक हेमरेजिक स्ट्रोक और एक इस्कीमिक स्ट्रोक। इस्कीमिक स्ट्रोक अगर हम सामान्यतः समझाएं तो वो है कि जो खून की नली जो ब्रेन को सप्लाई करती है उसमें अचानक थक्का जम जाता है, जिससे रक्त का प्रवाह ब्रेन के किसी एक हिस्से में कट ऑफ हो जाता है, उसका बाधित हो जाता है, उसके कारण मरीज को लक्षण होते हैं। और जो हेमरेजिक स्ट्रोक है, जैसे ब्रेन हेमरेज सामान्यतः आम भाषा में लोग बोलते हैं, उसमें खून की नली में रप्चर कर जाती है, फट जाती है और खून का हिस्सा बह कर एक थक्का जम जाता है ब्रेन के एक हिस्से में और उसके कारण प्रॉब्लम होती है। दोनों ही स्ट्रोक में जो लक्षण होते हैं वो अचानक उत्पन्न होते हैं, मरीज को अचानक किसी एक तरफ हाथ या पाँव में कमजोरी होने लगती है, आवाज़ में लड़खड़ाहट होती है, फेस का टेढ़ापन हो जाता है, चलने में बैलेंस का प्रॉब्लम हो सकता है, देखने दिखाई देने में प्रॉब्लम हो सकती है, दृष्टि में उसको असुविधा हो सकती है। तो ये सब लक्षण स्ट्रोक के हैं और ये अचानक उत्पन्न होते हैं मरीज में, सडन ऑनसेट होता है इनका। तो ये इन सब लक्षण को पहचानना ज़रूरी है, इसके बारे में सोसाइटी को अवेयर करना इम्पॉर्टेंट है, और इसलिए भी कि अगर मरीज को जितनी जल्दी उपचार मिले उतना ही मरीज की जान को हम बचा सकते हैं या जो डिजेबिलिटी है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो अगर कोई भी फैमिली मेम्बर्स में किसी को स्ट्रोक के लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, उनको अगर फैमिली मेम्बर्स जो दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं वो जल्द पहचानें और मरीज को हॉस्पिटल लेके जाएं और उनका उपचार तुरंत स्टार्ट हो जाए, शुरू हो जाए, तो मरीज की जान बचाई जा सकती है। या और जो उसके कारण डिजेबिलिटी होती है, जो विकलांगता आती है, उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको उसकी रिकवरी अच्छी होती है जितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा।
0: डॉक्टर साहब, ये जो आप लक्षण बता रहे हैं, इस लक्षण के कितने समय बाद इस तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है?
1: नहीं, जैसे ही मरीज को पक्षाघात का अटैक होता है लक्षण इमीडिएटली स्टार्ट होते हैं। तो अगर इमीडिएटली स्टार्ट होने पर उसकी पहचान कर उसको अगर तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं और उनका उपचार अगर तुरंत शुरू हो तो उतना ही मरीज को फ़ायदा मिलता है। इसके कुछ रिस्क फैक्टर हैं, इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स, एज उनमें एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स है, बढ़ती उम्र के कारण लकवा होने की जो रिस्क है वो बढ़ती जाती है। दूसरा है जो और बीमारियां इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इनके कारण स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ता है। साथ में जो जीवन शैली की बात की आपने, तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट है, तनावपूर्ण जीवन हो गया है आजकल, जो लाइफ है बहुत फास्ट हो गई है और काफ़ी कॉम्पिटिटिव लाइफ है, उसमें तनाव काफ़ी बढ़ गया है, तो तनाव को लोग मैनेज नहीं कर पाते, हैंडल नहीं कर पाते, वो एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है। खान पान का जो है वो जंक फूड का लेना, खान पान की जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, हेल्दी डाइट है, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, स्प्राउट्स है, इनकी मात्रा देख रहा हूँ कि
0: कम होती जा रही है
1: और लोग जंक फूड्स और बाकी चीज़ों पर ज़्यादा उनका रुझान रहता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, लोग योगा, प्राणायाम, वॉकिंग और एक्सरसाइज, इसको अपने जो डेली रूटीन में इंकॉर्पोरेट नहीं कर पाते हैं व्यस्तता के कारण या किसी और मोटिवेशन की कमी के कारण, तो ये भी इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक के लिए। और कुछ लोग हैं जो नशे में इंडल्ज होते हैं, किसी तरह के नशे का सेवन, खास करके स्मोकिंग या अल्कोहल का सेवन, ये स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर को बढ़ा देता है।
0: जी, किसी व्यक्ति को स्ट्रोक हो जाता है और वो नज़दीकी चिकित्सालय जाकर अपना इलाज शुरू करवा देता है, तो जो रोगी है वो कितना प्रतिशत तक ठीक हो जाता है?
1: एक मैं इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, जो इसमें जो मैंने पहले बताया कि स्ट्रोक दो तरह के होते हैं, तो उसमें जो इस्कीमिक स्ट्रोक है, इसमें कि खून की नली में क्लॉट हो जाता है और उसमें जो रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है, उस स्ट्रोक में एक मेडिसिन है जो हम लोग अगर गोल्डन आवर में दें, जो 4.5 घंटे का होता है, अगर मरीज उसके अंदर अस्पताल पहुंचता है और हम लोग वो मेडिसिन उनको दे पाएँ, तो वो जो क्लॉट है वो डिसॉल्व हो सकता है और रक्त का प्रवाह पुनः स्थापित हो सकता है। तो जो इसको रीपरफ्यूजन थेरेपी, थ्रोम्बोलाइसिस थेरेपी कहते हैं, तो अगर हम ये मरीज को दे पाएँ विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड,
0: जो जिससे वो गोल्डन घंटे के अंदर,
1: हाँ 3.5 से 4.5 घंटे के अंदर,
0: जी,
1: तो मरीज को बहुत फ़ायदा हो सकता है। हो सकता

0: कि उस पूरी तरह ठीक हो सकता है या फिर जो सीवियरिटी है वो कम हो सकती है। अगर उसके बाद मरीज पहुंचते हैं फिर भी उसमें स्ट्रोक होने के बाद और भी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं, स्वेलिंग बढ़ती है ब्रेन में और ब्रेन में जो प्रेशर है वो बढ़ता है, तो उन सब चीज़ों को सही समय पे उन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट स्टार्ट होना इम्पॉर्टेंट है। तो वो अगर उपचार सही समय पे हम जल्दी स्टार्ट कर पाएँ तो मरीज की जान बच सकती है और हो सकता है कि मरीज बिल्कुल ठीक हो जाए। कितना ठीक होगा ये बहुत सारे और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन जल्दी उपचार मिलने से उनकी डिजेबिलिटी कम होगी, जान बचाई जा सकती है और सुधार होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। अब हेमरेजिक स्ट्रोक, हेमरेजिक स्ट्रोक में जिसमें मैंने बताया कि खून की नली फट जाती है, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है वो है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन को नियंत्रित रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जब मरीज वैसे मरीज पहुंचते हैं तो उनका रक्तचाप बहुत ही ज़्यादा होता है उस समय, तो इमीडिएटली ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जितना जल्दी हम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर पाएंगे, रक्त का जो प्रभाव है जो रप्चर हो के फैल रहा है उसको हम रोक पाएंगे, और साथ में अगेन जो ब्रेन में और भी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं उसके चलते जो स्वेलिंग बढ़ रही है वो हम उसको
1: कम कर सकते हैं
0: इलाज के द्वारा। कुछ पेशेंट्स इसमें सर्जिकल कैंडिडेट्स होते हैं जिनमें प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, खून का थक्का बहुत फैल जाता है, उनमें फिर हम लोग न्यूरोसर्जन को कॉल करते हैं। न्यूरोसर्जरी एक टीम वर्क होता है, ये न्यूरोलॉजिस्ट का, न्यूरोसर्जरी का और आईसीयू की टीम होती है, तो फिर हम लोग उसमें उनकी सर्जरी के द्वारा उस क्लॉट को निकालते हैं और प्रेशर को कम करते हैं। तो ये सब चीज़ें जितनी जल्दी हम लोग इसको स्टार्ट करें और डिसाइड करके मरीज को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें उतना ही मरीज के लिए बेहतर होता है।
1: मरीज जितनी जल्दी अस्पताल पहुंच जाए, जितनी जल्दी वह अस्पताल पहुंच जाता है उसकी ठीक होने की चांसेस उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, इस तरह की बीमारी नहीं हो, आजकल हमारे युवा वर्ग भी इस बीमारी के चपेट में आ रहे हैं, अपनी जीवन शैली को, तनाव को, ब्लड प्रेशर को, अपने डायबिटिक को किस प्रकार कम करें और कैसे अपने एक अच्छी जीवन शैली हम गुजारें ताकि हम स्वस्थ रहें, बीमार नहीं हो।
0: ये बहुत ही अच्छा आपने बात कही है कि सबसे पहले स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर का के बारे में अवेयरनेस होना, उसके बारे में पता होना ज़रूरी है। फिर आप देखें कि आप में क्या क्या रिस्क फैक्टर है जो आप में मौजूद है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपके फैमिली में किसी को पहले स्ट्रोक हुआ है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। तो अगर ऐसे मेम्बर्स रहे हैं आपके फैमिली में तो आपको और सजग होने की ज़रूरत है, और अगर आपको साथ में डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो उसको सही समय पे उसको नियमित रूप से उसको मॉनिटरिंग करें और उसका ठीक से इलाज करें, और अपने जो भी फिजिशियन है और जो भी डॉक्टर हैं उनसे आप रेगुलर उनके फॉलोअप में रहें और उनसे ट्रीटमेंट लें अच्छे से, तो ये एक चीज़ है। दूसरा है कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो उसका ठीक तरह से ट्रीटमेंट कराएं, और जो जीवन शैली है लाइक कि हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन जो आपको तनाव से आपको दूर रखता है, और अच्छी नींद का लेना, और किसी भी
2: लकवा कारण एवं निदान विषय पर अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता डॉक्टर विजय आनंद से। इसके साथ ही आज का स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आइए समाचारों के लिए हम आपको दिल्ली के अंदर लिए चलते हैं जहाँ से आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: विध्वंसात्मक प्रयासानां प्रतिरोधाय समन्वितं बहुराज्यीयम् अभियानं प्रचालितम्। एतत् जालं विविधेषु आतंकिकार्येषु संलग्नम् आसीत्। झारखण्डे जेपीएससी अथ जेएसएससी चेत्येतयोः परीक्षयोः अभ्यर्थिनां चतुर्विंशति दिवसीय विरोध प्रदर्शनस्य अनन्तरं राज्य प्रशासनेन 24-2000 वर्षस्य जेएसएससी सीजीएल परीक्षा अथ च टीडीपीएल संस्थया आयोज्यमानाः सर्वाः प्रतियोगी परीक्षाः निरस्ताः। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ह्यः सायं विशेष मंत्रिमंडलोपवेशनस्य अध्यक्षतां कृत्वा एतत् निर्णयम् उद्घोषितवान्। राज्य प्रशासनेन 24-2000 वर्षादारभ्य झारखण्ड लोकसेवायोगेन अथ झारखण्ड कर्मचारी चयनायोगेन च आयोजितानां नियुक्ति परीक्षाणां व्यापक परीक्षणस्य अपि आदेशः प्रदत्तः। किन्तु छात्रनेता पीयूष कुमारः उक्तवान् यत् 11-13 पर्यन्तानां जेपीएससी परीक्षाणां तथा केन्द्रीयान्वीक्षणाभिकरणस्य अन्वेषणात् सम्बद्ध प्रदर्शनकारिणां याचनाः अद्यापि विचाराधीनाः सन्ति। प्रदर्शनकारिणः छात्राः उक्तवन्तः यत् ते स्वीया अवशिष्टयाचनाविषये चर्चां करिष्यन्ति तथा अग्रिमकार्याचरणविषये अपि निर्णयं करिष्यन्ति। दिल्ली प्रशासनेन चरणबद्धरीत्या स्नातक स्नातकोत्तर अतिविशेषज्ञता स्तरीय चिकित्सकीय शिक्षा संस्थानानां संख्यां वर्धयित्वा राष्ट्रिय राजधान्यां चिकित्सा शिक्षायाः क्षमतां वर्धयितुं सज्जः अस्ति। अस्य योजनायाः अन्तर्गतं प्रशासनेन त्रिमुखी कार्यनीतिः स्वीकृता अस्ति। अस्यां नवसंस्थानां संस्थापना, विद्यमानसंस्थानां विस्तारः तथा स्नातकोत्तर उन्नत चिकित्सकीय कार्यक्रमाणां विस्तारश्च सम्मिलिताः सन्ति। केरले विजिंजम समुद्रपत्तनात् प्रत्यक्ष निर्यातः आयातश्च अद्य आरभ्यते। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन प्रातः पादोन 11 वादने सेवायाः उद्घाटनं करिष्यति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य झारखण्डे अतिवृष्टिमालक्ष्य रक्तवर्णपरा संचेतना प्रसारिता। ऋतु विभागेन अद्य बिहार छत्तीसगढ़ पूर्व मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश ओडिशा पश्चिमोत्तर प्रदेशानां च विभिन्नेषु भागेषु अतिवृष्टेः संभावना पूर्वानुमानिता। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य आयुष शेट्टी नवदिल्ल्यां आयोजितायां BWF बैडमिंटन विश्वस्पर्धायां पुरुषाणां एकल वर्गस्य प्रथमचरणे विश्वस्य प्रथम क्रमांकितं वर्तमान विजेतारं च चीन देशीयं शी यू क्यूई इत्येनं पराजित्य विजयम् अवाप्तवान्। तत्रैव पीवी सिंधुः तथा महिलानां युगलवर्गस्य भारतीय युगलं त्रिसा जौली गायत्री गोपीचन्दः अपि द्वितीय चरणे प्रविष्टे। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से संचालित भर्ती परीक्षा की व्यापक जांच का भी आदेश दिया है। छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा कि यह निर्णय केवल पहला कदम है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा और सीबीआई जांच की मांग अब भी लंबित है। विद्यार्थियों ने घोषणा की है कि वो शेष मांगों पर विचार कर अगला कदम तय करेंगे। दिल्ली सरकार ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत सरकार तीन स्तरीय प्रयास करेगी, जिनमें ग्रीनफील्ड परियोजनाएं,

0: मौजूदा संस्थानों का ब्राउन फील्ड विस्तार तथा स्नातकोत्तर और उन्नत चिकित्सा कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में चेक पॉइंट सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नादव जाफरी से मुलाकात की। श्री गोयल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारत में कंपनी की बढ़ती हुई भागीदारी पर चर्चा की, जिसमें अनुसंधान एवं विकास विस्तार और भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुरक्षा के लिए एआई आधारित सुरक्षा का उपयोग शामिल है। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की परंपरा वर्ष 1950 में शुरू की गई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक तेज बारिश के कारण कल 87 सड़कें अवरुद्ध हो गईं और चंबा जिले में लोहे का एक पुल ध्वस्त हो गया। अचानक आई बाढ़ से भरमौर में बालोद ग्राम पंचायत में लोहे का पुल बह गया और लगभग 50 श्रद्धालु फंस गए। ये श्रद्धालु भरमौर में मां भगवती कुंदीवाली के मंदिर जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लकड़ी का एक अस्थायी पुल बनाया। मौसम विभाग ने बिलासपुर कांगड़ा मंडी और सिरमौर जिले में आज अत्यधिक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूरे राज्य में 23 अगस्त तक वर्षा जारी रहने का अनुमान है। नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन वेस्ट चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के आयुष सेट्टी ने मौजूदा चैंपियन चीन के शी युची को हराकर एक बड़ा उलटफेर कर दिया है। पीवी सिंधु और महिला डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी अब दूसरे दौर में पहुंच गईं। महिला डबल्स में कवि प्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी ने स्पेन की निकोल कैरोला और कार्मेन जिमनेज की जोड़ी को हराया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रेलिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। उन्नति हुडा महिला सिंगल्स के पहले दौर में म्यांमार की थेत हजार थुजार से मुकाबला करेंगी। डबल्स जोड़ी में रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गड्डे तथा कनाडा के जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई आमने सामने होंगे। आशीष सूर्या और अमृता प्रमथेश तुर्की के एमरेसोन मेज और यासिमेन बेक्टास से मुकाबला करेंगे। गोल में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त बना ली है। भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 284 रन पर समेट दिया। भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाए थे। आज चौथे दिन का मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Union Home Minister Amit Shah has informed that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISI-backed terror group Shehzad Bhatti network ahead of Independence Day. He informed that the government also thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, he said that security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across different locations in 14 states, upholding a brilliant example of India's zero tolerance towards terrorism. The security agencies launched a coordinated multi-state operation on the 12th of this month, using a real-time intelligence sharing system with state police forces to counter Shehzad Bhatti network-linked disruptions. The network was involved in several terrorist activities. Shehzad Bhatti Network, a Pakistan-based ISI-backed terror syndicate linked to grenade, IED and petrol bomb attacks and targeted killings across India. In Jharkhand, following a 24-day protest by JPSC and JSSC aspirants, the state government has cancelled the 2024 JSSC CGL exam.

हमारे दिल्ली केंद्र से भी आप सुन रहे थे संस्कृत हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। समाचारों के बाद स्वागत है आपका, पेश है कार्यक्रम विवरण।

अब से बस कुछ ही पलों के बाद 7:15 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग। इस कार्यक्रम के तहत हम आपको सुनवाएंगे बांसुरी वादन के एस गोपाला कृष्ण से राग श्री हरि कम्बोजी में। स्वर चर्चा कार्यक्रम का समय है 7:45। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे स्वाति नाटेकर को। सुबह के 8:00 समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। 8:30 पर हमारे रांची केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 8:45 पर पुराने फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा गीत गुंजन। सुबह के 9:00 आप सुनेंगे जोहार पलाम कार्यक्रम। 9:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा उमंग।

दस बजकर दस मिनट पर मुंबई के अंदर से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। दिन के 11 बजे विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। दिन के 1 बजे हिंदी समाचारों के लिए हम जुड़ेंगे दिल्ली केंद्र से। 1:05 पर दिल्ली केंद्र से अंग्रेजी समाचार रिले होंगे। 1:10 पर रांची केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 1:20 पर विविध भारती के कार्यक्रम होंगे। 2:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे। 2:55 पर रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। 3 बजे विविध भारती के कार्यक्रमों के तहत आप सुनेंगे सखी सहेली। शाम 4 बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार। 4:02 पर विविध भारती के कार्यक्रम। शाम 5 बजे रांची केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 5:02 पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी होंगे और 5:30 पर हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण।

5:35 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवाणी। चर्चा होगी हिंदी साहित्य के संत गोस्वामी तुलसीदास और फोटोग्राफी के क्षेत्र में रोजगार के अवसर पर आप जानकारी प्राप्त करेंगे। विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर जो है कल यानी कि 19 अगस्त को। साथ ही डॉक्टर किरण कुमारी की वार्ता होगी फोटोग्राफी शौक से रोजगार तक। शाम 6 बजे राज्य केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। 6:02 पर प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे किसान वाणी। 6:30 पर ग्रामीण सभा कार्यक्रम होगा। शाम 7 बजे राज्य केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। 7:10 पर आप सुनेंगे जिले में आज कल। 7:15 पर फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा एक रंग। 7:45 पर काव्य पाठ आप सुनेंगे खुला आकाश कार्यक्रम के तहत। रात्रि 8 बजे फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट से। देशभक्त गीतों का कार्यक्रम देश गान आप सुनेंगे रात्रि 8:30। रात्रि 8:45 पर दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार रिले होंगे। रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में समाचार और 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू में समाचार। रात्रि 9:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे। रात्रि 10 बजे रजनीगंधा कार्यक्रम। रात्रि 11 बजे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले होंगे। रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 11:10 पर होगी हमारी सभा की समाप्ति।

अभी आप कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त कर रहे थे कार्यक्रम विवरण के तहत। अब समय हो चुका है शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग का। इस कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं बांसुरी वादन के इस गोपाला कृष्णन से।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंग के तहत अभी आप सुन रहे थे बांसुरी वादन के एस गोपालकृष्णन से। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। समय हो चुका है स्वर सरिता कार्यक्रम का। आज के कलाकार हैं स्वाति नाटेकर।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा और निजी एजेंसी टीडीपीएल द्वारा संचालित सभी अन्य भर्ती परीक्षाएं रद्द की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यूई को हराया। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन

0: के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
1: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। जो हमें जानकारी सीजीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बुझने के बाद कैबिनेट ने सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
0: और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया। देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। वहीं छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। सरकार के फैसले के बाद जेएससीसी सीजीएल के जरिए पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों ने भी विरोध जताया और रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर जुटकर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की है और इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों के लिए मॉडल बताया है। उन्होंने भारत की निर्वाचन प्रणाली को चुनावी सुरक्षा का उदाहरण बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हाल की बातचीत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने ये सवाल उठाया था कि बिना अनिवार्य वैध फोटो पहचान पत्र के अमरीका में चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। श्री ट्रंप ने इस टिप्पणी का हवाला देते हुए अमरीकी कांग्रेस से सेव गार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी यानी सेव अमेरिका अधिनियम पारित करने को कहा। यह प्रस्तावित विधेयक संघीय चुनाव में मतदान के लिए और अधिक सख्त नियम लागू करने की मांग करता है। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि यह बैठक महत्वपूर्ण विचार विमर्श, सर्वसम्मति तक पहुंचने और पर्यावरणीय सहयोग को और मजबूत करने का मंच उपलब्ध कराएगी। एक रिपोर्ट।
3: ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। यह कार्यक्रम भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की मुख्य थीम सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। यह बैठक सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के लिए सार्थक चर्चा करने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने का मंच प्रदान करेगी। अध्यक्षता के हिस्से के रूप में भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के तहत केंद्रित गतिविधियों के लिए 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन और आपदा के प्रति दृढ़ताशील, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। नेपाल के उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव तथा नेपाल सेना और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की यह परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। जनरल धीरज सेठ ने जनरल सिग्देल के साथ द्विपक्षीय सैन्य संबंध बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। उन्होंने भारतीय दूतावास में राजदूत नवीन श्रीवास्तव से भी भेंट की और दोनों देशों के संबंध और मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल सेना को भारत की ओर से सैन्य और चिकित्सा उपकरण भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और सोशल मीडिया

0: XATAIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्य, कराईकल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरलम और माहे में भी गुरुवार तक तेज बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की तेज वर्षा जारी है। राज्य में कल अधिकांश स्थानों पर बहुत तेज बारिश हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश के कारण कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त है।
1: बीते 24 घंटों के दौरान मंडी जिले के कटौला में सर्वाधिक 74 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। लगातार बारिश के चलते सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इस मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश में अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 80 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि लगभग 994 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो चुका है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज राज्य के 4 जिलों बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, शिमला और सोलन के लिए भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: आंध्र प्रदेश के डॉक्टर बीआर अंबेडकर कोनासीमा जिले से मछुआरों को ले जा रही मछली पकड़ने की एक नौका समुद्र में लापता हो गई है। ये मछुआरे इस महीने की 3 तारीख को मछली पकड़ने के लिए निकले थे और उन्हें 10 दिन के भीतर वापस लौटना था। उनके वापस न लौटने पर परिवार वालों ने अधिकारियों को सूचना दी। तटीय पुलिस और मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने लापता मछुआरों की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया है। केरलम में विझिंझम समुद्री बंदरगाह से आज से सीधा निर्यात और आयात शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन आज इस सेवा का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मुख्य अतिथि होंगे। एक रिपोर्ट।
2: विझिंझम समुद्री बंदरगाह अब तक मुख्य रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट केंद्र के तौर पर काम कर रहा था, जहां मदरशिप कहे जाने वाले बड़े जहाजों से आने वाले कंटेनर को आगे ले जाने के लिए छोटे जहाजों में स्थानांतरित किया जाता था। इस बंदरगाह को 17 जुलाई को निर्यात और आयात के लिए मंजूरी मिली थी। शुरुआत में विझिंझम बंदरगाह से सिर्फ फुल कंटेनर लोड कार्गो का आयात निर्यात होगा। इस बंदरगाह का पिछले वर्ष 2 मई को उद्घाटन किया गया था। तिरुवनंतपुरम स्मिति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यक्ति को हमेशा आत्मसम्मान, साहस और स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सच्चा पुरुषार्थ इसी में है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता न करे। गोल में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 284 रन पर समेट दिया। भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाए थे और आज चौथे दिन का मैच भारतीय समय अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। और अब खबरें नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की।
3: नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पहले राउंड में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के साथ शुरुआत की। खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने पुरुषों के एकल श्रेणी में मौजूदा चैंपियन और दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी चीन के शी युकी को 21-14, 13-21 और 21-19 से शिकस्त दी। वहीं महिलाओं की एकल श्रेणी में भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु ने आयरलैंड की सोफिया नोबल को 21-7 और 21-11 से आसानी से हरा दिया। साथ ही महिलाओं की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी ट्रेसा जोली और गायत्री गोपीचंदन ने स्पेन की पौला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेस को 21-9 और 21-13 से हरा दिया। इससे पहले पुरुषों की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने दूसरे राउंड में जगह बनाई। दूसरे गेम में ये जोड़ी 6-4 से आगे चल रही थी, तभी आयरलैंड के उनके प्रतिद्वंदी स्कॉट गिल्टिया और पॉल रेनॉल्ड्स को चोट के कारण खेल से बाहर होना पड़ा। अर्जुन और अमसा करुण ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया था। विष्णु और भानु की रिपोर्ट के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत।

0: नाज।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा और झारखंड में छात्र आंदोलन के असर के समाचार छाए हुए हैं। पंजाब केसरी के मुख पृष्ठ पर पहला समाचार है, अब नितिन की नवीन टीम। पत्र ने उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया, राम माधव, महासचिव स्मृति ईरानी और कोषाध्यक्ष पीयूष गोयल के चित्र भी सबसे ऊपर प्रकाशित किए हैं। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, भाजपा की नवीन टीम, 12 महिलाएं, 7 अल्पसंख्यक और 6 नए महासचिव। जनसत्ता में इस समाचार की सुर्खी है, माधव और ईरानी की वापसी, अमित मालवीय की हुई छुट्टी। हिंदुस्तान का शीर्ष समाचार है, टीम नवीन में जोश होश का मेल। नवभारत टाइम्स ने झारखंड के घटनाक्रम को पहला समाचार बनाया है, कई फजीहतों के बाद एनटीए ने बदली अपनी टीम, 600 एक्सपर्ट्स हटाए। पत्र ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के निर्देश और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वक्तव्य को बॉक्स प्रकाशित करते हुए आंदोलनरत छात्रों की तस्वीर भी प्रमुखता से प्रकाशित की है। दैनिक ट्रिब्यून ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चित्र सहित इस खबर को शीर्षक दिया है, झारखंड आउटसोर्स एजेंसी की 2014 से अब तक कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द। राजस्थान पत्रिका ने रेल यात्रियों की सुविधाओं की उपेक्षा और अनदेखी को संपादकीय का विशेष बनाया है। पत्र कहता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ताजा रिपोर्ट चौंकाने वाली है, जिसमें कहा गया है कि देश के कई बड़े रेलवे स्टेशनों के वाटर कूलर के पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया मिले हैं। सवाल सिर्फ पानी के पीने का साफ होने का नहीं है, यात्रियों की दूसरी सुविधाओं की भी समयबद्ध जांच और सतत निगरानी करनी चाहिए, चूंकि यात्री सुविधाओं कोई भी अनदेखी चिंताजनक है। लोकसत्ता ने नाग पंचमी के अवसर पर महाकाल मंदिर उज्जैन में उमड़ी लाखों भक्तों की भीड़ का समाचार अपने पहले पृष्ठ पर रखते हुए बिहार के लखीसराय में मची भगदड़ में 7 दर्शनार्थियों की मौत का समाचार भी बॉक्स में प्रकाशित किया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में विद्यार्थियों के जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा और निजी एजेंसी टीडीपीएल द्वारा संचालित सभी अन्य भर्ती परीक्षाएं रद्द की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यू को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। झारखंड गवर्नमेंट कैंसल्स जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन आफ्टर 24-डे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट। ऑल्सो कैंसल्स ऑल अदर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स कंडक्टेड बाय द प्राइवेट एजेंसी टीडीपीएल। U.S. President Donald Trump praises India's voter ID system, hails it as a model for stricter U.S. election rules. India to host 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi today. Indian Army Chief General Dhiraj Seth conferred rank of Honorary General of Nepal Army by President Ramchandra Podel in Kathmandu. IMD issues red alert for a very heavy rainfall in Jharkhand today, and Ayush Shetty stuns world number one and defending champion Shi Yu Chi in first round of men's singles at BWF Badminton World Championships in New Delhi. And now the news in detail. Jharkhand government has cancelled JSSC CGL examination after 24-day students' protest in the state. It has also cancelled all other recruitment exams conducted by the private agency TDPL. The announcement triggered celebrations at the protest site in Ranchi, though the demand for a CBI probe remains unresolved. We have a report.
3: The Jharkhand government has decided to cancel the JSSC CGL examination and all competitive examinations conducted by the TDPL agency, besides announcing a probe into recruitment examinations conducted by JPSC and JSSC since 2014. The decision was taken at a special cabinet meeting chaired by Chief Minister Hemant Soren and was

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। झारखंड सरकार ने 24 दिन तक जारी रहने वाले तलबा एहतजाज के बाद जेएसएससी सीजीएल इम्तिहान को रद्द कर दिया है। झारखंड हुकूमत ने प्राइवेट एजेंसी टीडीपीएल के जरिए मुनाकिद कराए गए दीगर तमाम भर्ती इम्तिहान भी मनसूख कर दिए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वोटर शनाख्ती कार्ड निजाम की तारीफ की है और इसे अमरीका में मजीद सख्त इंतखाबी कवानीन के लिए एक मिसाली नमूना करार दिया है। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स वुज़राए माहौलियात के 12वें इजलास की मेजबानी करेगा। भारतीय फौज के सरबराह जनरल धीरज सेठ

0: एससी और जेएसएससी के जरिए किए गए भर्ती के अमल की जांच करने और इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात की सिफारिशात पेश करने के लिए आईएएस ऑफिसर अमिताभ कौशल की सरबराही में एक कमेटी तश्कील देने का भी फैसला किया है। इस दौरान रियासती वजीर दीपिका पांडे सिंह, वजीर सेहत इरफान अंसारी और रुकन असेंबली जयराम कुमार ने सदर अस्पताल का दौरा किया और देवेंद्र नाथ महतो समेत एहतजाज करने वाले दीगर तलबा की भूख हड़ताल जूस पिलाकर खत्म कराई। देवेंद्र नाथ महतो ने हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस फैसले से उनके अहम मुतालबात पूरे हो गए हैं। जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने भी ऐलान किया है कि वो फिलहाल अपना एहतजाज मुअत्तल कर रहा है। तलबा रहनुमा रविंद्र पासवान ने हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए उसका शुक्रिया अदा किया। ताहम उन्होंने कहा कि रिफॉर्म मंच मुबैना बेजाब्तियों की सीबीआई जांच का हुक्म जारी होने तक अपना एहतजाज जारी रखेगा। हुकूमत के फैसले के बाद उन उम्मीदवारों में भी एहतजाज शुरू हो गया जिन्हें पहले ही जेएसएससी सीजीएल इम्तिहान के जरिए मुलाजमत के लिए मुंतखब किया जा चुका है। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वोटर शनाख्ती कार्ड निजाम की तारीफ की है और इसे सख्त अमरीकी इंतखाबी जाब्तों के लिए मिसाल करार दिया है। जनाब ट्रंप ने भारत के इंतखाबी तरीक़ेकार को इंतखाबी जांच पड़ताल के लिए मिसाली नमूना करार दिया और अमरीका में वोटर शनाख्त से मुतालिक जरूरतों में सख्ती बरतने की वकालत की। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब ट्रंप ने भारत के आला इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के साथ अपनी हालिया बातचीत का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जनाब कुमार ने सवाल पूछा था कि अमेरिका में मजाज तस्वीरी शनाख्ती दस्तावेज के बगैर इंतखाबात किस तरह मुनाकिद होते हैं। जनाब ट्रंप ने इस तबसे के जरिए अपने उस मुतालबे को दोहराया कि अमरीकी कांग्रेस को सेफ गार्ड अमरीकन वोटर एलिजिबिलिटी सेव अमरीका एक्ट को मंजूर करना चाहिए। इस मुजवदा कानून के जरिए वफाकी इंतखाबात में वोटिंग के लिए सख्त जरूरतें मुतारफ कराने की तजवीज़ है। इसके तहत राय दहिंदगान को वफाकी इंतखाबात के लिए रजिस्टर करते वक्त अमरीकी शहरियत का दस्तावेजी सबूत और हुकूमत की जानिब से जारी करदा तस्वीरी शनाख्ती कार्ड फराहम करना होगा। व्हाइट हाउस ने इस कानून को अमरीकी इंतखाबात में सिर्फ अमरीकी शहरियों की जानिब से राय दहिंदगी को यकीनी बनाने वाला कदम करार दिया। अमरीकी इंतजामिया ने कहा कि भारत और ब्राजील ने वोटर शनाख्ती कार्ड को बायोमेट्रिक डेटाबेस से मुंसलिक कर दिया है जबकि अमरीका शहरियत के लिए बड़े पैमाने पर खुद से तस्दीक पर इन्हिसार करता है। जनाब ट्रंप ने भारत के आम इंतखाबात के वसी दायरे का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के हालिया आम इंतखाबात में तकरीबन 462 मिलियन अफराद ने अपने हक के रायदही का इस्तेमाल किया। दिल्ली से कुमुदी पारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के माहौलियात के वजीरों के 12वें इजलास की मेजबानी करेगा। माहौलियात जंगलात और आबोहवा की तब्दीली की वजारत ने कहा कि ये इजलास अहम उमूर पर तफसीली तबादले ख्याल इत्तफाक राय को फरोग देने और माहौलियात से मुतालिक बाहमी तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: ब्रिक्स वज़राए माहौलियात के इजलास की सदारत माहौलियात जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव करेंगे। ये इजलास भारत की 2026 ब्रिक्स सदारत के वसीतर मौजू इस्तेहकाम इख्तिरा ताउन और पायदारी की तश्कील के तहत मुनाकिद किया जा रहा है। भारत ने ब्रिक्स माहौलियात वर्किंग ग्रुप के तहत खसूसी तवज्जो के लिए 4 तरजीही शोबों की निशानदेही की है। इनमें पायदार तर्ज जिंदगी को फरोग देना, शजरकारी, जंगलात में आग पर काबू पाने का इंतजाम और कुदरती आफात से निपटने की सलाहियत, सर्कुलर इकोनॉमी और आबोहवा की तब्दीली के असरात से मुताबिकत पैदा करना शामिल है। ब्रिक्स माहौलियात वर्किंग ग्रुप का क्याम 2015 में मॉस्को में मुनाकिद होने वाले ब्रिक्स वज़राए माहौलियात के पहले इजलास के दौरान अमल में आया था। इसका मकसद ब्रिक्स मुल्कों के लिए माहौलियाती तरजीहात से मुतालिक अहम उमूर पर तवज्जो देने, तजर्बात का तबादला करने, बेहतरीन तरीक़ेकार शेयर करने और रुकन ममालिक के दरमियान इज्तिमाई इकदामात को मजबूत बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करना था। नई दिल्ली से नीतिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: भारतीय फौज के सरबराह जनरल धीरज सेठ को कल काठमांडू के शीतल निवास में मुनक्किद एक तकरीब के दौरान नेपाल के सदर रामचंद्र पौडेल ने नेपाली फौज के एजाजी जनरल का ओहदा अता किया। इस मौके पर नेपाल के नायब सदर राम सहाय प्रसाद यादव, वजीर खारजा शिशिर खनाल, नेपाल में भारत के सफीर नवीन श्रीवास्तव और नेपाली फौज और हुकूमत के आला ओहदेदार मौजूद थे। जनरल सेठ नेपाल के अपने हमनसब जनरल अशोक राज सिगडेल की दावत पर इतवार को सरकारी दौरे पर नेपाल पहुंचे। एजाजी जनरल का ओहदा देने की ये रिवायत साल 1950 से जारी है। जिसके तहत नेपाल और भारत एक दूसरे की फौज के सरबराहान को एजाजी जनरल का ओहदा अता करते हैं। जनरल सेठ ने नेपाली फौज के सदर दफ्तर में जनरल सिगडेल से भी मुलाकात की। दोनों फौजी सरबराहों ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर
3: जांच की मांग नहीं मानी जाती उनका आंदोलन जारी रहेगा।
4: अभी यह लड़ाई अधूरी है, अभी 11-13 जेपीएससी का टेक्निकल बातें हम लोग जानना चाह रहे हैं। कुछ में जेपीएल ने मेंस करवाया था, कुछ में इंटरव्यू करवाया था, उन एग्जाम्स का क्या हुआ है थोड़ा अध्ययन करना चाहते हैं। सीबीआई जांच का क्या है उसके बारे में भी विचार करना चाहते हैं। अभी हम लोगों ने विधिवत रूप से आंदोलन समाप्त करने का फैसला कहां लिया है।
3: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने झारखंड में परीक्षाएं रद्द करने के फैसले को नाकाफी बताया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच के बिना छात्रों की जीत अधूरी है। श्री साहू ने आरोप लगाया कि सरकार ने पहले आंदोलन दबाने का प्रयास किया और अब दबाव में आकर यह घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले के बाद नौकरी कर रहे युवाओं में भी भारी आक्रोश है। प्रोजेक्ट भवन पर जुटे युवाओं ने इस निर्णय का विरोध करते हुए इसे लोकतंत्र की हार बताया है। प्रभावित युवाओं ने न्याय के लिए न्यायालय जाने और आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है।
5: सरकार ने भीड़ तंत्र के आगे घुटने टेकते हुए और अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को दमन करते हुए हमें और इस जेएसएससी को रद्द किया है। एक बार फिर से हम हमारा परिवार रोड पर आ गए हैं। लोकतंत्र हारा है, भीड़ तंत्र जीता है। हमारे खून पसीने आंसू का कोई मूल्य नहीं है। मैं हमें इस सरकार पर शर्म है, आगे हम सोच रुख करेंगे।
3: जेएसएससी सीजीएल परीक्षा मामले में सीआईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। विशेष टीम ने कल आयोग कार्यालय और सचिव सुधीर गुप्ता के आवास पर छापेमारी कर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। इस बीच जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है, जबकि पूर्व सदस्य अजीता भट्टाचार्य के पीएस बी के राम को गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले में पूछताछ के लिए सीआईडी ने आज सचिव सुधीर गुप्ता को फिर से तलब किया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने धनबाद के कतरास, झरिया और बागमारा में मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने शुद्ध और त्रुटि रहित मतदाता सूची बनाने के कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही बरतने पर बीएलओ सुपरवाइजरों पर कार्रवाई होगी और किसी भी स्तर पर खानापूर्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में बैंक लूट की योजना बना रहे अपराधियों और पुलिस के बीच बीती रात मुठभेड़ हो गई। इसमें एक अपराधी गोली लगने से घायल हुआ है, जबकि थाना प्रभारी विनय कुमार चोटिल हुए हैं। एसडीपीओ प्रमोद केसरी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने बिहार के सिवान निवासी 4 अपराधियों को 3 पिस्टल और 15 गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। उधर धनबाद के बरवाड्डा थाना क्षेत्र में भी कल रात पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 अपराधियों को पैर में गोली लगी है। एसएसपी प्रभात कुमार के अनुसार कुख्यात गोपी खान गैंग के यह दोनों अपराधी लेवी वसूलने आए थे।
6: 3 लड़के थे, तीनों लड़के बाइक पर हथियार के साथ लेवी वसूलने के लिए यहाँ आए थे। उसमें पहले से सूचना मिला तो यहाँ बरवड्डा गश्ती टीम थी, वो रेकी कर रहा था, तो उसी क्रम में दोनों आमने सामने जब हुए तो सामने से फायरिंग की गई जो गाड़ी पर लगी हुई है, और जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग किया गया, जिसमें से 2 लोग को गोली लगी है और 1 भागने में सफल हुए हैं।
3: देवघर श्रावणी मेले के 19वें दिन और तीसरी सोमवारी पर बाबा नगरी में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। कल रिकॉर्ड 3,61,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक किया। आज मंगलवार सुबह भी तड़के 4:15 बजे पट खुलते ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं और प्रशासन मुस्तैद है। और अब मौसम का हाल। बंगाल की खाड़ी में गहरे दबाव के कारण आज चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ समेत राज्य के कई जिलों में

0: भारी से अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में रात से ही वर्षा जारी है। मौसम विभाग ने गरज चमक और वज्रपात की आशंका जताते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। 17वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के लिए राज्य स्तरीय खुले चयन ट्रायल का दूसरा चरण आज से रांची के खेलगांव में शुरू हो रहा है। इसके तहत अंडर 14, 17 और 19 आयु वर्ग में ताइक्वांडो, कबड्डी, एथलेटिक्स और शूटिंग के खिलाड़ियों का चयन विभिन्न स्टेडियमों में किया जाएगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जेएसएससी सीजीएल समेत वर्ष 2014 से टीडीपीएल की आयोजित सभी परीक्षाएं रद्द करने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीजीएल नियुक्ति और 10 परीक्षाएं रद्द होने से सहमे युवा, 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी के 300 करोड़ पानी में डूबे। प्रभात खबर लिखता है, औद्योगिक समिति के सदस्य कल से एचईसी का करेंगे दौरा। हिंदुस्तान के शब्द हैं, खनन बिल के विरोध में विशेष सत्र बुला सकती है सरकार। दैनिक जागरण ने लिखा है, जेपीएससी की पूर्व सदस्य डॉक्टर अजीता का पीए गिरफ्तार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छात्रों के आंदोलन के आगे झुकी सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएसएससी सीजीएल समेत वर्ष 2014 से टीडीपीएल की आयोजित सभी परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा की। परीक्षा रद्द होने के फैसले से नौकरी कर रहे युवाओं का फूटा गुस्सा, प्रोजेक्ट भवन में किया प्रदर्शन, न्याय के लिए न्यायालय जाने का किया ऐलान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने धनबाद के मतदान केंद्रों का किया औचक निरीक्षण, कहा त्रुटि रहित वोटर लिस्ट बनाने में लापरवाही करने वाले अफसरों पर होगी कार्रवाई। तीसरी सोमवारी को बाबा नगरी देवघर में उमड़ा आस्था का सैलाब, रिकॉर्ड 3,61,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किया जलार्पण, आज सुबह से ही लगी लंबी कतारें। और बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव से राजधानी रांची समेत कई जिलों में रात से मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग ने आज चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ के लिए जारी किया रेड अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: समाचारों के बाद स्वागत है आपका आकाशवाणी डाल्टनगंज के कार्यक्रमों में। पेश है कार्यक्रम गीत गुंजन। आज इस कार्यक्रम को हमने सजाया है गीतकार और निर्माता निर्देशक गुलजार साहब के गीतों से। जी हाँ, प्रसिद्ध भारतीय कवि, गीतकार और फिल्म निर्देशक गुलजार, जिनका पूरा नाम था संपूर्ण सिंह कालरा। इनका जन्म हुआ 18 अगस्त यानी आज ही के दिन 1934 में, यानी 18 अगस्त 1934 को जन्मे और आज इनका जन्म दिवस हम मना रहे हैं और बहुत बहुत बधाइयां दे रहे हैं। गुलजार साहब ने हिंदी सिनेमा और साहित्य में अपनी अनूठी लेखन शैली से विशेष पहचान बनाई। उन्हें पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और ऑस्कर जैसे कई प्रतिष्ठित सम्मान मिले। इनका जन्म 18 अगस्त 1934 को एक सिख परिवार में हुआ। असली नाम संपूर्ण सिंह कालरा। बचपन में काफ़ी स्ट्रगल रहा इनके जीवन में भी। कम उम्र में ही मां का निधन हो गया था। भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान उनका परिवार भी बिखरा था, लेकिन फिर वे भारत आए और मुंबई आने के बाद उन्होंने एक जीवन यापन के लिए छोटे छोटे कार्य भी किए। और भी कई बातें होंगी गुलजार साहब से जुड़ी। आइए आपको सुनवाती हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

गुलजार साहब ने कई यादगार फिल्मों के लिए दिल को छू लेने वाले गीत लिखे। गुलजार ने आंधी, परिचय, कोशिश, मौसम और अंगूर जैसी बेहतरीन और संवेदनशील फिल्मों का निर्देशन भी किया। टीवी धारावाहिकों की बात करें तो उन्होंने प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब पर आधारित ऐतिहासिक टीवी सीरियल मिर्जा गालिब का निर्देशन भी किया। गुलजार साहब एक ऐसे गीतकार जिन्हें आज भी लोग

गुलजार साहब ने बिमल रॉय की फिल्म से रखा था बॉलीवुड में कदम। संगीत निर्देशक एच डी बर्मन ने गुलजार की योग्यता को पहचाना, जिसके बाद बतौर गीतकार उनका सफर शुरू हुआ। बिमल रॉय की फिल्म बंदनी में पहला गाना लिखने के बाद वे सफलता की सीढ़ी चढ़ गए। फिल्म के हिट होने के बाद बिमल ने उन्हें अपना पूर्णकालिक सहायक बना लिया। इसके बाद कई अन्य निर्माताओं ने भी अपनी फिल्म में गुलजार के सदाबहार गीतों को शामिल किया। गुलजार ने गीतकार के रूप में सफलता हासिल करने के बाद निर्देशन में भी हाथ आजमाया। एक सफल निर्देशक भी रहे गुलजार। गुलजार के करियर में तब नया मोड़ आया जब उन्होंने निर्देशक बनने का फैसला किया। 1971 में

गया था। इसी गीत के लिए उन्हें ग्रैमी भी मिला था, जो दुनिया में संगीत जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। उनकी कला के लिए उन्हें 8 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जा चुके हैं।

जोहार पलामू कार्यक्रम में आप तमाम श्रोताओं का हार्दिक स्वागत। आप सभी को सुप्रभात, नमस्कार और जोहार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कठोर परिश्रम और धैर्य ही सफलता का मूल मंत्र है। जी हाँ दोस्तों, आपकी मेहनत, आपका धैर्य कभी भी बेकार नहीं जाता। और आप अगर धैर्य के साथ, ईमानदारी के साथ परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो निश्चय ही सफलता एक दिन आपके कदम चूमती है। ऐसे सुविचार आपका हमारा दिन बना देते हैं अगर हम इन पर करते हैं अमल। और बात करें मौसम की, तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी सुहावना मौसम हो चुका है। रिमझिम रिमझिम बरसात हो रही है। और तापमान की बात करें तो अधिकतम 27 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस है आज का तापमान। कल यानी कि 19 अगस्त को अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तो बारिश के इस मौसम में अदरक वाली चाय और गर्म पकौड़े का आप आनंद लें, और साथ में हो आज का न्यूज़पेपर आपके हाथों में, तो फिर क्या कहने, फिर तो दिन बन ही जाएगा। और आप वर्षा रानी से करेंगे जरूर एक गुजारिश।

मौसम चाहे कोई भी हो दोस्तों, बरसात का कितना भी कहर क्यों न हो, हम आपके लिए आपके पास आते हैं नई नई खबरों के साथ, जानकारी की बातों के साथ और स्वास्थ्य की चर्चाओं के साथ। तो आपको ताज़ा खबरों से भी अपडेट होना चाहिए। मौसम को हमने अपडेट किया, मौसम की बात हमने आपको बताई, लेकिन कुछ मुख्य खबरों से आइए हम आपको अवगत कराते हैं। तीसरी सोमवारी पर शिवालयों में उबड़ा आस्था का सैलाब, देवघर में करीब 3 लाख कांवरियों ने किया जलार्पण। स्थानीय मंदिरों से लेकर देवघर बासुकीनाथ तक गूंजा हर हर महादेव, लाखों श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। रांची, देवघर, दुमका, खूंटी, पलामू, जहां की भी बात करें, सावन की तीसरी सोमवारी पर पूरे झारखंड में शिव भक्ति का लहर देखने को मिला। राजधानी रांची के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर समेत सुरेश्वर धाम, लिंगेश्वर मंदिर और अरगोड़ा बूढ़ा महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हाथों में गंगा जल, बेलपत्र और फूल लिए भक्त कतार में खड़े होकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते नजर आए। मंदिर परिसर दिन भर हर हर महादेव और बोलबम के जय घोष से गूंजता रहा। कल सावन की सोमवारी के साथ साथ नागपंचमी का भी त्यौहार था। श्रावण माह की तीसरी सोमवारी पर बाबा बैद्यनाथ धाम में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। कांवरियों की कतार करीब 7 किलोमीटर दूर तक पहुंच गई। प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और यातायात की विशेष व्यवस्था की। उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया और पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर समेत अधिकारी लगातार व्यवस्था की निगरानी करते रहे। केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से CCTV के जरिए मेला क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला, JSSC CGL समेत TDPL की सभी परीक्षाएं हुई रद्द। 2014 से हो रही नियुक्तियों की गड़बड़ी की भी जांच होगी, परीक्षा सुधारों के लिए बनेगी उच्च स्तरीय कमेटी। प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री सोरेन ने की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया से रूबरू हुए और कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णयों की आधिकारिक जानकारी साझा की। जानकारी के मुताबिक लंबे समय से JSSC CGL रद्द करने को लेकर आंदोलन कर रहे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल छात्रों को बड़ी खुशखबरी मिली है। इसके मुताबिक JSSC CGL

सीएल की परीक्षा रद्द कर दी गई है। कैबिनेट से सहमति मिलने के बाद यह फैसला लिया गया। इस फैसले की चर्चा हर जगह जोरों पर है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह भी जानकारी दी कि सिर्फ सीजीएल परीक्षा ही नहीं बल्कि टीडीपीएल एजेंसी द्वारा ली गई सभी परीक्षाएं रद्द होंगी। भले ही उसकी चयन प्रक्रिया पूरी ही क्यों न हो गई हो, साथ ही सीजीएल परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जाँच भी होगी। प्रेस वार्ता में सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे युवा अलग अलग खेमों में बटे नहीं हैं, वे सभी हमारे राज्य के नौजवान हैं और सरकार हमेशा उनके हितों के साथ खड़ी है। मैं खुद हमेशा छात्र के हित के पक्ष में रहा हूं। मुख्यमंत्री ने भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि यदि पूर्व में निर्धारित एसओपी का सख्ती से पालन नहीं किया जाता तो ऐसी खामियां सामने नहीं आती। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए सबसे पहले कड़ा कानून बनाया है और अब परीक्षा क्रिया में कई नए सुधार करने जा रही है ताकि पूरी पारदर्शिता बरती जा सके। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने केवल जेएससी सीजीएल परीक्षा और टीडीएल द्वारा ली गई परीक्षा को रद्द करने की बात नहीं की है। इस खबर से पूरे छात्रों के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और उन्हें लग रहा है कि उनका यह आंदोलन सार्थक रहा, सफल रहा। पूर्व दिशा में प्लेटफॉर्म से बाहर तक फुट ओवरब्रिज विस्तार की उम्मीद बढ़ी। मोहम्मदगंज से खबर आ रही है, स्थानीय रेलवे स्टेशन पर निर्माणाधीन फुट ओवरब्रिज का पूर्व दिशा में प्लेटफॉर्म से बाहर तक विस्तार किए जाने की उम्मीद बढ़ गई है। इस मांग को लेकर सांसद बीडी राम ने पहल तेज कर दी है। सांसद प्रतिनिधि महेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि रविवार को एक शिष्टमंडल ने मेदिनीनगर के सांसद से मुलाकात कर पूर्व दिशा में फुट ओवरब्रिज के विस्तार की पूर्व से चली आ रही मांग से उन्हें अवगत कराया था। चांसलर पोर्टल नहीं खुलने से विज्ञान के छात्रों का नामांकन प्रभावित। सत्र 2026-30 में विज्ञान संकाय में से नामांकन से वंचित इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के समर्थन में एके सिंह कॉलेज जपला में सोमवार से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि चांसलर पोर्टल नहीं खुलने के कारण विज्ञान संकाय में नामांकन के इच्छुक कई विद्यार्थी नामांकन से वंचित रह गए हैं। कॉलेज के प्राचार्य की ओर से जारी सूचना के अनुसार छात्रों की मांग को राज्यपाल, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री तक पहुँचाने के उद्देश्य से 17 से 25 अगस्त 2026 तक कॉलेज परिसर में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। बरसात का दो तिहाई समय बीता, कृषि योग्य भूमि रह गई है बंजर। मानसून सीजन का करीब दो तिहाई समय बीत जाने के बाद भी हैदरनगर क्षेत्र में पर्याप्त बारिश नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। बारिश के अभाव में अधिकांश कृषि योग्य भूमि बंजर पड़ी है और खरीफ की फसल संकट में है। समय पर पर्याप्त नमी नहीं मिलने के कारण कई किसानों ने धान और मक्का की बुआई तक नहीं की। जिन किसानों ने बीज डाल दिए थे उनमें से कई खेतों में बीज अंकुरित भी नहीं हो सके हैं।

खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन की बैठक में किसानों के हित में कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी। दलहन फसलों के बीच वितरण प्रशिक्षण और प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने पर बनी सहमति। गढ़वा समाहरणालय स्थित सभागार में सोमवार को उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला खाद्य सुरक्षा पोषण मिशन कार्यकारिणी समिति पशुपतिनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में राज्य से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2026-27 के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए कई प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। बैठक में आत्मनिर्भरता दलहन कार्यक्रम के तहत खरीफ मौसम में 260 हेक्टेयर में अरहर का संकुल प्रत्यक्षण, अरहर के 6500 मिनी कीट, उड़द के 1250 मिनी कीट और मूंग के 250 मिनी कीट का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वहीं रबी मौसम में 80 हेक्टेयर में मसूर का प्रत्यक्षण, चना के 660 और मसूर के 1400 मिनी कीट का लक्ष्य रखा गया है। छब्बीस दिवसीय सिलाई प्रशिक्षण का समापन, 20 सिलाई मशीनें वितरित। SSB की पहल से 32 युवतियों और महिलाओं को मिला प्रशिक्षण, रोजगार और आत्मनिर्भरता पर जोर। गारू लातेहार से यह खबर है। सशस्त्र सीमा बल की 32वीं वाहिनी लातेहार की ओर से नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत मारोमार क्षेत्र में आयोजित 26 दिवसीय सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण का सोमवार को समापन हुआ। इस अवसर पर प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं के बीच 20 सिलाई मशीनों का वितरण किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम मारोमार सुखमी धंगाटोला एवं सुरपी गांव की 32 युवतियों और महिलाओं के लिए आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण 22 जुलाई से 16 अगस्त 2026 तक चला। इस दौरान महिलाओं को सिलाई

पढ़ाई से के तकनीक संबंधित तकनीक एवं व्यवहारिक ज्ञान दी गई। समापन समारोह में 32वीं वाहिनी SSB के कमांडेंट राजेश सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे। प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इसके साथ ही 10 महिला स्वयं सहायता समूहों के नाम पर 20 सिलाई मशीनें वितरित की गईं। और इन महत्वपूर्ण खबरों के बाद आइए आपको लेकर चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में।

और अब समय है आज के इतिहास के पन्नों को पलटने का। आज है 18 अगस्त और आज के दिन में क्या कुछ है खास, आइए बात करते हैं। इतिहास में 18 अगस्त के दिन देश और दुनिया में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। इस दिन को मुख्य रूप से महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कथित मृत्यु की तिथि और प्रसिद्ध गीतकार गुलजार के जन्मदिवस के रूप में जाना जाता है। 1868 में फ्रांस के खगोलविद पियर जेनसिन ने सूर्य की स्पेक्ट्रम जांच के दौरान हीलियम की खोज की थी। 1945 में जापानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक विमान दुर्घटना में ताइवान के पास मृत्यु हो गई थी। 1950 में भारत के असम राज्य में 8.6 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया जिससे कि भारी तबाही हुई थी। 1923-1936 की बात करें तो मशहूर भारतीय गीतकार, कवि और फिल्म निर्देशक गुलजार का जन्म हुआ था और 1936 में अमेरिकी अभिनेता और निर्देशक रॉबर्ट रेडफर्ड का जन्म हुआ था आज ही की तारीख यानी 18 अगस्त को। हंगरी में संविधान आज की तारीख को लागू हुआ था 1949 में। 1951 में पश्चिम

बंगाल में खड़गपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना 18 अगस्त को ही हुई थी। 18 अगस्त 1973 में अमेरिका के बोस्टन में पहले एफएम रेडियो स्टेशन के निर्माण को मंजूरी मिली थी। 1999 में तुर्की में भूकंप से लगभग 45,000 लोगों की मौत हुई थी। तारीख थी 18 अगस्त। सन 2000 में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को हराकर 2 दिनों के टेस्ट मैच को जीतने का इतिहास रचा था। 2008 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने महाभियोग की आशंका के बीच आज ही की तारीख को इस्तीफा दिया था। तो यह थी आज के इतिहास से जुड़ी बातें। और अब कार्यक्रम का अगला गीत हम आइए आपको सुनवाते हैं।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जी हाँ श्रोताओं, हमें अपने जीवन में हमेशा सावधान रहना है, सतर्क रहना है। और बहुत तरह के साइबर क्राइम्स होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके अकाउंट से पैसे उड़ा लिए जाते हैं और आपको इसकी जानकारी तक नहीं होती। तो कहीं भी अगर आपका कोई OTP मांगे

और कहे कि बैंक से फ़ोन है, तो आप उसे बिल्कुल इग्नोर करें और किसी भी हाल में अपना अकाउंट नंबर या OTP किसी से भी शेयर न करें। इन बातों पर अगर आप अमल करते हैं, इनका ध्यान रखते हैं, तो आप इस तरह के साइबर क्राइम से खुद को बचा सकते हैं। और स्वस्थ रहना भी आपको बेहद ज़रूरी है आपका, तो इसके लिए आपको तनाव मुक्त रहना होगा। अपने भोजन में, अपने आहार में हरी सब्जियां, फल और दूध वगैरह का इस्तेमाल करना होगा। और अगर आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, तो आप नियमित रूप से एक्सरसाइज भी करें। और एक्सरसाइज के अलावा अगर आपका खान पान बढ़िया है, आप अगर अच्छा भोजन लेते हैं, स्वादिष्ट भोजन नहीं बल्कि पौष्टिक भोजन पर अगर आप ज़्यादा जोर देते हैं, अमल करते हैं, तो आप निश्चय ही स्वस्थ रहेंगे और आपका जीवन बेहद आनंदमय बीतेगा। अभी आप देख रहे होंगे कि बरसात का मौसम है, काफ़ी कीड़े मकौड़े हैं, बरसाती कई बीमारियां, वायरल से भी कई घरों में लोग पीड़ित हैं, मच्छरों का भी प्रकोप बढ़ गया है। लेकिन ऐसे में एक बरसाती फल नाशपाती का आप देख रहे हैं कि बाज़ारों में आगमन हो चुका है और काफ़ी मात्रा में नाशपाती अभी मिल रही है। तो नाशपाती के क्या फ़ायदे हैं, आइए आज हम आपको बताते हैं। सेहतनामा के तहत यह एक पौष्टिक और रसीला फल है। यह पाचन को सुधारने में, कब्ज को दूर करने, वजन घटाने और दिल को स्वस्थ रखने में बहुत ही फायदेमंद है। इसमें भरपूर फाइबर है, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है, मजबूत नहीं है, तो कई बीमारियाँ आपको दबोच लेती हैं और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना होगा अच्छे खान पान से। पाचन और पेट के लिए भी नाशपाती वरदान है। कब्ज से राहत मिलती है। इसमें मौजूद फाइबर मल को मुलायम बनाता है, जिससे कि पेट आसानी से साफ होता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है, आंतों की सेहत अच्छी होती है इसके खाने से, और गैस एवं एसिडिटी से राहत मिलती है। आपके दिल और आपके वजन के लिए भी नाशपाती बेहद उपयोगी है। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करके हृदय रोगों के खतरे को घटाता है। इसमें कैलोरी कम और पानी अधिक होती है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है और आपका वजन नियंत्रित रहता है। इम्यूनिटी को बढ़ाने में नाशपाती का कोई जोड़ नहीं है। विटामिन सी संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में यह मदद करता है, साथ ही आपकी त्वचा की चमक को भी बढ़ाता है। एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट तत्व नाशपाती में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो अगर आप काला नमक के साथ इसका सेवन करते हैं, तो यह खाने में स्वादिष्ट तो लगता ही है, साथ ही यह सुपाच्य भी होता है और आपको कई तरह के स्वास्थ्य लाभ देता है। विटामिन सी, कॉपर और पोटेशियम से भरपूर, साथ ही फाइबर से भरपूर यह फल सस्ते दर में आपके आसपास के मार्केट में आपको मिल जाएगा। तो आप महंगे फलों के पीछे ना भागें, जो सस्ते फल हैं वे भी आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। डायबिटीज में भी यह काफ़ी फायदेमंद है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे यह ब्लड शुगर लेवल को अचानक बढ़ने नहीं देता है। हार्ट के हेल्थ के लिए भी नाशपाती बहुत ही अच्छा है। पोटेशियम और फाइबर से भरपूर होने के कारण यह ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में मददगार है। तो आप जब भी बाजार जाएं, नाशपाती जरूर लेकर आएं, साफ सुथरे स्वस्थ नाशपाती को लाएं। दागदार जो नाशपाती होते हैं वे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं और कई बार वे सड़े हुए भी पाए जाते हैं। तो आप अगर फ्रेश नाशपाती का सेवन करते हैं, तो आपको कई बीमारियां नहीं होंगी, आप बीमारियों से दूर रहेंगे और स्वस्थ जीवन अगर है आपका, तो आपको जीवन का असली मजा मिलता है। और साथ ही गीत संगीत के जरिए भी हम आपके जीवन को बेहद मनोरंजक और रंगीन बनाते हैं।

से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तर तर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: आदमी से ज्यादा वफादार है। खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी को मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
2: इस गीत के साथ ही आज के जोहार पलामू कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त होता है। नमस्कार, जोहार।
3: जोहार पलामू।

0: सबदंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार श्रोताओं, और मैं हूं अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, शुद्ध विचार, शुद्ध आचरण और शुद्ध मन ही सच्चे सुख का आधार है। मन की शुद्धता ही जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से, कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
3: और धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल।
2: एनआर प्रसाद, अखिला प्रसाद, राजाजी नगर बेंगलोर से।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: सभी श्रोताओं को

0: हमारा आभार संदेश भेजने के लिए।
1: तो श्रोताओ, एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में।
0: जी
1: श्रोताओ, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक विषय पर। तो विमलेश जी, जरा आज का विषय तो बताइए।
0: अजीत जी, आज हम बात करेंगे हमारी भाषा हिंदी के बारे में और जानेंगे कि इसका प्रकाश कैसे जगह जगह फैल रहा है और दुनिया की दूसरी भाषाओं पर किस तरह इसका प्रभाव पड़ रहा है।
1: जी हाँ श्रोताओ, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह दुनिया की दूसरी भाषाओं में पहुँचे हमारी प्यारी हिंदी भाषा के शब्द।
0: जी,
1: यानी किस तरह दूसरी भाषाओं ने हमारी भाषा के कुछ शब्दों को अपना लिया। तो विमलेश जी, आपसे करें शुरुआत।
0: जी जरूर। तो अजीत जी, पहला शब्द है जंगल। देखिए, जब हम जंगल शब्द सुनते हैं तो हमारी आँखों के सामने घने पेड़, जंगली जानवर और प्रकृति का विशाल संसार नजर आता है ना?
1: जी।
0: लेकिन क्या आप जानते हैं, अंग्रेजी भाषा में इस्तेमाल होने वाला जंगल शब्द भारत की ही देन है।
1: श्रोताओ, आपको बता दें कि यह शब्द संस्कृत के जंगल से विकसित होकर हिंदी में आया। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसका प्रयोग वन प्रदेश या निर्जन भूभाग के लिए मिलता है।
0: जी।
1: हुआ ये कि जब 17वीं और 18वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने यहाँ के विशाल वनों के लिए स्थानीय लोगों से यही शब्द सुना।
0: जी।
1: और इसे अंग्रेजी में जंगल के रूप में अपना लिया, है ना मजेदार बात?
0: हाँ बिल्कुल, वही जंगल, JUNGLE।
1: जी।
0: तो अजीत जी, आज दुनिया के किसी भी देश में यदि अमेज़न के वर्षा वनों, अफ्रीका के घने जंगलों या एशिया के वन क्षेत्रों की बात होती है या विशेषकर बच्चों की कहानियों की बात होती है, अजीत जी एक और बात, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे शब्दकोश भी जंगल शब्द की भारतीय उत्पत्ति को स्वीकार करते हैं।
1: तो विमलेश जी, अब जानते हैं एक और शब्द के बारे में।
0: जी।
1: वो शब्द है शैम्पू। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो शैम्पू शब्द से परिचित ना हो, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस शब्द की जड़ें भी भारत में है।
0: वाह, ये तो बड़ी नई और रोचक बात है।
1: जी विमलेश जी, ये शब्द उर्दू के चांपो या बोलचाल वाली हिंदी भाषा के चंपी शब्द से निकला है। चांपो का अर्थ है सर दबाना या मालिश करना। भारत में सिर पर तेल लगाकर मालिश करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है।
0: जी बिल्कुल, 18वीं शताब्दी में अंग्रेज अधिकारी भारत में सिर की मालिश करवाने लगे थे। उन्हें ये अनुभव इतना अच्छा लगा कि वे इस परंपरा को अपने देश ले गए। उन्होंने चांपो शब्द को अंग्रेजी उच्चारण के अनुसार शैम्पू में बदल दिया। श्रोताओं, शुरुआत में शैम्पू का अर्थ विदेश में केवल सिर की मालिश करना ही था,
1: लेकिन बाद में जब बाल साफ करने वाले विशेष द्रव बनने लगे तो धीरे धीरे उनका नाम भी शैम्पू पड़ गया।
0: जी।
1: आज ये शब्द दुनिया की लगभग हर भाषा में प्रचलित है।
0: जी।
1: तो विमलेश जी, ऐसी जानकारी से सचमुच एक सुखद आश्चर्य होता है ना, और ये भी पता चलता है कि भाषाएं किस प्रकार एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं।
0: जी अजीत जी, एक और शब्द है जिसे अंग्रेजी भाषा ने बड़ी खुशी से अपनाया है, वो शब्द है पायजामा। ये शब्द भी भारत की ही देन है। ये हिंदी उर्दू के उपयोग में लाए जाने वाला शब्द पायजामा से आया है। ये शब्द निर्माण की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पाय अर्थात पैर और जामा अर्थात वस्त्र, यानी पैरों में पहनने वाला वस्त्र।
1: जी श्रोताओ, ब्रिटिश अधिकारी भारत में रहते समय इस ढीले और आरामदायक पहनावे से बहुत प्रभावित हुए।
0: जी।
1: वे इतने प्रभावित हुए कि वे इसे इंग्लैंड ले गए और अंग्रेजी में इसका उच्चारण पजामाज हो गया। आज दुनिया के लगभग हर देश में रात के आरामदायक वस्त्र के लिए यही शब्द प्रयोग में लाया जाता है।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी कुछ प्रसिद्ध शब्दों के बारे में जो हिंदी, उर्दू या संस्कृत के हैं, लेकिन अब अंग्रेजी के साथ साथ और भी कई विदेशी भाषाओं में घुल मिल गए हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न।
1: तो श्रोताओ, आज का प्रश्न है कि किसी दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित है।
0: जी।
1: इसका हिंट है विमलेश जी, जरा इसका हिंट दे दें।
0: इसका संबंध खान पान से है।
1: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: किसी दक्षिणी भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित है। इसका हिंट है,
1: इसका संबंध खान पान से है। श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप करें NCERT बुक PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: आशुतोष, इन्हीं पुस्तकों को अगर आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी सुनना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर। आप इस चैनल पर जाकर हमारे कार्यक्रमों को या हमारे ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, पंडित बिरजू महाराज।
0: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आते

0: आधारित इस कार्यक्रम में कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज के जीवन और भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के बारे में उनके ही साक्षात्कार द्वारा बताया गया है।
1: पंडित बिरजू महाराज

0: भारत विविधताओं का देश है। यहाँ की भिन्न भिन्न संस्कृति, भाषा, धर्म, कला और रोचक परंपराएं इसे अनूठा और अद्वितीय देश बनाती हैं। जहाँ तक नृत्य कलाओं की बात है, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश है जहाँ इतनी नृत्य कलाएं हैं।
1: भारत के शास्त्रीय नृत्यों में भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिशी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और सत्रिया नृत्य मुख्य रूप से जाने जाते हैं।
0: आज हम बात करेंगे महान कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज की। वर्ष था सन 1958, स्थान कलकत्ता का नाट्य रंगमंच। मात्र 20 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपनी विलक्षण नृत्य प्रतिभा का प्रदर्शन कर सबको मानो सम्मोहित सा कर दिया था।
2: वाह, क्या बात,
3: क्या बात, पांवों में बिजली है।
2: वाह,
3: आओ भंगिमा तो
2: देखो, पांवों में ऐसी प्रतिभा,
3: अद्भुत, प्रभावशाली,
4: अति सुंदर, अति सुंदर,
2: अति सुंदर,
4: ये कभी नहीं देखा।
0: बिरजू महाराज का वास्तविक नाम बृजमोहन नाथ मिश्रा था। यही बृजमोहन नाम आगे चलकर बिरजू के जनप्रिय नाम से जाना जाने लगा। 4 फरवरी सन 1938 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उनका जन्म हुआ था। उनके जन्म के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही जाती है।
1: कहते हैं कि जिस दिन उनका जन्म हुआ था, उस दिन अस्पताल में उन्हें छोड़कर सारी कन्याओं का जन्म हुआ था। इसी वजह से उनका नाम बृजमोहन रखा गया था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ महाराज था। उन्हें अच्छन महाराज भी कहा जाता था। वो रायगढ़ रजवाड़े में दरबारी नर्तक हुआ करते थे।
0: राज दरबार में नर्तक होने के कारण परिवार में किसी बात की कमी ना थी। बचपन से ही उन्हें कला, संगीत और नृत्य का वातावरण मिला। 5 की आयु में ही उन्होंने तबला और हारमोनियम बजाना सीख लिया था। वो घर और दरबार के नृत्य को देख देख कर 7 की आयु में नृत्य करना भी सीख गए थे।
1: एक दिन जब बिरजू नृत्य का अभ्यास कर रहे थे तो उनके पिताजी कमरे में आए।
5: प्रणाम पिताजी।
6: जीते रहो बेटा बिरजू। बेटा, तुमने नृत्य का बहुत अच्छा अभ्यास कर लिया है। आज तुमने बहुत अच्छा नृत्य किया। लेकिन
5: लेकिन क्या पिताजी?
6: बेटा, कहते हैं ना, कोई भी कला तब तक अधूरी ही रहती है जब तक गुरु का आशीर्वाद और तालीम ना हो।
5: जी पिताजी, मेरे गुरु तो आप ही हैं, और मेरे चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज।
6: तो अपनी कला को संपूर्ण कब करोगे, यानी तालीम कब लोगे?
5: जब आप कहें। आपसे दीक्षा ग्रहण करना तो मेरा परम सौभाग्य होगा।
6: लेकिन भेंट लिए बिना गंडा नहीं बांधूंगा।
5: जी, जैसी आपकी आज्ञा।
6: जीते रहो बेटा, सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो।
5: जी पिताजी।
1: कथक नृत्य की प्राचीन परंपरा रही है कि तालीम शुरू करने से पहले गुरु शिष्यों को गंडा बांधते थे और शिष्य गुरु को दक्षिणा या भेंट देते थे। वही परंपरा आज भी चली आ रही है। गंडा गुरु और शिष्य के बीच एक पवित्र रिश्ता होता है। गुरु के बांधे हुए गंडे को शिष्य अक्सर आजीवन धारण करते हैं।
0: तब उन्होंने अपने शिष्य बिरजू

0: को कंडा बांधा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद घर पर गरीबी छा गई। एक साक्षात्कार में उन्होंने अपने जीवन के कुछ अनुभव साझा किए थे, आइए सुनते हैं।
1: पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कृष्ण से जुड़ा नृत्य है कथक, जिसमें आप पारंगत भी हैं और कई दशकों से आप इस नृत्य की खिदमत कर रहे हैं। विरासत में मिला आपको ये नृत्य। अगर हम आपके शुरुआती दिनों की तरफ चलें, बहुत कम लोग आपके उन दिनों के बारे में जानते हैं और ख़ासकर आपके घराने के बारे में, कैसे शुरुआत हुई?
2: हमारे पर बाबा दुर्गा प्रसाद जी, ठाकुर प्रसाद जी, उससे पहले भी नृत्य रहा है और हम लोग हड़िया से निकले हुए लोग, 989 घर थे वहाँ पर। नवाब वाहिद अली शाह ने जब बुला लिया हम लोगों को वहाँ लखनऊ में, तो राज दरबार में पूरी इज्जत, पालकी भेजना, सिपाही भेजना और बाबा को सवार करके ले जाना, तो ये सब कहानियाँ अम्मा बताती थी। जैसे हमारे अच्छन महाराज मेरे पिताजी रहे, मैं छोटा था तो बहुत खील बताशा जेब में पड़ा और तालीम खाने में जाके बैठा हूँ, सब लोग रियाज कर रहे हैं, तो मैं देख के तबले पे कभी हाथ मारूँ, कभी वो हारमोनियम पकड़ लूँ। फिर अम्मा को आके मैं रसोई में बताऊँ कि अम्मा मुझे भी आता, तो उस वक्त तो ये उंगलियाँ भी मुझे नहीं आती थी कहाँ से ये बांध के, तो मैं गिर पड़ता था। तो अम्मा कहें अभी गिर जाते हो, तुम बड़े हो जाओ तो ठीक से नाचना। तो मेरे दिमाग में ये ज़रूर रहा कि मेरे बाबा पिताजी सबका नाम इतना रहा, तो मैं भी कोशिश करूँगा उस तरह से बढ़ने की कोशिश करूँगा।
1: अगर आपके उन संघर्ष के दिनों की हम बात करें, उस संघर्ष के दिन कैसे थे आपके?
2: मेरे ख्याल से एक समय तो हमारे घर में चार चार घोड़े, बग्घी, टमटम सबके नाम से, चाचा जी के नाम से बाबू, पर धीरे धीरे वो छीन होते होते, कहते ना एक दफ़ा तो आदमी उरूज नाम पकड़ता है, अभी धीरे धीरे सब चीज़ ख़त्म होने लगती है। और यहाँ तक हुआ कि कर्जदार हो गए हम लोग घर में। मैंने कहा अम्मा जो भी दाल रोटी होगी खाऊँगा, पर मैं रियाज करूँगा। पर अम्मा का आशीर्वाद और पिताजी का आशीर्वाद, तो बचपन में ही उन्होंने एक अम्मा को एक लफ्ज़ कहा था, अम्मा कहती थी बेटे को साथ ले जाओ, थोड़ा देखेगा समझेगा। तो कहे अम्मा ये परेशान करता है, कभी वो गुब्बारे मांगता है, कभी वो चॉकलेट मांगता है, तो बेहतर होगा कि मैं सिखा दूँगा घर की विद्या। तो मैं 7.5 साल की उम्र में मैं उनसे गंडा बंधवाया और वो भी मैंने 500 इकट्ठा किए थे, 25 रुपये 50 रुपये करके इनाम पाके। तो मैंने कहा बाबू, मैं अम्मा ने कहा भाई आज शागिरद कर लो। अम्मा कह लेगा मुझे मालूम तुम्हारा लड़का अमीर हो गया है, 501 रुपये दे दिए और एक पैसा ना मुझे दिया ना अम्मा को दिया ही नहीं, दिया ही नहीं। तो क्या करें करें, अब इसमें से नहीं दूंगा, ये मेरा नजराना है। मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि मेरे बाबू ने मुझे गंडा बांधा, उनका आशीर्वाद। और मेरे दिमाग में हरदम जैसे ही मैं खड़ा होता हूँ, मेकअप किया, कॉस्ट्यूम पहना, उस वक़्त चाचा और बाबू हमारे सामने होते एकदम, और ईश्वर की कृपा होती है। मैं कहता हूँ प्रभु मैं तैयार हो गया हूँ, दुल्हन बन गया हूँ, तुम अब नाचो आके मेरे बदन में तुम्हारे, क्योंकि तुमने मेरे बदन को पसंद किया है, तुम नाचो हम देखेंगे। ये मेरा
1: बहुत सुंदर बात आपके बारे में, हम सभी जानते हैं कि आप शास्त्रीय गीत संगीत में माहिर हैं, वाद्य यंत्रों पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है। और एक ख़ास बात जो ये कि आप छोटे बच्चों को भी आप सिखाते हैं, वो जो बिल्कुल अभी 4 साल 5 साल की उम्र के हैं, उन्हें कैसे समझा पाते हैं इन सब चीज़ों को?
2: अरे उनको बड़े मज़े में समझाता हूँ। तो एक मैंने अपने भतीजी को एक तिहाई बताई, तरथेता ऐसे करके, तो कल इसमें तो बहुत सा तरथही है, कैसे याद करूँ? तो मैंने कहा बेटा सब्जी खाते हो? हाँ खाते हैं। पूड़ी खाती हूँ? हाँ खाते हैं।
3: तो सब्जी पूड़ी, वाह वाह, तो सब्जी 3 मात्रा, पूड़ी 2 मात्रा, सब्जी पूड़ी और कचौड़ी, फिर आखिर में तो मीठा चाहिए, हलवा ला दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे दे, वाह वाह वाह वाह वाह, सब्जी पूड़ी और कचौड़ी, हलवा ला दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे दे।
1: बहुत सुंदर महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
0: साथियों, बिरजू महाराज ने कथक नृत्य में कई योगदान दिए, उन्होंने लखनऊ घराने की परंपरा को आगे बढ़ाया, नृत्य में नए आयाम जोड़े और देश विदेश में अपने शानदार नृत्य प्रदर्शन के द्वारा भारतीय कला विरासत के प्रति विश्व भर में सम्मान का भाव उत्पन्न किया।
4: बिरजू महाराज को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कई सम्मानों और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, फिल्म फेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल हैं।
0: सत्रह जनवरी 2022 को नई दिल्ली में इस महान कलाकार का देहावसान हो गया। उनकी आयु 83 वर्ष थी। उनके निधन से भारत के कला जगत को एक बड़ी क्षति हुई है, लेकिन उनकी महान विरासत हमेशा जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी।
5: पंडित बिरजू महाराज। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज, बाबला कोचर, अरशद अहमद खान और सुनील लोहिया, नाट्य आलेख अजीत होरो, संपादन जगबंधु जाना, निर्माण विमलेश चौधरी, विशेष आभार राज्यसभा टीवी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम बिरजू महाराज।
6: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा यार इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
7: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
6: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।
8: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
5: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम भगत सिंह।
9: इस कार्यक्रम में महान स्वतंत्रता सेनानी और अमर शहीद भगत सिंह के जीवन और देश की बलिवेदी पर उनकी शहादत के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है।
5: भगत सिंह।
10: अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ नारे बहुत प्रचलित हुए, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम का नारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद का नारा, लोकमान्य तिलक की ललकार कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और महात्मा गांधी की पुकार अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये सब उन दिनों बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। इन सब महान लोगों के दिए हुए इन महामंत्रों के बीच एक 20-22 साल के नौजवान की निडर आवाज भी गूंजी थी।
11: बहरे कानों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है।
10: नई दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में गूंजने वाली ये निर्भीक आवाज थी सरदार भगत सिंह की।
12: भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर सन 1907 को लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह प्रसिद्ध देशभक्त थे। चाचाओं के कंधे पर चढ़कर घूमने वाले भगत सिंह ने बचपन से ही देशभक्ति और निर्भीकता का पाठ पढ़ा था। वे अभी 12 वर्ष के ही थे कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म से सैकड़ों निहत्थे निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला गया। भगत सिंह के बालक मन पर इस घटना का बड़ा गहरा असर पड़ा।
13: कौन कौन है?
14: मैं हूं अमरो, भगत सिंह।
13: पर तू इतनी रात को यहाँ आंगन में बैठी क्या कर रही है?

0: तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी भाई। कहाँ चले गए थे तुम?
1: तीर्थ करने चला गया था, अमृतसर।
0: अमृतसर? अच्छा अच्छा, दरबार साहब में मत्था टेकने गए थे क्या?
1: नहीं बहन, मैं तो जलियांवाला बाग की मिट्टी को मत्था टेकने गया था, जहां त्योहार के दिन सैकड़ों बेकसूर निहत्थे बंदों का खून गिरा था। ये देख,
0: ये इस शीशी में क्या है?
1: इस शीशी में खून से रंगी वही मिट्टी है।
0: हाय रब्बा, इस खून वाली मिट्टी का क्या करोगे वीर जी?
1: मैं इसकी पूजा क्या करूंगा अमरो? ये मिट्टी मुझे देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों की याद दिलाएगी। तू देखना बहन, इसी मिट्टी से शहीदों की नई फसल पैदा होगी। अंग्रेज सिर काटते काटते थक जाएंगे, मगर हम सिर कटाते नहीं थकेंगे। और अब उन्हें हमारा देश छोड़कर जाना ही पड़ेगा।
0: धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो थाने में रपट हो जाएगी।
1: अच्छा ही है, अंग्रेजों की पुलिस जान जाएगी कि एक और दीवाना सिर कटाने को तैयार हो गया है। हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है।
2: स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी जान पहचान अपने जैसे कई और आजादी के दीवानों से हुई। इन लोगों ने मिलकर भारत नौजवान सभा का गठन किया। जल्दी ही इनका संपर्क उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्रांतिकारी संगठनों के साथ हो गया। उत्तरी भारत के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी इनके पास आते जाते रहते थे। ये सब लोग दिन रात देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते।
3: फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारत की दशा पर विचार विमर्श करने के लिए बनाए गए इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने इस बात का जमकर विरोध किया। हर जगह इस कमीशन का स्वागत काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से किया गया। अक्टूबर में साइमन कमीशन लाहौर आया। इसके विरोध में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाईं। बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय पूरी तरह जख्मी हुए और कुछ समय बाद इन्हीं चोटों के कारण उनका देहांत हो गया।
1: भगवती भैया, लाला जी की मौत का बदला लेना ही होगा।
4: वो तो ठीक है भगत सिंह, मगर हम बदला किससे लेंगे? लाला जी पर लाठियां बरसाने वाले सिपाही भी तो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे।
1: हाँ, मगर उन्हें लाठी चलाने का आदेश देने वाला तो अंग्रेज था, सुपरिंटेंडेंट स्कॉट। मुझे लाला जी के बदन पर पड़ने वाली एक एक चोट की कसम है, मैं स्कॉट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
2: चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट को पहचानने वाला साथी जयगोपाल अपनी साइकिल ठीक करने के बहाने थाने के ठीक सामने रुका हुआ था। एक अंग्रेज पुलिस अफसर को थाने से निकलते देख उसने इशारा किया। उसका इशारा पाते ही आजाद और भगत सिंह साइकिल पर आगे बढ़े। राजगुरु पैदल थे। इन लोगों ने पलक झपकते ही अंग्रेज अफसर का काम तमाम कर दिया। साथ में एक भारतीय सिपाही चानन सिंह भी मारा गया। ये लोग साइकिलों पर सवार होकर भाग निकले। इन्हें बाद में पता चला कि ये मरने वाला अंग्रेज अफसर स्कॉट नहीं बल्कि उसका सहयोगी सॉन्डर्स था। लगभग उसी समय भगत सिंह ने तय किया कि वे अपनी बात बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक धमाका करेंगे। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने की

0: स्थान पर ले जाने का पूरा प्रबंध कर चुके थे, लेकिन भगत सिंह ने स्वयं ही गिरफ्तारी, जेल और फांसी का रास्ता चुना।
1: और ऐसा हुआ भी। 28 मार्च सन 1931 को क्रांतिकारी गतिविधियों के फलस्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ये वो लोग हैं जो देश के लिए मरकर अमर हो गए।
2: और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ चेतना, जगबंधु
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। कुछ ही पलों में हम आपको दिल्ली के अंदर लिए चलेंगे, जहां से आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में।

0: भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक महत्वपूर्ण विचार विमर्श, सर्वसम्मति तक पहुंचने और पर्यावरणीय सहयोग मजबूत करने का मंच उपलब्ध कराएगी। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: दिल्ली सरकार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत सरकार तीन स्तरीय प्रयास करेगी, जिसमें ग्रीनफील्ड परियोजनाएं, मौजूदा संस्थानों का ब्राउनफील्ड विस्तार तथा स्नातोत्तर और उन्नत चिकित्सा कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान पत्र प्रणाली की प्रशंसा की है और इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों के लिए मॉडल बताया है। उन्होंने भारत की निर्वाचन प्रणाली को चुनावी सुरक्षा का उदाहरण बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हाल की बातचीत का उल्लेख किया। अमेरिका के विशेष दूत जेयर्ड कुशनर ने कहा है कि प्रस्तावित गजा संघर्ष विराम योजना पर इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ लगभग 4 घंटे चली बैठक में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। श्री कुशनर ने कहा कि बातचीत मुख्य रूप से गजा के पुनर्निर्माण, असैन्यकरण और इसराइल की सुरक्षा चिंताओं पर केंद्रित रही। उन्होंने ये भी बताया कि श्री नेतन्याहू और उनकी टीम द्वारा उठाए गए कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। केरला में विंझिंजम समुद्री बंदरगाह से आज से सीधा निर्यात और आयात शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन आज सेवा का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यक्ति को हमेशा आत्मसम्मान, साहस और स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सच्चा पुरुषार्थ इसी में है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने

0: सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता ना करे और अपने आदर्शों पर दृढ़ रहे। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली में भी गुरुवार तक तेज बारिश होगी। मछुआरों को आज अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है। FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। ये मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टेलफेन में खेला जाएगा। भारत ने ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के 21 वर्षीय आयुष शेट्टी ने मौजूदा चैंपियन चीन के शी चीचू को 21-14, 13-21, 21-19 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। पीवी सिंधु और महिला डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी दूसरे दौर में पहुंच गईं। वहीं महिला डबल्स में कविप्रिया सिल्व और मौसिमरन सिंघी की जोड़ी ने स्पेन की निकोल कैरोला और कार्मेन जिमनेज की जोड़ी को 22-20, 21-14 से पराजित किया। के दूसरे दिन आज पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोनिल फिलिमोन से खेलेंगे। वहीं उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के पहले दौर में म्यांमार की थेट हताथ हुजार से मुकाबला करेंगे। डबल्स जोड़ी की बात की जाए तो रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गड्डे तथा कनाडा के जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई आमने सामने होंगे। आशीष सूर्य और अमृता प्रमुथेश तुर्की के एमरिस उन्मेज और यासिमेन बेक्टास से मुकाबला करेंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: सरकार ने वर्ष 2014
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शकुन चोपड़ा। द झारखंड गवर्नमेंट हैज कैंसल्ड JSSC CGL एग्जामिनेशन आफ्टर 24 डेज स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट इन द स्टेट। It has also cancelled all other recruitment exams conducted by private agency TDPL. The announcement triggered celebrations at the protest site in Ranchi, though the demand for a CBI probe remains unresolved. The Jharkhand government has decided to cancel the JSSC CGL examination and all competitive examinations conducted by the TDPL agency, besides announcing a probe into recruitment examinations conducted by JPSC and JSSC since 2014. The decision was taken at a special cabinet meeting chaired by Chief Minister Hemant Soren and was welcomed by protesting students at Jaipal Singh Munda Stadium, who celebrated by distributing sweets and applying gulal. Meanwhile, Minister Deepika Pandey Singh, and Health Minister Irfan Ansari, along with MLA Jairam Kumar, visited Sadar Hospital and ended the hunger strike of Devendranath Mahato and other protesting students by offering them juice. Mahato thanked the government and said the decision addressed major demands, with the JPSC, JSSC Nyay Manch announcing that it was suspending its agitation for now. India will host the 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi today. Environment, Forest and Climate Change Ministry said the meeting will provide a platform to engage in substantive discussions, foster consensus and strengthen environmental cooperation. The BRICS Environment Ministers meeting will be presided over by Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav. The event will be held under the overarching theme of India's BRICS Chairship 2026, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. US President Donald Trump has praised India's voter ID card system and hailed it as a model for stricter US election rules. He cited India's electoral system as an example of election security while renewing his call for stricter voter identification requirements in the United States. In a social media post, Mr. Trump referred to a recent conversation with India's Chief Election Commissioner, Gyanesh Kumar. He said Mr. Kumar had questioned how elections could be held in the United States without a mandatory valid photo identity document. Mr. Trump used the remarks to reiterate his demand that the U.S. Congress pass the Safeguard American Voter Eligibility Save America Act. The proposed legislation seeks to introduce stricter requirements for voting in federal elections. Indian Army Chief General Dhiraj Seth has been conferred the rank of Honorary General of Nepal Army by President Ramchandra Baudel during an investiture ceremony at Sheetal Nivas in Kathmandu yesterday. Nepal Vice President Ram Sahai Prasad Yadav

0: Srivastav, Foreign Minister Shishir Khanal, India's Ambassador to Nepal, Naveen Srivastav, and high officials of Nepal Army and the Nepal government were present during the ceremony. In Keralam, direct exports and imports from Vizhinjam seaport will begin today. Chief Minister V.D. Satheesan will inaugurate the service at 10:45 a.m. Union Minister for Ports, Shipping and Waterways Sarbanand Sonowal will be the chief guest. The Indian Meteorological Department IMD has issued a red colour warning for very heavy rainfall to extremely heavy rainfall in Jharkhand today. Weather agency forecast heavy to very heavy rainfall in Bihar, Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Odisha and West Uttar Pradesh today. According to IMD, Jammu and Kashmir, Ladakh, Uttarakhand, Punjab, Chandigarh, Haryana, Delhi, East Uttar Pradesh, Sikkim, Northeastern states, Karaikal, Puducherry will experience heavy rainfall till Thursday. India's Ayush Shetty stunned world number one and defending champion Shi Yu Chi in the first round of the men's singles at BWF Badminton World Championships in New Delhi yesterday. Ace shuttler PV Sindhu and the women's doubles pair of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand also advanced to the second round at the World Championships. In men's cricket, India will look to press home their advantage against Sri Lanka on the fourth day of the first test in Goa after taking a commanding lead of 178 runs at the end of day three. And that is the end of this news bulletin.
1: वो एक है कि आपको rest उसी time लेना चाहिए जब भी है और अलग-अलग चीजों के लिए अलग-अलग हैं जो care जो हम ले सकते हैं उसे बचाने के लिए अगर आप बहुत स्पेसिफिक पूछोगे तो मैं बोलूंगी कि एक कॉमन है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी
2: जी
1: अगर उस बारे में बात करनी है तो वो मैं बता सकती हूँ कि उसका केयर कैसा लेना है
2: डॉक्टर साहब यहाँ ये बात करेंगे लेकिन इस गाने की बात करेंगे तो यहाँ इस प्रोग्राम का पहला गाना मुझे लगता है कि बजाते हैं और वो गाना है राही तू रुक नहीं जाना मिलेगी तेरी मंजिल कहीं दूर गगन की छांव में ये गाना इसलिए सुनते हैं क्योंकि जब भी कोई इंजरी होती है तो व्यक्ति रुक जाता है अटक जाता है उसके काम रुक जाते हैं तो ये गाना सुनते हैं फिर आगे की बातें करते हैं

0: डॉक्टर, ये गाना सुना है हेमंत कुमार की बड़ी मीठी सी आवाज में, और ये गाना ये कहता है कि रुक मत जाना। लेकिन जब समस्याएं होती हैं, शारीरिक समस्याएं, तो इंसान को रुकना ही पड़ता है। आप कुछ बताने वाली थी?
1: मुझे बोलना है कि ये अभी सब दुनिया के 50 या 60% लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी
0: जी
1: ये होता है, और फिर उसके लिए नी रिप्लेसमेंट भी होता है, बहुत कॉमन हो गया है।
0: महिलाओं में ज्यादा होता है?
1: महिलाओं में थोड़ा ज्यादा होता है, यस, उसके भी कारण हैं। बट ये एक्चुअली मैं प्रिवेंटेबल टोटली नहीं बोलूंगी, बट डिले तो जरूर हो सकता है, और अगर अर्ली केयर ले तो इसको शायद प्रिवेंट भी हो सकता है। मेनली ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो इधर डिसयूज के वजह से होता है, मतलब हम जॉइंट ज्यादा यूज नहीं करते, बहुत आराम की लाइफस्टाइल है, कुछ ज्यादा करना ही नहीं पड़ता है, वो एक है। दूसरा ये है कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, या तो बहुत सालों के लिए कुछ नहीं करके फिर इमीडिएटली एक्सरसाइज या कुछ बहुत ज्यादा कर लेते हैं। अभी देखो, मैराथन भी अगर करना है तो फुल मैराथन करना है या हाफ मैराथन करना है, उसके लिए ट्रेनिंग ज्यादा करनी है, ये सब होता है, इसलिए नी पेन सेटल ही नहीं होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एज रिलेटेड बोला जाता है, बट उसका डाइट से बहुत ज्यादा संबंध है। ब्लड शुगर अगर बढ़े और बढ़ी रहे, सो डायबिटीज बेसिकली विल गिव यू अ कॉन्स्टेंट इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी विच विल अलाउ द जॉइंट टू डीजेनरेट, मतलब वो उसकी वेयर एंड टेयर हो सकता है। अर्ली साइंस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली ये जो वाटी होती है जो घुटने के आगे होती है,
0: कटोरी जैसा,
1: कटोरी, वो सबसे पहले उधर पेन होता है यूजुअली लोगों को। हमारे फ्रंट ऑफ द लेग बड़ा मसल है क्वाड्रिसेप्स करके, तो वो क्वाड्रिसेप्स नॉर्मल फंक्शन के लिए, मतलब ये जो कटोरी है सामने, पटेला जो हम बोलते हैं उसको, वो उसका स्मूथ फंक्शनिंग या स्मूथ मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम उसको थोड़ा सा मसाज करें या क्वाड्रिसेप्स को रिलैक्स करें, उसको स्ट्रेच करें, काफ मसल जो पीछे होता है लोअर लेग के पीछे, काफ मसल, उसको अगर हम स्ट्रेच करें रोज, तो सो क्वाड्रिसेप्स एंड पीछे का काफ मसल, ये दोनों अगर हम अच्छे से स्ट्रेच करें और उनको अगर हम लेंथ में अच्छा रखें, अगर आपको फ्लैट फुट है तो उसके लिए जब भी आप एक्सरसाइज करते हो या लॉन्ग वॉक्स करते हो, तो उसके लिए अगर आप अच्छे आर्च सपोर्ट वाले शूज वेयर करें, और वॉकिंग अगर आपको करना है तो आप थोड़ा उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। अभी ऐसा बोला जाता है कि वजन ज्यादा होने की वजह से घुटने पे दबाव आता है, पर वो ही एक कॉज नहीं है। फैट जो है बॉडी में वो भी अभी एक मेटाबॉलिक एंडोक्राइन ऑर्गन के जैसा फंक्शन करता है, तो उसके वजह से कोई ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो डिस्ट्रक्टिव हार्मोन्स होते हैं,
0: जो हड्डियों को तबाह करना शुरू करते हैं।
1: तो ये जो फैट बिल्डअप होता है वो भी कम रखना पड़ता है। सो शुगर, सॉल्ट, फैट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशनल फैट, बट जो बॉडी में फैट बढ़ता है वो अगर कम रखें, सब मसल्स लेग के स्ट्रेच रखें, एक्सरसाइज रोज का रोज सही मात्रा में करें, नॉट टू मच नॉट टू लेस, और कायम करें, मतलब ऑलमोस्ट एवरी डे आपका वॉकिंग, जो हमारी बॉडी एक्चुअली एक्सरसाइज के लिए ही बनी है, मूवमेंट के लिए बनी है, हम उसको मूवमेंट बंद कर देते हैं और फिर सडनली जब भी चालू करते हैं तो बहुत ज्यादा करते हैं। तो अगर ये सब आप करो तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस कैन बी प्रिवेंटेड और इट कैन बी डिलेड। अनफॉर्चुनेटली ये बात है कि जब तक हमें ये सब समझता है तभी ऑलरेडी लेट हो चुका होता है
0: जी।
1: ऑल प्रिवेंशन हैज टू बी स्टार्टेड इन चाइल्डहुड,
0: बिल्कुल
1: बचपन से ही आदतें डालनी चाहिए।
0: आपने ये जो पूरा ब्यौरा बताया है, इससे एक बात ये समझ में आई कि रेगुलर सही एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब आप इन तमाम चीजों से बच सकते हैं। ये जो सही एक्सरसाइज वाला मुद्दा है, ये कितना इंपॉर्टेंट,
1: हिप्पोक्रेटस ने बोला था, जो हिप्पोक्रेटस इज द फादर ऑफ मेडिसिन, उन्होंने 400 BC में बोला है कि इफ वी कुड गिव एवरी इंडिविजुअल द करेक्ट अमाउंट ऑफ

0: exercise and the correct amount of nutrition. That would be the safest way to ensure health.
1: कितनी बड़ी बात
0: और ये कितनी पुरानी बात है और हमारे भी संस्कृति में यही बात है
1: जी
0: योगा में यही बात है
1: संपूर्ण स्वास्थ्य की बात है और उन्होंने क्या कहा कि सही मात्रा में एक्सरसाइज
0: सही मात्रा
1: है ना और
0: वही कैच फ्रेज है नॉट टू लेस नॉट टू मच
1: जी और आज आपने जब इस कार्यक्रम में बताया तो मुझे ये उम्मीद है कि लोग जो हैं वो अवेयर होंगे इस बात के लिए कि एक्सरसाइज
0: लाइफ में कभी बंद ही नहीं करनी चाहिए
1: जी
0: जो हम चाइल्डहुड में जो थोड़ा रनिंग करते हैं या खेलते हैं वो कायम रखना चाहिए
1: जी आपने एक बात कही थी कि महिलाओं में ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये
0: ऑस्टियो आर्थराइटिस बोला था बट पोरोसिस भी
1: हाँ दोनों चीजें
0: दो अलग हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस इज वेयर एंड टेयर जो घिस जाती है जॉइंट्स और पोरोसिस है जो
1: हड्डियां
0: कमजोर होती हैं पोरस हो जाती हैं
1: तो महिलाओं पर अगर फोकस किया जाए तो आपकी क्या राय और सलाह होगी क्योंकि अमूमन महिलाएं सारे परिवार का ख्याल रखने के चक्कर में खुद पर फोकस सबसे कम रखती आई हैं
0: ऑस्टियोपोरोसिस एक्चुअली ज्यादा डेंजरस है ऑस्टियोआर्थराइटिस का तो है आंसर कर सकते हैं सर्जरी ऑस्टियोपोरोसिस बहुत डेंजरस है क्योंकि वो रिवर्स होता है कभी कभी अभी तो बहुत अच्छे इंजेक्शंस और सब आए हैं जो होता है रिवर्स बट उसको टाइम लगता है किसी में होता है किसी में नहीं मेनली विमेन में क्या होता है ईस्ट्रोजन जब भी कम हो जाता है मेनोपॉज के टाइम तो उस वजह से कैल्शियम का
1: डेफिशिएंसी
0: होती है विटामिन D3 एंड सम अदर मिनरल्स आर देयर वो अगर नहीं हो तो फिर एब्जॉर्प्शन बोन में एब्जॉर्प्शन कैल्शियम का कम हो जाता है हमारे नॉर्मल फूड में अगर हम केयरफुल नहीं हो तो एक्चुअली उतना कैल्शियम नहीं जाता है बॉडी में जो रिक्वायरमेंट होती है मतलब पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन दे शुड हैव 1500 mg ऑफ कैल्शियम अ डे वो नहीं होता है एक्चुअली अगर दही खाएं या ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं ये सब पर इतना हमारा बैलेंस न्यूट्रिशन अभी नहीं रहा है और इस वजह से भी होता है दूसरा है कि बोन को ग्रो करने के लिए वो एक तो है ना ये ऑस्टियोपोरोसिस अगेन आई कॉल इट अ चाइल्डहुड प्रॉब्लम नॉट एडल्टहुड प्रॉब्लम
1: उसका पता बड़े होने पर लगता है
0: बट उसका अक्यूमुलेशन पहले 18 साल में ही होता है कैल्शियम और वो बैंक के जैसा है जितना भरो उतना बाद में घटा सकते हो आप पहले भरना चाहिए तो 18 तक भरना चाहिए फिर उसको मेंटेन करना चाहिए 30-32 तक और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा खर्चा कर सकते हैं पर उसको थोड़ा सा रिप्लेनिश भी करना चाहिए तो अगर मेनोपॉज हो तो अभी हार्मोनल रिप्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है बोन स्ट्रांग रहने के लिए मसल की बहुत जरूरत है मसल अगर बोन पे पुल नहीं करेगा तो बोन को स्टिमुलेट ही नहीं होगा वो कैल्शियम उठाने के लिए तो एक्सरसाइज न्यूट्रिशन मतलब कैल्शियम डाइट में और फिर जो कमतरता है वो सप्लीमेंट से मेंटेनिंग ऑल अदर मिनरल्स ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट एब्जॉर्प्शन के लिए और एक्सरसाइज सो मसल्स का पुल रहे बोन्स पे यही सब है अगेन वेट मैटर्स वेट ऑल्सो शुड बी अंडर कंट्रोल बट मेनली एक्सरसाइज एंड फूड हैबिट्स एंड हार्मोन रिप्लेसमेंट व्हेनेवर रिक्वायर्ड और अगर अर्ली डायग्नोसिस भी अभी बहुत है मतलब आप BMD बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट रेगुलरली करो 2-3 साल में जरूर करो मेनोपॉज के बाद तो हमेशा करो 2-3 साल में अगर अर्लियर ऑस्टियोपीनिया मतलब एकदम थोड़ी पहली वाली कमजोरी अगर दिखे तो फिर बहुत अच्छे मेडिसिन हैं अभी रिवर्स करने के लिए क्योंकि बेसिकली हमें ये चाहिए कि हम जब एज में बढ़ जाए तो गिर के फ्रैक्चर ना हो या कभी कभी स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर्स भी होते हैं अपने आप से ही फ्रैक्चर हो जाता है
1: शरीर इतना मजबूत रहना चाहिए
0: क्योंकि अभी एज एक्सपेक्टेंसी बहुत है मोस्ट पीपल आर लिविंग लंबा जीना चाहिए और स्वस्थ भी जीना चाहिए सिर्फ लंबा नहीं अच्छा जीवन चाहिए
1: बिल्कुल सही है आगे की बातें करते हैं यहाँ एक गाना सुनते हैं तो बताइए कि किस गाने की गुजारिश करना चाहती हैं
0: गुजारिश की गुजारिश करूंगी
1: क्या बात है तो चलिए ये गाना सुना जाए यहाँ पर तेरा जिक्र है
0: तेरा जिक्र है
1: करेक्ट क्या गाना है
0: बहुत ही सुंदर

0: देखिए गाना हमने सुना और ये गाना सुन के मन थोड़ा रिलैक्स हो गया। ये जो जीवन की भागदौड़ है, इस भागदौड़ में हम सामान्य इंसान और स्पोर्ट्समैन अपने शरीर को कितना ज्यादा ओवरलोड करते हैं, कितना ज्यादा स्ट्रेस करते हैं कि उनको फिजियोथेरेपिस्ट की शरण में जाना पड़ता है।
1: बाकी फिर सेम हो गया कि हम बहुत बॉडी को अब्यूज ही करते हैं
0: जी।
1: एक तरफ से उसे बहुत आराम देते हैं, जैसे कि बॉडी हमारा बना है एक्टिविटी के लिए, मूवमेंट इज द नेसेसिटी फॉर लाइफ। एक्चुअली ऐसा है कि हमारा ये जो फिजिकल बॉडी है वो समझो हार्डवेयर है अपना, और उसके पीछे एक फिजियोलॉजी है, मतलब जो यू कैन से ब्यूरोक्रेसी है कि उसको चलाना कैसे है, और उसके ऊपर बैठा है सॉफ्टवेयर विच इज आर ब्रेन। तो ये तीनों मिलके बॉडी चलती है पूरे लाइफ, और उसको चलाने के लिए एक तरीका है जो इनबिल्ट है। ये सब बोलते हैं कि बॉडी इज अ मशीन, आई मीन ये मशीन से भी बेहतर है, बट ये है ऑल सेड एंड डन समथिंग लाइक अ मशीन। उसको चलाने का एक तरीका है, और उस तरीके का अंडरलाइंग करंट पूरा एक्टिविटी है।
0: बिल्कुल,
1: अगर
0: जिस पर आप सबसे ज्यादा जोर दे रही हैं,
1: वो ही है जो सब चलाता है
0: जी।
1: अगर एक्टिविटी नहीं है तो सब जो हार्मोन सिस्टम है या नर्वस सिस्टम है या मस्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो भी सब सिस्टम्स, इवन कार्डियक, सब कुछ अलग तरह से चलता है और उसमें थोड़ी सी खराबियां आती है धीरे धीरे। देयर इज अनदर प्रिंसिपल की जो बॉडी है अपनी वो एक इक्विलिब्रियम रखती है हमेशा, और जब भी हम एक्स्ट्रा कुछ करते हैं, अगर एक्सरसाइज करते हैं, आपको मालूम है हार्ट रेट बढ़ेगी, थोड़ा स्वेटिंग होगा, बॉडी हीट बढ़ेगी, दैट मींस वो इक्विलिब्रियम बिगड़ गया। फिर उसको वापस लाना है, वो होम्योस्टेसिस होता है, मतलब जो नॉर्मल स्टेट है उस पे वापस लाना उसको, वो ब�डी के इनबिल्ट ही है, वो
0: मैकेनिज्म भी, के बाद रिलैक्सेशन
1: की जरूरत है, तभी सब चलता है
0: जी।
1: एक ये करना है, एक वो करना है, उसके लिए हॉर्मोन्स की जरूरत होती है। थोड़े हॉर्मोन्स ऐसे हैं जो एक्सरसाइज को अलाउ करते हैं, और थोड़े हॉर्मोन्स ऐसे हैं जो रिजुविनेशन को अलाउ करते हैं, वो वापस लाने का। तो ये दोनों चीजें जरूरी है कि आप सही तरह से एक्टिव रहो, सही तरह से रिलैक्स करो, इनफ आराम करो, स्लीप। एंड ये भी हमें याद रखना है कि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वो होम्योस्टेसिस एक जगह से हिलते रहता है दूसरी जगह पे। मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा आप वही स्थिति पे वापस आओगे। अगर आप 5 साल एज में बढ़ गए तो आपका होम्योस्टेसिस अलग जगह पे रहेगा,
0: तो वो एक्टिविटी चेंज हो
1: जाएगी। अभी हम ऐसे हो गया है कि सब सोचते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर, एक्चुअली है नहीं, फिजियोलॉजिकली एज इज समथिंग, उसको थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमारी एक्टिविटी थोड़ी चेंज करनी चाहिए। एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट, बट हाउ मच यू डू इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो अगर ये हम सब मेंटेन करें तो हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी फिजियोथेरेपिस्ट की। अगर हम नियम से चलें कि क्या खाना है, कितना एक्टिव रहना है और कितना आराम करना है,
0: ये बड़ा मुश्किल लगता है कि फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत ना पड़े।
1: नहीं, मुश्किल ही है, इसीलिए हमारी जरूरत पड़ती है। और कोई पूछेगा अगर ये इतना सिंपल है तो फिर आपकी जरूरत क्यों है
0: जी,
1: तो ये बताने के लिए हमारी जरूरत है।
0: क्या बात,
1: क्योंकि अदरवाइज ये समझाने के लिए, मुझे तो कंसल्टेशन में आधा टाइम मैं आई थिंक काउंसलिंग ही करती हूँ।
0: जी जी बिल्कुल,
1: बाकी के सेशन में हम लोग जो करना है ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज वो करते हैं, स्पेशली जो कंसल्टेशन सेशन है फर्स्ट वाला।
0: हाँ।
1: उसमें तो ऑलमोस्ट फुल सेशन, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन ही होता है।
0: लोग बहुत सारे सवाल लेकर आते हैं।
1: एक्चुअली जरूरत इसलिए है क्योंकि हम नहीं देखभाल कर रहे हैं बॉडी की, या तो रेस्ट ही करते रहते हैं, कभी फिर डॉक्टर बोलता है कि ब्लड शुगर बढ़ गया है, ये बढ़ गया है, अभी एक्सरसाइज करो, तो सीधा जाके मैराथन के लिए एनरोल करते हैं या टेनिस क्लास चालू करते हैं,
0: जो दोनों एक्सट्रीम है।
1: एक्सट्रीम है।
0: एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आप क्या क्या करती हैं, लोगों को समझाने के बाद वाली जो प्रोसेस है उसमें कितनी एक्सरसाइज है, कितनी मशीनों की मदद है?
1: मेरा थोड़ा अलग से सिस्टम है मेरे क्लिनिक में, मतलब जो अभी आई थिंक मेनी पीपल आर डूइंग, बट मेरा ग्रेजुएशन ही बहुत पहले, लाइक आई हैव ग्रेजुएट 1989, और तभी तो, लेट मी टेक यू टू हिस्ट्री ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी इंडिया में आई है 100 साल अभी हुए नहीं है, इट इज अबाउट 75-76 years। सो व्हेन आई ज्वाइंड 84 में मैंने ज्वाइन किया, 89 में मेरा खत्म हुआ, तभी फिजियोथेरेपी बहुत नई थी, और ये जो अभी सर्जरीज हैं वो भी तभी नहीं थे। मतलब जो अभी आर्थ्रोस्कोपिक, जैसे मैंने ACL बोला, रोटेटर क्रफ, जो छोटी इंसिजन से सर्जरी होती है, वो 1985 या कुछ से चालू हुई है। मतलब मैं तभी थी कॉलेज में, सर्जरीज उतने तभी नहीं थे। रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, ये भी 1980s में आई है, वो भी एकदम नई नई थी तभी। अभी जो जितने सर्जरीज होते हैं और जितने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन होता है, मतलब जब भी मैं कॉलेज में थी तभी अगर कोई साइक्लिस्ट रास्ते पे दिखा, मतलब दिखते थे तभी बहुत, तो वो एक्सरसाइज के लिए साइकिलिंग नहीं कर रहा था, वो एक्चुअली जरूरत के लिए कर रहा था। जो अभी बढ़ गया है ये जी, इसके लिए ये सब आए हैं। तो बट मेरा थॉट प्रोसेस तभी से ऐसे ही था कि जो इंजरी और पेन और सब है, और दूसरी साइड है एक्सरसाइज और सब, तो उसके बीच वाला ब्रिज हम लोग बन सकते हैं। तो उसी तरह से मेरा क्लिनिक चलता है। पहले पेन मैनेजमेंट होता है। अगर आप आए, समझो आपको पीठ में पेन है, तो फर्स्ट स्टार्ट होता है पेन मैनेजमेंट से। मेरे ख्याल से पेन बहुत जल्दी मैनेज हो जाना चाहिए
0: जी।
1: अगर वो अक्यूट पेन है, अभी आया है, तो उसको मैनेज कर सकते हैं बहुत जल्दी से। अगर पेन मैनेज जब भी होता है, तो पहले 2-3 दिनों के अंदर ही हम थोड़े एक्सरसाइज चालू करते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। और जैसे समझो 1 घंटे का सेशन है, तो पहले मे बी 45 मिनट्स उसमें से पेन मैनेजमेंट में जाएंगे, फिर धीरे धीरे वो कम होके पेन का, समझो लास्ट 10 मिनट ही पेन मैनेजमेंट करेंगे, ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे। क्योंकि एक्सरसाइज वी कॉल इट रिहैबिलिटेशन, मतलब मेकिंग दैट पर्सन फंक्शनल अगेन, जो भी फंक्शन
0: जी।
1: और वो जो हमारे एक्सरसाइज है वो ऐसे डिजाइन होते हैं, एज अप्रोप्रिएट, फंक्शन अप्रोप्रिएट, मतलब आप कुर्सी

0: पे बैठ के कंप्यूटर का काम करने वाले हो, या आप कोई मेडिकल रेप या आप कोई सेल्स के डिपार्टमेंट हो जहां आपको ज्यादा चलना पड़ता है, या आप हाउसवाइफ हो जहां आप क्लीनिंग करोगे या कुछ भी करोगे, या आप स्पोर्ट्समैन हो या इवन वीकेंड स्पोर्ट्समैन हो, अगर आप ऑफिस में काम करते हो बट वीकेंड में आप स्पोर्ट्स खेलते हो, तो आपको उस तरह से एक्सरसाइज कराना चाहिए जो एज अप्रोप्रिएट, फंक्शन अप्रोप्रिएट एंड सूटिंग टू योर नीड्स, सो इंडिविजुअलाइज्ड होता है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये प्रोसेस होती है। अगर सर्जिकल है, पोस्ट सर्जिकल है, तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, फिर वो प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है।
1: जी, तो मरीजों को ये बताइए कि कितना ज्यादा मायने रखती है फिजियोथेरेपी, क्योंकि एक चलन जो अमूमन हमारे आसपास देखा जाता है कि जब तक आराम मिला, तकलीफ थोड़ी कम हुई, तो छुट्टी मारो, कौन जाएगा फिजियोथेरेपिस्ट के पास।
0: बट अगर मैंने देखा है कि आप जितना बात करते हो ना, जितना समझाते हो और एक्सप्लेन करते हो पेशेंट को, उतना उनका इंटरेस्ट बढ़ता है।
1: जी,
0: जरूरी तो है। जैसे मैं बोलती हूँ, पेन मैनेज हो जाता है, पेन के लिए इतनी तकलीफ नहीं करनी पड़ती है, एंड लाइक यू करेक्टली सेड, थोड़े दिनों में पेन चला जाता है, फिजियोथेरेपी का वर्क इज ओवर एक्चुअली। बट जो प्रिवेंटिव है कि नेक्स्ट एपिसोड नहीं होना चाहिए, या ये बार बार नहीं होना चाहिए, या आपको समझना चाहिए कि आपकी बॉडी क्या कर सकती है, क्या नहीं करना चाहिए, एंड अगेन लाइक आई सेड, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी इट इज इंपॉर्टेंट कि आप एक्सरसाइज करो फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग। जो बॉडी का नॉर्मल फंक्शन है वो मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट। तो वो कैसे करना है वो सीखने के लिए हम ज्यादा काम करते हैं, सिखाने के लिए, एंड टू क्रिएट इंटरेस्ट इन यू फॉर एक्सरसाइज, उसके लिए बात करना बहुत जरूरी है। उसका जितना आप इंपॉर्टेंस समझाओगे, पेशेंट का इंटरेस्ट उतना ही बढ़ेगा, और उनके लैंग्वेज में उन्हें जैसे समझे वैसे एक्सप्लेन करना चाहिए।
1: जी,
0: जैसे मैंने बोला, इंजरी कहाँ है, आपको कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है, क्यों करना है प्रोटेक्ट, सो आई कॉल इट एम्पावरिंग द पेशेंट। अगर आप एम्पावर करोगे तो वो खुद से जान जाएंगे। और मेरा अदर थिंग इज कि उनको एम्पावर इस तरह से करो कि वो अपने आप से एक्सरसाइज कर सके, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है ज्यादा।
1: जी जी,
0: बट ऑफकोर्स लर्निंग प्रोसेस के लिए एक महीना या दो महीना जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज ऐसी चीज है कि आपने अगर थोड़े अलग तरह से की तो वो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकती है। सो वो सिखाने में थोड़ा टाइम जाता है, पर उसके बाद बार बार आने की जरूरत नहीं है।
1: इसका मतलब ये है कि अगर आपको जरूरत है फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की, तो पूरी शिद्दत के साथ जाएं और जो कुछ सिखाया जा रहा है उसको सीख के प्रिस्क्राइब टाइम तक पूरा करें,
0: करें और करते रहे उसके बाद।
1: हाँ,
0: ये लाइफ लॉन्ग है, लाइफ लॉन्ग है। जैसे मैं बोलती हूँ, डाइट एंड एक्सरसाइज, उसको टाइम मत रखो। ऐसा मत बोलो कि मैं दो महीने डाइट पे हूँ, मैं दो महीने एक्सरसाइज के लिए, फिजियोथेरेपी के लिए जाती हूँ या जाता हूँ। लाइफ लॉन्ग है, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, बट एक्सरसाइज लाइफ लॉन्ग है।
1: जी, अब हम उन बातों पर आते हैं जहां आपने कुछ बहुत ही मशहूर हस्तियों का इलाज किया है, बीमारियों से, चोटों से, तो उससे जुड़े कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए।
0: मैंने फिजियोथेरेपी क्यों ज्वाइन किया, तभी तो कुछ उसका यही नहीं था, मतलब नोबडी न्यू कि फिजियोथेरेपी क्या है।
1: जी,
0: मुझे मेडिसिन करना था, MBBS, और उसके बाद MD और MS नहीं मिला, एक दो मार्क से छूट गया।
1: अरे रे,
0: तो फिर मैं फिजियोथेरेपी में आई और मुझे तभी कुछ मालूम नहीं था क्या है ये। जैसे मैंने बोला, मैंने ज्वाइन किया KEM हॉस्पिटल, दैट वाज द फर्स्ट हॉस्पिटल इन मुंबई विच ऑफर्ड, एंड इन 84, जैसे मैंने अभी बोला, मैंने ये डिसाइड किया एक दो साल के बाद, समझने के बाद कि ये क्या है, मैंने ये डिसाइड किया कि ये जो गैप है, तभी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी करके कुछ नहीं था, स्पोर्ट्स साइंस ही नहीं था, 84-85 में कुछ नहीं था, फिर भी मैंने ऐसे सोचा कि ये जो सब्जेक्ट्स है वो इतने अलाइंड हैं इस चीज के लिए कि जो लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं या स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, तो उन्हें हम ब्रिज बन सकते हैं उनके पेन और इंजरी और परफॉर्मेंस के बीच में। तो उस तरह से मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, क्योंकि था नहीं एक कोर्स, तो मैंने योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया, टेपिंग, स्पोर्ट्स टेपिंग, बहुत सारे कोर्सेज किए मैंने, एक्चुअली एक्सरसाइज के बहुत सारे किए, एडवांस्ड वेट ट्रेनिंग, कोर स्टेबिलिटी ऑन रीबॉक बॉल, एंड बहुत सारे किए। तो मैं प्रिपेयर्ड थी कि कभी ऐसी जरूरत पड़े, और मैंने मेरा क्लिनिक भी वैसे ही डिजाइन किया कि ज्यादा एक्सरसाइज बेस्ड एंड लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन। और आई डोंट नो हाउ लक के वजह से मेरे आसपास के लोगों के, और ऑफकोर्स मेरे काम के वजह से भी, थोड़े लोग जो एक्सरसाइज करते हैं स्पेशली

0: एक्टर्स जिनको ऐसे बॉडी बनानी है किसी रोल के लिए और जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो अचीव करने के लिए, वो लोग और स्पोर्ट्समैन थोड़े थोड़े मेरे पास आने लगे। मैं ये बोलना चाहूंगी कि रेसलर्स जो बहुत पुअर रेसलर्स हैं उनके साथ मैंने बहुत पहले से काम किया है।
1: अरे गजब।
0: दंगल बहुत बाद में आई, उसके मच बिफोर दैट मैं 2002 से लोकल महाराष्ट्र के और नेशनल लेवल रेसलर्स के साथ मैंने फ्री में काम किया है। मेरे क्लिनिक में आते थे। एक्चुअली नाम आपने पूछा है, मैं नाम थोड़े बड़े वाले बोल सकती हूँ, बट ये लोग जो हैं उनके साथ मैंने इतना काम किया है। और इवन क्रिकेटर्स जो लोअर लेवल के अभी भी आते हैं, अभी भी एक था जो रोटेटर कफ इंजरी था उसको, ही इज ओनली 20-21, अभी कोई टीम में नहीं है, जिसे एक जरूरत है उनको मैं देती हूँ ट्रीटमेंट। तो बड़े नाम बोलो तो एक तो सचिन तेंदुलकर,
1: बाप रे।
0: हाँ, आई हैव बीन ट्रीटिंग हिम फ्रॉम 2002 टू 2012, मतलब क्वाइट अ लॉट, 10 इयर्स। जब भी, बिकॉज स्पोर्ट्समैन का ये है कि वो टीम के साथ ट्रैवल करते हैं तो उनका थेरेपिस्ट उधर होता है
1: जी,
0: मैं कभी उसमें नहीं थी। बट जब भी इंजोर होते हैं तो घर पे होते हैं, तो फिर उन्हें कोई और लगता है। और अगर एक पे भरोसा आ जाए तो फिर वही होता है। तो अनऑफिशियली आई वॉज नॉट विद बीसीसीआई, बट बीसीसीआई ऑलवेज पेड मी फॉर सचिन्स ट्रीटमेंट्स। आई हैव ट्रीटेड सचिन फ्रॉम बैक इंजुरीज, मेनली द टेनिस एल्बो,
1: जो बहुत ही मशहूर
0: टेनिस एल्बो एंड शोल्डर। या सो या ही इज बीन अ प्लेजर। और इतना हम्बल कोई वो लेवल पे हो ही नहीं सकता है,
1: क्या
0: हो ही नहीं सकता है, कोई भी नहीं। मतलब एक बार जब भी मैं बहुत, मतलब आई थिंक नाउ आई एम प्रिटी एडवांस्ड इन माई फील्ड, बट एट दैट टाइम आई वॉज अ नो बडी एंड ही वॉज एट द टॉप। तभी भी एक बार मुझे याद है, मैं उसके घर में रुकी हुई थी, कोई अपॉइंटमेंट था उसके साथ, और उसका मुझे मैसेज आया कि मैं 5 मिनट लेट होने वाला हूँ, आई एम वेरी सॉरी। और एक्चुअली इट वुडंट हैव मैटर टू मी, बट वो इतना टाइम का पंक्चुअल दैट इवन ही थॉट कि आई शुड मैसेज।
1: वाह,
0: बहुत ही हम्बल आदमी है। एंड प्रूफ इज दैट ही प्लेड फॉर दोस 10 इयर्स दैट वाज ट्रेनिंग, ही प्लेड वेरी वेल।
1: क्या बात है।
0: नो, मुझे ये बोलना था कि ये प्रोफेशन मैंने चुना नॉट बाय चॉइस बट बाय चांस, बट इसमें से प्लेजर मुझे बहुत मिला है। ऋतिक रोशन, आमिर खान, सचिन तेंदुलकर, शिल्पा शेट्टी, बहुत बहुत नाम है, बड़े वाले भी और छोटे विक्ट्रीज भी बहुत हैं।
1: क्या बात है। तो जब बड़े स्टार्स को ट्रीट करती हैं तो कैसा, वो क्या फीलिंग
0: होती
1: है?
0: मुझे कुछ अलग नहीं लगता है। नहीं, सच नहीं लगता है। इट्स अ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स अ सीन, आई रियली डोंट फील, बट इट फील्स गुड। कभी शिल्पा शेट्टी डांस करके बताएं कि मुझे ये मूव करना है, इधर दुख रहा है। कभी सचिन तेंदुलकर 10 स्ट्रोक मार के दिखाएं कि ये बैटिंग में इधर दुखता है, ये ऐसा दुखता है। कभी ऋतिक रोशन पुशअप्स करके दिखाएं
1: कि ये प्रॉब्लम हो रही है,
0: तो अच्छा लगता है। दीज आर द पर्क्स, साइड पर्क्स,
1: ऑफकोर्स, ऑफकोर्स,
0: बट नो, इन रियालिटी नथिंग इज डिफरेंट
1: जी। एवरीबॉडी, चूंकि इन तमाम लोगों की हो रही है जो मशहूर लोग हैं जिन्होंने आपसे सलाह,
0: बस मशहूर लोगों से बहुत ज्यादा मैंने रेगुलर लोगों से, और मुझे तो प्लेजर उधर से ही मिलता है, बिकॉज वो उनके प्रॉब्लम्स कोई सॉल्व नहीं कर सकता है, यू नो, लाइक दीज पीपल आई नो, मैंने नहीं किया तो कोई और करता था। मुझे, आई एम एक्चुअली लकी दैट आई केम इन कॉन्टेक्ट विद देम, बट ऑल दी अदर्स, सो मेनी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ओवर 37-38 ईयर्स, वही प्लेजर देता है।
1: क्या बात है। क्योंकि जिक्र हुआ है ऋतिक रोशन और आमिर खान का, तो इन दोनों में से किसका गाना सुनवाया जाए?
0: अभी आमिर खान का सुनाइए।
1: ठीक है, क्योंकि बात दंगल की हो रही है,
0: दंगल,
1: तो दंगल का,
0: का
1: गाना सुनवाते हैं, नैना।

0: डॉक्टर साहब, इतनी सारी बातें स्पोर्ट्स इंजरी की और नॉर्मल इंजरी की हुई, और आपने एक बात पर बहुत जोर दिया कि एक बहुत लंबा समय ऐसा था जब फिजियोथेरेपी पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। आज ऐसा समय है जब फिजियोथेरेपी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गई है, पर फिर भी क्या आपको लगता है कि एक आम इंसान फिजियोथेरेपी को लेके थोड़ा कम सीरियस है? इस तरह की चीजें आपने देखी हैं?
1: मैं ये कहूंगी कि बहुत लोगों को ये एक्सपेंसिव हॉबी लगती है।
0: एक्सपेंसिव हॉबी?
1: क्योंकि पेन इज अ रियल थिंग
0: जी,
1: बट उसके बाद मुंबई जैसे शहर में रह के कम्यूटिंग इज सो डिफिकल्ट, टाइमिंग्स आर डिफिकल्ट, उसमें आना है, रोज आना है या हफ्ते में 3 दिन आना है, फीस भरनी है, ये सब थोड़ा मुश्किल लगता है आम आदमी के लिए, इसलिए बोलूंगी मैं। अदरवाइज मुझे तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि जो हमारे पास आते हैं वो क्वाइट अ फ्यू टाइम्स आते ही रहते हैं
0: जी।
1: उनको हाँ महत्व अगर ठीक से समझे तो वो आते हैं, बट फिर भी ये मैं बड़े शहर की बात कर रही हूँ
0: जी,
1: मुंबई की बात कर रही हूँ, मे बी मुंबई, बैंगलोर, कैलकटा, पुणे, ये सब, और इवन मिड लेवल सिटीज, ये सब आई थिंक फिजियोथेरेपी, आई थिंक पीपल डू अंडरस्टैंड, आते हैं, करते हैं, पर छोटे गांवों में और अभी तक नहीं है उतना, आई थिंक उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं मालूम है लोगों को
0: जी।
1: फिजियोथेरेपिस्ट का पॉपुलेशन भी वो जगहों पे कम होगा
0: जी, तो
1: सब इधर ही बड़े शहरों में भरे पड़े हैं।
0: ऐसे शहरों में जहां लोग हमें सुन रहे हैं, छोटे छोटे शहर, लोगों को छोटी छोटी फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, और जो जिनको फिजियोथेरेपी कहा जाता है और जो इस बात को सीरियसली नहीं लेते हैं, एज एन एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट आप क्या सलाह देना चाहेंगी जो बहुत ही कॉमन लोग हैं, छोटे शहरों के लोग हैं और बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, डॉक्टर ने कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, ये प्रोटोकॉल आपको करना है।
1: मैं उसको सलाह देंगी अगर उनके पास कोई हो उधर तो ही तो फायदा है, बिकॉज नहीं तो, और आप बोल रहे हैं छोटी छोटी चीजें, वो है एक छोटी चीजों की थोड़ी बातें कर दी अभी, बट बड़ी चीजें भी होती है, लाइक पैरालिसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स
0: जी,
1: हेमिप्लीजिया,
0: बल्कि सर्जरी के बाद भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है।
1: हाँ, बहुत
0: सीरियस मैटर है,
1: बहुत है, अगर टाइमली फिजियोथेरेपी नहीं किया तो फिर वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिफॉर्मिटीज आती हैं पैरों में या हाथों में, तो फिजियोथेरेपी एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं लोगों को कुछ सलाह दे नहीं सकती अगर उनके पास नहीं है फिजियोथेरेपिस्ट, बट अगर है तो सच में लाइफ बदल जाती है, बिकॉज ये जो सर्जरीज हैं वो काफी नहीं है, सर्जरी इज इंपॉर्टेंट समटाइम्स, बट उसके बाद वाला फिजियोथेरेपी नहीं किया तो फंक्शन नहीं आता है, मतलब जो हमें चाहिए वो एंड रिजल्ट फंक्शन वो ही नहीं।

0: आता है.
1: इसीलिए इसको रिहैबिलिटेशन कहते हैं.
0: यस इट इज रिहैबिलिटेशन एंड इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इट शुड बी ट्राइड कि हर छोटी जगह पे भी फिजियोथेरेपिस्ट हो, और क्योंकि कई चीजें छोटी है समझो चल भी जाएंगी नहीं करेंगे तो, बट कई चीजें ऐसी हैं कि आपका लाइफ ही बदल जाएगा. अगर नहीं किया तो खराब हो जाएगा, किया तो मच बेटर हो जाएगा.
1: जी, बुजुर्गों में फिजियोथेरेपी yes. कितनी डिफिकल्ट होती है?
0: बहुत जरूरी है, बहुत बहुत बहुत जरूरी है. एज के वजह से जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं मेजॉरिटी ऑफ देम आर बिकॉज ऑफ मसल वीकनेस.
1: जी,
0: मसल इज प्रोग्राम्ड. जैसे मैंने बोला ब्रेन हॉर्मोन्स ये सब डिसाइड करते हैं कि बॉडी फंक्शनिंग कैसे करेगी. अप टू 30 इयर्स बॉडी इज ग्रोइंग, मतलब आई विल से टिल 20 इट इज ग्रोइंग. 20 टू 40 थोड़ा मेंटेन होता है स्टेटस को, और 40 के पास थोड़ा सा डिटेरियरेशन चालू होता है. ये हमारा सेट प्रोग्राम्ड है, बॉडी प्रोग्राम्ड है इस चीज के लिए. मसल लॉस बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब अगर हम इनएक्टिव हैं तो 30 के बाद ही मसल लॉस चालू हो जाता है. पहले 5-5% पर डेकेड, देन 10-15-20%, 70 और 80 एज के बीच में तो ड्रास्टिकली कम हो जाता है, 20-30% का लॉस होता है. तो वीकनेस बढ़ जाता है, उसके बाद स्टेयर्स अगर आपको चढ़ने हैं तो डिफिकल्टी होती है ऊपर चढ़ने में, कुर्सी से कभी उठने में तकलीफ होती है, तो सोशल एक्टिविटी कम हो जाती है, बोन लॉस उसके वजह से होता है, एज रिलेटेड अदर बीमारियां आती है बिकॉज एक्टिविटी कम हो जाती है हार्ट के. तो मसल मेंटेन करने के लिए एक प्रिवेंटिव प्रोग्राम जीरियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए बहुत ही जरूरी है.
1: जी,
0: पेन तो होता ही है, पेन मैनेजमेंट के लिए भी लगता है, बट मेनली मसल लॉस इज द बिगिनिंग ऑफ एवरी प्रॉब्लम ओल्ड पीपल हैव, इंक्लूडिंग फॉलिंग एंड हैविंग फ्रैक्चर्स.
1: वो तो बहुत
0: फ्रैक्चर की डेंजर्स ये हैं कि गिर के आपका हेड इंजरी और हिप इंजरी, दीज आर द टू डेंजरस थिंग्स विच कैन हैपन टू ओल्डर पीपल दैट विल मेक देम बेड रिडन और ऑल्सो कैन बी फेटल. सो वो सब मसल पे डिपेंडेंट है, क्योंकि बैलेंस और हम जो भी बोलते हैं वो सब मसल से चालू होता है.
1: जी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया, और मुझे ये लगता है कि बुजुर्गों की इंजरी और उनके पेन मैनेजमेंट और जो आपने कहा कि प्रिवेंटिव जो उपाय
0: बहुत
1: है,
0: ही बहुत जरूरी है. और वो प्रिवेंशन जल्दी ही चालू होना चाहिए, बट इट्स नेवर टू लेट.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: मैं बोल रही थी हमारे पास बहुत सारे बुजुर्ग आते हैं और हम होम विजिट्स भी उनको प्रोवाइड करते हैं. एक तो 95 ईयर ओल्ड थे जो 80 के एज से हमारे पास एक्सरसाइज कर रहे थे रेगुलरली, 2 or 3 times a week used to come to clinic, and 95 he passed away. One day before that also he had requested home visit for exercise.
1: क्या बात है, इतना
0: so some people are really. और पंडित जसराज जी आते थे हमारे पास.
1: वाह वाह.
0: हाँ, और हमारे क्लिनिक में गाना गाते थे.
1: क्या बात.
0: ट्रेडमिल पे चलते चलते.
1: क्या क्या बात है, क्या बात है. जिस स्टूडियो में यहाँ हम बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ भी हम,
0: वो भी 10 साल आए हमारे पास जस्ट एक्सरसाइज के लिए, कार्डियक रिहैब, बट ही वेंट ऑन टू एक्सरसाइज.
1: गजब, क्या बात है. चलते चलते एक गाना सुन लिया जाए, उसके बाद आगे की बात करते हैं. आपने चूंकि पंडित जसराज का जिक्र किया, तो उन्होंने एक बहुत ही शानदार गाना गाया था, 1920 नाम की एक फिल्म है, उसमें वादा तुमसे है वादा, वो गाना सुनते हैं थोड़ा सा.
0: यस.

0: डॉक्टर, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी सारी बातें आपने की हैं, चलते चलते एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आम आदमी से आप वो कौन सी बात कहना चाहेंगी जो इस पल सबसे ज्यादा जरूरी है?
1: एक्सरसाइज करते रहो
0: जी,
1: एब्सोल्युटली करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो। जब भी पेन हो
0: जी
1: तो किसी को कंसल्ट करो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली सॉल्विंग द प्रॉब्लम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत लगे तो जरूर जाना चाहिए, बिकॉज एट अ वेरी सिंपल लेवल मेनी मेनी प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व।
0: बहुत जरूरी सूत्र आपने दिए हैं कि ये तमाम चीजें माने तो बहुत सारी
1: एक्सरसाइज एंड डाइट इज, एंड आई ऑलवेज टेल पीपल दैट एक्सरसाइज एक्चुअली मेडिसिन से भी डिफिकल्ट है प्रिस्क्राइब करना। हर एक के लिए इंडिविजुअलाइज होना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन में ना एक आता है, उसके पीछे पर्ची आती है जहां पे लिखा रहता है डोसेज, एज रिलेटेड, वेट रिलेटेड, ये वो। एक्सरसाइज में बहुत सारा, हर दिन भी बदलना पड़े तो बदलना चाहिए। अगर आप टायर्ड हो तो नहीं करना चाहिए ज्यादा, थोड़ा हल्का वॉक

0: करो, जिस
1: जी
0: दिन एनर्जेटिक लगता है उस दिन ज्यादा करो, क्योंकि उसका रिकवरी उस तरह से अच्छा होगा।
1: बिल्कुल,
0: सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडवाइस लेके एक्सरसाइज करो।
1: एडवाइस लेके एक्सरसाइज करो, ये आज के इस प्रोग्राम की बॉटम लाइन है।
0: यस
1: डॉक्टर हर्षदा, बहुत बहुत शुक्रिया कि विविध भारती के स्टूडियो

खान की बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग काजल भदरगे, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के इस कार्यक्रम में गुलजार को जन्मदिन की बधाइयां।

0: सामने टाल के नुक्कड़ पे बटेरों के कसीदे, गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में वो दाद वो वाहवा, चंद दरवाजों पर लटके हुए बोसीदा से कुछ टाट के पर्दे, एक बकरी के ममियाने की आवाज और धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे, ऐसे दीवारों से मुंह जोड़ के चलते हैं यहां चूड़ी वालान के कटरे की बड़ी बी जैसे, अपनी बुझती हुई आंखों से दरवाजे टटोले। इसी बेनूर अंधेरी सी गली कासिम से एक तरतीब चरागों की शुरू होती है, एक कुरान सुखन का सफा खुलता है, असद अल्लाह खान गालिब का पता मिलता है।
1: आप सुन रहे हैं रंग तरंग गुलजार स्पेशल।

0: भूपिंदर की आवाज थी, गुलजार के बोल थे, खुद भूपिंदर की मौसिकी।
1: देर तक बैठे हुए दोनों ने बारिश देखी। वो दिखाती थी मुझे बिजली के तारों पर लटकती हुई बूंदें, जो ताकुब में थी एक दूसरे के, और एक दूसरे को छूते ही तारों से टपक जाती थी। मुझको ये फिक्र कि बिजली का करंट छू गया नंगी किसी तार से तो आग के लग जाने का बायस होगा। उसने कागज की कई कश्तियां पानी में उतारी और ये कह के बहा दी कि समंदर में मिलेंगे। मुझको ये फिक्र कि इस बार भी सैलाब का पानी कूद के उतरेगा कोहसार से, जब तोड़ के ले जाएगा ये कच्चे किनारे। ओक में भर के वो बरसात का पानी अध भरी झीलों को तरसाती रही। वो बहुत छोटी थी, कमसन थी, वो मासूम बहुत थी। आबिशारों के तरन्नुम पे कदम रखती थी और गूंजती थी, और मैं उम्र के इफकार में गुम तजुर्बे हमराह लिए साथ ही साथ में बहता हुआ चलता हुआ बहता गया।

दर्द कुछ देर ही रहता है, बहुत देर नहीं। जिस तरह शाख से तोड़े हुए एक पत्ते का रंग मांद पड़ जाता है कुछ रोज अलग शाख से रहकर, शाख से टूट के ये दर्द जिएगा कब तक? खत्म हो जाएगी जब इसकी रसद टिमटिमाएगा जरा देर को बुझते बुझते, और फिर लंबी सी एक सांस धुएं की लेकर खत्म हो जाएगा ये दर्द भी, बुझ जाएगा। दर्द कुछ देर ही रहता है, बहुत देर।

आमद की आहट और न जाने की टोह मिलती है, कब आते हो कब जाते हो। इमली का ये पेड़ हवा में हिलता है तो ईंटों की दीवार पे परछाई का छींटा पड़ता है। इमली का ये पेड़ हवा में हिलता है तो ईंटों की दीवार पे परछाई का छींटा पड़ता है और जज्ब हो जाता है जैसे सूखी मिट्टी पर कोई पानी के कतरे फेंक गया हो। धीरे धीरे आंगन में फिर धूप सिसकती रहती है, कब आते हो कब जाते हो।

तक इंतजार करती है। कोहरे में खड़ा हुआ पुल तो नजर आ रहा था, लेकिन उसके सिरे नजर नहीं आते थे। कभी लगता उसके दोनों सिरे एक ही तरफ हैं, और कभी लगता इस पुल का कोई सिरा नहीं है। शाम बुझ रही थी और आने वले की कोई आड़ नहीं थी कहीं। नीचे बहता दरिया कह रहा था, आओ मेरी आगोश में आ जाओ, मैं तुम्हारी बदनामी के सारे दाग छुपा लूंगा। मट्टी के शरीर से बहुत खेल चुके, इस खिलौने के रंग अब उतरने लगे हैं।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं रंग तरंग।
1: उस रात बहुत सन्नाटा था, उस रात बहुत खामोशी थी। साया था कोई ना सरगोशी, आहट थी ना जुम्बिश थी कोई। हाँ देर तलक उस रात, मगर बस एक मकान की दूसरी मंजिल पर एक रोशन खिड़की और एक चांद फलक पर एक दूजे को टिकटिकी बांधे तकते रहे।

कुछ ऐसी एहतियात से निकला है चांद फिर, जैसे अंधेरी रात में खिड़की पे आओ तुम। क्या चांद और जमीन में भी कोई खिंचाव है?

सितारे चांद की कश्ती में रात लाती है, शहर के आने से पहले ही बिक भी जाते हैं। बहुत ही अच्छा है व्यापार इन दिनों सबका। बस एक पानी की आवाज लपलपाती है कि घाट छोड़ के मांझी तमाम जा भी चुके। चलो ना चांद की कश्ती में झील पार करें।

तरकीब सिखा कोई यार जुलाहे। अक्सर तुझको देखा है कि ताना बुनते जब कोई तागा टूट गया या खत्म हुआ, फिर से बांध के और सिरा कोई जोड़ के उसमें आगे बुनने लगते हो। तेरे इस ताने में लेकिन एक भी गांठ गिरह बुंदर की देख नहीं सकता है कोई। मैंने तो एक बार बुना था एक ही रिश्ता, लेकिन उसकी सारी गिरहें साफ नजर आती हैं मेरे यार जुलाहे। मुझको की तरकीब सिखा कोई यार जुलाहे।

0: विविध भारती पर रंग तरंग गुलजार स्पेशल।
1: मैं रोजगार के सिलसिले में कभी कभी उसके शहर जाता हूं तो गुजरता हूं उस गली से, वो नीम तारीख सी गली और उसी के नुक्कड़ पे ऊंगता सा पुराना खंभा, उसी के नीचे तमाम शब इंतजार करके मैं छोड़ आया था शहर उसका। बहुत ही खस्ता सी रोशनी की छड़ी को टेके वो खंभा भी वहीं खड़ा है। फुतूर है ये, मगर मैं खंभे के पास जाकर नजर बचा के मोहल्ले वालों की पूछ लेता हूं, आज भी ये वो मेरे जाने के बाद भी आई तो नहीं थी, वो आई थी क्या?
0: विशाल भारद्वाज की आवाज़।

रंग तरंग कार्यक्रम आज गुलजार स्पेशल है। आज है गुलजार साहब का जन्मदिन और अब देखिए ना वक्त कैसे खत्म हो गया और आखिरी पेशकश की बारी आ गई। जेके बनर्जी की आवाज।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। बारहवां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडप में चल रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता और विशेषज्ञ पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य आम सहमति बनाना और पर्यावरण के क्षेत्र को मजबूत करना है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना उत्कृष्ट निर्णय है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्नपत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्नपत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने के आरोप है। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिवशंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्रनाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाशी अभियान शुरू किया। रियासी के सदिनी जंगलों और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाशी अभियान चलाया गया। सभी इलाकों में तलाशी अभियान जारी है। नई दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज शाम लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। उन्नति हुड्डा पहले दौर में म्यांमार की थेत हतार थुजार के साथ मुकाबला करेंगी। मिक्स डबल्स के पहले दौर में भारत के रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे को कनाडा की जोड़ी जोनाथन लाई और क्रिस्टन लाई से हार का सामना करना पड़ा। इस बीच एक अन्य मिक्स डबल्स मुकाबले में

0: आशीष सूर्या और अमृता प्रथमेश तुर्की के एमरे सोनमेज और यासेमेन बेक्ता से खेलेंगे। घरेलू शेयर बाजार सूचकांक आज करीब आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 366 अंक गिरकर 77,362 पर और निफ्टी 87 अंक की गिरावट के साथ 24,201 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे यादों की महफिल।

यादों की महफिल। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार।

बसेरा फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज आर डी बर्मन की तर्ज। आशा भोसले, आर डी बर्मन, गुलजार, इजाजत।

0: अशोक भोसले की आवाज आरडी बर्मन की तर्ज है। फिल्म का नाम है नमकीन।
1: एक मूड, एक कैफियत गीत का चेहरा होता है। कुछ सही से लफ्ज जड़ दो, मौजू से धुन की लकीरें खींच दो, तो नगमा सांस लेने लगता है, जिंदा हो जाता है। बस इतनी सी जान होती है गाने की, एक लम्हे के जितनी। हां, कुछ लम्हे बरसों जिंदा रहते हैं। गीत बूढ़े नहीं होते, उनके चेहरों पर झुरियां नहीं गिरती, वो पलते रहते हैं, चलते रहते हैं। सुनने वालों की उम्र बदल जाती है तो कहते हैं, हां वो उस पहाड़ का टीला जब बादलों से ढक जाता था तो एक आवाज सुनाई दिया करती थी,

दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, बता दो उस वक्त मैं कहां था, बता दो उस वक्त तू कहां थी।

तुम्हारी लौ को पकड़ के जलने की आरजू में जब अपने ही आप से लिपट के सुलग रहा था, फंसा तो उस वक्त मैं कहां था, फंसा तो उस वक्त तू कहां थी।

पढ़ना वो चिट्ठियाँ, आँखों के पानी में रखना वो चिट्ठियाँ, शहर की नगर

फिल्म का नाम था हू तू तू। गुलजार भूपेन हजारिका, लता मंगेशकर फिल्म रूदाली,

0: बारहवां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडप में चल रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता और विशेषज्ञ पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य आम सहमति बनाना और पर्यावरण के क्षेत्र को मजबूत करना है। श्री यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे सहयोग को और मजबूत करने तथा पर्यावरण कार्य समूह के लिए सकारात्मक परिणामों हेतु सार्थक तरीके से जुड़ने को उत्सुक हैं। सेमिकॉन इंडिया 2026 का पांचवा संस्करण अगले महीने की 17 तारीख से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 3 दिन के सम्मेलन में 40 से अधिक देशों की 500 से अधिक प्रदर्शक और करीब 240 कंपनियां हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रदर्शनी में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी और नीदरलैंड्स के 6 अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन होंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है।
1: पूरा झूठ फैलाया देश भर में है कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजना एक उत्कृष्ट निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुघ को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्नपत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाश अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिव शंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्नपत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने के आरोप है। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिव शंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाश अभियान शुरू किया। रियासी के सदनी जंगलों और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाशी अभियान चलाया गया। मध्य प्रदेश के भिंड में ग्वालियर भिंड इटावा राजमार्ग पर कल देर रात वैन और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई और 23 घायल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर कारणों की जांच शुरू कर दी है। भारत और श्रीलंका के बीच गॉल्फ में खेले जा रहे पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 5 विकेट पर 123 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को पहली पारी में 284 रन पर ऑल आउट कर दिया। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में महिला सिंगल्स के पहले दौर में भारत की उन्नति हुडा और म्यांमा की थेत हतारथुजार के बीच मुकाबला जारी है। भारतीय खिलाड़ी ने कुछ देर पहले ही पहला गेम 22-20 से जीत लिया है। लक्ष्य सेन आज शाम पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। मिक्स डबल्स के पहले दौर में भारत के रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे को कनाडा की जोड़ी जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई से हार का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द होने के बाद सीबीआई जांच की मांग पर अड़े अभ्यर्थी। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 25वें दिन भी छात्रों का आंदोलन जारी। जेएसएससी परीक्षा धांधली मामले में सीआईडी की कार्रवाई तेज। गिरिडीह से मुख्य आरोपी अभय तिवारी के भाई और पत्नी हिरासत में। चतरा से बीएसओ भी गिरफ्त में। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के खिलाफ गुमला पुलिस को बड़ी सफलता। 5 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर रामदेव लोहरा 3 साथियों के साथ गिरफ्तार। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव से रांची समेत पूरे राज्य में मूसलाधार बारिश। चतरा, हजारीबाग और पलामू समेत कई जिलों में भारी वज्रपात और तेज हवाओं की चेतावनी। और बोकारो के कुमार मंगलम स्टेडियम में कल से शुरू होगी दूसरी एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार करेंगे भव्य उद्घाटन। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में परीक्षाओं को रद्द किए जाने की सरकारी घोषणा के बाद भी छात्र आंदोलन आज 25वें दिन भी जारी है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के बैनर तले छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और 2 आंदोलनकारी अब भी आमरण अनशन पर बैठे हैं। छात्र नेताओं का कहना है कि जब तक सीबीआई को जांच नहीं सौंपी जाती तब तक उनका आंदोलन समाप्त नहीं होगा।
1: छात्र जो सो तब तक अब यहाँ जारी रहेंगे जब तक माननीय मुख्यमंत्री सीबीआई जांच ना करा दे। जहाँ रद्द किए उसका नोटिफिकेशन निकलेगा, प्रेस विज्ञापित निकलेगा और हम लोग उसमें अध्ययन करेंगे कि आप इन तमाम एग्जाम को किस आधार पर रद्द किए हैं, बृहद पैमाने में पेपर लीक हुआ है। इन तमाम चीजों को सरकार को मानना ही पड़ेगा, तभी जा करके ये रद्द सफल होगा।
0: इस बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने भी छात्रों की सीबीआई जांच की मांग का पुरजोर समर्थन किया है।
2: छात्रों के दबाव के आगे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को उनकी मांगों को मानने का काम किया है और टीटीपीएल के द्वारा जो परीक्षाएं ली गई हैं उसको रद्द करने का काम किया गया है। सीबीआई जांच करा करके जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं उन पर कठिन से कठिन कार्रवाई हो ताकि छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके। मैं छात्रों के आंदोलन के साथ खड़ा हूँ, पूरी पार्टी खड़ी है।
0: इधर रांची सदर अस्पताल में भर्ती छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो समेत सभी इलाजरत आंदोलनकारियों को आज छुट्टी दी जा सकती है। अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर बिमलेश सिंह ने स्वास्थ्य समीक्षा के बाद बताया कि सभी छात्रों की स्थिति अब पूरी तरह सामान्य और बेहतर है, जिसके चलते उन्हें आज डिस्चार्ज करने की तैयारी की जा रही है। जेएसएससी परीक्षा धांधली मामले में सीआईडी और झारखंड पुलिस की कार्रवाई लगातार तेज हो रही है। गिरिडीह पुलिस की विशेष टीम ने देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी के भाई अक्षय तिवारी और उनकी पत्नी को हिरासत में लेकर अलग अलग थानों में पूछताछ शुरू कर दी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अभय तिवारी ने पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा में व्यापक गड़बड़ी की बात कबूल की है, जिसके बाद पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। उधर चतरा पुलिस ने पत्थलगढ़ा के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी तेज नारायण पंडित को हिरासत में लिया है। गुमला पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। डुमरी थाना क्षेत्र में चलाए गए एक विशेष अभियान में संगठन के सब जोनल कमांडर रामदेव लोहरा सहित 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक हारिस बेंजामा ने बताया कि 5 लाख रुपए के इनामी उग्रवादी रामदेव और एरिया कमांडर अरविंद नायक के पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं।
3: जंगल में ऑपरेशन को चलाया गया, सघन छापेमारी की गई, उसमें कुछ व्यक्ति हम लोगों को जेजेएमपी का सब जोनल कमांडर है। 3 व्यक्ति और पकड़े जाते हैं, 1 व्यक्ति एरिया कमांडर है, बाकी 2 लोग जो हैं वो दस्ता के सदस्य हैं। रिकवरीज जो उनके पास से होती है, AK-56 रिकवर हुआ है, 1 SLR, 1 राइफल, 1 पिस्टल और 1 कट्टा रिकवर, 146 लाइव राउंड अलग अलग वेपन के रिकवर हुए हैं।
0: हजारीबाग के पद्मा थाना क्षेत्र के नावाडी और कुट्टी पीसी गांवों में पुलिस ने छापेमारी कर 2 किराना दुकानों से 70 बोतल अवैध बियर बरामद की है। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बरही SDPO के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने मौके से अवैध शराब बेच रहे 2 दुकानदारों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार xhandle@airnewsalerts

0: और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए धनबाद पुलिस लाइन से आज एक विशेष जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत पुलिस टीम जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आम लोगों को डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के उपाय सिखाएगी। उपायुक्त आदित्य रंजन ने साइबर सुरक्षा अभियान की शुरुआत पर कहा कि साइबर अपराध की रोकथाम के लिए जन जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण औजार है।
1: सभी विद्यालय के माध्यम से सभी बच्चों को, पेरेंट्स को, उनके परिवार को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। धनबाद पुलिस की ये बहुत अच्छी पहल है। कॉमिक बुक भी है जो सभी विद्यालयों में दिया जा रहा है। तो हर विद्यालय में एक एम्बेसडर के तौर पे एक सीनियर बच्चे को नामित करने की कोशिश कर रहे हैं। साइबर सेफ्टी मित्र के तौर पर काम करेंगे ताकि कोई भी साइबर क्राइम का शिकार नहीं हो।
0: घरेलू शेयर बाजार सूचकांक आज लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 366 अंक गिरकर 77,362 पर और निफ्टी 87 अंक की गिरावट के साथ 24,201 पर था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,45,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,46,000 रुपए प्रति किलो है। और अब मौसम का हाल। बंगाल की खाड़ी में उठे गहरे दबाव यानी डिप्रेशन के कारण झारखंड और आसपास के राज्यों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। राजधानी रांची, जमशेदपुर और पलामू समेत राज्य के बड़े हिस्से में रात से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। एक रिपोर्ट।
2: बंगाल की खाड़ी से उठा गहरा दबाव आज सुबह रांची से महज 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में केंद्रित हो गया है। इसके प्रभाव से झारखंड के उत्तर मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, पलामू और गढ़वा जिलों के लिए भारी से अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में ये डिप्रेशन पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बिहार की ओर आगे बढ़ेगा, जिसका असर आगामी 2 दिनों तक झारखंड में रहने की उम्मीद है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: बोकारो के कुमार मंगलम स्टेडियम में कल से दूसरी एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता शुरू हो रही है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार इसका उद्घाटन करेंगे। बोकारो जिला तीरंदाजी संघ के अनुसार प्रतियोगिता में सीनियर, जूनियर और सब जूनियर वर्ग के 900 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका कुमारी और अतनु दास भी अभ्यास के लिए बोकारो पहुंच चुके हैं। दीपिका कुमारी ने युवा खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी है।
3: जो आर्ची टूर्नामेंट, एक एनआईटी टूर्नामेंट हो रहा है यहाँ पे और बोकारो में पहली बार हो रहा है कि आगे ऐसे और टूर्नामेंट्स होते रहे बोकारो में भी, क्योंकि जितने भी यंगस्टर है वो आर्ची में और भी आएंगे और हमारी फैमिली को यही बोलना चाहती हूँ कि पूरे रेकमेंडेशन के साथ खेले। मेरे पास इंटरनेशनल प्लेयर है जिनको काफी एक्सपीरियंस हो गया है और वो कंटिन्यू नेशनल टीम में है। उम्मीद करती हूँ कि उनसे वो एक्सपीरियंस लेंगे।
0: राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हजारीबाग में आगामी 29 से 31 अगस्त तक उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडलीय नॉकआउट टूर्नामेंट का भव्य आयोजन होने जा रहा है। हजारीबाग ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हर्ष अजमेरा के अनुसार इस 3 दिवसीय खेल महाकुंभ में 7 जिलों के 1,288 खिलाड़ी 6 विभिन्न खेल स्पर्धाओं में अपना दमखम दिखाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द होने के बाद सीबीआई जांच की मांग पर अड़े अभ्यर्थी। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 25वें दिन भी छात्रों का आंदोलन जारी। जेएसएससी परीक्षा धांधली मामले में सीआईडी की कार्रवाई तेज। गिरिडीह से मुख्य आरोपी अभय तिवारी के भाई और पत्नी हिरासत में। चतरा में बीएसओ भी गिरफ्त में। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के खिलाफ गुमला पुलिस को बड़ी सफलता। 5 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर रामदेव लोहरा 3 साथियों के साथ गिरफ्तार। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव से रांची समेत पूरे राज्य में मूसलाधार बारिश। चतरा, हजारीबाग और पलामू समेत कई जिलों में भारी वज्रपात और तेज हवाओं की चेतावनी। और बोकारो के कुमार मंगलम स्टेडियम में कल से शुरू होगी दूसरी एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार करेंगे भव्य उद्घाटन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जिंदगी गले लगाले वाली पुकार, गुलजार साहब का ये गाना आज के इस कार्यक्रम में यूं लग रहा है कि कितने गानों को शामिल करें और किन गानों को छोड़ दें। आज के इस कार्यक्रम में हमने क्या लिखा, सलाम उस शख्स को जिसने हर एक गम को गले लगाया है, सलाम उस शख्स को जिसने भराई बूंदों को बरस जाने दिया, फिर भी उसके लिए जिंदगी खूबसूरत है और वो कहता है जिंदगी की लौ ऊंची कर चलो। कितनी पॉजिटिविटी, कितना हौसला। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं। एक श्रोता कहते हैं कि जैसे ही गुलजार हमें मिलेंगे हम कहेंगे हमारी उंगली पकड़कर कुछ गीत हमें भी सिखा दो ऐसे प्यारे प्यारे से। इसके अलावा एक श्रोता लिख रही हैं सांस लेना भी क्या आदत है, जिए जाने की क्या रवायत है। इसके अलावा एक और श्रोता है, जिंदगी हर चीज का जवाब नहीं देती, सवाल करती रहती है, इसी में जिंदगी का विकास है, जवाब का खोज, जवाब की खोज जिंदगी है। तमाम श्रोता जो हैं वो अपनी बातें कह रहे हैं। एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि मेरी पसंदीदा तीन गाने हैं तो उसे नाराज नहीं, दिल ढूंढता है और आने वाला पल। एक और श्रोता है उनके तीन पसंदीदा गाने हैं जिंदगी गले लगा ले, एक था बचपन और तुम आ गए हो नूर आ गया है। ऐसे तमाम श्रोताओं की बातें लगातार हम तक चली आ रही हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि गुलजार के भीतर एक छोटा सा बच्चा छुपा हुआ है, इसीलिए तो वो कायदा तोड़ के सोचो वाली बात लिख सकते हैं। क्या बात है। और इसके अलावा और भी कई श्रोता हैं, मुसाफिर हूं यारों तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं और तुझसे नाराज नहीं, ये उनकी पसंदीदा नज़में हैं, ये एक श्रोता ने लिखा है। और उसके अलावा एक और श्रोता लिख रहे हैं, कसैली रात के हाथों पर रखती चांद की मिश्री, ये दिन रूठा हुआ था धूल में लिपटा हुआ, कब से तेरे आंचल से चेहरा पोंछ कर बहला लिया है उसको, मैं अपने गले लग गया नाराज सा खुद। बहुत ही प्यारी बात लिखी है। और अब चलिए आगे चलते हैं एक श्रोता के कमेंट के साथ कि पिताजी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे, 8 साल की उम्र में उन्होंने मुझे साइकिल चलाना सिखाया था। अब आ रहा है अगला गाना जो जिसमें बेलें और आयतें वाली बात कही गई है। बताइएगा ये फिल्म किस बरस आई थी और इसके मुख्य सितारे कौन थे।
1: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
2: क्यों कर रहे हो, कहां आ पाऊंगी मैं दिन में।
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: 9 बरस लंबी थी ना।

अंधी फिल्म का ये गाना आपने सुना, क्या आप बता सकते हैं कि सुचित्रा सेन ने और कौन कौन सी हिंदी फिल्मों में काम किया था? अब जवाब तो आ ही गया था आप सभी का, संजीव कुमार और सुचित्रा सेन, और इसके अलावा कई श्रोताओं की बातें आई हैं, जैसे त्रिवेणी गुलजार साहब जो तीन लाइनों की कविताएं लिखा करते थे, उसमें से कुछ श्रोताओं ने त्रिवेणी की कविता लिखी है। अब एक श्रोता ने ऐसी कविता लिखी है जो धूम्रपान का जिक्र जिसमें आता है, और हम उसे अभी यहां नहीं पढ़ रहे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि गुलजार साहब जिंदगी में बेमिसाल कामयाबी और शोहरत मिलने के बावजूद उनके पैर जमीं पर ही टिके हैं, इसलिए वो हमें अपने से लगते हैं। जिंदगी तुझे मैंने हर मोड़ से गुजरते हुए देखा, ये बात लिखी है हमारे एक और श्रोता ने। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने कुछ अपनी बातें लिखी हैं, और गुलजार साहब ने जिंदगी के हर रंग को छुआ है, उन्होंने कभी अपनी नज्मों से कभी अपने गीतों से कुदरत के दिए हर रंग को उन्होंने इस तरह से अपनी कलम से कागज पर उतारा है जो हर किसी को अपना और दिल के करीब लगता है। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं गुलजार संजीव कुमार और आरडी बर्मन बेमिसाल जोड़ी। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं एक किस्सा कि गुलजार आरडी बर्मन के घर पहुंचे तो उन्हें दिखा कि पंचम दुर्गा पूजा के लिए कुछ धुनें बना रहे हैं। गुलजार वहीं बैठ गए और धुनों को सुनने के बीच उन्हें एक धुन बहुत ज्यादा पसंद आई, और उसके अलावा उस धुन को सुनने के बाद उन्होंने तुरंत पंचम से कहा कि इस धुन का इस्तेमाल वो अपनी एक फिल्म के गाने के लिए करना चाहते हैं, और वो जो गाना है वही है तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। एक और कठिन सवाल पूछते हैं कि ये जो तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, ये जो किस्सा हमारे एक श्रोता ने लिखा है, वो बांग्ला गाना कौन सा था जिस पर ये गाना आधारित था? कठिन और आसान दोनों ही, क्योंकि

जवाब पता हो तो आसान, नहीं पता हो तो कठिन हो जाता है सवाल। सुचित्रा सेन ने इसके अलावा कौन सी और हिंदी फिल्मों में काम किया था, यह बताइए। और इसके अलावा यह भी कि गुलजार साहब को पहला फिल्म फेयर अवार्ड किस फिल्म के लिए और किस काम के लिए मिला था, ये भी बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शहर को छोड़कर बड़े शहर का रुख किया है आपने रोजगार या पढ़ाई के सिलसिले में? किस शहर को छोड़ाए हम, किन गलियों को छोड़ाए हम?

क्या शानदार गाना। और हमने आपसे पूछा था वो कौन सी गलियां, वो कौन सा शहर छोड़ आए आप, और उसकी याद सताती है। एक श्रोता का जवाब आया है, जेते जेते पोथो होले तेरी, ये बांग्ला गीत था जिस पर तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं ये गाना बना था। जेते जेते पोथो होले तेरी, ये गाना पंचम ने खुद गाया है। इसके अलावा एक और श्रोता का जवाब, बंबई का बाबू, देवदास, ममता, आंधी, चंपाकली, ये हैं सुचित्रा सेन की हिंदी फिल्में। क्या बात है, विविध भारती परिवार की जय हो। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि माचिस का गाना सचमुच दिल छू लेने वाला है। मैं सीहोर की गलियों को छोड़कर आया हूं और आज भी याद करता हूं पढ़ाई वाले दिन। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने सुचित्रा सेन की एक फिल्म का नाम बंबई का बाबू लिखा है। एक और श्रोता जिन्होंने कहा है कि गौरी प्रसन्न मजूमदार का लिखा हुआ था, जेते जेते पोथो होले देरी, क्या बात है, सुंदर, अच्छी बात, ये बढ़िया बात। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती है कि गुलजार अपनी कविता और गानों में चांद का प्रयोग बार बार क्यों करते हैं। शायद इसलिए कि गुलजार के लिए चांद सिर्फ आसमान में दिखाई देने वाली चीज नहीं बल्कि पूरी काव्य दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत प्रतीक है। शायद इसीलिए गुलजार ने मजाक में कहा था, लगता है चांद पर मेरा कॉपीराइट है। गुलजार साहब चांद को बहुरूपिया भी कहते हैं, कितनी प्यारी और महीन और शानदार बात है। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि गुलजार साहब को पहला फिल्मफेयर अवार्ड 1971

1971 में मिला था आनंद फिल्म के लिए बेस्ट डायलॉग का अवार्ड। तो बताइए आनंद फिल्म के कौन कौन से गाने और कौन कौन से संवाद हैं जो आपके दिल में छप गए हैं, आपके दिल में महकते हैं, चमकते हैं। एक और श्रोता ग्वालियर छोड़ाए छोड़ाए हम वो गलियां, एक और श्रोता भोपाल छोड़ाए छोड़ा है हम वो गलियां, एक और श्रोता राजपीपला से लंबा छोड़ाए और छोड़ाए हम वो गलियां। कितने श्रोता हैं जिन्होंने अपने अपने शहरों को छोड़ा और अपनी जिंदगी बनाने के लिए, अपनी जिंदगी की तलाश में दूसरे शहरों की तरफ निकल आए हैं। तो ये तमाम बातें, लेकिन अब ये भी तो बताइए कि गुलजार साहब को एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड किस गाने के लिए मिला। तब तक जरा गूंज रही है एक बहुत ही प्यारे गायक की आवाज, उसका नाम भी आपको बताना है। किसकी आवाज में है ये गाना, यही आपको है बताना।

गुलजार साहब को ऑस्कर और ग्रैमी पुरस्कार किस गाने के लिए मिला ये भी बताइएगा। और ये आवाज किस बेमिसाल गायक की है। सुरीला सफर गुलजार स्पेशल विविध भारती

0: बहुत बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आ गए कि यह अनूप घोषाल की आवाज है। एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि गुलजार साहब ने भगवान बुद्ध की कई मूर्तियों का कलेक्शन कर रखा है। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि जब हम समझ नहीं पाते, खुश हों, निराश हों या हैरान, कई बार हम दो राहे पर खड़े होते हैं, समझ नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत। जिंदगी से हम चाहते कुछ और हैं और होता कुछ और है, तभी मन खुद से सवाल करता है कि हमने जिंदगी से ये तो नहीं चाहा था। गुलजार एक बेजोड़ गीतकार हैं, वो जो शब्द रचते हैं वो सिर्फ उनके नहीं होते, हमारे और आपके होते हैं। 1983 में आई फिल्म मासूम का ये गाना दिल के करीब है। इसके अलावा आनंद का एक डायलॉग जो बहुत ही मशहूर हुआ वो है, बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, ये भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। और इसके अलावा एक श्रोता है जो भागलपुर छोड़ाए हम वो गलियां, एक और श्रोता है जो करतारपुर छोड़ाए और कहते हैं कि अपने शहर की बहुत याद आती है। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है, मौत तो एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको डूबती नज्मों में जब नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए जब चांद उफक तक पहुंचे, दिन अभी पानी में हो रात किनारे के करीब, ना अंधेरा हो ना उजाला, ना अभी रात ना दिन, जिस्म जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। ये आनंद फिल्म का संवाद जो बहुत सारे श्रोताओं के दिल के करीब है आपने लिखा, मुझे लगा कि ये जरूर पढ़ना चाहिए। तमाम श्रोताओं की कमेंट, तमाम श्रोताओं का गुलजार के प्रति प्यार जो है वो लगातार नजर आ रहा है। और गुलजार साहब की वो कौन सी कविता है जो आपके दिल के करीब है, कुछ पंक्तियां हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। और जिस गाने के लिए गुलजार साहब को मिला था ग्रैमी अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड, वो था सारी दुनिया में बजा था भारतीय कलाकारी का डंका, जब जय हो को मिला ग्रैमी और जय हो को ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। ये है कमाल।
1: आजा आजा जिंदे शाम आने के तले हैं, आजा जरी वाले नीले आजमाने के तले।
0: एक श्रोता लिखते हैं कि बासु भट्टाचार्य बोलते थे कि गुलजार भोर या सांझ की तरह हैं, जिसका प्रकाश इतना कोमल है कि अपने पीछे कोई परछाई नहीं छोड़ते। और इसके अलावा तमाम श्रोताओं की अपनी बातें हैं, अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि जिंदगी खूबसूरत है।

भाई खट्टा मीठा फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में है और बहुत सारे श्रोताओं के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि शादी के बाद हम अपने मायके की गलियां छोड़ आए, बहुत याद आती है, राजेश रोशन का संगीत था, ये भी हमारे एक श्रोता ने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि किशोर कुमार के जन्मदिन पर मैं खंडवा जाता हूं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि आप भी तो अपना शहर छोड़कर आए हैं, उन्होंने मेरे शहर का नाम भी लिखा है। इसके अलावा एक और भी श्रोता हैं जो कहते हैं कि गुलजार बहुत सहज सरल भाषा में अपने गाने लिखा करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में इतना डूब गई हमारी एक श्रोता कि उनका दूध का भगोना जल गया। बताइए क्या कहें हम, किस फिल्म का है ये गाना जरा बताइए।

किनारा फिल्म का ये गाना एक श्रोता है जिन्हें हेमा मालिनी और जितेंद्र याद आ गए। एक श्रोता है जिन्हें लिखा वक्त की जेब में सुराख बहुत हैं, हंसती खेलती पहचाने गिर जाती हैं, चेहरों के नक्श तो पानी के बुलबुले हैं, एक हवा का झोंका और सब कुछ ओझल, उन्होंने अपने एहसास बयां किए हैं। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं, एक और श्रोता है जो कहते हैं कि थोड़ा ये थोड़ी की जरूरत है, सच में जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है जब किशोर कुमार इस गाने को गाते हैं। नाम गुम जाएगा ये गाना बहुत ही सारे श्रोताओं का पसंदीदा गाना है। कई श्रोता हैं जिन्हें आज का ये कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखिए कि क्या हो रहा है।

0: शादियां मध्यम लगती है।
1: ये फिल्म आपने किस शहर में देखी थी जरा बताएं तो।
0: छोटे छोटे शहरों से खाली बोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले।
1: और इस फिल्म के निर्देशक कौन थे।

बहुत सारे श्रोताओं ने अपने जवाब दिए हैं। बंटी और बबली फिल्म का ये गाना शाद अली निर्देशक। किसी ने फिल्म देखी पटना में, किसी ने देखी भोपाल में, किसी ने देखी इंदौर में। बहुत बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आ गए हैं। गुलजार स्पेशल सुरीला सफर।

दो दूनी चार 1969 में बनी फिल्म बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए, छाओ छम से नीचे कूदी, क्या पंक्ति है, ये सभी श्रोताओं को बहुत ही पसंद है गाना। और गुलजार साहब स्पेशल को आगे बढ़ाते हुए अब अगला गाना।

बहुत सारे श्रोता आनंद फिल्म के इस गाने के लिए बहुत बहुत बहुत प्यार भेज रहे हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब एक ऐसा गाना जिसमें गुलजार साहब के शब्दों की कारीगरी और बाजीगरी नजर आती है और जब मौका आता है तो वो यूं भी लिख देते हैं। किस फिल्म का है ये गाना फटाफट बताना।

0: धन्नो का गुस्सा और धन्नो की आंखों में क्या बात है, गुलजार साहब के बोल, पंचम की आवाज, फिल्म का नाम किताब, गुलजार स्पेशल। ये गाना किस फिल्म का है?
1: सपने में मिलती है वो कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है।
0: 1963 से आज तक जारी है एक सुरीला सफर।

ये वो गाना है जिसके लिए गुलजार साहब को नेशनल अवार्ड मिला था। वैसे उन्होंने कुल कितने नेशनल अवार्ड जीते हैं ये भी बता सकते हैं आप। देखिए ना, सारी वादी भर गई।

गुलजार साहब को जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां। सुरीला सफर कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के साथ तय किया और आज थी गुलजार साहब के गानों की बारिश।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की।

0: झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। ट्रिशा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा म्यांमा की थेत हतार थुजार को हराकर महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने सार्थक चर्चा, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने मानवता को प्राथमिकता देते हुए सतत पर्यावरण के निर्माण की दिशा में नीति, प्रौद्योगिकी और जनभागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने 2005 और 2022 के बीच प्रदूषण उत्सर्जन की तीव्रता में 37% से अधिक की कमी की है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक स्वतंत्र, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण तथा योगदान को बेहद महत्व देता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है।
1: पूरा झूठ फैलाया देश भर में कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना एक उत्कृष्ट निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करने के लिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं कर सकती तो उसे स्वतंत्रता आंदोलन के संरक्षक होने का दावा करना बंद कर देना चाहिए।
2: 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की, जन गण मन राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो कांग्रेस के ही थे ना, तो ये जो नया बदलाव किया गया, कभी ये उम्मीद नहीं थी कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट जो बना 1971 में, किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर। उसमें क्या कहा गया, तिरंगा हो, जनगण मन हो, इसका कोई इंसल्ट करेगा तो 3 साल तक की सजा हो जाए।
0: श्री प्रसाद ने कहा कि कल जब कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गोवा गए थे तब भी पार्टी के कार्यक्रम में वंदे मातरम के केवल 2 ही छंद गाए गए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि डेरगांव दीमापुर पाइपलाइन के चालू होने से नागालैंड अब पूर्वोत्तर गैस ग्रिड और राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़ गया है। श्री पुरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये पूर्वोत्तर को भारत का विकास इंजन बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और इस क्षेत्र को एकीकृत गैस आधारित अर्थव्यवस्था के करीब लाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्नपत्र लीक घोटाले से

0: जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिव शंकरप्पा, एस साहूकार पर प्रश्नपत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप हैं। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिव शंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
1: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। जो हमें जानकारी सीजीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बूझने के बाद कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाश अभियान शुरू किया। रियासी के सदनी जंगलों और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाश अभियान चलाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के प्रमुख साहसिक अभियान अपराजिता परांगला 2026 को रवाना किया। 30 दिन का यह अभियान 250 किलोमीटर लंबे परांगला दर्रे से होकर गुजरेगा, जो हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र से जोड़ता है। तीनों सेनाओं के महिला अधिकारियों के नेतृत्व में 28 बालिका कैडेटों की टीम इसमें हिस्सा ले रही है। श्री सिंह ने कहा कि ऊंचाई वाले इस अभियान में युवा बालिकाओं की भागीदारी देश की महिलाओं के साहस, दृढ़ संकल्प और बढ़ती क्षमता का प्रमाण है। सेमिकॉन इंडिया 2026 का पांचवां संस्करण अगले महीने की 17 तारीख से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 3 दिन के इस सम्मेलन में 40 से अधिक देशों की 500 से अधिक प्रदर्शक और करीब 240 कंपनियां हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रदर्शनी में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी और नीदरलैंड्स के 6 अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन होंगे। केरलम में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर आज से सीधे निर्यात और आयात परिचालन शुरू हो गया है। ये इस क्षेत्र के समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने विझिंजम से यूरोप के लिए रवाना होने वाले पहले जहाज के 2 कंटेनर को रवाना किया।
2: पिछले साल 2 मई को बंदरगाह को देश को समर्पित किए जाने के बाद अब सीधे आयात निर्यात का काम शुरू हो गया है। इन सेवाओं के शुरू होने से यूरोप जाने वाले शिपमेंट के समय में काफी कमी आएगी। पहले विझिंजम से यूरोप पहुंचने में शिपमेंट को लगभग 2 महीने लगते थे, लेकिन अब इसके सिर्फ 28 दिनों में पहुंचने की उम्मीद है। बंदरगाह अधिकारियों के अनुसार फिलहाल ये सुविधा सिर्फ फुल कंटेनर लोड को ही संभालेगी। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा है कि युद्ध की बदलती प्रकृति ने सशस्त्र बलों के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने और एकीकृत करने को अनिवार्य बना दिया है। नई दिल्ली में आज उन्होंने निगरानी और इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स पर भारतीय सैन्य समीक्षा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विशेषकर 2020 के बाद से युद्ध में तीव्र और व्यापक परिवर्तन आया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बढ़ते तनाव के बीच यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने क्षेत्र में पाकिस्तानी बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। पार्टी ने नागरिकों की मौत और घायल होने, मनमानी गिरफ्तारियों, जबरन गुमशुदगी और संचार व्यवस्था बंद किए जाने की खबरों पर गंभीर चिंता जताई। संगठन ने शांतिपूर्ण राजनीतिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों की आवाजाही पर प्रतिबंध और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर भी चिंता व्यक्त की है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों के लिए 3 महीने का मुफ्त रिचार्ज घोषित किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा फर्जी है और वायरल वीडियो एआई द्वारा बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी योजना का समर्थन नहीं किया है। मध्य प्रदेश के भिंड में ग्वालियर भिंड इटावा राजमार्ग पर

0: कल देर रात वैन और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई और 23 घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर कारणों की जांच शुरू कर दी है। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण झारखंड और आसपास के राज्यों में मौसम पूरी तरह बदल गया है। राजधानी रांची, जमशेदपुर और पलामू समेत राज्य के बड़े हिस्से में रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: बंगाल की खाड़ी से उठा गहरा दबाव आज सुबह रांची से महज 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में केंद्रित हो गया है। इसके प्रभाव से झारखंड के उत्तर मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, पलामू और गढ़वा जिलों के लिए भारी से अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में ये डिप्रेशन पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बिहार की ओर आगे बढ़ेगा, जिसका असर आगामी 2 दिनों तक झारखंड में रहने की उम्मीद है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: इस बीच मौसम विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिन में उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर भारत में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, केरल और माही में आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। प्रमुख महिला बैडमिंटन डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद समेत विभिन्न खेलों के 15 अन्य खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी इसाइया अरुमनैया गम को अर्जुन पुरस्कार लाइफटाइम से सम्मानित किया जाएगा। एथलेटिक्स कोच परवीर सिंह, बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव और शूटिंग कोच नेहा नंदकुमार चव्हाण को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं पुणे स्थित आर्मी पैरालंपिक नोड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर वर्ष खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में म्यांमा की थेत हतारथुजार को सीधे सेटों में हराकर भारत की उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। अगले दौर में उनका मुकाबला कनाडा की 13वीं वरीयता प्राप्त मिशेल ली से होगा। इस बीच मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारतीय जोड़ी आशीष सूर्या और अमृता प्रथमेश तथा तुर्की की जोड़ी एमरे सोनमेज और यासेमेन बेक्तास के बीच मैच जारी है। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया है। घरेलू शेयर बाजार के सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 354 अंक गिरकर 77,374 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की गिरावट के साथ 24,206 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सहप्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। ट्रिशा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने सदाबहार नगमे।

0: सन्नाटा फिल्म का गीत हेमंत कुमार की आवाज में था।
1: राही कोई भूला हुआ, तूफानों में खोया हुआ राह पे आ जाता है, ऐसा भी होता है।
0: लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में प्रेम पत्र फिल्म का गाना।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में कशिश फिल्म का गाना, गुलजार के बोल, संगीत कल्याण जैन जी का।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। राज्य में परीक्षाओं को रद्द किए जाने की सरकारी घोषणा के बावजूद छात्र आंदोलन आज 25वें दिन भी जारी है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के बैनर तले छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और दो आंदोलनकारी अब भी आमरण अनशन पर बैठे हैं। छात्र नेताओं का कहना है कि जब तक सीबीआई को जांच नहीं सौंपी जाती तब तक उनका आंदोलन समाप्त नहीं होगा। इस बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने भी छात्रों की सीबीआई जांच की मांग का पुरजोर समर्थन किया है। जेएसएससी परीक्षा धांधली मामले में सीआईडी और झारखंड पुलिस की कार्रवाई लगातार तेज हो रही है। गिरिडीह पुलिस की विशेष टीम ने देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी के भाई अक्षय तिवारी और उनकी पत्नी को हिरासत में लेकर अलग अलग थानों में पूछताछ शुरू कर दी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अभय तिवारी ने पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा में व्यापक गड़बड़ी की बात कबूल की है, जिसके बाद पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। उधर चतरा पुलिस ने पत्थलगड्डा के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी तेज नारायण पंडित को हिरासत में लिया है। साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए धनबाद पुलिस लाइन से आज एक विशेष जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत पुलिस टीम जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आम लोगों को डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के उपाय सिखाएगी। उपायुक्त आदित्य रंजन ने साइबर सुरक्षा अभियान की शुरुआत पर कहा कि साइबर अपराध की रोकथाम के लिए जन जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण औजार है।
1: सभी विद्यालय के माध्यम से सभी बच्चों को, पेरेंट्स को, उनके परिवार को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। धनबाद पुलिस की ये बहुत अच्छी पहल है। कॉमिक बुक भी है जो सभी विद्यालयों में दिया जा रहा है। तो हर विद्यालय में एक एम्बेसडर के तौर पे एक सीनियर बच्चे को नामित करने की कोशिश कर रहे हैं। साइबर सेफ्टी मित्र के तौर पर काम करेंगे ताकि कोई भी साइबर क्राइम का शिकार नहीं हो।
0: हजारीबाग जिले के ईचाक प्रखंड अंतर्गत जोगीडीह गांव से मनाई चौक तक जाने वाली सड़क की बदहाल स्थिति से ग्रामीण परेशान हैं। सड़क निर्माण की मांग को लेकर आज ग्रामीणों ने जर्जर सड़क पर सांकेतिक रूप से धान रोपनी कर विरोध जताया। ग्रामीणों ने कहा कि दरिया, बरकाखुर्द और डाडी घाघर पंचायत समेत एक दर्जन से अधिक गांवों के लोगों का आवागमन इसी सड़क से होता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। चतरा जिले की सिमरिया पुलिस ने लावालौंग बगरा रोड से दो अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में सदर अनुमंडल पदाधिकारी नागर जोगे शुभम भाऊ साहब ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। सरायकेला खरसावां जिले के संतारी गांव में जहरीले सांप के डसने से दो बच्चों की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि सुबह 5 बजे दोनों बच्चे घर पर सो रहे थे, इसी दौरान सांप ने दोनों बच्चों को डस लिया। एक बच्चे की मौत अस्पताल जाने के क्रम में जबकि दूसरे की मौत इलाज के दौरान हो गई। मौसम। बंगाल की खाड़ी में उठे गहरे दबाव यानी डिप्रेशन के कारण झारखंड और आसपास के राज्यों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। राजधानी रांची, जमशेदपुर और पलामू समेत राज्य के बड़े हिस्से में रात से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर जिला ओलंपिक संघ की ओर से हजारीबाग में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडलीय नॉकआउट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। हजारीबाग के महापौर अरविंद कुमार ने बताया कि 3 दिवसीय यह आयोजन 29 अगस्त से शुरू होगा।
2: जिला प्रशासन के सहयोग से ओलंपिक संघ एसोसिएशन द्वारा यह खेल का आयोजन किया जा रहा है और पूरे प्रमंडल से 1233 हमारे खिलाड़ी आने वाले हैं। कुल 8.5 लाख रुपए का हम नगद पुरस्कार देने वाले हैं और खिलाड़ियों को हौसला और एक मार्ग प्रशस्त करने के लिए इस खेल का आयोजन हो रहा है।
0: ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हर्ष अजमेरा ने बताया कि टूर्नामेंट में 6 प्रकार के खेल आयोजित किए जाएंगे।
3: 6 गेम से इस बार का शुरुआत किया गया है। इसमें फुटबॉल होगा, खो खो होगा, बैडमिंटन है, एथलीट्स है, वॉलीबॉल

0: वॉलीबॉल है और आर्चरी है, जिसमें युवा युवती दोनों को सम्मिलित किया गया है। दोनों प्रतिभा अपने अपने क्षेत्र में दिखाने का काम करेंगे। हेडक्वार्टर होने के नाते यहाँ पर सबको आगाज करके इसको एक हजारीबाग खेल महोत्सव के नाम पर हम लोग दर्जे को ले जाना चाहते हैं।
1: और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों को और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और ममता जी देखिए बस मेरा मन कर रहा है कि आपसे कुछ सवाल कर लिए जाएं।
1: अच्छा कीजिए कीजिए सवाल। से वैसे डर लगता है कि पता नहीं क्या वो कौन सा सवाल आप पूछ बैठेंगे।
2: पिछली बार आप मुझे चौंका रही थी तो मैंने कहा हम भी चौंका लेते
1: लेकिन हम डरने वाले थोड़ी ना है। बताइए
2: वो तो मुझे पता है। ये बताइए कि आपने गाड़ी चलाई वाहन चलाया दो पहिया चार पहिया कुछ चलाया आपने?
1: क्यों बताएं? नहीं बताएंगे
2: बताना तो पड़ेगा
1: क्योंकि हम जानते हैं अगला सवाल क्या होगा कि आपको डर लगता है कि नहीं।
2: वो तो वो नहीं है बिल्कुल।
1: देखिए हम सच बताएं तो साइकिल चलाना बचपन में शुरू किया और गिर गए, चोट लगी, सिर से खून बहने लगा।
2: ओह माय गॉड।
1: और खूब खून की धारा बही। तब से साइकिल चलाने से बड़ा डर लगता था
2: क्या?
1: और साइकिल चलाना छोड़ ही दिया। हाँ। फिर घर में किसी ने कहा ही नहीं कि साइकिल चलाना सीखो जबकि जरूरी था। और लेकिन हाँ लड़कियों को हम साइकिल चलाना देखते थे तो मन बहुत करता था कि हम भी चलाएं। लेकिन वो जो डर है ना
2: बैठ गया,
1: वो डर बैठ गया, वो डर निकला नहीं। तो बस यही कहना है श्रोताओं से कि अगर कोई बात मन में डर के रूप में घर करती है तो घर वालों का ये कर्तव्य होता है उस डर को निकालें।
2: बिल्कुल सही।
1: और अगर डर नहीं निकालेंगी तो लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाएंगी, सपने नहीं देख पाएंगी। सपने देखने के लिए डर निकालना और आत्मविश्वास पैदा करना बहुत जरूरी है।
2: और उनकी जो सीखने की ललक होती है उसमें रंग में भंग भी नहीं डालना चाहिए, है ना?
1: तो बस जी तो आज तो सारे विषय एक साथ समेट लिए गए हैं एक ही बात में। एक ही बात
2: जी। और सखी विशेष में हम बात करेंगे नीरू शर्मा जो इंफीबीम की सह संस्थापक है, इनके बारे में बात करेंगे।
1: और मुहावरों की जो दुनिया है ना रंग में भंग डालना, तो हमने जो मुहावरे बताए हैं हमारे श्रोता कौन कौन से मुहावरों का प्रयोग करते हैं और आज के दौर में मुहावरों का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं।
2: बिल्कुल। और जैसे कि ममता जी जब लंच का टाइम होता है तो कहते ही घर में कि भाई जल्दी परोसो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इस तरह की बातें होती है ना। और ये भी होता है कि घोड़े बेचकर सोना, मतलब अब सोते ही रहोगे क्या कुछ करोगे नहीं, इस तरह की बातें मुहावरों में।
1: बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद खाने के लिए।
2: बिल्कुल।
1: तो ऐसे कौन कौन से मुहावरे हैं जो हमारे श्रोता याद रख सकते हैं और मुहावरों का प्रयोग करते हैं किन मुद्दों पर, तो वो विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर लिखें। और साथ में ये बताएं कि जो हमारा एक विषय है बेटियों को सिर्फ संस्कार नहीं आत्मविश्वास से निडर बनाएं। और अगर छोटे छोटे डर उसमें रोपते रहेंगे या संस्कारों के बोझ से आप दबा देंगे तो उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं पैदा होगा। संस्कार सिखाएं जरूर लेकिन आत्मविश्वास की शर्त पर नहीं, आत्मविश्वास उनके अंदर झकझोरें पैदा करें।
2: सही बात है क्योंकि आगे चलकर वो जो भी काम करे तो उसमें उन्हें संकोच ना हो अपनी बात कहने में। कई बार होता है ममता जी अक्सर लड़कियां मतलब संकोच करती, मन की बात कहना होता, कुछ करना चाहती तो 10 बार सोचती कहे कि ना कहे, कोई मना तो नहीं कर देगा, डांट तो नहीं पड़ेगी। तो ये बच्चों के मन लड़कियों के मन से निकाल दें कि भाई डरो मत, जो भी कहना कहो खुले दिल से कहो।
1: आप भी अपना सवाल अपने मन से अब निकाल दीजिए और अब जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। हम पूछ रहे हैं कि ये जो पहला वाहन वाला विषय हमने रखा है तो आप बताइए कि बचपन में पहला वाहन साइकिल था, बाइक, स्कूटी थी, क्या था?
2: साइकिल ही थी हमारी तो। और हम साइकिल जो थे हम और मेरी जो बहन थी हम लोग पत्थर पर खड़े हो जाते थे फिर साइकिल पर बैठते थे चलाते थे
1: क्योंकि हाइट उतनी नहीं पहुंचती तो साइकिल, क्योंकि बच्चों के नाम से साइकिल खरीदी नहीं जाती थी।
2: हाँ।
1: वो बड़े भाई बहनों की साइकिल होती थी इसलिए।
2: बिल्कुल वही हाल था। लेकिन उसमें क्या होता था हम लोग सीधे सीधे तो चलाते चले जाते थे, अब मोड़ना तो आता नहीं था तो उधर ही गिर पड़ते थे, फिर वहाँ कोई पत्थर ढूंढते थे उसमें चढ़ते थे।
1: क्या बात है।
2: फिर वापस
1: और साइकिल एक कोई चलाता था और एक साइकिल पीछे एक जो कैरियर होता था उस पे बैठता था और वो नहीं तो आगे जो साइकिल का डंडा होता है उस पे बैठता था।
2: लेकिन कैची जो लड़के कैची चलाते ना वो मुझे कभी नहीं, कोशिश भी करी तो कई बार गिर गया, चोट भी लगी। लेकिन
1: खैर ये हम अपने श्रोताओं से जानना चाहते हैं कि उनका जो पहला वाहन था क्या था और अपने अनुभव साझा करें। क्या हुआ जब पहली बार आप ने साइकिल चलाई या कोई और वाहन, दो पहिए का रिक्शा भी हुआ करता था ना बहुत छोटे, जब हाथ पैर साइकिल तक पहुंचने लायक नहीं होते मतलब 5-6 साल की उम्र में।

0: तीन पहिए वाला वो साइकिल रिक्शा दे दिया जाता था
1: बच्चों को जो साइकिल होती थी।
0: हाँ, तो वो भी अगर आपको याद हो, आपके जहन में हो, वो याद ताजा हो, तो जरूर साझा करें। फिलहाल गाना सुनवाते हैं।

0: मंजरी जी कहाँ खो गई आप, हमें लगता है श्रोताओं की टिप्पणियों में खो गई हैं, लेकिन टिप्पणियां तो पढ़ेंगे लेकिन जरा कुछ चर्चा भी तो कर ली जाए।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: बेटियां जब घर में आती हैं, मतलब एक बेटी पैदा होती है तो जश्न नहीं मनाया जाता।

0: था, लेकिन आज जमाना बदल गया है। अब बेटी पैदा होती है तो लोग बहुत खुश होते हैं और आज जश्न मनाने का चलन शुरू हो गया, तो ये जानकर बड़ा अच्छा लगता है। और जहां पर ये चलन नहीं है वहां पर अपनाया जाएगा। और बेटी, कहा जाता है ना कि बेटियां परिवार की मुस्कान ही नहीं होती, बल्कि बड़े नाज से बच्चों की परवरिश भी की जाती है बेटियों के लिए। बात जब उनकी आती है तो बहुत सारे रीति रिवाज का ज्ञान, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब लोग समझाने लगते हैं, समझाइश की पोटली लेकर खड़े हो जाते हैं।
1: और कहा भी जाता है कि जब, हमें याद है ममता जी जब छोटे थे तो यही कहते थे कि नहीं ये सारे काम कर लो, चाहे टोकरी से प्याज ही ले आओ, लहसुन ले आओ, छील दो, तो ये छोटे छोटे कटोरी ले आओ, ग्लास,
0: घरेलू काम,
1: घरेलू काम से शुरुआत ही कर देते थे कि ये करना है, अच्छा अंधेरा होने से पहले घर के अंदर ही आ जाना है, बाहर नहीं जाना। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें माँ अक्सर सिखाया करती है अपने बच्चों को। और हम अक्सर बेटियों को संस्कार, मर्यादा और जिम्मेदारियां सिखाने पर जोर देते हैं, लेकिन आज के समय में इतना ही काफी नहीं है। उन्हें संस्कारों के साथ आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और अपने लिए आवाज उठाने का साहस देना भी उतना ही जरूरी है।
0: आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। और साथ में जो संस्कार की पोटली थमाई जाती है तो उसमें साथ में ये भी बताया जाता है कि क्या गलत है क्या नहीं, क्या सही है, तो ये संस्कार देना जरूरी है। लेकिन इस संस्कार के साथ लड़कियों को दब्बू बनाना ठीक नहीं होता है, कि कुछ लड़कियां बहुत अंदर से बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद, प्रतिभाशाली होने के बावजूद क्लास में एक दब्बू लड़की बन के रह जाती है, क्योंकि उनको बोलना ही नहीं आता, उनके मन में भरा होता है कि अरे बाप रे अभी कहीं कोई मेरी बात का बुरा ना मान जाए। तो इससे लड़कियों को बाहर निकालना चाहिए, और अगर ये बात उनके मन से निकल गई तो जो उनके भीतर सपने पल रहे हैं उन सपनों को पंख देने में आसानी होगी।
1: बिल्कुल। और हर माँ को अपनी बेटी को आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और खुद पर भरोसा करना सिखाना चाहिए। उसे ये एहसास कराना जरूरी है कि बाहरी दिखावे से अधिक उसका आत्मविश्वास और ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होता है।
0: और ये भी कि हर कदम पर उन्हें ये कहें, अरे लोग क्या कहेंगे, जरा झुक के चलो, लोग पता नहीं क्या कहेंगे, जरा ठीक से चलना, वहां जाना तो देखना, ज्यादा लड़कों से बात मत करना, नहीं तो लोग देखेंगे तो शिकायतें आएंगी, इन सब से मुक्त कर देना चाहिए। अब उनके करियर के बारे में बात करनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई के बारे में, कि आप आज दिन भर में क्या किया, कौन से अखबार पढ़े, कौन सी किताबें पढ़ी, और आज जो तकनीक का जमाना है, तकनीक में कौन सी नई तकनीक सीखी। हमें नहीं लगता, हम अपने इर्द गिर्द कोई माँ घर में अपनी बेटी से अमूमन दिन भर में ये सवाल पूछती है, बेटे से ये सवाल पूछा जाता है लेकिन बेटियों से नहीं।
1: पहले देखिए ऐसा होता भी था कि जैसे कि कोई चीज दिलानी है तो नहीं भाई अभी तुम्हें नहीं दिलाएंगे, बाद में दिलाएंगे, या सिखाने की बात होती, जैसे साइकिल की बात है, वाहन ही सिखाने की बात है, तो उसमें भी 10 तरीके की बातें की जाती थी बेटियों से कि अगर चलाओगी तो गिर जाओगी, हाथ पैर टूट जाएंगे तो शादी कौन करेगा, इस तरह की बातें अक्सर ही हुआ करती थी। तो जैसे आपने कहा है कि ना कहना, तो ये चीज बहुत जरूरी कि अगर आपका मन नहीं है, आप उसको समझ नहीं अच्छा, तो ना ही कर दीजिए उस चीज को।
0: ना करने का एक फायदा भी होता है कि बहुत सारी मुश्किलों से, बहुत सारे दुर्व्यवहार से आप बाहर आ जाते हैं। बचपन में बड़े ये सिखाते हैं कि लड़कियों को नम्र होना चाहिए, बड़ों की बात मानना चाहिए, आदर करना चाहिए, और झिझक, मतलब एक तरह का झिझक रहना चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि घर के ही लोग, घर के ही नाते रिश्तेदार उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, गलत आचरण कर जाते हैं, जैसे बैड टच, गुड टच का उन्हें ध्यान नहीं दिलाया जाता है, और घर के ही लोग, मामा चाचा, रिश्ते में भाई लगने वाले लोग उनके, मतलब स्पर्श के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जिसका असर उनके मन पर बड़े होने पर रहता है, बड़े होने
1: रह जाता है, उनके मन पर रह जाती है बात।
0: और हमें भी बहुत कुछ मन में रह जाता है जब हम बोलने लगते हैं, लगता है कि अभी ये तो रह गया, थोड़ा सा और रह जाने देते हैं, एक विराम यहाँ पर लेते हैं।

0: विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली।
1: और देखिए जो हम लोग बात कर रहे थे ना कि गुड टच बैड टच वाला, कि घर में भी ऐसे माहौल होते हैं कि इस तरह से बच्चों को सामना करना पड़ता है और मन पर उनके गहरी छाप पड़ जाती है बड़े होने तक, तो इस चीज को ही कहना चाहिए कि उस समय भी बच्चों को अपने सिखा के रखे, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कोई ऐसा कर रहा है तो तुरंत आकर के हमको बताओ, अपने अंदर वो डरो मत, उस बात को दबा के मत रखो, अभी
0: वो तो तभी होगा जब आत्मविश्वास पैदा होगा।
1: बिल्कुल,
0: तो क्योंकि अगर हम संस्कारों के बोझ तले उन्हें दबा देंगे तो उन्हें कभी निडर वो हो ही नहीं सकते हर चीज को।
1: इसीलिए तो है कि आप तुरंत ही बच्चों को बोलो, तुरंत ही आके बताओ, तो तब आप इस चीज से बच सकते हैं। और ममता जी देखिए, हमारे साथियों ने भी बहुत सारे संदेश इस विषय पर लिखकर भेजे हैं। एक लिखते हैं कि बेटी को सिर्फ संस्कारों की डोर में बांध देना काफी नहीं है, उसे वो पंख भी देने होंगे जिससे वो बिना डरे अपनी उड़ान भर सके। संस्कार उसे सही गलत का फर्क सिखाते हैं, पर आत्मविश्वास और निडरता उसे दुनिया का सामना करना सिखाती है, और ये दोनों उसे अपना रास्ता खुद बनाने का हौसला देती है। जब सिर्फ संभल कर रहो कहना छोड़कर तुम कर सकती हो कहना शुरू करते हैं, जब गिरने पर हाथ पकड़कर उठाने के साथ उसे खुद संभलना भी सिखाते हैं, तभी वो बेटी किसी के मोहताज नहीं रहती। वो चूल्हा भी संभालेगी और सपना भी, रिश्ते भी निभाएगी और दुनिया में अपना नाम भी बनाएगी, क्योंकि हमने उसे सिर्फ संस्कारी नहीं मजबूत बनाया है।
0: और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि संस्कार जीवन का आधार होता है और आत्मविश्वास उनकी सुरक्षा का कवच है, और जब इसमें निडरता का संयोग बन जाए तो वो सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। बेटियां केवल लाज की मूर्तियां नहीं हैं, आंधियों से लड़ती हुई दुर्गा हैं। बेटियों में संस्कारों की छाव तो जरूरी है, लेकिन उड़ान भरने के लिए हौसलों का खुला आसमान देना भी जरूरी है। तो अब क्या, अब सुनते हैं ये गाना।

0: हूँ। तो देखिए बेटियों को जो है ना ममता जी, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या करना चाहिए कि पॉकेट मनी से लेकर सेविंग तक बेटियों को पैसों का महत्व और मैनेजमेंट करना उन्हें सिखाना बहुत जरूरी है, और उन्हें यह एहसास कराएं कि आर्थिक रूप से मजबूत होना भी असली स्वतंत्रता है। और इसके साथ साथ बेटियों को योग, मेडिटेशन और फिटनेस की भी आदत डालें, साथ ही उन्हें मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में भी बताएं, समझाएं, ताकि वे तनाव या दबाव से आसानी से उबर सके। और हमारे साथी भी संदेश में लिख रहे हैं कि उन्हें अच्छे संस्कार के साथ अपने फैसले लेने, कठिन परिस्थितियों का सामना करने और अपने सपनों को पूरा करने का आत्मविश्वास दीजिए। ऐसी शिक्षा दीजिए कि वे सम्मान करना भी जाने और अपने सम्मान के लिए आवाज उठाना भी, क्योंकि संस्कारी बेटी परिवार की पहचान होती है और आत्मनिर्भर बेटी समाज की ताकत होती है।
1: और साथ में ये भी कहना है कि बेटियों के भीतर समानता के विचार को भी रोपें, समानता की समझ हो और उन्हें सिखाएं कि वे किसी से कम नहीं हैं। घर के काम से लेकर बाहर के फैसलों तक, बाहर के काम तक उन्हें बराबरी का हक दें और यही सोच उनमें विकसित करें कि अमूमन होता क्या है कि घरेलू कामकाज में तो महिलाओं को सिखाया जाता है, उन्हें पारंगत किया जाता है, लेकिन जो बाहर के काम है, बैंकिंग के काम है और पोस्ट ऑफिस जाना है या बाहर का जो भी काम है,
0: काम होता है,
1: तो वो उनसे उनको वंचित रखा जाता है। तो इसके लिए जरूरी है मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ उनके शारीरिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाए, उनके फिटनेस का ख्याल रखा जाए, जूडो कराटे सिखाया जाए,
0: मार्शल आर्ट
1: और बैडमिंटन, मतलब खेल की ओर उन्हें उन्मुख किया जाए, तो अपने आप शारीरिक फिटनेस आ जाती है। और अगर शारीरिक फिटनेस है तो मन अपने आप स्वस्थ रहता है। अगर मन में कोई उनके
0: खुलकर सोच सकती है,
1: मन में अगर कोई उनके दुविधा चल रही है तो खुलकर उनसे पूछें, बात करें और उन्हें समझाएं कि हम सब परिवार वाले आपके साथ हैं। मान लीजिए कोई ऐसी समस्या से जूझ रही है आपकी लड़की जिसे वो बताने में संकोच कर रही, क्योंकि आपने संस्कारों के बोझ तले उसे दबा डाला है, तो उसे

0: बैठे घर वाले, और ये नहीं कि कोने में ले जाके चुपके से बात करें, उसे सबके सामने बोलने की, बतियाने की, अपनी बात कहने की आदत डालें, तभी वो स्कूल में बोलेगी, क्लास में बोलेगी, तभी अपने दोस्तों मित्रों के सामने अपना मुंह खोलेगी।
1: सही बात है आपने कही बिल्कुल। और हमारे साथी भी लिखते हैं कि बेटियों को संस्कार नहीं आत्मविश्वास से निडर बनाए। आज का ये टॉपिक मेरी बेटी पर सटीक बैठता है। आज हम उसको छोड़ने जा रहे थे, वो दिल्ली जा रही है, वो वहाँ से अपनी नई उड़ान भरने वाली है। स्पेन के लिए MBA करने का ये फैसला पिछले 4 साल से देखा गया था, जो अब पूरा होने जा रहा है। बेटी तो खुश है ही, उसके साथ हमारा पूरा परिवार खुश है। आज घर के चौथे नंबर का बच्चा बाहर गया, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सही बात है, आपने अपने बच्चे को इतना अच्छा मौका दिया है कि वो जा रही है और बाहर जाके पढ़ के आएगी।
0: हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि ये जो बातें हैं बेटियों के लिए, एक समझदार माँ ही कर सकती है। मैंने अपने तीनों बच्चों को अच्छे संस्कार देने के साथ साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ाने का काम किया है, जो आज उन्हें काम आ रहा है। बड़े की नौकरी जॉब में चला गया है, बहुत टूट चुका था। साथ के कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली थी, पर उसे मेरी सिखाई बातें याद आ रही थी कि जीवन में कितने भी संग्राम खड़े हो जाए, जान की नहीं सोचना, उसे बचा लेना और लड़ने की ताकत मन में रखना। ये दिन कुछ ही समय के लिए होते हैं, बाद में अपना वक्त आ जाता है। ये तो बहुत जरूरी बात इन्होंने लिखी है, थोड़ा असमंजस वाली स्थिति में इन्होंने लिखा है, लेकिन बात अपनी बात कह गए हैं ये
1: जी।
0: इनके कहने का तात्पर्य ये है कि हम कई बार संस्कारों के बोझ तले, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, इतना लाद देते हैं कि उनके अंदर ये बात ही, कोई मान लीजिए कि कोई ऐसी नौबत आती है जहां पर वो दो राहे पर है, चौराहे पर खड़े हैं, तो अपनी बात कह ही नहीं पाते हैं कि उन्हें बड़ों का अदब करो, बड़े संस्कारी बनो, बड़ों से जबान मत लड़ाओ, बड़े अगर कुछ कहें तो खड़े हो जाओ उनको देखते। ये सब संस्कार सिखाना ठीक है, लेकिन उनसे आजकल जो जमाना है उनसे मित्रवत बर्ताव करें।
1: सही बात है, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि बेटियों के साथ भी अपना दोस्ताना व्यवहार रखें। और हमारे एक साथी लिखते हैं, निडर और संस्कारी बेटियों की परवरिश ही देश की तरक्की का मूल है। और साथी हमारे लिखते हैं कि जब बेटियां मानसिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं, तो वे जीवन के हर कठिन निर्णय को खुद लेने में सक्षम बनती हैं। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता जरूरी है, बेटियां खुद अपने भविष्य और करियर के बारे में सही फैसले ले सकें, उन्हें पैसों के लिए किसी पर निर्भर ना रहना पड़े, वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, वे विपरीत परिस्थितियों में अपनी खुद की रक्षा और आवाज उठाना सीखें।
0: हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि नहीं नहीं ममता जी, समय के साथ साथ माएं भी समझदार हो गई हैं, अब बेटा बेटी समान है, बल्कि सच कहें तो बेटियां 2 कदम आगे हैं। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि आप सुनने के साथ साथ शामिल है इस प्रोग्राम में और त्वरित टिप्पणी भेज रही हैं। बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे कि सारी माएं ना समझी क्या बर्ताव करती हैं, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारे घरों में अभी भी ऐसी परंपरा चली आ रही है। और हमारे एक श्रोता ने और लिखा है कि हमारे घर में तो बेटी बेटे समान हैं और हम बेटी बेटों में कोई फर्क नहीं करते हैं, आज जमाना बदल गया है। जी आप कुछ कह रही थी मंजरी जी?
1: नहीं नहीं, हम आपकी बात सुन रहे थे। तो एक हमारी साथी कह रही हैं, लिखती हैं कि बच्ची, किशोरी, कुमारी, ये बेटियों की अवस्थाएं संस्कार क्षम कही जाती हैं, आकाश को लांघ कर चांद तक जा पहुंची हैं। आज की दुनिया में अब रहन सहन, परिधान, बोली भाषा, आहार विहार, शिक्षा, इन सभी संस्कारों में बदलाव दिखाई दे रहे हैं। छुई मुई कोमल अबला नहीं तो आत्मविश्वास से संपन्न निडर बेटी है, ये हर पालक का सपना बन रहा है। इसीलिए तो बेटी को भेदभाव रहित लालन पालन करना जरूरी है, दया, क्षमा और शांत को साथ लेकर हक के लिए आवाज उठाना, आत्मसंरक्षण, आत्मनिर्भरता, आर्थिक साक्षरता, अन्याय का प्रतिरोध करना जैसे भावनात्मक दृढ़ता वाले बढ़ाने वाले संस्कार हर बेटी को मिलने चाहिए। बहुत सुंदर सी बात लिखी।
0: हमारी एक सखी लिख रही है कि निडर बेटियां विपरीत परिस्थितियों में घबराती नहीं, बल्कि अपना बचाव खुद करने में सक्षम होती हैं। जब बेटियों में आत्मविश्वास होता है तो वो अपने करियर, जीवन और अधिकारों से जुड़े बड़े फैसले खुद कर पाती हैं। समाज के रूढ़िवादी तानों और दबावों के सामने वे कभी मानसिक रूप से टूटती नहीं। एक बात मैं गौर कर रही हूं मंजरी जी, कि आज के इस विषय में ज्यादातर महिलाओं की ही टिप्पणी आई है, पुरुषों की टिप्पणी कम मिल रही, क्या बात है? हमें लगता है इस मुद्दे में वो सहमत नहीं है क्या? वैसे अगर सहमत होंगे या नहीं होंगे तो अपनी टिप्पणी आगे साझा कर सकते हैं, हम पढ़कर सुनाएंगे
1: जी।
0: और फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली, और ब्रेक पर जाने से पहले मंजरी जी हम बात कर रहे थे कि बेटियों को सिर्फ संस्कार के बोझ तले ना दबाएं बल्कि उन्हें निडर बनाएं, आत्मविश्वास से भरें उन्हें। हमारी एक सखी ने लिखा है कि बेटियों को हमें सिर्फ ये नहीं सिखाना है कि दुनिया कैसी है, उन्हें ये भी सिखाना है कि दुनिया का सामना कैसे करें, संस्कार उनकी पहचान बने और आत्मविश्वास उनकी ताकत बने, उन्हें इतना निडर बनाएं कि वे अपनी बात कहने से डरे नहीं बल्कि अपने सपनों को छोटा ना करें। और अब यहाँ पर एक गाना जरूरी लग रहा है
3: जी,
2: ये सुनते हैं ये गाना।

0: एक लड़की की कहानी है जो दौड़ने में माहिर होती है।
1: बिल्कुल।
0: पुरुष बहुल समाज में लड़कियों को अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए संघर्ष तो करना पड़ता है।
1: बिल्कुल। अब संघर्ष करती तभी वो जीतती।
0: बिल्कुल। तो संघर्ष करने से हारे नहीं, पीछे नहीं हटे, बस यही पैगाम है आज के इस मंच से। आज फिर हम अगले मुद्दे पर अब आते हैं। किसी भी बड़े सपने की शुरुआत अक्सर एक छोटे से विचार से होती है। नीरू शर्मा की उद्यमिता की कहानी भी ऐसे ही एक विचार से शुरू हुई। भारत में ई कॉमर्स को आम व्यापारियों और छोटे कारोबारियों तक पहुंचाने का सपना इन्होंने पूरा किया। कैसे पूरा किया, इसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं आज।
1: नीरू शर्मा भारतीय टेक और ई कॉमर्स क्षेत्र की उद्यमी है और इंफीबीम के सह संस्थापक रही हैं। बाद में कंपनी का कारोबार डिजिटल पेमेंट और फिनटेक सेवाओं की ओर काफी बढ़ा और नीरू शर्मा कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं। उन्होंने अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS से की और आगे चलकर अल्काटेल जैसी तकनीकी कंपनी में काम किया। इसके बाद उन्होंने अमेरिका की कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी से MBA किया, जिसमें वित्त और रणनीति पर विशेष ध्यान दिया इन्होंने।
0: और MBA के दौरान और उसके बाद उन्हें अमेज़न में काम करने का मौका मिला। वहां ई कॉमर्स के कामकाज, ग्राहकों की सुविधा, कीमत और व्यापारिक रणनीतियों को करीब से समझने का अनुभव मिला। यही अनुभव आगे चलकर उनके उद्यमी बनने की प्रेरणा का अहम हिस्सा बना।
1: और भारत लौटने के बाद नीरू शर्मा ने ई कॉमर्स के क्षेत्र में कुछ नया करने का फैसला किया। इंफीबीम के साथ उनका उद्देश्य केवल ऑनलाइन सामान बेचने तक सीमित नहीं था। वे ऐसा डिजिटल तैयार करना चाहती थी जिसके माध्यम से छोटे व्यापारी, रिटेलर और ब्रांड भी इंटरनेट पर अपना कारोबार बढ़ा सके।
0: इंफीबीम के शुरुआती दौर में ई कॉमर्स और ऑनलाइन रिटेल पर जोर था। समय के साथ कंपनी ने डिजिटल पेमेंट, ई कॉमर्स समाधान और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में भी विस्तार किया और इंफीबीम के जो एवेन्यूज होते हैं उन्हें बढ़ाने के लिए भारत के शुरुआती सूचीबद्ध ई कॉमर्स कंपनियों में गिना जाता है।
1: नीरू शर्मा का सफर इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने केवल नौकरी में ऊंचे पद तक पहुंचने का रास्ता नहीं चुना, बल्कि अपने तकनीकी और व्यावसायिक अनुभव को एक नए विचार में लगाया। उन्होंने ये दिखाया कि तकनीकी की समझ और व्यापार की सोच मिलकर समाज और बाजार दोनों में नया अवसर पैदा कर सकती है।
0: और उनकी जो कहानी है इससे एक महत्वपूर्ण सीख भी मिलती है कि सफलता केवल बड़े संस्थान में नौकरी करने से नहीं मिलती, बल्कि अपने अनुभव को किसी नई समस्या के समाधान में लगाने से भी मिल जाती है।
1: बिल्कुल। और नीरू शर्मा की यात्रा उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो तकनीकी व्यवसाय और उद्यमिता के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। उनका सफर भी बताता है कि शिक्षा हमें ज्ञान देती है, अनुभव हमें समझ देता है और साहस हमें अपने सपने को वास्तविकता में बदलने की ताकत देता है।
0: अब सुनते हैं ये गाना।

0: तीन देवियां फिल्म का गाना था, और मंजरी जी आपने हमसे पूछा था कि पहला वाहन कौन सा था, तो हमने अपना अनुभव बता दिया, आपने भी अपना अनुभव बता दिया। अब जो हमारी सखियां हैं, हमारे सखा हैं, उनके अनुभव भी हम जान लेते हैं। हमारी पहले तो बता दें कि हमारी एक सखी लिख रही कि हम जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट शहर से आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, वहां से नमस्कार भेजा है आपको भी और पूरे शहर को, विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार पहुंचे। और एक हमारी सखी है जिन्होंने लिखा है कि मेरा पहला वाहन साइकिल थी, जब मैंने 8वीं क्लास पास की तब मुझे मिली थी, हालांकि ये साइकिल नई नहीं थी, मेरे भाई की साइकिल मुझे मिल गई थी। फिर मुझे करीब 6 साल पहले फिर साइकिल का सुरूर चढ़ा और घर में नई साइकिल खरीदने के लिए पति से काफी जद्दोजहद हुई, पर मैंने अपने लिए एक नई साइकिल खरीद ही ली। अभी कुछ ही दिन चलाई थी कि एक दिन मैं साइकिल से गिर पड़ी और मेरे बाएं हाथ के अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया और मुझे प्लास्टर चढ़ाना पड़ा। अभी मैं सुबह साइकिल चलाती हूँ पर अब बहुत संभल कर चलाती हूँ।
1: सही बात है, अगर गिरेंगे, कहते हैं ना कि गिरेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, लेकिन हाँ चोट लग गई तो बहुत ध्यान रखना जरूरी है। तो भाई आप अपना ध्यान रखें। और हमारे साथ ही लिखते हैं कि मेरे बड़े भाई जो दूसरे शहर में काम करते थे, उन्होंने एक पुरानी लूना खरीदी और उसे ट्रेन से हमारे शहर ले आए ताकि उसे इस्तेमाल कर सकूं। उस समय मैंने सरकारी नौकरी शुरू की थी, उस शुरुआती दौर में जो मोपेड थी उनकी शॉकअप और सस्पेंशन नहीं थे, मैं गाड़ी चला रहा था और मेरे पिता पीछे बैठे थे। गाड़ी के सख्त होने की वजह से वो रेत और कचरे में से भरी सड़क पर गिर गई, मुझे थोड़ी चोट भी आई, ठीक होने में 1 महीना लगा और मुझे बिना वेतन के 2 हफ्ते की छुट्टी लेनी पड़ी। मुझे अक्सर अपनी वो पहली गाड़ी याद आती है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि मैं जब 12 साल का था तब घर में पहला वाहन खरीदा था। और बहुत सारे श्रोता अपने अनुभव साझा कर रहे हैं वाहन से जुड़े
1: जी। और एक लिखते हैं कि उनके पास एक साइकिल हुआ करती थी बचपन में, और उसके बाद साल 1968 में कॉलेज में दाखिला होने के समय बड़े भैया ने मेरे लिए साइकिल खरीद कर दी थी जो एक अच्छी कंपनी की थी। और 74 में नौकरी ज्वाइन करने के बाद दोपहिया वाहन उन्होंने लिया था और बिना गियर वाला, बाद में गियर वाला उन्होंने स्कूटर लिया, अब बढ़ती उम्र में बिना गियर वाला स्कूटर वो चला रहे हैं।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैं, हमारी सखी है, इन्होंने लिखा है कि जब मैं 9वीं कक्षा में थी तभी अपने नाना नानी के पास पढ़ाई करने आ गई थी, तब मेरे नाना जी ने मुझे साइकिल खरीद कर दी थी, वो एक लेडीज साइकिल थी और मुझे सिखाई भी नाना जी ने। हमारे घर के सामने एक वॉलीबॉल ग्राउंड था, वहां पर मैंने खूब साइकिल चलाई और मैं साइकिल पर चढ़ तो जाती थी लेकिन उतरना नहीं आता था, अपने सहेली के साथ स्कूल जाती थी और मुझे वो साइकिल से उतार थी। क्या बात है भाई, आज तो यादों के खजाना खोल दिया गया है।
1: और एक साथी लिखते हैं कि उस समय कितना प्रेम था साइकिल से, घर से थोड़ी दूर भी जाना होता था या मम्मी छोटे से छोटा काम भी बोलती थी तो उछल कर करने के लिए तैयार हो जाती थी। फिर आ गया स्कूटी, अरे नहीं नहीं, इससे पहले तो मैं कार भी चलाना सीख ली थी पर पापा जी चलाने नहीं देते थे, उन्हें लगता था कहीं मार दूंगी। फिर स्कूटी आया तो अब तक काम आ रही है, मतलब वो, और हालांकि शुरू से लेकर अब तक तीसरी स्कूटी है। जैसे जैसे नई तकनीकी की आती जाएगी गाड़ी तो मैं चेंज करती रहूंगी। वाकई आपने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। और हमारे साथ ही लिखते हैं कि सालों साल तक वो याद रह जाती कि कैसे हमने अपने माता पिता को मना कर अपनी पहली गाड़ी खरीदी थी और कितनी खुशी हुई थी जब हम पहली गाड़ी खरीदने गए थे। माता पिता को बैठक बाहर लेकर जाना, दोस्तों को

0: घुमाना, बिठा कर मतलब ले जाना, घुमाना, पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटना, और अपने अगर पसंद की गाड़ी मिल जाए तो, पसंद का कलर मिल जाए तो गाड़ी में और भी मज़ा आता है, इन्होंने कहा है। और पहले वाहन को चलाने में बहुत खुशी इन्हें महसूस हुई है।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि साइकिल हमारे जीवन से हमेशा जुड़ी रहती है। हम छोटे होते हैं तब स्कूल के लिए, जवानी में नौकरी के लिए, और बड़ी उम्र में मोटापा करने के लिए जिम वाले साइकिल चलाते हैं। क्या बात है भाई, सही बात है। और कई बार लोग जरा जरा सी कम जगहों, मतलब थोड़ी दूरी के लिए भी बाइक उठा लेते हैं या कार उठा लेते हैं चल जाने के लिए। तो ऐसे जगहों पर आप साइकिल से जा सकते हैं, इससे आपकी कसरत भी हो जाती है। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में मेरे घर में लाल रंग की छोटी साइकिल थी, उसको मैं खूब दौड़ाया करता था। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेरा पहला वाहन ठेलन गाड़ी थी जिसमें मुझे बिठाकर चलना सिखाया गया था।
0: जी, और एक लिखते हैं कि पहला वाहन साइकिल था, तो नौकरी की पहली तनख्वाह जब उन्हें मिली तो उस पर उन्होंने साइकिल खरीदी। उसके बाद उन्होंने फिर एक अच्छी कंपनी की साइकिल खरीदी और रोजाना करीब 15 किलोमीटर स्कूल में पढ़ाने मतलब पढ़ने जाते थे, और बाकी रुपये पिताजी को दे दी जो उनकी तनख्वाह हुआ करती थी उस समय।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा भी पहला वाहन और आखिरी वाहन साइकिल ही था और अभी तक है। परिवार इतना धनी नहीं था कि काठ का तिपहिया वाहन बनवाता, ये तो गनीमत रही कि शादी जल्दी हो गई और साइकिल मिल गई जो बदलते हुए भी अब तक बना हुआ है। भाई शादी में आपने साइकिल अगर दहेज मिली है तब तो हमें बिल्कुल खुशी नहीं हुई ये जानकर, क्योंकि हम तो हमेशा ये कहते हैं कि भले ही कितनी विपन्नता हो लेकिन जो दहेज में आप ले रहे हैं वो लोग कैसे कलेजा काट के चीजें इकट्ठे करके वो दहेज देते हैं। उन माता पिता से जरा पूछे उनका दर्द क्या होता है।
0: अपनी मेहनत से खुद खरीदें तो बहुत अच्छी बात है
1: जी।
0: तो चलिए सुनते हैं गीत।

0: भाई मंजरी जी, अगर कोई काम बड़े मनोयोग से किया जा रहा हो, बहुत तन मन धन से, और अचानक कोई आकर उसमें विघ्न डाल दे, तो क्या कहा जाता है? रंग में भंग डाल दिया है ना।
1: बिल्कुल।
0: और हमारे बहुत सारे श्रोता इस बारे में लिख रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि एक बार हम पिकनिक मनाने गए, लेकिन बारिश ने इस हंसी खुशी के माहौल में रंग में भंग डाल दिया। अचानक बारिश शुरू हुई, इसका वाक्य प्रयोग हमारे किसी नाम लिखा, उनकी शादी में कुछ रिश्तेदारों की बातों के कारण रंग में भंग डाल दिया गया।
1: इसी तरह देखिए हमारे साथी और भी लिखते हैं कि अचानक बारिश रंग जमाने के अलावा भंग भी डाल देती है। खेल रहे बच्चे अचानक झगड़ने लगने से रंग में भंग पड़ जाता है, और अचानक बिजली चली जाए और टीवी पर सीरियल देखते वक्त भी रंग में भंग पड़ जाता है। और कुछ साल पहले दूरदर्शन चालू प्रोग्राम के वक्त सिग्नल प्रॉब्लम होने पर प्रसारण रुक जाता था, तब भी रंग में भंग पड़ जाता था।
0: वो तो बहुत अलग किस्सा हुआ करता था, एक अलग ही अनुभव है कि लोग छत पर जाते थे और उस सिग्नल को हिलाते थे, और फिर वहीं से चिल्लाकर एक बंदा पूछता था, आया, आ गया, स्क्रीन आया कि नहीं आया। फिर नीचे से कोई बताता था, नहीं नहीं नहीं अभी नहीं है। अच्छा, तो और हिलाते थे उसको, वो एक अलग ही, तो वो तो, और वो रंग विभंग जो पड़ता था ना, वो बड़ा करारा होता था, बहुत
1: अभी तक याद है वो रंग में भंग। और हमारे एक साथी और लिख रहे थे कि किसी हंसी खुशी के माहौल में अचानक बाधा डालना या मजाक किरकिरा हो जाना, ऐसे ही एक बार हमारे साथ हुआ सब। अच्छा, ये आपने पढ़ लिया था, मुझे याद आ गया।
0: तो एक टिप्पणी है, ये देखते हैं कि क्या लिखा है इसमें। इन्होंने लिखा है कि मेरी बड़ी मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी, और वो चाहती थी कि उनके बेटे यानी मेरे भैया की शादी जल्द से जल्द हो जाए। भैया की शादी तय थी तो जल्दी जल्दी तैयारियां होने लगी, पर तिलक का दिन आया, लड़की वाले तिलक चढ़ाने आया, और तिलक जैसे ही खत्म हुआ, अभी लड़की वाले घर से निकले भी नहीं थे कि बड़ी मम्मी की डेथ हो गई। फिर तो शादी भी रोकनी पड़ी, फिर कुछ दिनों के बाद मंदिर में शादी करवानी पड़ी, क्योंकि घर से नहीं हो सकती थी। चूंकि लड़की को हल्दी लग चुकी थी तो उन्हें साल भर वैसे छोड़ा नहीं जा सकता था, इसलिए पंडित जी से पूछकर उनकी शादी मंदिर से हो गई, तो वहां पर वो रंग में भंग पड़ गया। हालांकि ये ऐसे नकारात्मक मौकों पर, दुखद मौकों पर इस मुहावरे का प्रयोग नहीं किया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: रंग में भंग पड़ना एक सकारात्मक जब कार्य हो रहा होता तो वहीं पर इसका प्रयोग किया जाता
1: बिल्कुल।
0: है।
1: बिल्कुल। और एक लिखते हैं कि खुशी पूर्वक त्योहार मनाया गया मतलब जा रहा था, और बिना मतलब के बात के तनाव बढ़ गया और रंग में भंग पड़ गया। टेरेस पार्टी चल रही थी, अचानक बारिश आ जाने से रंग में भंग पड़ गया और सारे मेहमान अंदर भागने लग गए। और इसी तरह से एक साथी लिखते हैं कि मेरे घर में ऐसा हो चुका है कि मेरी बड़ी मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी, और वो चाहती थी कि उनके बेटे यानी मेरे भैया की शादी जल्द से जल्द हो जाए। भैया की शादी तय थी। अच्छा, ये वाला भी आपने पढ़ लिया है ना। तो लिखते हैं कि रंग में भंग डालने का काम शादियों में बहुत देखने को मिलता है। जब सब काम चकाचक है, खाना लजीज है, तो सब नाच गा रहे हैं और कोने में फूफा जी मुंह फुलाकर बैठे हैं क्योंकि उन्हें गाड़ी में आगे नहीं बिठाया गया था, तो
0: ये रंग में भंग
1: पड़ गया।
0: और ये अक्सर होता है, हर शादी के माहौल में होता है। ये एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन में खुशियों के रंग भरने में समय लगता है, लेकिन एक छोटी सी गलती या किसी नकारात्मक सोच उन रंगों में भंग डाल सकती है। इसलिए दूसरों की खुशी से ईर्ष्या करने की बजाय उसे अपनाना चाहिए। रिश्तों में विश्वास, प्रेम और समझ बनाए रखें, क्योंकि रंग तभी खूबसूरत लगते हैं जब उनमें मिलावट नहीं बल्कि अपनापन हो। किसी की मुस्कान में भंग डालने की बजाय उसकी खुशी का हिस्सा बनना ही सच्ची इंसानियत है।
1: बिल्कुल। और देखिए, कहीं भी कुछ फंक्शन हो रहा है, कहीं शादी हो रही है, कहीं गाने बज रहे हैं, और उसी में आंधी पानी आ जाए तो भी रंग में भंग पड़ ही जाता है एकदम। और ये कहते हैं कि रंग में भंग का दृश्य कुछ साल पहले देखने को मिला। लिखते हैं कि शादी समारोह में दूल्हा दुल्हन का जयमाला कार्यक्रम चल रहा था, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब का गीत बज रहा था, तभी ऐसी आंधी आई कि टेंट उड़ने लगा, शामियाने के खंभे उखड़ने लगे, लोग घर में भागकर छिपने लगे। दूल्हे ने दुल्हन को कमर से कसकर पकड़ रखा था, जैसे तैसे मंच से उतरकर मकान के छज्जे के नीचे खड़े हुए। फिर जोरदार बारिश भी आ गई, सब रंग में भंग पड़ गया।
0: तो ये कहने का मतलब ये है कि मुहावरों का प्रयोग आज भी जारी है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, और भी बहुत सारे मुहावरे हैं आपके पास, खोज के रखिए, अगली बार फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल सुनते हैं प्रोग्राम का ये आखिरी गाना।

0: देखिए अब घड़ी की ओर बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाए या गाना सुनवाए, लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक
0: सखी सहेली।

0: आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। राज्य में परीक्षाओं को रद्द किए जाने की सरकारी घोषणा के बावजूद छात्र आंदोलन आज 25वें दिन भी जारी है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के बैनर तले छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और दो आंदोलनकारी अब भी आमरण अनशन पर बैठे हैं। छात्र नेताओं का कहना है कि जब तक सीबीआई को जांच नहीं सौंपी जाती तब तक उनका आंदोलन समाप्त नहीं होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हजारीबाग जिला ओलंपिक संघ की ओर से हजारीबाग में 3 दिवसीय उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडलीय नॉकआउट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। हजारीबाग के महापौर अरविंद कुमार ने बताया कि 3 दिवसीय यह आयोजन 29 अगस्त से शुरू होगा, जिसमें 6 प्रकार के खेल आयोजित किए जाएंगे। चतरा जिले की सिमरिया पुलिस ने लावालौंग बगरा रोड से 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में सदर अनुमंडल पदाधिकारी नागर गोजे शुभम भाऊ साहब ने बताया कि दोनों

आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। धनबाद जिला पुलिस की ओर से चलाए जा रहे साइबर जागरूकता अभियान में अब स्कूली बच्चों को भी जोड़ा जा रहा है। डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के लिए छात्रों को साइबर सेफ्टी मित्र के रूप में कार्य करने की दिशा में जागरूक

0: और सरायकेला खरसावां जिले के संतारी गांव में जहरीले सांप के डसने से दो बच्चों की मौत हो गई। बच्चे घर में सो रहे थे, इसी दौरान सांप ने दोनों को डस लिया। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: के स्टूडियो में आकर
2: बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ा सुखद लगता है जब वीडियो नहीं होता है, ऑडियो होता है ना सिर्फ, तो आधा टेंशन कम हो जाता है ना। आपको तैयार होना ना मेकअप करवाना है, बस आपको माइक के सामने बैठना बोलना है और बेशुमार अपने दिल की बातें करनी है।
1: क्या
2: बहुत अच्छा लगता है रियली।
1: तो बस आज तो दिल की अलमारी खोलनी होगी आप दोनों को। आप बताइए प्रतिभा जी, आप तो रेडियो में अनाउंसर रही हैं, आपके लिए ये लम्हा कैसा है?
3: बिल्कुल, मुझे ऐसे मायके आ गए ऐसे लग रहा है।
1: तो फिर शुरू हो जाइए। मायके का जिक्र होता है तो लड़कियां फिर मायके पहुंच जाती हैं, तो मायके की वो याद साझा कीजिए। रेडियो में आप अनाउंसर थी
3: जी,
1: आकाशवाणी जलगांव में?
3: आकाशवाणी जलगांव में मैं अनाउंसर थी।
1: तो कैसे वहां तक पहुंची और कैसे वहां से वापस?
3: वहां रेडियो में तो मैं कैजुअल अनाउंसर थी, तो उस वक्त कैजुअल अनाउंसर्स का बहुत बोलचाल था
1: जी जी।
3: तो उस वक्त बहुत मजा आता था, मतलब अलग अलग अलग से प्रोग्राम करने को मिलते थे, गाने बजाने को मिलते थे। वो जो अभी हम लोग जो रिकॉर्ड्स देख रहे थे वो हमें उस वक्त हमें बिल्कुल बजाने पड़ते थे।
1: क्या बात है। तो वो सारी यादें ताजा हो गई।
3: बिल्कुल,
1: तो बस यादों के गलियारों में हम आपको दोनों को ले चलेंगे। फिलहाल हम यशपाल जी से जानना चाहते हैं कि ये बरेली के बच्चन कैसे बन गए आप बताइए।
2: हाँ, बरेली के बच्चन एक बहुत सालों बाद, शायद 14-15 सालों बाद मैं कोई सीरियल कर रहा हूँ, नीली छतरी वाले के बाद एक्चुअली, क्योंकि मैं सीरियल नहीं करना चाहता अपनी जिंदगी में कोई ज्यादा, लेकिन कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं वो आपको खींच लेते हैं। जैसे नीली छतरी वाले ने मुझे खींचा और मतलब बहुत मेरा लाइफ टाइम एक यादगार काम बन गया। उसी तरीके से बरेली के बच्चन का जो स्क्रिप्ट है और जो रोल है वो मुझे इतना भाया कि मुझे लगा कि अब सब कुछ छोड़ के थोड़ा टाइम इसमें बिताया जाए और इसमें जिया जाए और देखते हैं कुछ क्या चैलेंज आते हैं सामने, कुछ डिफरेंट करने के लिए, कुछ चैलेंजिंग करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए, किस कुछ यादगार करने के लिए मैंने बरेली का बच्चन स्वीकार किया
1: जी। और हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो जानना चाहेंगे, देखेंगे कि क्या है, कौन है बरेली के बच्चन। हमने तो सिर्फ ट्रेलर देखा है और हम भी उत्सुक हैं देखने के लिए।
2: शुरू हो चुका है ये
1: जी
2: 8 जून से और डेली रात को 9 बजे सोमवार से शुक्रवार आता है, और अगर आप मिस कर दें तो जियो हॉटस्टार पे वो परमानेंट रहता है।
1: क्या बात,
2: तो आप वहां भी देख सकते हैं
1: जी। आपकी दोनों की फिल्मी दुनिया और जो टेलीविजन की दुनिया है, इतनी लंबी यात्रा है आपकी फिल्मों की कि बहुत कम शब्दों में मुश्किल है बात करना, लेकिन हम वहां चलते हैं पहले जहां यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा मिले, वो एनएसडी की दुनिया थी शायद। बताइए आप दोनों कैसे मुलाकात हुई, बारी बारी से। प्रतिभा जी आप बताइए पहले
3: जी। मैं गलती से जब
1: से मिली है यशपाल जी से
3: गलती से मैं बॉयज हॉस्टल चली गई थी जब मुझे एनएसडी के लिए जा रही थी, मतलब गई थी मैं वहां पे इंटरव्यू के लिए। तो जो फाइनल हमारा इंटरव्यू होता है, वर्कशॉप होता है, उसमें 5 दिन का वर्कशॉप होता है, उसमें फाइनल सिलेक्शन होता है। तो उसके लिए जब मैं वहां से जलगांव से दिल्ली आई थी और दिल्ली जब मैं गई तो मुझे वहां पे बोल दिया गया कि आप वहां जाओ। तो मैं वहां वकील लेन में गई और वहां बॉयज हॉस्टल में टिकी रही एक रात, तो वहां मैं रही। तो सुबह मुझे आना था, तब मैं सामने से इधर से आ रही हूँ और यशपाल जी उधर से आ रहे हो लेन से, और हम एक दूसरे को देखे और फिर ये बोले कि चलिए मैं आपका सामान लेके चलता हूँ।
1: अच्छा, ये तो फिल्मी स्टाइल में बिल्कुल फिर क्या हुआ?
3: बस फिर हमारा फाइनल सिलेक्शन में भी दोनों का नाम आउट हो गया, तो ऑफ कोर्स साथ में ही थे फिर। फिर तो लड़ाई चलती रही।
1: अच्छा पूछते हैं यशपाल जी से कि लड़ाई किस तरह की होती है, ये थोड़ा सा बाद में पूछेंगे, पहले जरा एनएसडी की बातें कर ले। यशपाल जी, हमने सुना है कि एनएसडी के लिए जब आप चले हरियाणा हिसार से, तो वो क्या जर्नी थी, वो क्या यात्रा थी, जरा बताइए।
2: वो यात्रा बहुत आसान नहीं थी। एनएसडी में कम से कम भी मैंने 3 बार अप्लाई किया, तब नहीं हुआ, तो चौथी बार किया तब हुआ।
1: अच्छा,
2: जिस साल प्रतिभा ने अप्लाई किया उस साल हुआ मेरा।
1: तो मतलब मुकद्दर ने इंतजार करवा के आप दोनों को मिलाया।
2: 3 साल नहीं हुआ, 3 साल नहीं हुआ के बाद मेरा चंडीगढ़ में हो गया इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट में, तो वहां से फिर 1 साल किया एमए, तो 1 साल बाद

0: दिल्ली में भी हो गया, तो फिर मैंने दिल्ली शिफ्ट कर लिया। तो दिल्ली में उन दिनों 91 की बात है, 91 जून की, उसमें हमने शुरू किया था। प्रतिभा भी थी हमारी क्लास में, बाकी हमारे मुकेश तिवारी, आशुतोष राणा, कुमुद मिश्रा, बाकी बहुत सारे लोग मराठी भी, अनिरुद्ध खुटवड़ और अभय
1: अभय
0: कुलकर्णी
1: कुलकर्णी।
0: जी, तो ये भी साथ, बहुत सारे लोग थे, जो बहुत अच्छा बैच था हमारा।
1: जी, तो ये आपके दोस्त लोग हैं आशुतोष राणा, मुकेश जी, इनसे जुड़ी हुई कोई खास याद साझा करना चाहेंगे आप?
0: नहीं ठीक है, ये तो बहुत ऐसी बातें हैं जो कुछ शेयर नहीं कर सकते तो ठीक
1: ओह
0: है, उसको चलने रहने देते हैं थोड़ा
1: जी
0: सा।
1: जी
0: हाँ लेकिन
1: बात
0: एक एक याद मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। कुमुद मिश्रा और मेरा चेहरा एकदम मिलता था उस वक्त,
1: जी जी जी
0: तो मेरे जितने भी उसके प्रेस के कपड़े थे, लॉन्ड्री वाला मुझसे मांगता था
1: अरे अच्छा
0: और आशुतोष राणा ने अपने आप को मतलब हीरो साबित करने के लिए एक दिन क्या किया कि
1: हाँ
0: अपने बाल कर्ली करवा लिए, और
1: अच्छा
0: कर्ली करवा लिए, बिल्कुल मलिंगा जैसा दिख रहा था वो, तो मतलब और बहुत खराब दिख रहा था। तो जो भी, अरे ये क्या करवा लिया, सबका रिएक्शन यही है, अरे ये क्या करवा लिया।
1: कुछ ना कुछ करवाते ही
0: तो और बता रहा था
1: रहता
0: भाई, 400 रुपये, 400 रुपये बहुत ज्यादा थे उस वक्त,
1: वो
0: 400 रुपये तो हमारी स्कॉलरशिप थी उस वक्त। तो बोला
1: बिल्कुल
0: 400 रुपये में करवाए हैं बाल कर्ली, तो और जिस जो भी देखे, रितु तलवार थे वो भी, अरे बाप रे कितना खराब लग रहा है यार, आशु ये क्या कर लिया तूने। तो बेचारा इतना परेशान हो गया, शाम को जब हॉस्टल गए तो हॉस्टल के बाहर नाई बैठा था, तो 2 रुपये में गंजा हो गया मैं नहीं भूल सकता वो
1: जी
0: आशुतोष राणा की वो बात
1: जी तो वैसे भी बड़े उनके बारे में बहुत सारे किस्से मशहूर हैं, और कोई किस्सा याद आएगा बातचीत के दौरान तो जरूर साझा कीजिएगा, और वो आपके दोस्त भी हैं। तो यहाँ दोस्ती के नाम या उन दिनों के नाम कोई गाना सुनवाना चाहेंगे? कौन सा, किसकी पसंद का गाना सुना है, प्रतिभा जी या यशपाल जी?
0: प्रतिभा जी,
2: पिया तो से
1: नैना लगे रे, वाह भाई क्या बात है, गाइड फिल्म का गाना है, तो यही गाना सुनते हैं।

0: भाई ये गाना पिया तो उसे नैना लागे रे, ये इन्होंने आपके लिए ही मुझे लगता है सुनवाया होगा यशपाल जी। तो मुझे आपसे ही जानना है कि ये प्रतिभा जी ने जिक्र किया कि आपने इनका सामान उठाया, तो ये जो प्रेम का बीज था आप दोनों के बीच, प्रेम का पौधा कैसे
1: बीच
0: रोपा गया?
2: पौधा नहीं था, बहुत भारी बैग था इसका जो जो मैंने उठाया था,
0: जी
2: और तकरीबन 150 मीटर 200 मीटर होगा वहाँ,
1: चल के चल के जाया।
2: हॉस्टल से वहाँ तक, तो वो मंडी हाउस क्रॉस करके पूरा, तो वहाँ गए थे। तो प्रेम का बीज ऐसा कोई फिल्मी कहानी की तरह ऐसा नहीं था हमारा, हम मर जाएंगे तुम्हारे बगैर, और या मतलब हाँ, लेकिन एक फिल्मी बात जरूर थी कि 3 साल तो हमने खूब लड़ाइयाँ की, अच्छे काम किए, नाटक किए, और एक में तो हम चंद्रहास में भाई बहन बने थे, और बहुत ही बढ़िया प्रोसेस रहा सारा। लेकिन जब खत्म हुआ और जब ये चली गई, तब बड़ा मैंने मिस किया, क्योंकि भाई अब कोई ना तो लड़ने वाला, ना कोई प्यार करने वाला, ना रूठने वाला, ना मनाने वाला, तो बड़ा मिस किया। तो मैं एक दिन फिर सीधा इसके घर पहुंच गया, जलगांव,
0: अच्छा
2: दिल्ली से जलगांव, सीधा दरवाजा खोला और ये माँ बेटी मेरे सामने खड़ी, और ए ऐसे हैरान। और फिर मैं चला गया और फिर उसी ट्रेन से वापस आ गया, मगर नहीं तुम साथ चलो,
0: अच्छा
2: तो भाई ऐसे नहीं जा सकते, शादी वादी करना पड़ेगा, बच्ची बड़ी हो गई है। तो मैंने कहा ठीक है करवा लो, कल कर लेते हैं। बोले नहीं अभी तो तारा डूबा हुआ है। मैं कहा तारा तो हम निकाल लेंगे। तो आर्य समाज मंदिर में गए तो वो बोले पंडित जी के भाई तारा डूबा हुआ हम नहीं मानते। तो मैंने कहा तो फिर करवा डालो आज। तो बस थोड़ी देर बाद शायद दोपहर तक सारी तैयारी करके हमने शादी कर ली। शादी के दौरान, फेरों के दौरान पता लगा कि वो पंडित जो था वो हिसार का था हमारे
0: अरे
1: तो
2: वो आर्य
1: यशपाल के
2: समाज,
1: वहां से कोई नहीं था तो वो हिसार के थे।
0: अच्छा अच्छा
2: तो बड़ा कोइंसिडेंस रहा बाय चांस, और ऐसे शादी हो गई। और फिर पहली बार जिंदगी में मैं और प्रतिभा एसी कोच में सफर करके जलगांव से दिल्ली गए।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अब यहां पर एक गाना जरूरी लग रहा है, प्रतिभा जी बताइए कौन सा गाना, या यशपाल जी आप बताइए।
2: हुई शाम उनका
0: ख्याल आ गया है।
2: ख्याल।

0: प्रतिभा जी, ये जो प्रेम की नैया चल पड़ी है यूं कहेंगे, और आपकी जिंदगी का सुनहरा और सुरीला सफर चल पड़ा है, तो इस सफर की आगे की कहानी आप बताइए। फिर जब साथ में रहने लगे, फिर वो नोक झोंक तकरार के दिन, कौन सी ऐसी बात है जो यशपाल जी की पसंद हुई नापसंद हुई वो बताइए।
1: नहीं, हम लोग साथ में काम करते थे रेपेट्री में और साथ में खाना खाते थे, और उस उतना ही हमारा मिलना होता था पूरे दिन में। बाकी पूरा दिन हम दोनों काम में लगे रहते थे,
0: कौन सा काम
1: रेपेट्री
0: था?
1: में एज एन एक्टर
2: नाटकों
1: काम
2: की
1: करते थे।
2: रिहर्सल वगैरह।
1: नाटकों की रिहर्सल कंटिन्यू होती रहती है।
0: तो कौन से वो नाटक थे जो उन दिनों रिहर्सल चल रहे थे उन नाटकों?
1: आइंस्टाइन कर रहे थे हम लोग, मुआवजे कर रहे थे, कर्मावाली थे, ये सारे नाटक वहाँ पे उस वक्त चल रहे थे, उसमें ही हम लोग काम कर रहे थे। हमारे वक्त कुछ नाटक नए शुरू हुए थे आइंस्टाइन जैसे, तो वो नाटकों की रिहर्सल चलती रही।
0: दोनों लोग उसमें
1: हाँ,
0: किरदार।
1: यशपाल तो आइंस्टाइन बने हुए थे, मैं उनके जो उनकी वाइफ है उसकी फ्रेंड बनी हुई थी उस नाटक में,
0: जी
1: मारिया।
0: जी यशपाल जी से हम जानना चाहते हैं, अब फिल्मों की ओर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपकी बहुत सारी फिल्में हैं, फिल्मों के नाम क्या गिनाए हैं? गंगा जल, अपहरण, बवंडर, बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लगान फिल्म आपके फिल्मी करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, तो लगान फिल्म से हम शुरू करते हैं। लगान फिल्म की कहानी बताइए, कैसे आप जुड़े, कैसे आमिर खान से मुलाकात हुई, कैसे आशुतोष गोवारिकर से मिले आप, दोनों कहानी बताइए आप।
2: लगान वाकई में मेरे ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि लगान तक ही मैंने स्ट्रगल किया ऑफिस ऑफिस घूम करके,
0: जी
2: उसके बाद नहीं किया फिर मैंने, क्योंकि अपने आप फोन आते थे, बात होती थी, काम मिल जाते थे। तो लगान जब मिल रहा या मिली थी, उस वक्त हम वनराई कॉलोनी में रहते थे, जहाँ सिर्फ एक कमरा था, बिल्कुल छोटा सा, एक छोटा सा बाथरूम था और छोटी सी बालकनी थी और एक स्लैब था जिसे किचन का नाम दे दिया गया था। तो हम दोनों उसी में रहते थे और वहाँ सारे स्ट्रगलर, राजपाल यादव, विजय राज, ये अनूप सोनी, कुमुद मिश्रा, सब वहीं रहते थे। बहुत सारे सीमा विश्वास, राजेश तैलंग, सब वहीं रहते थे। बहुत बड़ा एक
1: जी,
2: स्ट्रगलर का अड्डा था
1: हब
2: वो,
1: था वो।
2: स्ट्रगलर सब लोग, स्ट्रगल क्योंकि सस्ता था ना, तो सब लोग वहीं आके रुक जाते थे।
0: जी
2: तो वहाँ रहते थे हम, तो वहाँ हमारे पास पेजर था। पेजर में मैसेज आया कि कॉल आमिर खान प्रोडक्शन और क्लेमेंटिना डैश क्लेमेंटिना। मैंने कहा ये क्लेमेंटिना क्या है भाई, ये जरूर किसी ने प्रैंक खेला है, कोई कान खिंचाई कर रहा है हमारी। तो मैंने सोचा चलो काम तो कुछ था नहीं,
0: जी,
2: मैंने कहा फोन तो कर लेते हैं। तो मैंने फोन किया तो आमिर खान प्रोडक्शन में लगा फोन, तो वहां उठाया, लैंडलाइन था उस वक्त, मोबाइल नहीं थे, तो लैंडलाइन था, तो उसमें क्लेमेंटिना ने उठाया, तो वो एक लड़की का नाम था, क्रिश्चियन
0: अच्छा
2: लड़की का।
0: जी
2: तो मैं बोला, तो वो बोले आशुतोष ग्वारीकर कल मिलना चाहते हैं आपसे, आप आ जाइए ऑफिस, ये एड्रेस भेज रही हूँ मैं, पेजर पे मैसेज आ गया मुझे। और मैं अगले दिन आशुतोष ग्वारीकर से मिलने गया। उन्होंने 3.5 पौने 4 घंटे ऐसे घूम घूम

0: कमरा बंद किया, बोले नोबडी विल डिस्टर्ब मी, और घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। ये कमाल की बात है। मैंने उनसे सीखा कि अपने खून में पूरी कहानी होनी चाहिए, जो कि मैंने फॉलो किया बाद में डायरेक्ट करते हुए। तो उसने सुनाई और रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल है। मतलब इसमें वेरिएशन भी है, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है। तो मतलब काफी वेरिएशन थी। तो और उसने बोला कि लाखा के लिए हम ढूंढ रहे हैं।
1: क्या बात है।
0: तो मेरी तो ऐसे ही, मैं कहा भाई थैंक यू भाई, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा। मैंने तो थैंक यू वैंक यू नहीं है, ऑडिशन देना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ ऑडिशन देंगे ना। तो अगले दिन मुझे बुलाया आमिर खान के घर पे और वहां ऑडिशन हुआ। ऑडिशन दे करके मैं निकला और निकलते ऑटो में बैठा ही था, 10 मिनट हुए होंगे मुझे कि मेरे पास मैसेज आ गया कि यू आर सिलेक्टेड।
1: क्या बात है। क्या?
0: मैं स्टेशन जा रहा था ट्रेन पकड़ने, तो मैं तो मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि इतनी बड़ी फिल्म, इतने बड़े स्टार के साथ मेरा मतलब सिलेक्शन हो रहा है और इतने बड़े रोल के लिए। तो मैं तो बड़ा खुश था। तो उन्होंने क्या है, आमिर खान को भेजा ऑडिशन। उसी वक्त आमिर खान मद्रास में थे, एआर रहमान के पास म्यूजिक के लिए कुछ बैठे हुए थे। तो उसके बाद मैं घर गया, उन्होंने बोल दिया कि सिलेक्ट, मतलब उन्होंने हाँ कर दिया मेरे लिए। तो हो गई बात। अब अगले दिन मुझे आना था प्रोडक्शन पैसे की बात करने, तो रीना दत्ता से,
1: जी जी
0: रीना दत्ता उनकी जो वाइफ थी, प्रोड्यूसर थी उस वक्त। तो उन्होंने बोला कि भाई आप पैसे की बात कर लो। तो मैं रास्ते भर ट्रेन में ये सोचता रहा कि साला यशपाल इस बार ना तू सब छोड़, 1 लाख रुपया मांग लो, ये मौका है, बड़ा प्रोडक्शन है और मतलब मिल जाएगा, कोई मना नहीं करेगा। फिर ख्याल आया कि यार अगर उन्होंने नहीं दिए तो मैंने कहा फिर 80,000 में कर लूंगा। फिर सोचा चलो 40-50,000 में कर लूंगा। अरे यार मैंने कहा काम तो कुछ है नहीं, 20,000 मिलेगा तो भी कर लूंगा।
1: क्या बात है।
0: फिर मैं गया रीना दत्ता जी के ऑफिस में गया, तो रीना दत्ता जी ने पहली बात यही बोली कि यशपाल हमारा बजट बहुत कम है, हम सबको 1.5-1.5 लाख रुपया दे रहे हैं। तो मेरे मुंह से निकल गया नहीं नहीं मैडम, इतना लंबे दिन है, इतना बड़ा रोल है, 2 लाख तो होना चाहिए। तो मैडम ने बोला ठीक है साइन कर दो।
1: क्या बात है।
0: अब देखो ये होता है, और वो भी फिर 4.5 महीने के लिए था। फिर शेड्यूल बढ़ गया, फिर 1 महीना, फिर 50,000 और एक्स्ट्रा बढ़ गए और 250 रुपया पर डे एक्स्ट्रा और मिलता था। तो मतलब मौज ही मौज हो गई थी। खैर वो बात अलग है, लेकिन लगान ने जो दिया पूरी दुनिया में घुमाया। पूरी दुनिया में हम फेस्टिवल्स में गए और अमेरिका कनाडा के टूर पे भी गए, दुबई हर जगह, बहुत जगह गए हमने, पूरी दुनिया मलेशिया मॉरिशस सब जगह घुमा दिया इस फिल्म ने। और बहुत कुछ दिया और ऑस्कर में नॉमिनेट हुई, बेस्ट 5 में चली गई थी
1: जी, बिल्कुल
0: बिल्कुल कांटे के टक्कर में बची लास्ट में। तो ये था किस्सा लगान का।

0: आपने जैसे बताया कि विविधता थी इस कहानी में आपने जब सुना, लेकिन लाखा का किरदार बड़ा ही अलग तरह का था, बड़ा महत्वपूर्ण था। उस किरदार को गढ़ने के लिए आपको किस तरह की तैयारी करनी पड़ी निजी तौर पर?
1: तैयारी उन्होंने एक हफ्ता पहले बुला लिया था आशुतोष गवारीकर ने सबको
0: जी।
1: मुझे याद है मेरा जन्मदिन था 1 जनवरी को, और 1 जनवरी को ही मेरी फ्लाइट थी, तो वो उसी दिन मैं गया था, और 7 तारीख से शायद शूटिंग शुरू थी, 6 या 7 से
0: जी।
1: तो एक हफ्ता हम वहाँ पूरे गांव में घूमते थे, मीटिंग करते थे, और आशुतोष गवारीकर हर किसी के पास आकर के बताता कि ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी लकड़ियां पड़ी हैं, तुम वहां से जंगल से लकड़ियां काट के लाते हो, लकड़हारा हो, और यहाँ लकड़ियां इकट्ठी करते हो, और फिर गांव में एक एक जैसे 4-4 लकड़ी या 10-10 लकड़ी ऐसे बेचते हो गांव में। तो मतलब एक करेक्टर मेरा समझ में आ गया था, और यहाँ से वो सामने गोरी का घर है हीरोइन का, उससे तुम प्यार करते हो इसलिए ज्यादातर तुम यहीं खड़े रहते हो, और क्या है कि उसका बाप जो है हीरोइन का वैद है, तो मैं क्या करता हूँ जानबूझ के ना अपना हाथ वाथ काट लेता हूँ ताकि उसके पास पट्टी बंधाने जा सकूं।
0: अच्छा, क्या बात,
1: गौरी को देखने के बहाने।
0: जी, जी, जी।
1: तो इस तरीके का करेक्टर मेरा था पूरा, और मैं नफरत करता हूँ सिर्फ एक ही इंसान से, वो है भुवन जो हीरो है आमिर खान, क्योंकि वो हीरोइन को चाहता है, हीरोइन उसको चाहती है, तो इसलिए मेरा ये जेलसी भी काफी निकल के आई। लेकिन बाद में जब पता चला कि देश प्रेम और ये प्रेम अलग है एक तरफा, तो इसकी कोई, मैं क्या कर रहा हूं अब इसके लिए, मैं देश को धोखा दे रहा हूं, वो एक एहसास हुआ, और फिर मैंने पूरी शिद्दत के साथ मैच जितवाया
0: जी।
1: कुदरती अभी उसके 25 साल पूरे हो रहे हैं।
0: क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक पूरे विविध भारती परिवार की ओर से। आशुतोष जी कैसे हैं बातचीत करने में निजी तौर पर, उनकी कोई खासियत बताना चाहते हैं?
1: बिल्कुल, बहुत क्लैरिटी है उनके अंदर, वो प्री प्रोडक्शन में बहुत सारा काम कर लेते हैं, पूरी फिल्म का मतलब जर्रा जर्रा उनके दिमाग में और खून में बसा हुआ होता है कि क्या करना है मुझे।
0: जी,
1: ये
0: जी।
1: बहुत अच्छी बात है, हालांकि मैं उसके भी पक्ष में नहीं हूं, सारी चीजें कैलकुलेटेड नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कुछ चीजें स्पॉन्टेनियसली छोड़ देनी चाहिए, जो कि लगान में उन्होंने किया।
0: बिल्कुल,
1: लगान में किया उन्होंने, काफी कुछ काम करके कुछ चीजें एक्टरों पे छोड़ दी थी, और स्पॉन्टेनियसली जो होता था उस पे उसी हिसाब से किया, क्योंकि कैमरामैन अनिल मेहता थे जो बहुत ही सजे हुए कैमरामैन थे, तो टीम भी बहुत बढ़िया थी, अच्छे सब एक्टर लिए हुए थे, और क्रू भी बहुत कमाल का था सारा, अपूर्व लाखिया उसका चीफ एसोसिएट डायरेक्टर था, जो कि आजकल बहुत बड़ा डायरेक्टर बन चुका है, जिन्होंने बहुत सारी फिल्में डायरेक्ट की हैं अभी, तो बहुत बढ़िया टीम थी, और आशुतोष

0: गवारिकर की क्लैरिटी कमाल की थी, उसको मालूम था कि मुझे क्या चाहिए और वो उनसे एक्टरों से निकलवा लेता था।
1: जी, और आमिर खान तो परफेक्शनिस्ट है ही,
0: बिल्कुल, आमिर खान के
1: तो
0: साथ उनकी बहुत सारी मुलाकातें हमारी शूटिंग से पहले ही हो चुकी थी और सब कुछ तय हो चुका था कि क्या
1: जी
0: करना
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल। और आप दीजिए एक गाना, आप बताइए कौन सा गाना सुनवाए यहाँ पर मुझे।
0: लगान का ही सुनवा दो,
2: हाँ वो
1: जी,
2: बहुत
0: कोई
2: इंस्पायरिंग है,
0: हमसे जीत न
2: कोई
0: पाए।
2: हमसे जीत न पाए।

0: इस फिल्म से जुड़ा हुआ अनुभव आप साझा करना चाहेंगे प्रतिभा?
1: हाँ बिल्कुल, जैसे ये फिल्म इतनी हिट हुई उसके बाद हमारे बच्चे हुए, तो मेरे बच्चों को मैं रोज लगान दिखाती थी और बच्चे इतने ज्यादा यूज टू हो गए थे उस लगान के, मम्मी लगान लगाओ ना, मम्मी लगान लगाओ, रोज देखना उनको लगान रोज।
0: तो और भी बहुत सारी फिल्में हैं यशपाल जी की और
1: नहीं,
0: आपकी?
1: नहीं वो तो नहीं देखनी, ये ही देखनी,
0: सिर्फ ये देखते हैं। और जब आप बड़े हो गए हैं बच्चे तो फिल्म देखते हैं तो कोई टीका टिप्पणी करते हैं एक्टिंग के बारे में?
1: अरे उनके फेवरेट एक्टर है उनके पापा।
0: क्या बात है बहुत बढ़िया। कोई आना चाहते हैं फिल्मी दुनिया में?
1: हाँ बड़ा वाला तो कोशिश भी कर रहा है
0: जी, नाम बताएं तो?
1: सौम्य, सौम्य शर्मा।
0: चलिए सौम्य जी के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं।
2: अरे हाँ एक मिनट, सॉरी मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जब लगान की शूटिंग चल रही थी तो प्रतिभा का फोन आया, अरे बाबा क्या कर रहे हो तुम, कौन सी फिल्म कर रहे हो? धोती बोती वाली? देखो यहाँ पे इतनी सुपर डुपर हिट हो गई है, ऋतिक रोशन की पहली फिल्म थी। कौन सी थी वो? बोली बाप रे एक ऐसा हीरो आ गया है जो उसने सबको फेल कर दिया है, चारों तरफ उसकी चर्चा हो रही है, हाउसफुल जा रहे हैं, और क्या फिल्म बन रही, क्या फिल्म बनी है, मैं भी देख के आई।
1: ऋतिक रोशन की पहली फिल्म जो थी
2: कहो ना प्यार है,
1: कहो ना प्यार है।
2: हैं तो मैं डर गया भाई, मैंने कहा छोड़ दूं क्या लगान, क्या क्या करूं। लेकिन देखिए वो फिल्म भी सुपर डुपर हिट हुई, लगान भी, और लगान के साथ गदर भी रिलीज हुई और गदर भी सुपर डुपर हिट हुई।
0: जी जी जी बिल्कुल। प्रतिभा जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक फिल्म थी राजेंद्र कोठारी की, है ना, याद होगी आपको, दास कैपिटल। तो इसमें आप हीरोइन है और यशपाल जी हीरो, निजी जिंदगी के हीरो भी वही है, तो ये पर्दे पर उनको हीरो के रूप में देखना, खुद को हीरोइन के रूप में देखना, ये कैसा एक्सपीरियंस था आपका, अनुभव कैसा?
1: नहीं हम लोग पहले से मतलब साथ में

0: काम करके
1: कर
0: आए
1: चुके
0: थे,
1: हैं।
0: तो मैं जब गुलजार साहब के साथ और मैं जब श्याम बेनेगल साहब के साथ काम कर रही थी, तब मुझे राजन कोठारी जी ने नोटिस किया था एज एन एक्टर, तो उनके मैं याद में थी, ध्यान में थी। तो उन्होंने हालांकि सीमा विश्वास को कास्ट किया था, और यशपाल की जगह कौन और एक्टर थे,
1: पता नहीं मुझे,
0: रघुवीर यादव
1: रघुवीर
0: शायद,
1: यादव सही
0: हाँ
1: आंसर।
0: रघुवीर यादव
1: जी
0: उनके दिमाग में थे। पर जैसे ही उन्होंने मेरे वो वाले काम देखे थे, वो क्योंकि वो ही उसमें कैमरामैन थे, तो उन्होंने वहां से मुझे नोटिस किया था, और फिर उन्होंने मुझे घर पे आके बोला कि ये रोल सिर्फ प्रतिभा करेगी, बस दैट्स ऑल।
1: जी। तो इस फिल्म की शूटिंग से जुड़ी हुई कोई खास याद साझा कीजिए। दोनों लोग साथ में जाना, अमूमन अलग अलग शूटिंग पे जाते होंगे,
0: नहीं,
1: लेकिन
0: तब
1: इस
0: हमारे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, तो मम्मी आई थी उनको संभालने के लिए, मम्मी पापा मेरे, और हम दोनों वहीं पे रहते थे जहां पे लोकेशन था,
1: मनोर में थी
0: मनोर में
1: लोकेशन,
0: थी।
1: वहीं होटल ले रखा था हमने
0: जी।
1: सब लोगों ने,
0: अच्छा।
1: पूरी कास्ट क्रू ने, तो वहीं होटल रहे थे, वहीं बाजू में ही गांव था, तो वहीं करते थे,
0: लेकिन
1: बच्चे भी साथ में थे।
0: बहुत सुंदर थी वो
1: जी,
0: फिल्म।
1: तो आपने कहा बच्चे छोटे थे, और तो बच्चों के साथ एडजस्टमेंट थोड़ा मुश्किल होता है, सामंजस्य जिसको कहेंगे, क्या कैसे आप सामंजस्य बिठाती थी
0: तो
1: शूटिंग
0: उस
1: के
0: वक्त
1: लिए?
0: तो मतलब छोटे थे ही, ऑफ कोर्स तो करना पड़ता था ना उनके साथ काम, मम्मी उनको भेजती थी स्कूल, और फिर मैं यहां से और क्या ही कर सकती हूँ, फोन ही कर
1: कि
0: सकते
1: बच्चे जब मिलते थे
0: हाँ
1: रोते थे तो फिर
0: नहीं, रोते
1: दिल,
0: भी थे नहीं थे वो, बड़े उस तरह के
1: अच्छा
0: बच्चे हैं कि मतलब समझदार है,
1: उनको पता था कि
0: उनको
1: मम्मी
0: पता
1: पापा
0: था।
1: को आगे बढ़ना है
0: पर
1: ऐसे साथ में।
0: एक दिन मुझे, मैंने वो जो उस ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी जो मैं अपने मायके के लिए जाने के लिए रोती हूँ, तो वो उसको, बिल्कुल ही छोटा था मेरा बेटा, तो बिल्कुल ही मेरे ख्याल से 5-6 साल का होएगा, तो मुझे बोल रहा है मम्मी तुम एकदम छमक छल्लो लग रही हो। ये शब्द भी उसको पता नहीं कहाँ से मिला।
1: जी। तो बच्चे देखते रहते हैं तो और बहुत कुछ सीखते हैं, टेलीविजन
0: हाँ
1: से सीखते हैं। तो यहाँ पर बात बच्चों की है, बच्चों के लिए कोई गाना सुनवाना चाहेंगे?
0: हाँ बिल्कुल, लकड़ी की काठी बहुत सुंदर गाना है।
1: लकड़ी।

0: गुलजार साहब के साथ आपने काम किया है?
1: हाँ, उनके साथ मैंने काम किया तहरीर प्रेमचंद की, जो
0: जी
1: सीरीज आई थी
0: प्रेमचंद
1: के कहानियों के ऊपर। हाँ
0: जी,
1: तो उसमें मैंने एक तो ठाकुर का कुआं की थी और दूसरा गोदान की थी।
2: पंकज कपूर के साथ
1: कपूर
0: जी
2: थे, साथ में काम किया था।
0: और गुलजार साहब का कोई उसमें हस्तक्षेप था? एक्सपीरियंस उनके साथ, कोई बात बताइए उनके साथ अनुभव कुछ?
1: हाँ, मतलब वो तो जैसे व्हाइट कपड़े पहन के आते थे ना सुबह, और शुरू हो जाते थे यहाँ से लकड़ी उठाओ, ये करो, इसको ये ठीक करो, मतलब तो ऐसे देवदूत जैसे लगते थे वो। मतलब उसमें घूम रहे देवदूत स्टेज पे, यहाँ पे वहां पे, और फिर मुझे जब वो बोलते थे तुम हंस दो बस एक बार, बस
0: अच्छा।
1: मेरा दिन बन जाता है। फिर वो मतलब बहुत सारी चीजें है वो, उनका वो आलू वहां पे भून के खाना, शकरकंदिया भून के खाना, वहाँ गांव गांव था ना,
2: बड़ा बेटा पेट में था उस वक्त।
1: हाँ, उस वक्त अच्छा, सौम्य पेट में था।
0: हाँ जी,
2: गुलजार साहब का तो ऐसा लगता है जब वो पैदा हुए थे तो भी सफेद कुर्ता पजामा ही था।
0: जी जी,
2: पहने हुए ही पैदा हुए, क्योंकि कभी और ड्रेस में देखा ही नहीं हमने।
0: जबकि गानों के कितने सारे रंग हैं, उनकी फिल्मों के कितने सारे रंग हैं, लेकिन उन्होंने खुद पर कोई रंग नहीं डाला। तो अब हम यशपाल जी की फिल्मों की ओर बढ़ते हैं। पहले फिल्मों की बात करें, या हमें लगता है कि हरियाणा की ओर चलते हैं, हिसार की ओर, बचपन की ओर चलते हैं। यशपाल जी बताइए, बचपन में बड़े शरारती किस्म के थे हमने कहीं सुना है, और वो शरारतें क्या थी जरा बताइए हमारे श्रोताओं को भी।
2: हमारी शरारतें क्या होती थी? अमरूद चुरा लिए, आम चुरा लिए,
1: मूलियां
2: चुरा ली, गाजरें चुरा ली, मतलब खेती बाड़ी में जो चोरियां कर ली, लोहा चुरा लिया,
0: अरे
2: है लकड़ियां काट के ले आए चोरी से। तो ऐसे ऐसी चोरियां थी हमारी, और ऐसी ऐसी शरारतें थी। बकरी को चराने ले गए, गाय को चराने ले गए, तो वहां से लकड़ियां वगैरह इकट्ठी करके, गोबर वगैरह इकट्ठा करके ले आए। हमारा तो इसी में पूरा बचपन बीत गया, खेल पतंगे खेल के, और गेम बहुत खेले हमने बचपन में। आज के बच्चे गेम जानते भी नहीं है, वो लुकम छिपाई, पकड़म पकड़ाई, पतंग खेलना, ये काठ कटम्बर, लोहा लंबर,
1: हाँ,
2: कोकला खिपाखी, जिम्मे रात आई जे, जेड़ा आगे पीछे देखे उसकी शामत आई जे, बहुत सारे ऐसे गेम हैं जो, फिर वो डिब्बियां ढक्कन, ये सब खेलते थे हम, बड़ा खजाना था। आज तो देखो कोई पूछेगा भी नहीं, लेकिन उस वक्त में वो हमारा खजाना था। कंचे बंटे जो होते हैं ये, और इस तरीके की चीजें इकट्ठा करना, गुठलियां, हाँ इमली की गुठलियां, वो भी बहुत, हाँ बहुत कीमती चीजें थी ये हमारे लिए। तो ये सब इसी में बचपन बीता है, जो कि बहुत बेशकीमती मैं बोलता हूँ, कि बहुत अमीर बचपन में बोलता हूँ इसको, रिच बचपन, जिसमें एक्सपीरियंस ज्यादा थे। बेशक पैसा नहीं था, लेकिन इतने एक्सपीरियंस थे और इतना बढ़िया बचपन था कि मैं तो तरस गया हूँ अपने बच्चों को वो जिंदगी देने के लिए। काश वो भी ले पाते वो सब, लेकिन बॉम्बे में बहुत मुश्किल है, और आज के मोबाइल और इस जमाने में तो और भी मुश्किल है।
0: बिल्कुल,
2: हमारा बचपन जो बीता है वो तमस
0: जी,
2: कथा सागर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और ये चीजें देख के, कौन सा था वो
0: है, मालगुड़ी डेज,
2: मालगुड़ी डेज, यस, गालिब का एक सीरियल था,
0: हाँ, मिर्जा गालिब,
2: फौजी, शाहरुख खान वाला, फिर वो एक दो और थे जो सर्कस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सारी चीजें।
0: तो ये जो दूरदर्शन वाले धारावाहिक थे ये तो अलग थे, तब उस समय मतलब एक्टर की बजाय लोग किरदार के रूप में जानते थे, जैसे
2: हम
0: सीरियल के नाम से, हम लोग, हाँ
2: यस,
0: हम लोग
2: यस,
0: से याद आया,
2: बुनियाद
0: की बड़की बड़की और छुटकी, वो किरदार से हम लोग जानते थे। और मुझे लगता है कि आप ऐसे एक्टर हैं जिनको आपके नाम से ज्यादा आपका किरदार ज्यादा जाना जाता है। मतलब मैंने अभी जब देख रही थी तो आपकी अनगिनत फिल्मों में लोग किरदार के नाम से जानते हैं, तो आपको कैसा लगता है जब किसी किरदार से खासतौर से आपको बुलाया जाता है, कहा जाता है? तो
2: नहीं, बिल्कुल, इसका मतलब हमारी मेहनत सफल हुई है
0: जी,
2: बहुत अच्छा लगता है ये तो। अभी तो खैर नाम से भी जानने लग गए हैं सब लोग, और कोई ये बोलता है कि आपका नाटक देखा वो वाला बहुत अच्छा, तब तो और ज्यादा खुशी होती है। या फिर मेरी डायरेक्ट की हुई एक फिल्म है जो कि एक कल्ट फिल्म बन चुकी है हरियाणा में, उसकी बात करता है कोई तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है
0: जी, जी।
2: तो ऐसे ऐसे काम जो आपने, आप पब्लिकली ज्यादा नहीं फ्लरिश हुए लेकिन आपके दिल के करीब हैं कुछ काम, या तुगलक नाटक है जैसे, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो देखा कोई बोलता है तो

0: तो मजा आ जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि वाह किसी एयरपोर्ट पर या कहीं किसी किसी और शहर में कोई ऐसे बोल देता है तो ऐसा लगता है कि चलो कुछ तो बढ़िया हो रहा है।
1: बिल्कुल, नाटक का जिक्र किया आपने तो हमें याद आया कि एक नाटक किया था जो लगभग 3 घंटे चला था, वो कौन सा नाटक था और उस पर आपने दर्शकों को हंसाया जिसमें मुकेश तिवारी भी है?
0: अच्छा, वो बड़े ना खेले छोटे खेल,
1: जी जी
0: हाँ हाँ, वो एक फ्रेंच प्ले है डरियो फो का लिखा हुआ, आर्कएंजल्स डोंट प्ले पिनबॉल गेम, उसका हिंदी अनुवाद है
1: जी।
0: और उसमें मेन रोल मैंने किया था लॉफ्टी का, और उसमें 2.5 घंटे का नाटक था वो, तो ये समझो कि 2.5 घंटे तक तो लगातार हंसाया, फिर 10 मिनट रुलाया, फिर आखिरी के 5 मिनट फिर हंसाया, तो ऐसा उसका प्रोसेस था और वो कहानी भी ऐसी थी, तो बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस रहा था वो। मुकेश तिवारी डबल कास्ट में था मेरे साथ, मतलब एक दिन मैं करता था एक दिन वो। मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस वाइज अभी तक का मेरा सबसे एनर्जेटिक परफॉर्मेंस रहा है वो
1: जी।
0: वो हुआ आइंस्टाइन हुआ या
1: परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो परफॉर्मेंस के हिसाब से तो बहुत सारी फिल्में आपके खाते में हैं, गंगा जल जो शुरुआती फिल्म है और प्रकाश झा जिसके डायरेक्टर हैं, तो गंगा जल की बात आप बताइए हमारे श्रोताओं को, कैसे जुड़े प्रकाश झा से? ये आपके शुरुआती दिन थे और संघर्ष के भी दिन थे।
0: प्रकाश झा का मैसेज आया था मेरे पास, फिल्म करने वाला हूँ मैं तो, मेरे बारे में सुना किसी से उन्होंने, एनएसडी के ही कई लोग बता देते हैं ना, तो मैं गया तो बस उनसे बातचीत हुई और उन्होंने बोला कि ये रोल है एक सुंदर यादव का, ये साधु यादव का बेटा है, साधु यादव जो है मेन विलेन है इसमें, तो हम उनके बेटे हो
1: जी,
0: बिगड़ैल बेटे। तो मैंने बोला कि ठीक है करता हूँ, भी कर ली मैं, बात हो गई। तो मैंने बोला स्क्रिप्ट दे दो, तो बोला स्क्रिप्ट तो मैं अजय देवगन को ना दूं, तो मैं बोला ठीक है भाई। तो फिर मैंने बोला अच्छा मैं यहीं पढ़ लेता हूँ आपके ऑफिस में, बोले हाँ यहीं पढ़ लो लो। तो मैंने वहां बैठ करके 3 घंटा स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने
1: जी।
0: और पढ़ करके मैंने बोला कमाल रोल है जी मैं करूंगा, हालांकि उसमें डायलॉग नहीं थे कुछ भी ज्यादा और लिखा हुए में सुंदर यादव कुछ भी नहीं था, लेकिन फिल्म करते करते करते करते मेरे सीन लिखे जाने लगे और हाँ, और मेरा रोल बढ़ता गया और वो मेन विलेन में आ गया तकरीबन क्या एक्चुअली में
1: जी।
0: तो वो प्रकाश झा की खासियत है कि उन्होंने देखा कि ये पॉसिबिलिटी ज्यादा बन रही है इसकी, तो उन्होंने मेरे रोल को बहुत अच्छे से उभारा और पूरा फुटेज दिया
1: जी,
0: गाना भी था, एक आइटम सॉन्ग था जो ये संजय दत्त की वाइफ है मान्यता, उन्होंने डांस किया था उस पे
1: जी। अब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना है सुनवाया हम
0: यहाँ। तो मेरा फिल्म है ना ये, एक सिंग इज किंग का एक गाना बड़ा अच्छा है।

0: सच बताऊं तो विविध भारती में जब मैंने जिक्र किया कि यशपाल जी आ रहे हैं, यशपाल शर्मा जी, बोले गंगा जल वाले, गंगा जल आपके नाम के साथ कैसे जुड़ गया है?
1: तो जुड़ गया है। अरे वो सुनिए, मैं सिक्किम में शूटिंग कर रहा था, सिक्किम में पेलिंग करके एक जगह है जहाँ डैनी
0: जी जी
1: डैनी साहब हैं जहाँ के, तो पेलिंग में शूटिंग कर रहा, जानू बरुआ डायरेक्टर थे, और वहां पर एक छोटी सी बच्ची मिली मुझे और बोल रही, अंकल अंकल आपने गंदे आदमी का रोल बहुत अच्छा करते हो। मैं बोला क्या देखा बेटा तूने, मैंने समझ नहीं आया तारीफ कर रही है कि बेइज्जती कर रही है। तो मैंने बोला बेटा क्या देखा तुमने, अरे वो जो अजय देवगन के साथ किया ना आपने आंख फोड़ने वाला, बहुत अच्छा था। मैं बोला अच्छा गंगा जल की बात कर रही है, ये भी एक तरीका है बच्चों का।
0: जी जी।
1: मेरी वाइफ भी प्रतिभा नहीं देखने देती बच्चों को, गंगा जल देखने नहीं देती।
0: अच्छा
1: ना, बोल रही है बहुत वायलेंस है, बहुत वायलेंस है।
2: वो छोटे छोटे बच्चे थे मैं,
1: और वाकई में वो पिस्तौल लेकर के ठा ठा ठा ठा करते थे ना जब ऐसी फिल्में देख करके, तो मुझे भी अपने आप पे ना ग्लानी हुई कि यार यशपाल तेरी वजह से बच्चे कितने बिगड़ रहे होंगे ऐसे, तो ये ऐसे रोल मत कर। तो मैंने ना वाकई कॉन्शियसली उस तरीके के रोल करना बंद कर दिया था। अब कई बार नहीं पता होता और करना होता पड़ता है, जैसे रावड़ी राठौड़ है या कोई जिसमें वायलेंस बहुत है तो करना पड़ता है, लेकिन मैंने खुद डिसाइड किया कि मैं खुद नहीं करूंगा ऐसा कुछ
0: जी जी
1: जिसमें बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़े।
0: चमेली में आप बने थे केपी सिंह, उसके बारे में बताइए, वो उस भूमिका के बारे में बताइए। करीना कपूर इस फिल्म में थी, बड़ी सुंदर फिल्म थी,
1: बहुत प्यारी फिल्म थी, सुंदर फिल्म थी, और मेरा रोल बहुत बड़ा नहीं था लेकिन बहुत कमाल रोल था मेरा, क्योंकि बहुत लोगों ने चमेली का नाम लिया है। छोटा रोल लेकिन प्रभाव छोड़ने वाला रोल था, क्योंकि वो करीना कपूर की और राहुल बोस की सारी समस्याएं सॉल्व कर देता है आखिर में आकर के। सुधीर मिश्रा मेरे फेवरेट डायरेक्टर रहे हैं, और जब भी उन्होंने कोई भी रोल दिया, मेरे ख्याल पहले हजारों ख्वाहिशें ऐसी, फिर ये था चमेली था, फिर उसके बाद ये साली जिंदगी, इरफान खान भी थे, तो इस जो भी रोल दिए उन्होंने मुझे उन पे पूरा आंख बंद करके भरोसा रहता था कि श्याम बेनेगल हुए, प्रकाश झा हुए, सुधीर मिश्रा हुए, ये कुछ भी रोल देंगे, अनुराग कश्यप हुए, कोई भी रोल देंगे तो मैं आंख बंद करके कर लूंगा, मैंने बिल्कुल नहीं पूछूंगा।
0: जी, जी जी, क्या बात है। अब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना है, सुनवाए हम
2: डोली में बिठाई के।
0: आप दोनों गा के सुनाएंगे तो

ये थी जाने माने अभिनेता यशपाल शर्मा और उनकी पत्नी प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत। आज आपने सुना पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। राज्य में परीक्षाओं को रद्द किए जाने की सरकारी घोषणा के बावजूद छात्र आंदोलन आज 25वें दिन भी जारी है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के बैनर तले छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और दो आंदोलनकारी अब भी आमरण अनशन पर हैं। छात्र नेताओं का कहना है कि जब तक सीबीआई को जांच नहीं सौंपी जाती तब तक उनका आंदोलन समाप्त नहीं होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हजारीबाग जिला ओलंपिक संघ की ओर से हजारीबाग में 3 दिवसीय उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडलीय नॉकआउट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। हजारीबाग के महापौर अरविंद कुमार ने बताया कि 3 दिवसीय यह आयोजन 29 अगस्त से शुरू होगा, जिसमें 6 प्रकार के खेल आयोजित किए जाएंगे। धनबाद में हो रही लगातार बारिश के कारण जयप्रकाश नगर में एक मकान की दीवार गिर गई, इससे कई दोपहिया वाहन मलबे में दब गए। चतरा जिले की सिमरिया पुलिस ने लावालोंग बगरा रोड से 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में सदर अनुमंडल पदाधिकारी नागर गोजे शुभम भाव साहेब ने बताया कि दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। धनबाद जिला पुलिस की ओर से चलाए जा रहे साइबर जागरूकता अभियान में अब स्कूली बच्चों को भी जोड़ा जा रहा है। डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के लिए छात्रों को जागरूक किया जा रहा है। हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड अंतर्गत जोगीडीह गांव से मनाई चौक तक जाने वाली सड़क की बदहाल स्थिति से परेशान ग्रामीणों ने जर्जर सड़क पर सांकेतिक रूप से धान रोपनी कर अपना विरोध जताया। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक

0: मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: के सहारे अब तक वो जो कहता था भूल जाओगे मुझे, दिल न माना उसके इशारे, अब तक रातों की तन्हाई गवाह है।

उजाड़ लम्हों की दास्तानें जो तुम कहो तो सुनाए तुमको। बहुत हम जागते हैं, आओ जरा सा जगाएं तुमको। ये तन्हा रात, ये दिल उदास और आंखें नम, अगर इजाजत हो तो ये हाले दिल भी सुनाए तुमको। तुम्हें जो बताएं दास्तान गम अपनी, तो क्या सुन सकोगे? दिल पे जो बीती कयामत, वो सब लफ्जों में बुन सकोगे? दिल खामोशी में ढाल के बैठा है दर्द सारा, मेरे दिल की सदा को सुन सकोगे? सुनो, इस इश्क ने कहीं का ना छोड़ा हमको, वीरान हुआ दिल का नगर सारा मेरे हमदम। हम जिसको समझ बैठे थे मोहब्बत, वो बन गया आखिर दिल का खसारा मेरे हमदम।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। वो शबो रोज के सिलसिले अब नहीं रहे, हम जिंदा तो हैं मगर जिंदा नहीं रहे। जो ख्वाब मेरी आंखों में भरे थे तूने, वक्त की धूप में वो हरे नहीं रहे। वफा की राह में क्या कुछ नहीं लुटाया, फिर भी तेरे नसीब में हम नहीं रहे। हम अपने आप से भी बिछड़ते चले गए, आईनाए दिल में वो पहले से नहीं रहे। अब कौन इंतजार की शम्में जलाएगा, वो लौट के आने के वादे अब नहीं रहे।

आओगे लौट कर कभी, ये दिल को यकीन सा है। हर एक ख्वाब में तेरा निशान सा है। हवा के दोष पे आती है खुशबू, लगे यूं जैसे करीब तेरा मका है। मैं जागती हूँ रात भर तेरी याद की हरारत में, मेरे वजूद में एक दर्द जाविदा सा है। अगरचे दूर हो तुम, फिर भी दिल गवाही दे रहा है कि इस हिजर के पीछे विसाल का जहां सा है। ना पूछ हाले दिल बेकरार ऐ हमदम, तेरी जुदाई में हर लम्हा इम्तिहान सा है।

तुझको भी बिछड़ने का बहाना चाहिए, मुझको भी अब शायद चले जाना चाहिए। जो तेरा है रख ले तू, जो है मेरा मुझको दे दे। एक दूसरे का वक्त हमें लौटाना चाहिए। और ना झेलेगा अब आंधियां तूफान, रेत का ये मकान ढह जाना चाहिए। हो गया है दो दिलों में फासला, अब हमको जुदा हो जाना चाहिए। ये तय है कि अब ना मिलेंगे हम कभी, एक आखिरी बार अब गले लग जाना चाहिए।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा हर दिल से जुड़ी, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम तराने नए पुराने आप सुनेंगे बस।

आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे FM 103 MHz पर। सायंकालीन सभा में आप सबों का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले जानकारी लेते हैं अपनी सभा में प्रसारित किए जाने वाली शेष कार्यक्रमों की।

अब से कुछ ही देर में आने की 5:35 से आप सुनिएगा युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। शाम 6 बजे आप सुन सकेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।

शाम 6:02 पर आप सुनिएगा किसान वाणी कार्यक्रम। शाम 6:30 पर आप सुनिएगा कृषकों को संबोधित कार्यक्रम ग्रामीण सभा। शाम 6:55 पर हम शामिल होंगे अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र की प्रसारण सेवा में, जहां ठीक 7:00 आप सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। 7:10 पर जिले में आजकल फिल्म संगीत का कार्यक्रम में एक रंग आप सुन सकेंगे 7:15 से। खुला आकाश का समय होगा 7:45 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से आप सुनिएगा 8:00। देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देश गान आप सुन सकेंगे 8:30 पर। समाचार संध्या 8:45 पर। न्यूज एट 9 9:00। उर्दू में खबरें 9:15 पर। रात्रि 9:30 पर हम शामिल होंगे विविध भारती के कार्यक्रम में। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुन सकेंगे 10:00 से। हिंदी में समाचार 11:00, अंग्रेजी में समाचार 11:05 पर।

युवानी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त आराध्या माही। आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे और हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम इस कार्यक्रम में आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपके मनोरंजन का ख्याल रखते हुए फिल्मी गीतों को भी सुनाएंगे। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के महान संत, कवि और राम भक्ति के परंपरा के प्रमुख संत गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती के अवसर पर उनके जीवन, साहित्य और विचारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, तुलसीदास जी केवल एक महान कवि ही नहीं, बल्कि उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति, आदर्श जीवन, मूल्यों और मानवता का संदेश जन जन तक पहुँचाया था। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर क्षेत्र में हुआ माना जाता है। उनका जीवन अनेक कठिनाइयों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने अपनी परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। भगवान श्री राम के प्रति उनकी गहरी भक्ति ने उन्हें साहित्य की कैसी रचना करने के लिए प्रेरित की, जो आज भी करोड़ों लोगों का जीवन का हिस्सा बन चुकी है। दोस्तों, तुलसीदास जी की सबसे प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। उन्होंने संस्कृत के बजाय लोक भाषा अवधि में राम कथा को प्रस्तुत किया, जिससे सामान्य व्यक्ति भी भगवान राम के चरित्र और उनके आदर्शों को समझ सके। रामचरितमानस में श्री राम को एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया। उनके माध्यम से तुलसीदास जी ने सत्य, त्याग, मर्यादा, कर्तव्य, करुणा और धर्म जैसे जीवन मूल्यों को महत्व दिया। दोस्तों, तुलसीदास जी के अन्य प्रमुख रचनाओं में विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली और हनुमान चालीसा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। हनुमान चालीसा तो आज भी घर घर में श्रद्धा के साथ पढ़ी जाती है। दोस्तों, युवाओं को तुलसीदास जी के बारे में क्यों जानना आवश्यक है, इसके बारे में भी कुछ बातें करें। दोस्तों, आज का युवा तेजी से बदलती दुनिया का हिस्सा बन रहा है। तकनीकी, सोशल मीडिया और प्रसिद्धता के जीवन में आसान बना दिया है और चुनौतियों से भरा भी है। ऐसे समय में तुलसीदास जी का साहित्य युवाओं को जीवन जीने की सही दिशा दे सकता है। दोस्तों, पहली बात, तुलसीदास जी हमें कर्तव्य और जिम्मेदारी का महत्व बताते हैं। असफलता पाने की दौड़ में कई बार हम अपने परिवार, समाज और जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। श्री राम के जीवन के माध्यम से तुलसीदास जी सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात, उनका साहित्य धैर्य और सकारात्मक सोच की प्रेरणा देता है। दोस्तों, जीवन में असफलता आना स्वाभाविक है, लेकिन असफलता के बाद हार मान लेना सही नहीं। युवाओं को तुलसीदास जी के जीवन से सीखना चाहिए कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने उद्देश्य और मूल्यों पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। तीसरी और महत्वपूर्ण सीख है कि अच्छे चरित्र का निर्माण। आज व्यक्ति की पहचान केवल उसकी डिग्री या नौकरी से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और चरित्र से भी होती है। तुलसीदास जी ने अपने साहित्य में विनम्रता, सत्य, सेवा, दया और मर्यादा जैसे गुणों को बहुत महत्वपूर्ण दिया है। दोस्तों, चौथी बात है, तुलसीदास जी हमें अपनी भाषा और संस्कृति से जुड़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने लोकसभा में साहित्य रचकर यह साबित किया कि साहित्य तभी अधिक प्रभावशाली बनता है जब वह आम लोगों के हृदय तक पहुँच सके। आज युवाओं को आधुनिक शिक्षा और तकनीक के साथ साथ अपनी भाषा, साहित्य और संस्कृति को भी समझना चाहिए। दोस्तों, तुलसीदास जी का साहित्य केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि यह मानवीय मूल्यों का भी साहित्य है। इसमें हमें परिवार के प्रति सम्मान, समाज के प्रति जिम्मेदारी, बड़ों के प्रति आदर, छोटों के प्रति स्नेह और कठिन समय में धैर्य रखने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती के अवसर पर केवल उनकी रचनाएँ याद नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि महान साहित्यकारों की वास्तविक जयंती तभी सार्थक है जब उनकी शिक्षाएं हमें व्यवहार में दिखाई दें। दोस्तों, तुलसीदास जी का साहित्य हमें अपनी जड़ों से जोड़ने का हुए एक बेहतर इंसान बनने की भी प्रेरणा देता है। युवाओं के लिए उनका संदेश तो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। दोस्तों, अभी हम चर्चा कर रहे थे हिंदी साहित्य के महान संत तुलसीदास जी के बारे में। दोस्तों, इस चर्चा के बाद आइए सुनाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों इस गाने के बाद आइए सुनते हैं वार्ता। विषय है फोटोग्राफी शौक से रोजगार। वार्ताकार हैं डॉक्टर किरण कुमारी।
1: आज के दौर में सभी लोग अपने मोबाइल से फोटो खींचते रहते हैं। लोग इतनी अच्छी फोटो खींचते हैं कि सभी लोग उनकी खींची फोटो की तारीफ किए बिना नहीं रह सकते। अगर आपको अच्छी फोटो खींचने की समझ है, फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी का शौक है, अगर बेहतर तरीके से कैमरा संभाल लेते हैं, साथ में क्रिएटिव सोच के भी हैं, तो इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं।

सकते हैं। फोटोग्राफी आपके लिए एक बेहतरीन स्वरोजगार साबित हो सकती है। छोटे शहरों में फोटोग्राफी का नाम सुनते ही जेहन में जो ख्याल सबसे पहले आता है वह है एक फोटोग्राफी स्टूडियो या फिर शादी ब्याह या किसी अन्य अवसर पर तैयार किए जाने वाले फोटोशूट पर। आधुनिक समय में फोटोग्राफी की थोड़ी समझ रखने वाला युवा भी अपनी योग्यता निखार सकता है। कैमरे का बढ़ता दायरा। पहले फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी का इस्तेमाल ज़्यादातर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी या फिर विवाह या किसी अन्य बड़े सामाजिक समारोह में ही होता था, पर इनकी दुनिया काफ़ी बड़ी है। स्टूडियो और सामाजिक समारोह के अलावा आज के समय में थीम आधारित पार्टी, फैशन उद्योग, कॉरपोरेट उद्योग, समाचार पत्र और समाचार चैनल, विज्ञापन एजेंसी जैसी कई जगहों में इनके बगैर बेहतर काम होना संभव नहीं है। छोटे शहरों में भी इनका तेजी से विकास हुआ है। ऐसे में वहाँ के प्रोफेशनल फोटोग्राफर के लिए मौके पैदा हुए हैं। संभावना। आज छोटे शहरों में थीम पार्टी का चलन काफ़ी बढ़ रहा है। ऐसे में थीम फोटोग्राफी और वीडियो फिल्म की मांग तेजी से बढ़ रही है। मॉडलिंग की दुनिया में जाने की चाहत रखने वाले छोटे शहर के काफ़ी युवा अपना पोर्टल फोलियो की तलाश में रहते हैं। इंटरनेट की बढ़ती पहुंच ने छोटे शहरों के फोटोग्राफरों के लिए बेहतरीन मंच उपलब्ध करा दिया है। आज छोटे शहर का फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर जीवन शैली, वन्य जीवन, पर्यटन संबंधी फोटोशूट आदि कर देश विदेश में आसानी से बेच लेता है। छोटे शहर में होने वाला फैशन शो, बिजनेस मीटिंग और अन्य कार्यक्रमों के फोटो और वीडियो शूट कर सके। आयोजकों के लिए भी यह किफायती होता है। इस कारण वह स्थानीय फोटोग्राफर को बुलाकर उसके कार्य के भुगतान के अलावा उसके रहने, खाने आदि की व्यवस्था भी करनी पड़ती है, जिससे बजट काफ़ी बढ़ जाता है। हाल फिलहाल में उत्पाद और विज्ञापन जगत का बाजार इतनी तेजी से बढ़ा है कि छोटे शहरों में भी विज्ञापन तैयार होने लगे हैं। प्रोडक्ट फोटोग्राफी और विज्ञापन संबंधी फिल्म तैयार होने लगी है। ऐसे में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की बेहतरीन जानकारी रखने वाले युवाओं को इन क्षेत्रों में आसानी से मिल जाता है। प्रशिक्षण जरूरी है। यह एक ऐसा रोजगार है जो पूरी तरह से व्यवहारिक जानकारी पर आधारित है। इसके लिए रचनात्मक सोच के साथ साथ प्रशिक्षण लेना भी जरूरी है। इस क्षेत्र में अच्छा करने के लिए विजुअल कमांड के साथ साथ टेक्नोलॉजी का ज्ञान अहम माना जाता है। प्रशिक्षण के जरिए ही हम कैमरे का सही उपयोग सीख पाते हैं। स्टिल फोटोग्राफी करते वक्त कैमरे की गुणवत्ता, कैमरे की शटर स्पीड, फोकस आदि का ध्यान रखना जरूरी होता है। स्टिल फोटोग्राफी के लिए जरूरी है कि रोशनी का ध्यान रखने की कला और फ्रेम का संयोजन सही हो। यह प्रशिक्षण से ही सीखा जा सकता है। वहीं वीडियोग्राफी में साउंड, कैमरे से जुड़ी जानकारियां, प्रकाश एवं तकनीक, दृष्टि का पैनापन और दबाव में काम करने की क्षमता का विकास भी प्रशिक्षण से ही आता है। ऐसे में यह जरूरी है कि अपना काम शुरू करने से पहले फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी का शॉर्ट टर्म कोर्स कर लिया जाए या फिर किसी एक्सपर्ट प्रोफेशनल फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर के साथ रहकर भी ये बारीकियां सीख सकते हैं। फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के क्षेत्र में स्वरोजगार शुरू करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपका स्टूडियो ही हो। अगर बाजार के किसी प्रमुख क्षेत्र में स्टूडियो या ऑफिस हो तो बेहतर होगा। इन स्टूडियो में खुद से तैयार किए गए अलग अलग तरह के
फोटो

0: फोटोशूट जैसे पोर्ट्रेट फोटोपोलियो फोटोशूट थीम वेस्ट पार्टी फोटोशूट प्रोडक्ट फोटोशूट आदि को जगह दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको संपर्क बनाना और खुद के बल पर काम पाना आए। अगर आपके संपर्क अच्छे हो तो बगैर ऑफिस स्टूडियो के भी काम चल कर आपके पास आएगा। ऑफिस के बदले साइबर वर्ल्ड में अपने लिए जगह जरूर बुक करवा लें। बिजनेस को देश विदेश तक पहुंचाने के अपनी वेबसाइट होना बेहद जरूरी है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में फ्रीलांस फोटोग्राफर से ज़्यादा मांग ऐसी वेबसाइट की है जो फोटोशूट कर उन्हें बेचने का काम करती है। न्यूज़पेपर, मैगजीन और कई अन्य जगहों पर ऐसी वेबसाइट की काफ़ी मांग रहती है जहां से फोटो आसानी से खरीदी जा सके। जीवन शैली, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन्य जीवन, पर्यटन, व्यंजन, ग्रामीण जनजीवन, प्रकृति और कला संस्कृति जैसे तमाम क्षेत्र के फोटो खींचकर आप बेच सकते हैं। ऐसे फोटो लेते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आज जो फोटो ले रहे हैं वे स्तरीय हों और उनमें नयापन हो, फोटो में काफ़ी क्रिएटिविटी दिखे, क्योंकि वर्तमान में काफ़ी ऐसी वेबसाइट हैं जो फोटो बेचने का काम करती हैं। ऐसे में अगर आपकी तस्वीर उनसे बेहतर होगी तभी आपको ज़्यादा और अच्छा काम मिलेगा। आप मॉडलिंग में जाने की चाहत रखने वाले युवाओं का फ्री पोर्टफोलियो तैयार कर उनके फोटोशूट अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हैं। उनका फोटोशूट करते समय यह ध्यान रखें कि वे आपकी वेबसाइट्स के अलग अलग सेशन की ज़रूरतों को पूरा करती हों।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता, विषय था फोटोग्राफी शौक से रोजगार। वार्ताकार थी डॉक्टर किरण कुमारी। दोस्तों, इस वार्ता के बाद आइए अब हम बातें करते हैं विश्व फोटोग्राफी दिवस के बारे में। दोस्तों, फोटोग्राफी केवल किसी तस्वीर को कैमरे में कैद करने का नाम ही नहीं, बल्कि यह समय, भावनाओं को, यादों को और इतिहास को सुरक्षित रखने की एक सबसे खूबसूरत कला है। एक तस्वीर कई बार वह कहानी कह देती है जिसे शब्दों में बताना कठिन होता है। हमारे बचपन में तस्वीरें परिवारों के साथ बिताए पल, किसी यात्रा की यादें या किसी ऐतिहासिक घटना की तस्वीरें, ये सभी हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। विश्व फोटोग्राफी दिवस का संबंध फोटोग्राफी के इतिहास से भी है। 9 अगस्त 1839 को फ्रांस में डाइग्रेटोनाइम नामक प्रारंभिक फोटोग्राफिक प्रक्रिया को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया। इस ऐतिहासिक घटना की याद में 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, आज के समय में फोटोग्राफी हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। पहले तस्वीरें लेने के लिए विशेष कैमरे और फोटो स्टूडियो की आवश्यकता होती थी, लेकिन आज लगभग हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन के रूप में कैमरा मौजूद है। सोशल मीडिया ने भी फोटोग्राफी को एक नया मंच दिया है। युवाओं के लिए फोटोग्राफी क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी बातें करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात फोटोग्राफी युवाओं की रचनात्मकता और काल्पनिक शक्ति को बढ़ाती है। एक अच्छा फोटोग्राफर केवल वस्तु को ही नहीं देखता, बल्कि उसके पीछे छिपी कहानी, भावनाओं को भी समझने की कोशिश करता है। दोस्तों, दूसरी बात, फोटोग्राफी युवाओं को नई चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने की क्षमता देती है। प्रकृति, समाज, लोगों और आसपास की छोटी छोटी घटनाओं को कैमरे में कैद करने ते हुए आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। दोस्तों, तीसरी बात, आज फोटोग्राफी रोज़गार और करियर का क्षेत्र भी बन चुकी है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी, पत्रकारिता, विज्ञापन, शादी और इवेंट फोटोग्राफी, ट्रैवल फोटोग्राफी तथा डिजिटल मीडिया जैसे अनेक क्षेत्रों में अनेक फोटोग्राफी की आवश्यकता होती है। यदि युवा अपनी रुचि और प्रतिभा को सही दिशा में दें तो उनको फोटोग्राफी के लिए एक सफल करियर भी बना सकते हैं। दोस्तों, लेकिन हमें फोटोग्राफी का उपयोग जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। किसी की तस्वीर बिना अनुमति के लेना या उनके गलत तरीके से सोशल मीडिया पर साझा करना उचित नहीं है। हमें दूसरों की निजता और सम्मान का अधिकार

प्यार करना चाहिए, साथ ही केवल लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए हर पल को कैमरे में कैद करने की बजाय कभी कभी उस पल को स्वयं भी महसूस करना चाहिए। दोस्तों, फोटोग्राफी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन की छोटी छोटी खुशियाँ कितनी ही महत्वपूर्ण हैं। एक मुस्कान, बारिश की पहली बूंद, प्रकृति का सुंदर दृश्य, परिवार के साथ बिताया समय या किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हुए किसी व्यक्ति की तस्वीर, ये सभी हमें मानवीय संदेशों से जोड़ सकते हैं। दोस्तों, एक अच्छी तस्वीर केवल दिखाई नहीं देती बल्कि महसूस भी होती है। फोटोग्राफी हमारे वर्तमान में भविष्य की यादों में बदल देती है और इतिहास में आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का माध्यम बन जाती है। दोस्तों, इस फोटोग्राफी के अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम कैमरे मोबाइल का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि रचनात्मकता, जागरूकता, सकारात्मकता और समाज में अच्छी कहानियों को सामने लाने के लिए भी करेंगे। दोस्तों, अभी हम बातें कर रहे थे फोटोग्राफी दिवस के बारे में। दोस्तों, अब कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव हो चला है, तो आइए सुनाते हैं आपको इसी के साथ एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों इसी गाने के साथ हमारा आज के युवानी कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दें। आपके दोस्त आराध्या माही को खुश रहे, स्वस्थ रहे। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। राज्य में परीक्षाओं को रद्द किए जाने की सरकारी घोषणा के बावजूद छात्र आंदोलन आज 25वें दिन भी जारी है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के बैनर तले छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और दो आंदोलनकारी अब भी आमरण अनशन पर बैठे हैं। छात्र नेताओं का कहना है कि जब तक सीबीआई को जांच नहीं सौंपी जाती तब तक उनका आंदोलन समाप्त नहीं होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हजारीबाग जिला ओलंपिक संघ की ओर से हजारीबाग में 3 दिवसीय उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडलीय नॉकआउट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। हजारीबाग के महापौर अरविंद कुमार ने बताया कि 3 दिवसीय यह आयोजन 29 अगस्त से शुरू होगा, जिसमें 6 प्रकार के खेल आयोजित किए जाएंगे। धनबाद में हो रही लगातार बारिश के कारण जयप्रकाश नगर में एक मकान की दीवार गिर गई, इससे कई दोपहिया वाहन मलबे में दब गए। चतरा जिले की सिमरिया पुलिस ने लालोंग बगरा रोड से 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। धनबाद जिला पुलिस की ओर से चलाए जा रहे साइबर जागरूकता अभियान में अब स्कूली बच्चों को भी जोड़ा जा रहा है। छात्रों को साइबर सेफ्टी मित्र के रूप में कार्य करने की दिशा में जागरूक किया जा रहा है। और हजारीबाग जिले के ईचाक प्रखंड अंतर्गत जोगीडीह गांव से मनाई चौक तक जाने वाली सड़क की बदहाल स्थिति से परेशान ग्रामीणों ने जर्जर सड़क पर सांकेतिक रूप से धान रोपनी कर विरोध जताया। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

खुरहा चपका, माने खुरहा खुर पका मुंह पका, मतलब खुर में घाव हो जाएगा और मुंह में घाव हो जाएगा, अफेक्टेड होते हैं। उसके अलावा तेज बुखार, जैसा मैंने कहा मुंह में छाले या घाव, जीभ एवं मसूड़ों में घाव, खुरों के बीच घाव। इंजुरी है, हम उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, या साफ बर्तन सही से नहीं कर रहे हैं, इन सभी कारणों से इन्फ्लेमेशन हो जाने की वजह से क्या होता है, इसका सबसे बड़ा कारण यह है ना कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से हो सकता है पहला। दूसरा, अगर इसकी इलाज में थोड़ी सी भी कौतूहल बरती गई या देरी हुई तो वो जो उसका बांट है, थन है, पूरा बर्बाद हो जाता है और क्वार्टर्स बर्बाद होते हैं, धीरे धीरे करके सारे क्वार्टर्स में इन्फेक्शन फैलेगा और वो अलग रखें।

0: आशुशाला और उपकरणों के नियमित सफाई करें। हो जाने के बाद सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यानी लक्षण अनुसार उसका इलाज करें। जैसे मान लीजिए कि आप उसके जो खुर में मुंह में उसको कुछ ऐसा टॉपिकल ऑइंटमेंट दें जिससे कि उसको रिलीफ मिले, और उसके अलावे उसको अगर ज़रूरत पड़ रही है तो उसको साथ में जैसी भी ज़रूरत है लक्षण अनुसार उसको ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है।
1: जी, दुधारू पशुओं में अक्सर थनैला की बीमारी हो जाती है, तो हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि थनैला बीमारी क्या है और इसे दूध उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है।
0: जी, जैसा कि नाम है थनैला यानी मैस्टाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ मेमरी ग्लैंड यानी थन का सूजन, लाल होना, यह दुधारू पशुओं में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण समस्या है क्योंकि अगर किसी दुधारू नहीं कर रहे, इन सभी कारणों से इन्फ्लेमेशन हो जाने की वजह से क्या होता है, इसका सबसे बड़ा कारण यह है ना कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से हो सकता है पहला। दूसरा, अगर इसकी इलाज में थोड़ी सी भी कौतूहल बरती गई या देरी हुई तो वो जो उसका बांट है, थन है, पूरा बर्बाद हो जाता है और क्वार्टर्स बर्बाद होते हैं, धीरे धीरे करके सारे क्वार्टर्स में इन्फेक्शन फैलेगा और वो जानवर जो है अच्छा खासा दूध देने वाला जानवर भी पूरी तरह से उसके दूध देने की क्षमता खत्म हो सकती है। लक्षण की बात करें तो थन गर्म और सूजा हुआ, थन में दर्द, दूध में थकिया या असामान्य परिवर्तन, दूध की मात्रा कम होना, गंभीर स्थिति में पशु को बुखार और कमजोरी होना है। अब बचाव की बात करें, जैसा मैंने कहा दूधों को पहले और बाद में थनों की स्वच्छता करें, साफ हाथों से दुहाई करें, दुहने के बाद साफ एवं स्वच्छ बर्तन का प्रयोग करें, पशु को गीली गंदी जगह पर ना रखें। अगर आप देख रहे हैं कुछ भी लक्षण है मैस्टाइटिस के, आप तुरंत उसका टेस्ट, कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट कराएं, प्रॉपर एंटीबायोटिक्स दें, प्रॉपर ट्रीटमेंट करें।
1: जी, अक्सर पशुओं के पेट में कीड़े हो जाते हैं।
0: जी,
1: तो पेट के कीड़ों और अन्य आंतरिक परजीवियों से पशुओं को कैसे बचाएं?
0: ये छोटी सी लगने वाली समस्या बहुत बड़ी समस्या होती है और आपको, क्योंकि ये लोग चरते हैं कृष्णा जी, ग्रेजिंग करते हैं, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, भेड़ हो, और हम उनसे उन्हें उनका ग्रेजिंग जो होता है बहुत महत्वपूर्ण सोर्स होता है मेजॉरिटी केसेस में, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ससेप्टिबल होते हैं, मतलब परजीवी जैसे कि आंतरिक परजीवियों के, ठीक है, जिसको हम लोग एंडोपैरासाइट्स कहते हैं। तो अगर हम सही से उसका सही से नहीं देख रहे हैं तो एंथेलमिंटिक्स से भी हमें उन्हें बचाना है, हेलमेंट से भी बचाना है, तो इन सभी कारणों से हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ तक परजीवियों की बात करें तो उसके प्रमुख लक्षण होते हैं वजन कम होना, शरीर कमजोर होना, दस्त या पाचन संबंधी समस्या होना, दूध उत्पादन में कमी होना, बालों की चमक कम होना, कुछ परजीवी संक्रमणों में जबड़े के नीचे सूजन जिसे बॉटल जॉ कहा जाता है, ये भी हो सकता है। और जहाँ तक हम बचाव की बात करें तो पशु चिकित्सक की सलाह से उचित समय पर हमें कृमिनाशक दवा देना चाहिए और साथ ही हमें रेगुलर डीवॉर्मिंग करना चाहिए। इस बारे में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमें पशु चिकित्सक से सलाह अवश्य लेनी चाहिए क्योंकि गोबर का अगर हो सके तो उचित जाँच भी कराएं, साफ पानी उपलब्ध कराएं, और हाँ, जो बहुत ज़रूरी है, दूषित चारागाहों से उन्हें बचाना चाहिए।
1: ये तो आपने बता दिया आंतरिक परजीवी के बारे में।
0: जी,
1: अब बाहरी परजीवी जैसे टीक, जू और मक्खियों से पशुओं को क्या नुकसान होती है?
0: जी, ऐसा लगता है ना सोच करके ये बहुत ही छोटी सी चीज है, समस्या कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार क्या होता है ना कि ये जो बाह्य परजीवी होते हैं बहुत सारे इम्पोर्टेंट बीमारियों के वेक्टर्स होते हैं, कारक होते हैं, उसे कैरी करते हैं, वाहक होते हैं। उसके अलावे अगर यह बाह्य परजीवी जैसे अठेल, चमकंड, जू, ये अगर बहुत ज़्यादा रहेंगे ना तो उससे खून की कमी होगी, त्वचा में खुजली, घाव होता, आप देखिएगा कि चकते जैसे स्केली लीजन्स होते हैं कई बार, मतलब उसमें ये स्किन जो होता है वो हटा हुआ होता है, छिलकुइया की तरह निकला हुआ होता है, उसके ऊपर से डर्मेटाइटिस देखिएगा आप, देखिएगा वो दिन भर जानवर खुजली कर रहा है, बेचैनी होगी, बाल झड़ते हुए होंगे, बुखार या अन्य संक्रमण हो सकता है, या जैसा मैंने बोला बहुत सारे बीमारियों का भी वो वाहक होता है। पशुओं के, इसके लिए पशुओं के शरीर की नियमित जांच करिए, उसको डिपिंग जो होता है एक्सटर्नल पैरासाइट के लिए डिपिंग, जिसको हम लोग जहर स्नान के नाम से गांव में जानते हैं ग्रामीण इलाके में, फिर बहुत काम करता है, जिसमें से बहुत सारे केमिकल यूज होते हैं जैसे साइपरमेथ्रिन, आप उसमें उसको गर्दन तक उसको बॉडी को डुबा करके उसका, उससे क्या होता है बाह्य परजीवी बहुत हद तक हटते हैं। उसके अलावे जो होते हैं कुछ ऐसे हैं जैसे आइवरमेक्टिन से भी इंडो और एक्टो दोनों पैरासाइट भी कई बहुत हद तक समस्या का निदान होता है।
1: जी, तो पशुओं में दस्त की समस्या क्यों होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है?
0: जी, दस्त की समस्या इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग जिसको इग्नोर करते हैं, अगर वो ज्यादा हो और अगर उसका सही से इलाज ना हो तो वो उसमें

0: और दस्त बहुत सारे अन्य बीमारियों के लक्षण को भी पता करने में आपको मदद करता है। प्रमुख लक्षण बार बार पतला गोबर, कमजोरी, शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी, भूख कम होना और दूध उत्पादन में कमी। और जहाँ तक बचाव की बात करें कृष्णा जी, हमेशा स्वच्छ और पर्याप्त पानी दें, सड़ा बासी फफूंदी लगा चारा ना खिलाएं, क्योंकि ये दस्त एक ऐसा चेक कोई वो बीमारी नहीं है, वो बहुत सारे बीमारी में मैनिफेस्ट हो सकता है कृष्णा जी, चाहे वो डाइजेशन इनडाइजेशन हो, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, बल्कि पैरासिटिक लोड ज़्यादा है, तो हमें ये रूल आउट करना है कि वो क्यों हो रहा है और अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट करना है। तो ये इस तरह की जो बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं दस्त है, तो दस्त जो है वो ऐसे समस्या नहीं कह सकते हैं, वो बहुत सारे समस्याओं का प्रतिबिंब भी हो सकता है
1: जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नंदिनी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाइयों को दुधारू पशुओं में होने वाले प्रमुख बीमारियों और इसके निदान के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
0: जी। धन्यवाद।
2: तो भाई बहन मन, एखन हमरे दुधारू पशु मन में का का बीमारी होएला और उकर से हमरे मन पशु मन के का तरी बचाई सकीला, इकर बारे में जानकारी कर ली बतात रहे डॉक्टर नंदिनी कुमारी और इनकर से कृष्ण जीवन भाई गोठियाई रहे। तो कृष्ण जीवन भाई आगे बताओ का जुगाड़ है, गीत गोविंद होए चाहिए?
1: आओ एगो नागपुरी में गीत सुनत है, केतकी देवी और संगी मनकर गाओ।
2: चलो तब सुन लेवेला।

0: तो भाई बहन मन एखन हमरे मन नागपुरी में गीत सुन ली केतकी देवी और संगी मन कर गावल।
1: तो अब आगे आओ किसान से राउल के भेंट करुआ थे।
0: चलो तभी किसान से राउल कर करल गोइठ के सुन ले विला।
1: हाँ आओ सुन थे। किसान भाई बहन मने आज हमार स्टूडियो में एगो महिला किसान है कमला उराव। ये गाय पालन भी करे ना बकरी पालन भी करे ना। तो आओ आज इनकर से जानकारी करा थी कि ये कैसे कैसे गाय और बकरी के पालन करे ना से कर बारे में। तो कमला बहन रौर के जोहार करा थी।
2: जोहार
1: के रौर रहे वाला कहाँ कर रहा की?
2: हम है कि चितरकोटा बड़का टोली के रहा की।
1: तो कमला बहन रौर का करी ले?
2: हम गाय बकरी यह सब के पाली ले और हमारे छुआ पुता कर जीविका चलाई ले।
1: अच्छा अच्छा। तो रौरे गाय पोसा थी बकरी पोसा थी। तो रौर के ये सब काम करे कर प्रेरणा कहाँ से मिलक?
2: हम तो ऐसे भी रही लेकिन अब आदमी कर देखा इस गाने हम देखा थी कि सब देखा थी कि अब खेती बारी में भी करी ला तो भी अकलाने परेशान हुए ला। बकरी पाला थी तो बकरी ने भी हमके बुझा थे कि चल भाई खेत बारी में भी करब और बकरी में भी करब। तो खेत बारी तो नहीं होगी तो बकरी के काठों के बेच ली तो छुआ पुता ले फीस फास देवेल हो जाए। कोई के हम बकरियों रख ली और अब उसने छुआ पुता के पढ़ा ली लिखा ली।
1: तो और एखन पढ़ल लिखल कतना है?
2: बगरा तो नहीं पढ़ी आठे क्लास पढ़ी।
1: तो एखन रौठना कतना गाय है?
2: गाय तो हमारे जगह एखन 13 गो है।
1: 13 गो है और छगरी मने?

0: तो सबसे पहले बताओ कि रावरे गाय जब पोई थी कैसे कैसे उकर रख रखाव करा थी?
1: हम गाय के तो रखा थी, अब एखन जैसे उकर सेड बना ली, सेड बनाएंगे उकर सेड में हम बढ़िया सुके पलस्तर जो करें से लखे ढलवाए दिली है और उकर में अब बढ़िया से रखा थी और एखन आधा दुधारू है आधा गभीन है तो जैसे है वैसे वैसा रखी ला। उकर बाद दुधारू के अलग रखी ला और गभीन का अलग रखी ला और बछड़ा बछरू के भी उके अलग रखी ला। सब को अलग अलग रख के फिर हम दूध माने दूही ला तब फिर गुहार से निकला के धूप दाने तानी कनु कर ले रखे ला बना ही वह जगह रखी ला।
0: गाय के रवरे शुरू शुरू पोसली तो शुरू में रवरे काय को गाय के रख ली?
1: रखे तो कमे रख रही पहले जब हम के उकर से लाभ हुए लाग लग तब हम कहली कि अब इकरे हमारे है नौकरी हके अब हम इकहे बढ़ाब और इकरे से हमार जीविका के चलाब कह के हम उकर ने लाइक के ली।
0: अच्छा दूध बढ़ावे खातिर और का करे ला गाय का?
1: कैल्शियम खियाई ला दर्रा देवी ला चोकर देवी ला और जो है घास देवी ला कुटी देवी ला।
0: तो ये सब कर व्यवस्था कहाँ से हो ला?
1: कुटी तो अपन घरे न हो ला और ये सब कैल्शियम मन के तो कीनी ला किन एक चीज के तो कीन लेवी ला दर्रा चोकर माने पोरा पतुर तो हमारे जगह है पोरा माने सके कुटी काट के दे देवी ला कटुआई ला मशीन से उकर खाए के ले सब करे ले उकर ले डाड़का जैसन बनाल गए वह डाड़का ने बोथ देवी ला पानी मशीन से पानी के ले गई और साइन देवी ला उकरे में सब चीज के चोकर भेलक दर्रा भेलक ये सब के।
0: और कौन कौन सा बीमारी होवे गाय में?
1: बहुत बीमारी होवे ला उकर में खुरहा होवे ला फोड़ा फुंसी भी होवे ला कभी चपका भी हो जाएला।
0: और ये सब कर उपचार का तरी करे?
1: अब हमें तो देखिल आँख में तब कैसे अभी ऐसा होला कई के हमें अनुभव लगाए ले और हमें डॉक्टर के बुलाए ले भी ला।
0: डॉक्टर के कहाँ से बुला भी ला?
1: आवाज़ ना डॉक्टर ने फोन नंबर दे रखा है ना।
0: ब्लॉक बटे से कोई सुविधा है कि नहीं?
1: ब्लॉक बटे से भी आवाज़ ना।
0: ये सब जब बीमारी हो ला तो रावरी जैसे बता ले खुरहा हो ला चपका हो ला और हम सुनी नहीं कि थाने में दूध फाट जाए उपचार कैसे करे ले? और मान लो कि जैसे डॉक्टर मन अगर नहीं आना तो घरेलू उपचार जैसे देहाती उपचार भी कुछ कुछ हो ला तो उकर उपचार कैसे कर सके किसान भाई बहन मन के बताए?
1: थनाइल होल कर बाद ने हुआ हमके पता चल जाल दूही ला तो थोड़े हल्का खून में आवेला। अच्छा, थनाइल होल में खून आवेल तब कहब कि हम अरे ये तो थनाइल हो गेला कह के फिर हम हुआ सोटा देवी ला और जवाइन इके डबकाई ला और हरदी इतना चीज के डबकाए के देवी ला तीन सांझ तक दे ली तो साफ हो जाएगा।
0: अच्छा अच्छा बिना डॉक्टर कर घरेलू दवाई से?
1: हाँ घरेलू दवाई है।
0: अब कितना दिन पियावे खोए लोग?
1: तीन दिन
0: में? हाँ तीन दिन में खत्म?
1: तीन दिन में खत्म नहीं होलक चार दिन पांच दिन पिया दे कोई दिक्कत ना खे।
0: और जैसे खुरहा चपका जो हो ले सकर का उपचार करे?
1: खुरहा चपका कर तो अब खुरहा कर तो अब उके तो कादो में लगा लो ठीक नहीं हो भी होले का करब उ धीरे धीरे अपने भी ठीक होवे ला कादो मन में लगाई ला खुरहा होवे लोले
0: तो देहाती दवाई होई
1: गेल। हां ए देहाती दवाई हके।
0: और छगरी एखन रठ न कहे को
1: 25 गो है?
0: 25 गो तो 25 गो छगरी के राखे कर का व्यवस्था करी?
1: ओकर घर बनाए दे ही एकठो।
0: का तरी घर बनाए?
1: घर ऐसने रख लखे घर बनाए ही कर में और चाहिरो कोना माने की पटरा बनाए दे पटरा में बैठेला।
0: अच्छा पटरा में
1: बैठे? हां बांस का ठठसा पटरा बनाए दे ही तो ओकरे ने जा जा के बैठा ना और नीचे रहल से मन के सबके बढ़ेर सोढ़ेर के गोबर के बिहान के निकला लेविला।
0: अच्छा बकरी कर जैसे बैठे कुठे कर व्यवस्था रहेला बकरी मने जैसे पेशाब गिर देला पैखाना गिर देला
1: वो तो नीचे गिर जाए?
0: वो नीचे गिर जाए तो सह खातिर अरे जाली जैसन के बांस कर पटरा बनाए है ना।
1: हाँ।
0: तो चलो अरे गाय भी पोसली है छगरी भी पोसली है तो इस सब में रव की आमदनी कितना हो जाए?
1: इकर में तो आमदनी हमके तब लाभ में अलग से हम नहीं छोड़ा थी। अब एक ठो गाय अखन देवी 6 किलो शाम के देवी 5 किलो तो अब एखन उकर में तो हमके जतई भी पैसा हमके एखन आधा के डेरी में देवा थी सेंटर बटे तो एखन महीना ना आवेला हमके तो एक गाय में 7000
0: महीना।
1: हाँ
0: अच्छा तो बहुत बढ़िया है कमला बहन रवरे हमार स्टूडियो में आली और बहुत बढ़िया गाय पोसे कर बारे में और बकरी पालन कर बारे में बकरी पोसे कर बारे में रवरे बहुत बढ़िया जानकारी दिली रव के बहुत बहुत धन्यवाद है जोहार।
1: धन्यवाद जोहार।
2: तो भाई बहन मन एखन हमरे मन गाय और बकरी पालक किसान कमला उराव से

0: भाई कर करल बैठ के सुन ली।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहा है तेरे बीजू का।
2: उतना बोल रहे
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाए?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहा,
2: पर अब तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहा है, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: और इकरे संगे किसान वाणी कार्यक्रम कर बेरा सिरालक, ई कार्यक्रम के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, और प्रस्तुति रहे आकाशवाणी रांची। सुनोया भाई बहन मने आवरावरिन कर संगे कृष्ण जीवन पौराणिक संगे
0: मनीष भाई के देव विदा
4: जोहार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है ग्रामीण सभा।

ग्रामीण सभा सुमन सुनने वाले तमाम किसान भाई बहनों को प्रदीप का नमस्कार। आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पशुओं में गांठदार त्वचा रोग के बारे में। किसान भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी पशु अगर जब बीमार होगा तो किसान भाइयों को परेशानी होगी, और बीमारी जब ज़्यादा बढ़ेगी तो पशु की मौत भी हो जाती है, जिससे किसान भाइयों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो किसान भाई, आज हम सबसे पहले गांठदार त्वचा रोग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यह बीमारी जो है मुख्यतः गौ जाति एवं भैंस जाति के पशुओं को संक्रमित करने वाला एक विषाणु जनित छुआछूत की बीमारी है। यह बीमारी मुख्य रूप से संक्रमित मक्खियों, मच्छरों एवं चमोकन के काटने से होता है। बीमार पशु के आँख नाक के स्राव, लार एवं घावों के स्राव एवं खोटी के संपर्क में स्वस्थ पशु के आने पर भी इस बीमारी के प्रसार की संभावना रहती है। बीमार दुधारू गाय भैंस के थन में घाव हो जाने के कारण दूध पीने वाला बाछा बाछियों में भी यह बीमारी फैल जाती है। गाभिन गाय भैंस यदि इस रोग से संक्रमित हो गई है तो उससे जन्म लेने वाला बाछा बाछियों में भी यह बीमारी जन्म से आ जाती है। संक्रमित सांड भैंसा से पाल दिलवाने पर भी यह बीमारी गाय भैंस में फैल जाता है, अथवा संक्रमित सीमेन द्वारा AI कराने पर भी यह बीमारी फैलता है। तो अब तो आप समझ गए होंगे किसान भाई कि पशुओं में गांठदार त्वचा रोग होने के कारण क्या हैं। अब हम बात करेंगे इनके लक्षण क्या हैं, अगर हो गया है तो उसमें लक्षण कौन से होंगे। तो संक्रमित जो पशु होगा वो प्रारंभ में आँख एवं नाक से स्राव आएगा, लसिका जो ग्रंथियों में है उसमें सूजन होगी, तेज बुखार होगा,

दुग्ध उत्पादन में गिरावट होगी, त्वचा पर गांठदार घाव का उभरना जो कुछ समय के बाद लगभग पूरे शरीर पर फैल जाता है। आमतौर पर मादा पशुओं में थनैला होना देखा गया है। कुछ बीमार पशु इस रोग के संक्रमण से निमोनिया के भी शिकार हो जाते हैं। इस बीमारी से मृत्यु दर लगभग 10% है। किसान भाई, इस बीमारी से बचाव और रोकथाम के लिए समय समय पर स्वस्थ पशुओं को टीका लगवाएं। पशुओं में इस बीमारी के लक्षण पाए जाने पर इसकी सूचना अविलंब अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक को दें। बीमारी के प्रारंभ में ही पशुओं का उपचार कराएं। बीमार पशु को अन्य पशुओं से अलग रखें, साफ सफाई का पूरा ध्यान दें। मच्छर, मक्खी और चमोकन पर नियंत्रण हेतु कारगर उपाय करें, यथा गौशाला के पास जल जमाव नहीं होने दें, नालियों को साफ रखें, बाह्य परजीवी नियंत्रण हेतु दवा का उपयोग करें, संक्रमित पशुओं को बाहर चारागाह में चरने हेतु नहीं भेजें, संक्रमण के दौरान पशुओं का क्रय विक्रय न करें, गौशाला में आवाजाही पर कड़ा नियंत्रण रखें, बीमार मृत पशुओं को लगभग 1.5 मीटर गहरे गड्ढे में चूने एवं नमक के साथ दफना दें, बीमार पशु द्वारा उपयोग में लाए गए पुआल बोरा आदि को जला दें एवं पशुशाला को कीटाणुरोधी घोल से सफाई करें। तो ऐसा करके आप गांठदार त्वचा रोग से छुटकारा पा सकते हैं, या जो अन्य जो पशु हैं आपके, उसे आप इस बीमारी से बचा सकते हैं। एक और जो है बीमारी है पशुओं में होने वाली, खासकर बकरी भेड़ में ज़्यादा होती है, यह है PPR। किसान भाई, PPR बकरी एवं भेड़ों में होने वाला एक विषाणु जनित छूत की बीमारी है। छींकने एवं सीधे संपर्क से यह बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। संक्रमित पशुओं में जो बीमारी के लक्षण हैं, उसमें उनको तेज बुखार का होना, नाक से पानी आना, खांसना, छींकना, नाक से नेटा निकलना, मुंह, आंख, मसूड़ा तथा जीभ के नीचे के भाग का म्यूकस जो है परत पर सड़ना एवं नोचा जाना, पतला दस्त होना, शरीर में पानी की कमी और अंततः मृत्यु। इसलिए किसान भाई, PPR रोग के विरुद्ध टीका प्रत्येक वर्ष अवश्य लगवाएं और PPR को दूर भगाएं। तो ये तो बात हुई पशुओं की। अब हम बात करेंगे सब्जियों में कीट प्रबंधन की। किसान भाई, सबसे पहले बात फूल गोभी और बंद गोभी की फसल की। तो इसमें जो नासी जीव जो कीट लगते हैं, उसमें है डायमंड बैक मॉथ। इसमें मादाएं पत्तियों पर हल्के पीले रंग के एकल अंडे देती है। इल्लियां हल्के पीले हरे रंग की होती हैं। वयस्क छोटा व हल्के भूसर रंग का पतंगा होता है। नवजात लार्वे पत्ती के उत्तकों को खुरचकर उसका भोजन करते हैं, परंतु विकसित लार्वे पत्तियों को काटकर उनमें छेद बना देते हैं। बंद गोभी इस कीट का सबसे पसंदीदा पोषक है। फसल को होने वाली क्षति मुख्यतः पछेती शरद ऋतु में अधिक होती है। और दूसरा जो प्रमुख कीट है किसान भाई फूलगोभी और बंद गोभी का, वह है तंबाकू की इल्ली। यह कीट बरसात के मौसम में उगाई जाने वाली फूलगोभी

और बंदगोभी की फसल को सर्वाधिक क्षति पहुंचाता है। ये पत्तियों का हरा पदार्थ खुरच डालते हैं और इस प्रकार पत्ती पर केवल बाह्य परत रह जाती है तथा पत्ती जालीदार दिखाई देती है। विकसित लार्वे मुलायम पत्तियों तथा पौधों के नए भागों को बहुत तेजी से खाते हैं। लार्वा कालापन लिए हुए धूसर से लेकर गहरे हरे रंग का होता है और इसके शरीर के दोनों ओर गहरी लंबवत पट्टियां होती हैं। तीसरा जो प्रमुख कीट है वह है तना भेदक। इसमें जो है पतंगा हल्का धूसरपन लिए हुए भूरे रंग के होते हैं। इल्लियां आरंभ में पत्तियों को छेद देती हैं, बाद में ये इल्लियां तने में छेद करती हैं तथा अनेक प्ररोह बन जाते हैं। परिणाम स्वरूप संक्रमित पौधे पार्श्व प्ररोह बनाते हुए मर जाते हैं और उनमें गोभी का फूल नहीं बनता है। गोभी का चेपा, चेपे का प्रकोप पछेती शरद ऋतु में गंभीर होता है। उत्तकों से रस चूस लेने के कारण पौधों की बढ़वार रुक जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप गोभियां घटिया गुणवत्ता वाली होती हैं। गहन संक्रमण होने पर पौधे पूरी तरह सूख जाते हैं। चेपा शहद जैसा एक पदार्थ उत्पन्न करते हैं जिसके कारण फफूंद विकसित होते हैं, जिससे संक्रमित पौधों पर एक काली परत जम जाती है। परिणाम स्वरूप प्रकाश संश्लेषण तथा पौधे की वृद्धि में बाधा पहुंचती है। ये तो बात हुई कीट की। अब हम बात करेंगे बंद गोभी और फूल गोभी के फसल में लगने वाले प्रमुख रोग की। तो रोग जो है किसान भाई, इसमें सबसे प्रमुख रोग है डैम्पिंग ऑफ। इस रोग के परिणाम स्वरूप फसल में पौधों की संख्या कम हो जाती है तथा कभी कभी क्षति इतनी गंभीर होती है कि फसल की पुनः बुआई अपरिहार्य हो जाती है। इसके प्रमुख लक्षण हैं पौध का न उभरना, जिसके परिणाम स्वरूप बीज या पौधे सड़ जाते हैं, अथवा नई उगी हुई पौध अचानक मर जाती है। दूसरा प्रमुख रोग है मृद्रोमिल फफूंद। यह कीट बंद गोभी तथा फूल गोभी में पाया जाता है। इस रोग का प्रमुख लक्षण है पत्तियों की निचली सतह पर बैंगनीपन लिए हुए भूरे रंग के धब्बे। पत्ती की निचली सतह पर सामान्यतः सफ़ेद धूसर मृद्रोमिल बढ़वार दिखाई देती है। आगे चलकर पत्ती कागज के समान होकर सूख जाती है। परिपक्व बंद गोभी पर मृद्रोमिल फफूंद गोभियों पर गहरे धब्बों के रूप में दिखाई देती है। अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग, यह भी जो है बंद गोभी और फूल गोभी का प्रमुख रोग है। यह बरसात के मौसम में फूल गोभी और बंद गोभी का सर्वाधिक सामान्य कवकीय रोग है। पत्तियों पर छोटे और पीले रंग के धब्बेदार क्षेत्र दिखाई देते हैं। कवकीय संक्रमण के परिणाम स्वरूप फूल गोभी के शीर्ष पर भूरे रंग की विरंजकता उत्पन्न होती है। जब तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है तो ऐसे गर्म मौसम में रोग का प्रकोप बढ़ जाता है। काला जड़ सड़न रोग, यह भी रोग बंद गोभी की तुलना में फूल गोभी में अधिक गंभीर होता है। संक्रमण होने पर पौधों की निचली पत्तियां गिर जाती हैं और सूख भी सकती हैं। उत्तक पीले पड़ जाते हैं। रोग के प्रकोप से
गोभियों का बनना प्रभाव

तथा संक्रमित पौधों के गोभियों का आकार छोटा रह जाता है व गुणवत्ता घट जाती है। यदि रोग फसल की पछेती अवस्था में लगता है तो गोभियाँ सड़ भी जाती हैं। इसके प्रबंधन के लिए किसान भाई अच्छी जल निकास हेतु एवं डैम्पिंग ऑफ आदि से बचाने के लिए जमीन की सतह से लगभग 10 सेंटीमीटर ऊपर उठी हुई क्यारी तैयार करें। क्यारी की मिट्टी को 50 ग्राम प्रति वर्ग मीटर नीम की खल्ली से उपचारित करें। सड़न रोग से बचाव हेतु बीज को ट्राइकोडर्मा के प्रभावी स्ट्रेन से 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचार करें। नर्सरी के दौरान रोगों के नियंत्रण हेतु ट्राइकोडर्मा की 250 ग्राम मात्रा को 3 किलोग्राम गोबर की सड़ी बारीक खाद अच्छी प्रकार मिलाकर एक सप्ताह के लिए छोड़ दें। बाद में 3 वर्ग मीटर क्यारी में मिट्टी में अच्छी प्रकार से मिला दें। मृद्रोमिल फफूंद के लिए 2.5 ग्राम प्रति लीटर जल की दर से मेंकोजेब 75 WP या मेटालेक्सिल 35 AC का छिड़काव करें। अल्टरनेरिया पत्ती धब्बे के लिए मेंकोजेब 75 W अथवा जीनेब 75 WP का 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 750 से 1000 लीटर पानी के साथ आप छिड़काव भी कर सकते हैं। संक्रमित पत्तियों को पौधों से तोड़कर हटा देना प्रभावी होता है। किसान भाई तना भेदक के लिए NSKE 5% या कार्बेरिल 50 WP का 1000 ग्राम अथवा मालाथियोन 50 EC का 1500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 1000 लीटर पानी के साथ छिड़काव करना चाहिए। फूलगोभी की पछेती फसल में चेपा के नियंत्रण के लिए 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एसीटामाइप्रिड 20 EC या डाइमिथाथियोट 30 EC का 650 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 1000 लीटर पानी के साथ छिड़काव करना चाहिए। पंखदार चेपा को फंसाने के लिए पीले चिपचिपे आप ट्रैप भी लगा सकते हैं। तो ये तो बातें हुई सब्जी में, खासकर फूल गोभी और बंद गोभी में लगने वाले कीट बीमारियां और उनके रोकथाम की। आइए अब सुनते हैं एक सफल किसान से भेंट।

0: तमाम किसान भाई बहन बालकों बुजुर्गों को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसानवाणी में। किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं एक सफल किसान, और ये सफल किसान भाई हमारे हैं गढ़वा जिला के गोंदा गांव के शिवनाथ कुशवाहा, जो मछली पालन भी करते हैं और मशरूम उत्पादन भी करते हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: अभी आप क्या कर रहे हैं शिवनाथ
1: कुशवाहा? अभी हम जिसे मछली पालन करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, और साथ साथ मशरूम पालन भी करते हैं, उसके साथ साथ ये आपका खेती गृहस्थी भी करते हैं।
0: बिल्कुल। जब तक हमारे किसान भाई लोग स्वरोजगार से जुड़े साधन को नहीं करेंगे, तब तक उनका चलना भरण पोषण होना बहुत मुश्किल है। सिर्फ खेती बाड़ी से कार्य नहीं चल सकता,
1: नहीं चलता,
0: क्योंकि अब हमारी कृषि व्यवसायीकरण के दौर से गुजर रही है।
1: जी जी।
0: अच्छा, अभी आप, अगर हम मछली पालन की बात करें, तो अभी मछली पालन में क्या कार्य हो रहा है?
1: मछली पालन के लिए पानी, जिसे पानी भर जाएगा तो बीज को लेकर के डाल देना है।
0: अच्छा, तालाब जैसे मछली पालन के लिए कितना बड़ा होना चाहिए?
1: अपने किसान के क्षमता के ऊपर, जिसे मान लीजिए कि 100x100 का है, तो उसमें मैंने 5 किलो बीज डाला जाना है, तो उसमें बढ़िया बेनिफिट होगा। अगर ज़्यादा डाल देते हैं तो उसे नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मछली का बढ़ाव कम होगा ज़्यादा घना होने पर। और मछली अगर जितने कम रहेंगे, 2000-2500 पीस रहेंगे, तो अच्छी से बढ़ेंगे और उसमें लाभ मिलेगा।
0: कितने तालाब हैं अभी आपके पास?
1: हमारे पास एक तालाब है जो 10 कट्ठा जमीन खरीद करके उसमें बनवाए हैं, और उसी से हम तैयारी अधिक करते हैं।

0: मिक्सचर खेती करने से वो हमें अलग अलग पैसा मिलता है, तो उससे हम अपने से तालाब खनवा करके और अपने
1: कितना तालाब है?
0: एक तालाब है।
1: अच्छा, कितना बड़ा?
0: एक तालाब है, एक बहुत बड़ा आहरा है जो कि 500 एकड़ का आहरा है।
1: अच्छा,
0: उसमें 1 क्विंटल 30 किलो बीज डलाया था 40 को किसान मिल करके, जिसे बेकार के पड़ा रहता है तो उसको 40 को किसान मिल करके उसको डाले हैं, तो 1 क्विंटल 30 किलो में 41 क्विंटल हमें मछली तैयारी हुआ।
1: तो मैंने गांव के ही किसान,
0: गाँव के किसान।
1: तो वहां पर कोई किसान जीवी समिति है मतलब?
0: एक समिति बनाए जिसे हम लोग एकगठन हुए कि ये बेकार के बहरा पड़ रहा है, इसमें हम लोग मछली अगर करते हैं तो 2 पैसा निकलेगा। एक किसान के 10,000 रुपया यानी 4 लाख रुपया का उसमें ये नफा हुआ। एक साल में हुआ।
1: यही सब जागरूकता।
0: और गांव-गांव में बहुत सा आहरा है, जो छोटा छोटा आहरा है, बड़े बड़े आहरा है, वो इसी बेकार के रह जाते हैं। तो हम सलाह देंगे कि हर गांव में जो जहां जहां है वो पानी का लगा हुआ, उस किसान वहां के सुने और इसी को करे, क्योंकि बीज जो है ना हर जगह मिलता है।
1: इसलिए इसका लाभ लेने की आवश्यकता
0: लेने, हाँ,
1: है।
0: हाँ,
1: और आप कभी भी तालाब ऐसे खाली नहीं छोड़े?
0: नहीं, खाली नहीं छोड़े।
1: मछली का बीज जगह आप डाल देते हैं
0: हाँ,
1: तो बेहतर उत्पादन आप ले सकते हैं, और साथ ही जल संचय भी आप करेंगे उसमें।
0: जी जल वो तो पानी को रोकेंगे तब तो होगा, और उसे साथ साथ और खेती तो करना है। पानी अगर यदि रहेगा तो हम सब्जी खेती भी कर सकते हैं उसी से, और बकत भी पालन कर सकते हैं, कई गो योजना है उसमें देख कर सकते हैं। इसीलिए मान लीजिए कि मछली है, तो मछली आप 1 रुपया का पूंजी लगाते हैं तो ATM की तरह, आज अगर आपको बेचना है तो आज 1 रुपया से 10 रुपया मैंने कहीं नहीं जाएगा। कितना अगर 100 ग्राम हुआ तो 10 रुपया कहीं नहीं जाएगा। तो हम यही सलाह देंगे कि किसान भाई जहां अगर जो तालाब वैसा है उस प्रकार से बेकार के पड़ा हुआ है उससे मछली का आप तो उसमें जरूर डालें।
1: अच्छा, एक बात और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी मछलियाँ पाले हुए हैं अभी?
0: हमें रेहू है, कतला है, कोमलकार है, गिलसकार है, चार पांच वैरायटी का जो मछली है। तो ये सब डालने से अलग अलग सप्ताह में चलते हैं, नुकसान नहीं होता है। हाँ,
1: और मशरूम की बात अगर हम करें तो मशरूम की क्या स्थिति है?
0: मशरूम का अभी तो हम शुरू करते हैं, मार्च तक एकदम मैंने लगातार चलता है, जो कि 150 से 200 रुपये किलो बिकता है, और आपका उसमें अगर 100 रुपया पूंजी लगाते हैं तो हम देख रहे हैं कि 300 रुपये। ये हम राय देंगे कि मशरूम का खेत एक ही महीना में होने वाला है, और बहुत बढ़िया हो मैंने बहुत बढ़िया उसको है। और ऐसा कोई धंधा नहीं है कि जो कि एक ही महीना में निकल जाए।
1: मधुमक्खियाँ भी पाले?
0: हाँ, मधुमक्खी भी पाले हैं सर, मधुमक्खी पाले हैं। 2 बार साल में रस लेते हैं हम लोग, तो कहीं बाहर नहीं ले आ पाते हैं, लेकिन सब्जी के आर पर रखते हैं, और सब्जी के आर पर रखते हैं उसी से हम लोग का ये चल जाता है उन लोग का।
1: और ये तो मशरूम की बात हुई और मधुमक्खी पालन की भी कर लिए हम
0: जी।
1: अब हम ये जानना चाहेंगे अभी खेती बाड़ी की क्या स्थिति है?
0: खेती बाड़ी तो हम भी बढ़िया है सर अभी।
1: हाँ,
0: मान चलिए कि सब्जी अभी करेला लगा रहे हैं, लौकी लगा रहे हैं, नेनुआ
1: लतर वर्गी अभी चल
0: लतर वाला है, और करेला है, लौका है, नेनुआ है, भिंडी भी है उसके साथ साथ, और उसके साथ साथ एक लाइन में भिंडी का लगा, एक लाइन में रहर लगा, एक लाइन में बोदी लगा, एक लाइन में मक्का लगा के साथ साथ मिक्सचर लगाने से क्या होता है, एक अगर हुआ तो उसके खत्म होने के बाद अगला हो जाएगा, जिससे रहर लेट है। तो लेट वैरायटी रहर का है, तो उसके रहर जो है तो किसी को दबाएगा नहीं, रहर को सब कोई दबाएगा। जिसे मान लीजिए बोदी लगा दिए तो बोदी लगा दी तो रहर को दबाएगा, और उसके साथ साथ भिंडी लगा दी तो भिंडी लगा दी तो रहर को दबाएगा, रहर को अभी कमजोर कर देगा। जब इन लोग खत्म हो जाएगा ना तो पूरा रहर अपना खोन के गा, और रहर बढ़िया से पैदा होगा।
1: सही बात है।
0: हाँ,
1: अच्छा, ये आपने इतनी सारी कार्य कर रखा है कृषि में, तो आप कहीं से प्रशिक्षण?
0: हाँ जी, बिना प्रशिक्षण को तो नहीं कर पाए।
1: कहाँ से
0: ये सब? हम अथी से गढ़वा विज्ञान केंद्र से लिए हैं प्रशिक्षण लेकर के, और प्रशिक्षण लेकर के अब जो मछली का है तो रांची लिए, तो ये सब जो जहाँ जहाँ
1: प्रशिक्षण लेने गए थे
0: जी जी मछली वाले में, हम हटिया जो होता है ना वहाँ पर जाके प्रशिक्षण मछली के लिए लिए, और वहाँ से सीखे और अपने उनके तुरंत तत्काल किए। और मधुमक्खी के दिल्ली भी बोर्ड से आया था गढ़वा में विज्ञान केंद्र में, उसी से प्रशिक्षण लिए और तुरंत किए। गढ़वा के जो अशोक सर है ना वो हमको जबरदस्ती दिवाए, तो हम सोचे कि कर लेना है, अब देखे तो करके सफल हो गए। आज 7 साल लगभग मधुमक्खी का
1: चल रहा है। मछली
0: पालन भी साथ साथ, इसे मिक्सचर खेती है। मिक्सचर खेती करने से क्या होता है कि 2 पैसा इसमें से 2 पैसा।
1: कितने दिन के प्रशिक्षण दिए गए थे?
0: 7 दिन का।
1: किस चीज के लिए?
0: ये मधुमक्खी के लिए।
1: अच्छा।
0: और मछली के लिए।
1: अच्छा, 7-7 दिन का।
0: 7-7 दिन का।
1: और ऐसे अन्य कृषि?
0: अन्य कृषि से 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए
1: है ना।
0: हाँ, तो ये सब अगर

0: बिना जानकार के अभी के समय में जो ऐसा माहौल है किसान का, वो कोई खेती में चाहे कोई करना नहीं चाहता है, सब लोग नौकरी के चक्कर में भाग रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि नहीं, नौकरी जो नौकरी से भी अच्छा आपको ये कृषि है,
1: बिल्कुल
0: तो हम चाहेंगे कि कृषि लोग चक्कर में रहें। देखिएगा कि वो समय बिताते हैं पढ़ते लिखते और कुछ कर नहीं पाते हैं।
1: अच्छा, आप जो प्रशिक्षण लिए तो इसमें कुछ मानदेय भत्ता भी मिलता होगा?
0: मानदेय भत्ता वहाँ मिला था, आने जाने का भाड़ा मिला था, और 100 रुपये की क्या 50 रुपये लगभग, में ख्याल तो नहीं है लेकिन इतने मिला था। लेकिन हमें पैसा की ज़रूरत नहीं था, हमको सीखना था।
1: सीखना था, बात
0: जी
1: सही है।
0: जी जी
1: अगर हमारे किसान भाई जुड़ना चाहें, मान लिए ये सब रोजगार से और प्रशिक्षण लेना चाहें, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं?
0: उसके लिए जैसे मान लीजिए अगर किसान भाई के लेना चाहते हैं, जहाँ विज्ञान केंद्र है वहाँ जा करके उन लोग ऑफिस में ये बात को रखें और उससे सीखें और प्रशिक्षण लेकर के अपना घर में करें। बिना प्रशिक्षण का नहीं हो पाएगा कोई काम, अगर करते हैं तो कुछ उसमें कमी हो जाएगा तो उससे नुकसान हो जाएगा।
1: नुकसान हो
0: जैसे मान
1: जाएगा।
0: लीजिए कि अगर मशरूम है, मशरूम में कई तरह की बीमारी आता है, तो अगर प्रशिक्षण नहीं लें, प्रैक्टिकल नहीं किए, तो वो नहीं कर पाएंगे, किताब से पढ़ करके नहीं हो पाएगा।
1: इसके लिए हमारे किसान भाइयों को प्रशिक्षण के लिए आपके जिला में कृषि विज्ञान केंद्र खोला गया है,
0: जी
1: वहां से हमारे किसान भाई
0: जी
1: संपर्क
0: जी
1: करें। कृषि अनुसंधान केंद्र है,
0: हाँ
1: आत्मा है, जिला कृषि
0: हाँ
1: कार्यालय है, वहां से
0: हाँ
1: संपर्क करें और लाभ लें।
0: हाँ सर,
1: यही
0: यही हमारा
1: रास्ता है
0: सुझाव है, यही
1: जी,
0: रास्ता है।
1: और वो ज्यादा बेहतर भी
0: हाँ,
1: होगा।
0: वही बेहतर होगा।
1: आपने किन किन योजनाओं का लाभ लिया, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, चाहे और भी बहुत सारी योजनाएं हैं?
0: किसान क्रेडिट कार्ड से लिए हैं 35,000 रुपया, और इसे तो मैंने हम उतना कुछ नहीं लिए हैं। और इसे विज्ञान केंद्र से,
1: मैंने
0: जो
1: बराबर लेते रहते हैं, भरते
0: विज्ञान
1: रहते हैं।
0: केंद्र से जो है ना बीज जो जाता रहता है, तो डेमो के लिए उस प्रकार से मिलता है।
1: अच्छा।
0: अच्छा, कृषि विभाग है उससे कुछ आता है तो उससे भी मिलता है, इसलिए कि जानकार हैं और जानते हैं तो उन लोग हमको देते हैं कि लो करो आगे बढ़ाओ किसान को, तो उसी करने के लिए देते हैं तो करते हैं।
1: तो इस तरह से खेती बाड़ी
0: हाँ,
1: सब
0: खेती
1: जुड़ा
0: बाड़ी
1: हुआ है।
0: करते हैं,
1: वाह, बहुत
0: मेरे
1: सही।
0: जानकारी तो होना चाहिए खेती बाड़ी के लिए। मान लीजिए बिना प्रशिक्षण नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा, प्रशिक्षण द्वारा होता ही तो अच्छा होता। हम किसान भाई की यही कहेंगे कि अगर ये बात को मैंने सुन रहे हैं तो प्रशिक्षण ले, हर जगह विज्ञान केंद्र है हर जगह जिले में,
1: अच्छा,
0: तो
1: आपके यहाँ बाजार व्यवस्था क्या है, कहाँ बेचने
0: बाजार
1: जाते हैं
0: ज़्यादा
1: जो भी उत्पादित करते हैं कृषि
0: गढ़वा
1: भाई?
0: है सर, मिराल है,
1: मिराल जाते
0: जिसे
1: हैं।
0: थोक में हम लोग को बेचना है तो मिराल और गढ़वा, और नहीं तो
1: अच्छा,
0: मिराल हम लोग को बिक जाता है। हाँ,
1: आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं?
0: हम लोग के परिवार में दो, हमारा लड़का है, एक लड़की की शादी कर दिए हैं, और दोनों पति पत्नी हम लोग हैं। ऐसे हमारा पिताजी हैं, माताजी हैं,
1: और सब कृषि
0: और
1: से भी
0: हाँ
1: भरण
0: सब
1: पोषण
0: कृषि से,
1: सबका चल
0: सबका
1: रहा है।
0: भाई है, भवा है, सब एक ही में रहते हैं, मिलजुल के सब करते रहते हैं।
1: इसी तरह से खेती
0: और
1: बाड़ी
0: मजदूरा
1: चलता
0: वजूरा भी लगा काम करते हैं, अकेले तो हो नहीं पाएगा, इसीलिए हम
1: है।
0: लोग आगे आज बढ़ रहे हैं।
1: अगर हमारे किसान भाई को जुड़ना हो कृषि विज्ञान केंद्र से, तो वो क्या करेंगे?
0: तो पहले जा कर के अगर अथी कृषि विज्ञान में जाकर पूछेंगे कि सर आपके यहाँ प्रशिक्षण कब है, हम ये चीज़ का प्रशिक्षण लेते हैं, तो वो समय देंगे कि कब हम दें।
1: अरे, ज्यादा किसान हो जाता है तब वो प्रशिक्षण
0: तब
1: देना शुरू कर देते
0: 30
1: हैं।
0: अगर किसान हो गया ना
1: ओ
0: तो प्रशिक्षण देना उसी समय शुरू कर देंगे, टाइम
1: अच्छा,
0: देंगे कि ठीक है 30 किसान की संख्या में,
1: तो
0: तो
1: इसके
0: या
1: लिए उनको संपर्क करना होगा
0: संपर्क करना
1: समूह
0: होगा
1: में।
0: समूह में। अगर या तो नहीं समूह नहीं है तो अगर विज्ञान के तो जाना होगा, ज़्यादा 30 में संख्या है, कहेंगे जो हमको यहीं चाहिए प्रशिक्षण लेना चाहते हैं घर
1: तो
0: पर,
1: वहाँ मिल
0: तो
1: जाएगा।
0: वहाँ पर जाके सर भी कर देंगे।
1: इस तरह से
0: इस तरह से भी हो,
1: जी।
0: जानकारी होना चाहिए, किसी भी चीज़ के मैंने परेशानी नहीं होगा, जानकारी होना चाहिए कोई भी चीज़ का, बीज के लिए, मशरूम के, स्पॉन के लिए।
1: केसीसी के लिए आप कैसे, मतलब हर साल केसीसी का लाभ लेते हैं किसान क्रेडिट कार्ड?
0: जिसे हम लोन लिए तो वो हर साल उसको भरना है, और हर साल भरने के बाद जो सरकारी लाभ आता है, जैसे अनुदान इन साल 50,000 रुपये करोड़ किसान को आया, तो जो जितना कर्जा लिया उस हिसाब से 50,000 आया तो माफ़ी हुआ।
1: ये किसान सम्मान निधि की अगर हम बात करें तो, जिसमें 2,000 रुपया दिया जाता है,
0: 2,000 रुपया दिया है तो समय समय
1: इस पर
0: पर
1: जुड़े हुए
0: उस
1: हैं?
0: पर जुड़े हुए हैं, तो
1: वाह,
0: ये 2,000 रुपया जो आता है सर, उससे जुताई कोड़ाई
1: निकल जाता
0: निकल
1: है काम
0: जाता
1: जी।
0: है,
1: ये
0: और
1: बहुत
0: ये
1: सुंदर,
0: बहुत
1: मतलब
0: सुंदर है,
1: योजना
0: और
1: है
0: तो
1: तो
0: उस समय ये कम सहयोग नहीं है,
1: जी
0: और कुछ नहीं तो पूरे खेत का जुताई निकल जाता है।
1: जी
0: हाँ
1: आप थे गढ़वा जिला के गोंदा गांव के शिवनाथ कुशवाहा, एक सफल किसान। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारियां साझा की शिवनाथ कुशवाहा जी, इसके लिए आपको धन्यवाद, नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता एक सफल किसान से। घड़ी इशारा कर रही है समय समाप्त होने को है, तो चलते चलते मौसम का हाल आपको बता दें। आज स्थानीय सर डालरनगंज का अधिकतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुबह में आर्द्रता रही 97%, जबकि शाम की आर्द्रता भी 97% दर्ज की गई और वर्षापात 0.504 मिलीलीटर। इसी के साथ अब अपने दोस्त को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

0: चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: जन जन तक पहुँचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
3: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आँखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
4: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
3: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
6: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सहित अन्य ने की मुलाकात, परीक्षा रद्द करने का किया स्वागत। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने परीक्षा रद्द किए जाने संबंधी घोषणा पर कहा, सीबीआई जांच कराए सरकार। वहीं मंत्री इरफान अंसारी ने बयान पर किया पलटवार, कहा बाबूलाल अपना बयान वापस लें। गुमला जिले के डुमरी क्षेत्र में पुलिस ने प्रतिबंधित जेजेएमपी के 5 लाख रुपए के इनामी सब जोनल कमांडर सहित 4 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। रांची सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त, कई नदियों का पानी उफान पर। और शोतोकान कराटे डो फेडरेशन ऑफ इंडिया की झारखंड स्टेट कराटे चैंपियनशिप 2026 का 22 और 23 अगस्त को रांची में आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सहित कांग्रेस के मंत्रीगण और विधायक गणों ने मुलाकात की। उन्होंने कल हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में छात्रों के हित में टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया और कहा कि इससे अभ्यर्थियों की अनिश्चितता दूर होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है, साथ ही विकासात्मक योजनाओं और जनहित के विषयों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार की जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द किए जाने संबंधी घोषणा को योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय करार दिया है। श्री मरांडी ने कहा कि छात्र हित में सरकार सीबीआई जांच की घोषणा करे ताकि नियुक्ति परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों की पहचान और कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।
1: और सरकार की एजेंसी तो सरकार को ही बचाने में लगी हुई है, तब तो फिर कोर्ट में कोई केस चल ही नहीं पाएगा। इस जॉब के लेन देन में खरीद बिक्री जो हुआ है, उन भ्रष्ट अफसरों को बचाना चाहते हैं और बच्चों को दिग्भ्रमित कर रहे पूरी तरह। इसीलिए सीबीआई से ही जांच हो, तभी मामला पकड़ में आएगी और जिन लोगों ने पैसे के बल पर नौकरी खरीदा है वो पकड़ में आएंगे।
0: जेपीएससी जेएसएससी विवाद मामले में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की ओर से सीबीआई जांच संबंधी दिए गए बयान पर मंत्री इरफान अंसारी ने पलटवार करते हुए कहा है कि बाबूलाल को

0: हेमंत सोरेन और राहुल गांधी को धन्यवाद देना चाहिए। मंत्री ने बाबूलाल को अपना बयान वापस लेने का सुझाव भी दिया।
1: और आज जब हमारी सरकार इतना बड़ा फैसला लिए तो ये बाबूलाल मरांडी जी को, हेमंत सोरेन जी को और राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहिए, ना कि राजनीति करना चाहिए।

0: उन्होंने कहा कि सरकार ये गारंटी दे कि आने वाली भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता और पेपर लीक न हो।
1: जेएसएससी सीजीएल समेत पीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं रद्द की जो मांग थी वो हमारी पूरी हो गई है। यह एक छात्रों का आंदोलन का ऐतिहासिक जीत है, लेकिन संघर्ष हम लोग का जारी रहेगा। अगला चरण का जो संघर्ष होगा, एक ऐसा भर्ती व्यवस्था जिसमें गवर्नमेंट हमें गारंटी दे कि आने वाले जुगो जुग तक पेपर लीक न हो, देरी न हो और धांधली न चले।
0: गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने प्रतिबंधित जेजेएमपी के 5 लाख रुपए के इनामी सब जोनल कमांडर रामदेव लोहरा सहित 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। आईजी अभियान नरेंद्र सिंह के अनुसार रामदेव लोहरा अपने दस्ते के साथ अकासी और जयरागी गांव के आसपास घूम रहा था, जहां उसे एरिया कमांडर अरविंद नायक और 2 अन्य सदस्यों के साथ पकड़ा गया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक AK-56, एक SLR, एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल सहित कारतूस और नक्सली पर्चे बरामद किए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद के बरवाड्डा थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 2 अपराधी घायल हुए हैं, जबकि 3रा अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि अपराधी जमीन कारोबारी से लेवी वसूलने की फिराक में थे।
2: पुलिस को सूचना थी, इंटरसेप्ट किया तो पुलिस की वाहन पर फायरिंग थी, उसमें टोटल 3 लड़के थे जिसमें एक भाग गए हैं, 2 पकड़ाए हैं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों को पैर में गोली लगी है। डिटेल पूछताछ होगी तब पता चलेगा। तो पूरा पीओ का जो भी विधिवत कार्रवाई होता है वो अभी किया जा रहा है। हमारे ऑफिसल की टीम पूरी कार्रवाई कर लेती है, उनसे मैं जानकारी ले लेता हूँ। ऑर्गेनाइज क्राइम पे किसी प्रकार की कोई रोवत कोई कोताही हम लोग नहीं करने वाले हैं।
0: प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने परीक्षा एजेंसी एनटीए की ओर से ली जाने वाली नेट सहित अन्य परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी मामले में केंद्र सरकार को सुझाव देते हुए कहा है कि परीक्षाओं का संचालन केंद्र सरकार अपने अधीनस्थ विभाग या एजेंसियों के माध्यम से कराए। पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट डॉ. राजीव नारायण प्रसाद ने कहा कि एनटीए संस्था पूरी तरह से अयोग्य और असक्षम हो गई है। झारखंड रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण यानी रेरा की ओर से रियल एस्टेट अधिनियम 2016 के प्रावधानों और व्यावहारिक पहलुओं पर एक दिवसीय सेमिनार 23 अगस्त को रांची में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रेरा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। सेमिनार में बिल्डर, प्रमोटर, डेवलपर, होम बायर्स, बैंक और वित्तीय संस्थान, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर और विविध विशेषज्ञ समेत रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े हितधारक शामिल होंगे। राजधानी रांची सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में पिछले 24 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं नदी नाले, कुएं और तालाबों में पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। रांची जिले में स्थित कांके, धुरवा और गेतलसूद डैमों के अलावा रामगढ़ जिले का पतरातू डैम भी पानी का स्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। उधर लगातार बारिश से दामोदर, कोयल, स्वर्ण रेखा और कांची नदियां भी उफान पर हैं। खतरों के मद्देनजर जिला प्रशासन की ओर से लोगों को नदी और जलाशयों में नहीं जाने की अपील की जा रही है। बंगाल की खाड़ी में उच्च दबाव का क्षेत्र बनने के कारण राज्य में हो रही लगातार बारिश से किसानों को चिंता सताने लगी है। धान और सब्जी के खेतों में पानी भर जाने से फसल नष्ट होने की आशंका बढ़ गई है। वहीं सब्जी की खेती नष्ट होने से बाजार में इसकी आवक पर असर पड़ सकता है। शोतोकान कराटे डो फेडरेशन ऑफ इंडिया

के तहत एसकेएफआई झारखंड स्टेट कराटे चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 22 और 23 अगस्त को रांची में किया जाएगा। इस राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में झारखंड के विभिन्न जिलों के खिलाड़ी काता और कुमेते में भाग लेंगे, जिसमें 22 अगस्त को 12 वर्ष से ऊपर और 23 अगस्त को 6 से 11 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की प्रतियोगिताएं होंगी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सहित अन्य ने की मुलाकात, परीक्षा रद्द करने का किया स्वागत। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने परीक्षा रद्द किए जाने संबंधी घोषणा पर कहा, सीबीआई जांच कराए सरकार। वहीं मंत्री इरफान अंसारी ने बयान पर किया पलटवार, कहा बाबूलाल अपना बयान वापस लें। गुमला जिले के डुमरी क्षेत्र में पुलिस ने प्रतिबंधित जेजेएमपी के 5 लाख रुपए के इनामी सब जोनल कमांडर सहित 4 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। रांची सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त, कई नदियों का पानी उफान पर। और शोतोकान कराटे डो फेडरेशन ऑफ इंडिया की झारखंड स्टेट कराटे चैंपियनशिप 2026 का 22 और 23 अगस्त को रांची में आयोजन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: इस अंक में आप सुनेंगे जामताड़ा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे जामताड़ा संवाददाता।
1: जामताड़ा जिले में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह उल्लासपूर्ण वातावरण में मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन जामताड़ा स्टेडियम परिसर में संपन्न हुआ, जहां सूबे के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने ध्वजारोहण किया और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जामताड़ा जिले के सभी मतदान केंद्रों पर 8 एवं 9 अगस्त को शिविर लगाकर मतदाताओं से दावा आपत्ति एवं अर्हता पूरी करने वाले युवक युवतियों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए आवेदन प्राप्त किए गए। मतदान केंद्रों का निरीक्षण के क्रम में सुपरवाइजर पार्थ कुमार मंडल ने बताया कि
2: 8 और 9 अगस्त को विशेष कैंप आयोजित की गई है। इसमें अगर किन्हीं का नाम छूट गया है तो उनके लिए फॉर्म 6 भरा जा रहा है, किन्हीं को सुधार करना है तो उनके लिए फॉर्म 8 भरा जा रहा है। यानी कमीशन का जो निर्देश है कि योग्य व्यक्ति छूटे नहीं और अयोग्य व्यक्ति जुटे नहीं, उन्हीं का काम आज हम लोग यहाँ कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वर्षा जल का संचयन एवं संरक्षण करने की अपील का जामताड़ा जिले के किसानों के बीच व्यापक असर देखा जा रहा है। जिले के किसान पर्याप्त बारिश नहीं होने के बावजूद बेहतर ढंग से कृषि कार्य कर रहे हैं। आत्मा जामताड़ा के परियोजना निदेशक संजय कुमार सिंह ने बताया कि
3: जामताड़ा जिले में इस साल कृषि में जून माह में 226 मिलीमीटर के जगह 138 मिलीमीटर ही बारिश हुई। इसके बावजूद इस साल हमारा रोपा अभी तक 63% के आसपास धान का रोपा हो चुका है। किसान जो है अपने तालाब नदी का भी सहारा लिए हुए हैं और अभी वर्तमान में जो 2-3 दिन से बारिश हो रही है बहुत अच्छी बारिश हो रही है। साथ ही साथ मेरा मक्का 75% के आसपास रोपा हो चुका है। दलहन पर भी और तिलहन में मूंगफली पर भी अच्छा रोपा परसेंटेज हिसाब होने की संभावना है। इसलिए हम लोग समय समय पर किसान को टिप्स भी दे रहे हैं, इससे संबंधित सभी जागरूकता कार्य भी कर रहे हैं।
1: वन विभाग की पहल पर जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड के सुदूरवर्ती मिर्गा गांव में वन महोत्सव मनाया गया। वन महोत्सव के दौरान किसानों

0: को पर्यावरण संतुलन में वृक्षों के महत्व की जानकारी देकर पौधरोपण के लिए प्रेरित किया गया। मौके पर मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि
1: हजारों की संख्या में लोग आए और प्रत्येक घरों में हम लोगों ने कहा कि 5-5 पेड़ आप लोग लगाइए। जामताड़ा में पहली बार 10 लाख पेड़ जिला में हम लोग लगाने का संकल्प लिया है और उसी के तहत आज जहाँ पे हमने वन महोत्सव बनाया है वहाँ लगभग 8,000 पेड़ लगा रहे हैं। जिस प्रकार जो पॉल्यूशन हो रहा है और जिस तरह से वातावरण में छेड़छाड़ हो रहा है तो इसको रोकने के लिए पेड़ बहुत जरूरी है लगाना और इसलिए हम फॉलो करेंगे, पालन करेंगे।
0: विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त को नगर भवन दूलाडी में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्राचीन आदिवासी संस्कृति जल जंगल जमीन की रक्षा करने की अपील की गई। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा।
2: अभी आप सुन रहे थे जामताड़ा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

0: मीडियम वेव 500।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची केंद्र की प्रसारण सेवा। जिले में आजकल प्रादेशिक समाचार। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:16 और 15 सेकंड हो चुके हैं। हम लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग कुछ ही पलों में।

आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। आज के इस रंग को सजाया है हमने फिल्म एक ही फिल्म से। मैं हूं ना जावेद अख्तर के बोल हैं अनु मलिक के संगीत।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म मैं हूं ना के इस गाने को, और आज का रंग सजा है फिल्म मैं हूं ना के गाने से। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं फिल्म 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:45 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं स्वरचित कविताएं, काव्य पाठ। मनीष कुमार मिश्रा आज के कलाकार हैं, तो आइए सुनते हैं स्वरचित कविता का कार्यक्रम काव्य पाठ।
1: जी नमस्कार, मैं मनीष कुमार मिश्रा। सबसे पहले एक

अब एक गीत लिखने का प्रयास किया है जिसका शीर्षक है कहता है जंगल स्वीकार लो हमें, ये बोल हैं। आप सब सुने, एक संदेश भी है, जंगल क्या कहता है।

कहता है जंगल है, स्वीकार लो हमें। अब अगली रचना, यह भी संरक्षण पर आधारित है, यह संदेश आप लोग तक जाए। आज इसकी आवश्यकता घर बसाने के लिए, आज इसकी आवश्यकता घर बसाने के लिए, दे रहा संदेश मैं पौधा लगाने के लिए, आज इसकी आ

मिलता यहाँ पर छाँव है, रो नहीं सकता यहाँ वन दुख गिनाने के लिए, दे रहा

ये अब एक नई रचना जो ये एक समाज के प्रति संदेश है हमारी एकता को लेके, इसका शीर्षक मैंने दिया है मैं चाहता हूँ। सुने, मैं चाहता हूँ हर जगह इंसान ही मिले, मैं चाहता हूँ हर जगह

इन उड़ते परिंदों को अब मकान भी मिले, इन उड़ते परिंदों को अब मकान भी मिले, सच्चाई पर चले हैं वह निशान भी मिले, इन सोते हुए सपनों में उड़ान अब मिले, इन सोते हुए

रहे कलह निदान अब मिले, घर में हो रहे कलह निदान अब मिले, जाति धर्म से नहीं पहचान अब मिले, जाति धर्म से

जब कभी मिले तो हम इंसान बन मिले, जब कभी मिले तो हम इंसान बन मिले। इन साहित्य विद्वानों से मनीष जब मिले, इन साहित्य विद्वानों से मनीष जब मिले, मैं चाहता हूँ आपसे आशीष ही मिले, मैं चाहता हूँ आपसे आशीष ही मिले। धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे स्वरचित काव्य पाठ मनीष कुमार मिश्रा के। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं फिल्म 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं कुछ ही पलों में हम लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से।

आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं कुमार शानू साधना संग्रम के बाज में इंदिवर के बोल, राजेश रोशन के संगीत में फिल्म जुर्म का ये गाना।

आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से भी आपने सुना फिल्म इतिहास के इस गाने को अलका याग्निक कुमार शानू की आवाज में दिलीप सेन समीर सेन के संगीत थे और समीर के बोल। और अब आइए कार्यक्रम के आखिरी में सुनते हैं फिल्म खामोशी के इस गाने को उदित नारायण सुलक्षणा पंडित की आवाज़ में। मजरूर सुल्तानपुरी के बोल हैं और जतिन ललित के संगीत।

इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम देशभक्ति गीत यही समाप्त होता है। कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की प्रसारण सेवा में। सुनेंगे रात्रि 8:45 पर हिंदी में समाचार, रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में समाचार, 9:15 में उर्दू में समाचार और रात्रि 9:30 पर जुड़ेंगे श्रोताओं विविध भारती की प्रसारण सेवा आज के फनकार के लिए। रात्रि 10 बजे अपने स्टूडियो से लेकर हाजिर होंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। 11 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से, 11:05 में अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से और अपनी सभा का समापन करेंगे रात्रि 11:10 पर। तो श्रोताओं आइए जुड़ते हैं कुछ ही पलों में रात्रि 8:45 पर संध्या समाचार संध्या के लिए आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा पर विदेश मंत्रालय ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। ईरान ने दोहराया, होर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। गोल में भारत ने श्रीलंका को पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में 372 रन का लक्ष्य दिया। मेजबान टीम ने दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बनाए। और भारत की महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
1: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
2: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: श्री भूपेंद्र यादव ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की 4 प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन तथा आपदा से उबरने की क्षमता विकसित करना, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन। बैठक का समापन संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान की स्वीकृति के साथ हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से 1 महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। आज शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। उन्होंने बताया कि अभियान का लक्षित समूह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवा पेशेवर होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि ये अभियान युवा ग्राहकों के साथ निरंतर जुड़ाव के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा, जिससे उनकी भावी उद्यमशीलता की यात्रा सुगम होगी। आज समाप्त हुए 2 दिन के सम्मेलन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के नेतृत्वकर्ता एक साथ आए। इस कार्यक्रम के दौरान प्रमुख प्राथमिकताओं, उभरते अवसरों और बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र के बदलते परिदृश्य पर विचार विमर्श किया गया। इस बीच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB ने पिछले 1 साल के दौरान ऋण वितरण में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025-26 के दौरान कुल बकाया ऋण में 10.3% की वृद्धि हुई है। छोटे शहरों और गांवों का कुल बकाया ऋण 2024-25 में लगभग 5,24,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 5,78,000

0: 70,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। मंत्रालय ने बताया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ऋण वितरण सुविधा का विस्तार करके और जरूरतमंद तबकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करके ग्रामीण आर्थिक विकास तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना जारी रखा है। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है। भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमेरिकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त अनुरोध के संबंध में भारत अपनी आवश्यकताओं, शोधन क्षमता और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच कर रहा है। शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को लेकर भारत के दावों पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार अपने इस रुख पर कायम है। श्री जायसवाल ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए भारत का संघर्ष जारी रहेगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है।
1: जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं वहाँ, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग वहाँ हताहत हुए, उसके अलावे बहुत लोगों को इंजरीज भी आई हैं, और कि वहाँ पर जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जो आम चीजें हैं, आम वस्तुएं हैं रोजमर्रा के, उस पर भी काफी रोक लगाया गया है। और हालात ऐसी है कि जो वहाँ पर लोग हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सिंपैथी की, सॉलिडैरिटी की जरूरत है और वो उनको मिलना चाहिए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: समिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पूर्व पुलिस महानिदेशक और सीबीआई के पूर्व निदेशक शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समिति के अन्य सदस्यों के नाम पर विभिन्न पक्षों से सुझाव मिलने के बाद कल आदेश जारी किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि समिति महिला प्रदर्शनकारियों से जुड़े यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन उत्पीड़न के आरोपों तथा सोशल मीडिया के जरिए अन्य संवेदनशील लोगों को निशाना बनाए जाने के मामलों की भी जाँच करेगी। अदालत ने कहा कि 20 जुलाई को दिल्ली में संसद मार्च के दौरान हुए हिंसा से संबंधित वीडियो फुटेज और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग समिति को सौंपी जाएगी। शीर्ष अदालत कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग परीक्षा में कथित प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप हैं। महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि कल समाप्त हो गई। इसके साथ ही राज्य में करीब 21.16% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। मतदाताओं के पास दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए 1 महीने का समय होगा। अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिन की उपलब्धियों पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में उद्योग, निवेश, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, सुरक्षा और जन कल्याण के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में नए औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं में भी तेजी आई है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि कम समय में पश्चिम बंगाल के विकास की नई नींव रखी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज का आकलन जनता करेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in

0: और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज अधिकारियों को आदेश दिया है कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अगले कुछ दिनों के भीतर व्यापक चिकित्सा जांच के लिए इस्लामाबाद के शिफा अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए। खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के संस्थापक इमरान खान को अस्पताल में भर्ती कराने और उनके परिवार से मिलवाने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। ईरान ने दोहराया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य समुद्र यातायात के लिए तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौता ज्ञापन के तहत ईरान की सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। एक रिपोर्ट।
1: ईरान का कहना है कि विदेशी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाए जाने और सैन्य अभियानों को समाप्त किए जाने के बाद ही इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को खोला जा सकता है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनका देश दुश्मन को उसके कार्यों और आक्रामकता के लिए करारा जवाब देने के लिए तैयार है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने राजनयिक प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि सैन्य शत्रुता को रोकने के लिए समझौता ज्ञापन में दी गई 60 दिनों की समय सीमा ने ईरान की राष्ट्रीय रक्षा और घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। 60 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी ये मुख्य मतभेद अनसुलझे हैं। ईरान के लिए होर्मुज के माध्यम से यातायात को सामान्य बनाना नाकेबंदी की समाप्ति, सैनिकों की वापसी और मुआवजे पर निर्भर करता है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की ईरान के साथ कोई वार्ता नियोजित नहीं है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी नाकाबंदी पूरी तरह से लागू है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन ने फलस्तीन के विदेश मंत्री और प्रवासी मामलों के मंत्री वारसेन अघा बेकियन शाहीन से मुलाकात की। फलस्तीन में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने भारत फलस्तीन द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इनमें विकास सहयोग से जुड़ी विभिन्न परियोजनाएं भी शामिल हैं। गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के 372 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बना लिए थे। यहां से भारत को जीत के लिए 6 विकेट की जरूरत है, जबकि श्रीलंकाई टीम जीत से अभी भी 288 रन दूर है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। वहीं लक्ष्य सेन और उन्नति हुडा ने सिंगल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। FIH हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 6-1 के बड़े अंतर से हरा दिया। नीदरलैंड्स के अम्स्टरडैम में भारत के लिए नवनीत कौर, सुनेलिता तोपो, सुशीला चानू, दीपिका लाल रिमस्यामी और साक्षी राणा ने गोल दागे। अब भारतीय महिला टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को इंग्लैंड से होगा। वहीं एक बहुप्रतीक्षित मुकाबले में कल अम्स्टरडैम में भारतीय पुरुष टीम का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 0.63% यानी 493 अंक नीचे आकर 77,235 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.55% यानी 133 अंक लुढ़क कर 24,155 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे कमजोर हुआ और 95.68 रुपए पर बंद हुआ।
0: मौसम विभाग ने कल पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम और माहे, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तरी आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कल बादल गरजने तथा बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, दक्षिणी आंध्र कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा पर्यावरण संबंधी कार्रवाई विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा पर विदेश मंत्रालय ने कहा देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च

0: अपनी जानिब से दस्तियाबी को पेश नज़र रखते हुए उसका जायजा ले रहा है। शहजाद भट्टी दहशतगर्दी के नेटवर्क के बारे में भारतीय दावों के तहत पाकिस्तान के रद्द अमल पर तर्जुमान ने कहा कि भारत दहशतगर्दी के मामले को इंतहाई संजीदगी से लेता है। जनाब जायसवाल ने कहा कि दहशतगर्दी से निमटने की भारत की लड़ाई जारी रहेगी और दहशतगर्दी की इस लानत को शिकस्त देने के ताल्लुक से जिस किस्म की भी कार्रवाई दरकार होगी भारत वो कार्रवाई जारी रखेगा। पाकिस्तान के ज़ेरे कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में एहतिजाज के मुतालिक वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि वहाँ कई जानें तलफ हुई हैं और बड़ी तादाद में लोगों ने अपनों को खोया है और ज़ख्म खाए हैं। उन्होंने कहा कि ज़रूरी अशिया और रोज़मर्रा काम आने वाली चीज़ों पर सख्त पाबंदियाँ आयद की गई हैं। जनाब जायसवाल ने कहा कि सूरत हाल इस तरह की है कि मकामी आबादी को बैन अवी बिरादरी की जानब से हमदर्दी और यगानगत की ज़रूरत है और वो इसकी मुस्तहक भी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों, एक साबिक डीजीपी और सीबीआई के एक साबिक डायरेक्टर पर मुश्तमिल इंतहाई बा इख्तियार कमेटी तश्कील देगी जो दिल्ली में हालिया एहतजाज के दौरान तलबा के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई और पुलिस एहलकारों के खिलाफ तशद्दुद के इल्ज़ाम का जायजा लेगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की क्यादत वाली तीन जजों पर मुश्तमिल एक बेंच ने कहा कि कमेटी की तश्कील के मुतालिक एक हुक्मनामा कमेटी में शामिल करने के लिए दीगर मेंबरों के मुतालिक मुख्तलिफ फरीकैन से तजावुज़ मौसूल होने के बाद कल जारी किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि आला इख्तियाराती कमेटी को हकीकत का पता लगाने के हदफ की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और उसे तमाम जरूरी सहूलियात मुहैया कराई जाएंगी। अदालत ने कहा कि कमेटी जिंसी एतबार से हमला किए जाने के मुतालिक और ख्वातीन एहलकारों को ऑनलाइन हरासा किए जाने, नीज सोशल मीडिया के जरिए दीगर जद पजीर अफराद को निशाना बनाए जाने के सिलसिले में लगाए गए इल्जाम की जाँच भी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि वो यह हिदायत भी देगी कि दिल्ली में 20 जुलाई को पार्लियामेंट मार्च के दौरान तशद्दुद की वीडियो फुटेज और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग आला इख्तियाराती कमेटी के सुपुर्द की जाए ताकि वो इसका जायजा ले सके। बेंच कॉकरोच जनता पार्टी की क्यादत वाले एहतजाज के दौरान एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के इल्जाम और पुलिस एहलकारों के खिलाफ तशद्दुद के इल्जाम से मुतालिक कई अर्जदाश्तों की समाअत कर रही थी। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने ऐलान किया है कि 2 अक्टूबर से सरकारी सेक्टर के बैंक 1 महीने तक जारी रहने वाली मुहिम का आगाज करेंगे जिसका नाम है बैंकिंग फॉर यूथ। नई दिल्ली में आज शाम पब्लिक सेक्टर बैंक कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि इस मुहिम के दौरान बुनियादी तौर पर नौजवानों को जोड़ने और उनके मालियाती सफर का पता लगाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इस मुहिम का टारगेट ग्रुप नौजवान पेशेवर अफराद होंगे जिनकी उम्र 16 बरस से ज्यादा है। उन्होंने मजीद कहा कि ये मुहिम नौजवान सारिफिन के साथ एक पायदार वाबस्तगी के एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगी जिससे मुस्तकबिल में उनके कारोबारी सफर के लिए सहूलत हासिल होगी। अमले, अवामी शिकायत और पेंशन के महकमे के वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि मस्नूई जिहानत, क्वांटम, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल आलात तर्ज हुक्मरानी की तेजी से काया पलट कर रहे हैं। उन्होंने लेटरल एंट्री ज्वाइंट सेक्रेटरीज के लिए 15 रोजा रेफ्रेशर कोर्स में शामिल शुरका से खिताब करते हुए ये बात कही। डॉक्टर सिंह ने सिविल सर्वेंट्स के लिए मुसलसल आमोजिश की जरूरत और मुताबिकत पैदा करने की ताकीद की। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार हुक्मरानी के लिए मौसर तर्ज गुफ्तगू एक लाजमी जरूरत बन गई है। वजीर मौसूफ ने इस बात का भी जिक्र किया कि आदाब गुफ्तगू के बदलते हुए माहौल, बिलखसूस सोशल मीडिया के बढ़ते हुए रोल के दौरान अफसरान के लिए ये बात और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है कि वो मुख्तलिफ तरफैन के साथ मौसर तौर पर बातचीत की सलाहियत को बढ़ाएं। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आला मेयार की ज़रई पैदावार की ज़रूरत पर जोर दिया है ताकि आलमी बाजार के मेयारात से मुताबिकत रखी जा सके। आज नई दिल्ली में ज़रई तहकीक की भारतीय कौंसिल ICAR की 57वीं सालाना जनरल मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने फार्म से आलमी बाजार तक भारतीय ज़रई अशिया को वसत देने के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नज़रिए को उजागर किया। उन्होंने भारतीय ज़राअत में हुसूल याबियों पर खुशी का भी इजहार किया जिसके तहत गेहूं और चावल की सालाना पैदावार को दुगना करके शानदार तरक्की दर्ज की गई है।
1: अपनी उपलब्धियों पर निश्चित तौर पर

0: हमें गर्व है। मैं अपने वैज्ञानिकों को प्रणाम करता हूँ, किसानों को प्रणाम करता हूँ। वैज्ञानिकों की मेधा बुद्धि, किसानों का पसीना और सरकार की नीतियों ने निश्चित तौर पर एक चमत्कार किया। हम लोगों ने प्रयोग किया कि हम कैसे आमों को 35 दिन तक बचा के 35 दिन करने में सफलता प्राप्त हुई और उसके कारण हम सिंगापुर दुबई समुद्री मार्गों से भी अपना उत्पाद भेज सके।
1: ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आज हुक्काम को हिदायत दी है कि वो जेल में बंद पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान को इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करें ताकि उनकी अगले कुछ दिनों में जामे तिब्बी जांच हो सके। मकामी मीडिया ने खबर दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI पार्टी के बानी इमरान खान के इलाज और अपने घर वालों से मिलने से मुतालिक कई अर्जदाश्तों की समाअत करते हुए 3 मेंबरों पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह हुक्म मंजूर किया। अदालत ने कहा है कि इमरान खान की सेहत और जिंदगी और तिब्बी सहूलियात के लिए उनके हक की आईनी गारंटी के तहत यह हुक्म दिया गया है। ईरान ने आज कहा है कि जब तक अमेरिका के साथ दस्तखत किए गए 14 नुकाती मुफाहमत नामे के तहत ईरान की सभी शराइत पूरी नहीं हो जाती, उस वक्त तक आबनाए हुर्मुज बहरी ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। तेहरान ने इस इंतहाई अहम आबी गुजरगाह को दोबारा खोले जाने की गैर मुल्की पाबंदियों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किए जाने और फौजी कार्रवाई को रोकने से बराह रास्त मुंसलिक कर दिया है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने मजीद महाज आरआई के खतरनाक नतज की वार्निंग देते हुए जोर देकर कहा कि इस्लामी जमहूरिया दुश्मन की कार्रवाइयों और जारहियत का माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। उनकी ये रायजनी तरफैन के दरमियान मुफाहमत नामे के तहत फौजी कार्रवाई रोकने की खातिर अमन बातचीत के लिए 60 दिन की मुद्दत खत्म होने के बाद सामने आई है। जनाब कालिबाफ ने सिफारती अमल का दिफा करते हुए कहा कि मुफाहमत नामे के तहत फौजी कार्रवाई रोकने के लिए 60 दिन की मुद्दत में ईरान के कौमी दिफा और घरेलू मईशत को मुस्तहकम करने के लिए एक अहम मौका फराहम किया है। मुनफरिद शनाख्त के मुतालिक भारत की अथॉरिटी UIDAI ने बायोमेट्रिक के लाजमी अपडेट्स के लिए अपनी मिशन की तर्ज पर चलाई गई मुल्कगीर मुहिम में एक बड़ा संग मील हासिल किया है और मुल्क भर में स्कूल जाने वाले 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट्स मुकम्मल कर लिए हैं। पिछले साल सितंबर में शुरू की गई इस खसूसी मुहिम के तहत अब तक 1,56,000 स्कूलों का अहाता किया गया है, जिसकी वजह से स्कूल जाने वाले बच्चे आधार का अपना बायोमेट्रिक मुकम्मल कर पाए हैं। मर्दों के क्रिकेट में गाले में पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल खत्म होने पर भारत के खिलाफ मेजबान श्रीलंका ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 4 विकेट के नुकसान पर 84 रन बना लिए थे। आज शाम जब खेल खत्म हुआ तो सोनल धिनुसा और धनंजय डिसल्वा क्रीज पर मौजूद थे। भारत के लिए मानव सुथर ने 2 विकेट हासिल किए। इससे कबल दिन में भारतीय टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 193 रन पर ऑल आउट हो गई और श्रीलंका की जीत के लिए 372 रन का निशाना रखा। ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 66 रन बनाए। वो टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले भारत के पहले और दुनिया के चौथे खिलाड़ी भी बने। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन नई दिल्ली में जारी BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप के मर्दों के सिंगल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। ख्वातीन के डबल्स में भारत की ट्रेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारत की जोड़ी ने अमरीका की लॉरेन और एलिसन की जोड़ी को सीधे सेटों में 21-15, 21-12 से हराया। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। ब्रिक्स मुल्कों ने माहौलियाती तहफ़ और पायदार तरक्की के अपने अज़्म की तौसीख की है। भारत ने जोर देकर कहा है कि माहौलियात से मुतालिक कार्रवाई में तरक्की पजीर मुल्कों की ज़रूरियात को पूरा करना लाजमी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत के इंतखाबी निज़ाम की सताइश के ताल्लुक से भारत ने कहा है कि उसकी इंतखाबी मशीनरी की भरोसेमंदी आलमी सतह पर पूरी तरह अपनी शनाख्त रखती है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस कार्रवाई के इल्ज़ाम और सिक्योरिटी अहलकारों के खिलाफ तशद्दुद के इल्ज़ाम की छानबीन के लिए एक आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील देगी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद साबिक वजीर आजम इमरान खान को तिब्बी जाँच के लिए अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत दी है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

अभिनेत्री मनीषा कोइराला का जन्म नेपाल में 16 अगस्त सन 1970 को हुआ था। मनीषा के दादा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे। मनीषा कोइराला का परिवार नेपाल की राजनीति से जुड़ा रहा है। मनीषा के पिता का नाम प्रकाश कोइराला और माँ का नाम सुषमा कोइराला है। इनके भाई सिद्धार्थ कोइराला बॉलीवुड में अभिनेता हैं। उन्हें अपने परिवार के संस्कार विरासत में मिले, इसलिए हमेशा उनकी नजर गरीबों और पीड़ितों पर रही। उनके लिए मदद करने का जज्बा मनीषा के भीतर हमेशा से रहा है।

मनीषा कोइराला लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में रही, जहां उन्होंने वसंत कन्या महाविद्यालय में 10वीं तक पढ़ाई की। जब उन्होंने 10वीं कक्षा की परीक्षा दी और फिर उनकी छुट्टियां शुरू हुई, तो इस दौरान उन्होंने शौक शौक में एक नेपाली फिल्म में काम किया। इस फिल्म का नाम था फिरी भेटौला। ये साल 1989 की बात है। मजेदार बात यह है कि तब तक मनीषा का फिल्मों में जाने का कोई इरादा नहीं था। वो तो डॉक्टर बनना चाहती थी। इस सपने को लेकर वो आ गई दिल्ली और उन्होंने धौला कुआं के आर्मी पब्लिक स्कूल में दाखिला ले लिया। जब तक मनीषा बनारस में थी, वो अपने रिश्तेदारों के साथ रह रही थी, पर दिल्ली में अकेले रहने की वजह से वो काफी मजबूत और आत्मनिर्भर बन गई। उनके भीतर का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया।

दिल्ली में अजीब इत्तेफाक हुआ। यहाँ उन्हें मॉडलिंग के असाइनमेंट मिलने लगे और इस तरह अभिनय की लौ उनके भीतर जल उठी। बस फिर क्या था, उन्होंने सोचा कि उस शहर चलें जो अभिनय का गढ़ है। वो चली आई समंदर के किनारे वाले शहर यानी माया नगरी मुंबई में।

मुंबई में अपने हिस्से का संघर्ष करने के बाद मनीषा कोइराला को आखिरकार एक बड़ा मौका तब मिला जब जाने माने निर्देशक शोमैन सुभाष घई ने उन्हें अपनी फिल्म सौदागर के लिए साइन किया। पूरे फिल्म उद्योग में सनसनी सी फैल गई कि नेपाल से आई एक नई अभिनेत्री सुभाष घई जैसे बड़े निर्देशक की निगहवारी में फिल्मों में काम कर रही है। इस फिल्म में काम करना उनके लिए आसान नहीं था क्योंकि सुभाष घई अपनी इस महत्वाकांक्षी फिल्म में दिलीप कुमार और राजकुमार को एक साथ लेकर आ रहे थे। इतने विराट अभिनेताओं के बीच अपनी पहचान बनाने की चुनौती थी मनीषा के सामने।

बाद 1992 में आई फिल्म यलगार। इसके बाद आई फिल्म अनमोल और धनवान, जो कोई खास कमाल न कर सकी फिल्मी पर्दे पर। ऐसा लगा मानो मनीषा कोइराला समय की धुंध में खो जाएंगी। इसी बीच निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा ने उन्हें अपनी फिल्म 1942 अ लव स्टोरी के लिए चुना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित इस फिल्म में उन्होंने रज्जू का किरदार निभाया। मनीषा कोइराला के सामने अपने आप को साबित करने की बड़ी चुनौती थी। ये वो दौर था जब पहले स्क्रीन टेस्ट के बाद विधु विनोद चोपड़ा ने कहा, मनीषा पूरी तरह से गैर अभिनेत्री हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें मनीषा की प्रतिभा पर यकीन हो गया। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर पुरस्कार का नामांकन भी मिला।

1995 में मनीषा कोइराला ने मणिरत्नम के साथ फिल्म बॉम्बे में काम किया। उनके हीरो थे अरविंद स्वामी। इस फिल्म के लिए मनीषा कोइराला को मिला फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड।

इसके बाद सन 1995 में आई फिल्म अकेले हम अकेले तुम, जिसमें उनके हीरो थे आमिर खान। एक बार फिर उन्हें मिला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर नॉमिनेशन।

सन 1996 में मनीषा कोइराला ने फिल्म मझधार में काम किया, जिसमें हीरो थे सलमान खान। सन 1996 में ही शंकर की फिल्म आई हिंदुस्तानी, जिसमें नजर आई मनीषा कोइराला। साल 1996 उनके लिए एक सुनहरा साल बन गया, जब आई संजय लीला भंसाली की निर्देशित फिल्म खामोशी द म्यूजिकल।

में मनीषा ने मूक बधिर माता पिता की एक संवेदनशील बेटी का किरदार निभाया था। इस फिल्म में हीरो थे सलमान खान। ये फिल्म मनीषा कोइराला के फिल्मी किताब में सुनहरे पन्नों की तरह दर्ज हो गई। वे टॉप लीडिंग हीरोइन बन गई।

0: इस फिल्म में उनके अभिनय की बड़ी सराहना हुई। अपने मूक बधिर माता पिता के साथ उन्होंने अपने आँखों से अभिनय किया। उनके चेहरे के जज्बात संवाद बोलते नजर आए।
1: ये

सन 1998 में एक बार फिर उन्होंने मणिरत्नम के साथ काम किया। इस बार आई फिल्म दिल से, जिसमें हीरो थे

0: शाहरुख खान, ये फिल्म उनके अभिनय की ऊंचाई थी। उनकी बोलती आंखें, उनकी मुस्कुराहट, उनके चेहरे की उदासी ने दर्शकों के दिल को छुआ।
1: दिल का

जिसमें उनके अभिनय की खूब सराहना हुई। सन 2001 में मनीषा कोइराला ने राजकुमार संतोषी की फिल्म लज्जा में काम किया। इस फिल्म में रेखा, माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर जैसे दिग्गज सितारे थे।

0: है काला काला दिल।
1: साल 2002 में आई राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी। साल 2003 में आई जयप्रकाश निर्देशित फिल्म मार्केट। साल 2005 अकबर खान की फिल्म आई ताजमहल, जिसमें मनीषा कोइराला ने जहां आरा का किरदार निभाया।
2: हर एक दिल यहां एक दिल तलाश करता है, वफा की प्यार की मंजिल तलाश करता है। यहां परवाने शमा से करीब होते हैं, हसीन नजरों पे शहजादे शहीद होते हैं। यहां दिल लेने देने की अदा भी खातिर है, यहां के वादे बहुत दिल नशील होते हैं। जो बेकरार करे वो करार कहते हैं, इस बाजार को मीना बाजार कहते हैं।
1: साल 2007 में मनीषा कोइराला ने मनीष झा की फिल्म अनवर में काम किया। ये फिल्म हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार प्रियंवत की कहानी पर आधारित थी। साल 2005 में संगीतम श्रीनिवास राव की फिल्म मुंबई एक्सप्रेस आई, जिसमें हीरो थे कमल हसन। अभिनेता इरफान खान के साथ मनीषा की एक फिल्म आई थी तुलसी मातृदेव भव। साल 2008 में फिल्म आई सिर्फ। साल 2008 में ही उन्होंने जाने माने निर्देशक ऋतुपर्ण घोष के साथ बंगला फिल्म में काम किया। फिल्म थी खेला। साल 2009 में दीप्ति नवल के निर्देशित फिल्म आई दो पैसे की धूप चार आने की बारिश। इस फिल्म में मनीषा कोइराला के अभिनय की बहुत प्रशंसा की गई। सन 2010 में मलयालम फिल्म आई इलेक्ट्रा। सन 2010 में नेपाली फिल्म धर्मा आई। सन 2012 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म आई भूत रिटर्न। इसके बाद उन्होंने डियर माया फिल्म में काम किया। ओटीटी के लिए मनीषा कोइराला ने सीरीज लस्ट स्टोरीज में अभिनय किया। साल 2018 में राजकुमार हिरानी की फिल्म आई संजू। संजय दत्त की मां बनी मनीषा कोइराला ने अभिनेत्री नरगिस का किरदार निभाया था।

2000 में टीवी शो सवाल 10 करोड़ का, साल 2019 में फिल्म आई प्रस्थानम, साल 2023 में मनीषा कोइराला की फिल्म आई शहजादी।

नवंबर 2012 में मनीषा कोइराला को ओवेरियन कैंसर हो गया। इस बीमारी से वे हार नहीं मानी, उन्होंने बाकायदा इलाज करवाया और इस बीमारी से वे विजेता बनकर निकली।

मनीषा कोइराला के अभिनय सफर को केवल उनकी खूबसूरती से जोड़कर देखना उनके व्यक्तित्व के साथ नाइंसाफी होगी। मनीषा कोइराला का किरदार और उनका योगदान बहुत बड़ा है। उन्होंने समाज सेवा का भी काम किया। महिलाओं के अधिकारों के लिए वे लगातार लड़ती रही हैं। वे यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की गुडविल एम्बेसडर भी रही हैं। इन दिनों मनीषा कोइराला मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्पतालों, स्कूलों और सामाजिक संस्थाओं में भाषण देकर वे लोगों को प्रेरणा देती हैं। समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं।

2015 में नेपाल भूकंप में राहत और सहायता का भी काम उन्होंने किया। वे एक किताब की सहलेखिका भी हैं, जिसका नाम है हील द स्टोरी ऑफ हर बैटल अगेंस्ट ओवेरियन कैंसर।

हाल ही में मनीषा कोइराला ने संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी में मल्लिका जान की भूमिका निभाई है। इस वेब सीरीज में उन्होंने अपने अभिनय से मल्लिका जान के किरदार को जीवंत कर दिया। इस वेब सीरीज की दर्शकों ने तो सराहना की ही, साथ ही साथ फिल्मी दुनिया के कई मशहूर सितारों ने भी मनीषा के अभिनय की भूरी भूरी प्रशंसा की। मनीषा कोइराला की फिल्मी यात्रा आज भी जारी है।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी अदाकारा मनीषा कोइराला पर। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा आज के फनकार आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से हम बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में श्रोताओं रात के 10 बज चुके हैं। आइए हम लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

रजनीगंधा। तो श्रोताओं बने रहे हमारे साथ अभी से लेकर रात्रि 11 बजे तक, एक घंटे का ये खूबसूरत सफ़र है और इसके साथ हम जुड़े हैं आज के गीत संगीत के साथ। तो आइए, रजनीगंधा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।

ये आपने सुना फिल्म दो सितारों, फिल्म कोहिनूर के इस गाने को लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, नौशाद के संगीत और शंकर वेदवानी के आप बोल थे। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। अभी आपने सुना फिल्म रात एक बात की। इस फिल्म के अंदर लता मंगेशकर की आवाज़ में रोशन के संगीत थे शंकर बदवानी के बोल।

अभी आपने सुना फिल्म गज़ल के इस गाने को। चित्रलेखा फिल्म के इस गाने को लता मंगेशकर की आवाज़ में रोशन के संगी साहिर लुधियानवी के बोल थे। और अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में मदन मोहन के संगीत और साहिर लुधियानवी के बोल फिल्म का नाम गज़ल।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:50 और 2 सेकंड हो चुके हैं। आइए, अभी आपने सुना फिल्म आरती के इस गाने को। लता मंगेशकर की आवाज़ में रोशन के संगीत, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे। और अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में शंकर जयकिशन के संगीत, शैलेंद्र के बोल, फिल्म दिल अपना और प्रीत पर आई।

श्रोताओं, आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। अभी आपने सुना फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई के इस गाने को। हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:56 हो चुके हैं और अब आइए सुनते हैं फिल्म पाकीज़ा के इस गाने को। लता मंगेशकर की आवाज़ में गुलाम मोहम्मद के संगीत है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल। और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा भी यहीं समाप्त होता है। हमें दीजिए इजाज़त, रात्रि 11 बजे जुड़ेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में समाचार के लिए हिंदी समाचार, और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ

0: की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
1: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
2: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से एक महीना का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। आज शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा है कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। उन्होंने बताया कि अभियान का लक्षित समूह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवा पेशेवर होंगे। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमरीकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत जापान साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों से भारत में निवेश और कारोबारी साझेदारी बढ़ाने का आह्वान किया। नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के संबंध शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा सोच पर आधारित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल ही में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। एजेंसी ने करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल करने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार प्रश्न पत्रों की जांच के लिए 4 स्तर की व्यवस्था लागू की जाएगी। हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला हॉकी टीम की फॉरवर्ड लाल रेमसियामी और पुरुष टीम के मिडफील्डर राजकुमार पॉल को अर्जुन पुरस्कार 2025 के लिए चुने जाने पर बधाई दी है। खेल मंत्रालय ने कुल 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति इन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगी। मिजोरम की लाल रेमसियामी 2017 से भारतीय महिला हॉकी टीम का हिस्सा है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत के ऐतिहासिक चौथे स्थान हासिल करने में अहम भूमिका निभाई थी। उत्तर प्रदेश के राजकुमार पॉल ने 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया। वह पेरिस 2024 ओलंपिक में लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा थे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by V.C. Pramod. BRICS nation today reiterated their commitment to strengthening collaboration on environmental protection and sustainable development. A joint ministerial statement adopted on the conclusion of the 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi today said, BRICS nations also reaffirmed their commitment to advancing the full and effective implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, the United Nations Framework Convention.

स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारी आज की सायंकालीन सभा यहीं संपन्न होती है। प्रातः 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे आपकी सेवा में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।